0: से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज़ में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150

0: क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 MHz पर। मैं हूँ RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख़ासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
6: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम

0: फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो है हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40 रुपए 30 रुपए से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इसे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत, आप देखिए ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है। तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है। उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैटो इसमें पॉइंटेड गार्ड में परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूजर है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं। तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जियों और फलों से ही फाइबर मिलती है। तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
1: परवल में,
0: हाँ परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सबसे बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
1: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्व की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में। तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
0: देखिए, परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये तीन महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगान में अगर कहिए जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर

0: अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं जैसे दियारा लैंड में, तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीना में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे अब लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं। इसमें आप मचान विध भी लगाते हैं, टेलिस विध भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं। तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पर तैयार करिए या 2x1 मीटर पर तैयार करिए। 2x2 होगा, 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पर लगाना है या 2x1 मीटर पर लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है आप जो है वहाँ 1x1x1 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी ले करके आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूरा डन डालिए, 2 ग्राम, एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए। और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पर जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहे तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए। इतना उसके साथ कोई मरोवत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद वो जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
1: जी।
0: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी से ढक दीजिए और हल्का सा उस पर फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का, ज़्यादा पानी नहीं देना इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है। तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है। और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको। तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा आपको जो है, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा। और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो, या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल या किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े। हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के ले चले जाइए। जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोट्स है उसमें 7-8 नोट, आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोट उसमें थे, तो जितने नोट से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और ये आपकी फरवरी शुरू से ही

0: निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी। बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और एक सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो एक सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए। जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, एक सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए।
1: जी, तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो है इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
0: देखिए, परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियाँ हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्रॉप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है। तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले आते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है। कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियाँ जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है। तो इस तरह की ये प्रजातियाँ हैं, नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है। तो ये सब प्रजातियाँ हैं जिसको आप, जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के, 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है।
1: जी,
0: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब, की किस प्रकार के खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
0: देखिए, अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट्स देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
1: जी।
0: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो है 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो है नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फॉस्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं। तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी।
1: जी, यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
0: देखिए किसान भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है और वह क्यों होती है। किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पर आता है और मादा फूल अलग पौधे पर आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है और मादा फूल

0: पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है, वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है। तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है। जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
1: जी,
0: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए। तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, आप फेरोमोन ट्रैप जो है 1 एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फेरोमोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है, वो तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
1: अच्छा।
0: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता वहीं वो मर जाता है। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है
1: जी।
0: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
1: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
7: तो इस राक्षस

0: कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: एमआरटी का 9 से 12 महीने और दूसरा एमआरटी का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी एमआरटी का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई

भी करे जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करे जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गाँव खिंदासा तहसील कोडायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
3: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
3: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
3: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।

0: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
1: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
0: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
1: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
0: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
1: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
0: कैसे बना हिमालय।
1: आज रिद्धि,
0: नव्या
1: और रिदित
0: सब बहुत खुश है
1: क्योंकि उनका परिवार
0: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
1: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
0: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
1: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
0: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको रुको मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टैथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के

0: बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
0: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
0: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथित सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
1: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
0: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथित सागर का क्या हुआ?
1: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
0: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
0: अच्छा, तो ये बात है।
1: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
1: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
0: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
1: भला वो क्या?
0: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
1: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी।

0: कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे

0: लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
2: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा।
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
2: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है।
0: स्वामीनाथन बोला,
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए?
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा।
0: दादी काफी प्रभावित हुईं।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा।
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना?
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
3: बोलो
2: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
3: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
2: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
3: अरे नहीं नहीं,
2: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
2: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले

0: हुए थे।
1: अच्छा
0: राजम उनके साथ था, अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
3: नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
0: अच्छा बताओ कितने शेर आए थे?
3: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
0: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
3: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
0: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
3: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
0: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
1: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
3: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो।

0: आगे जीरो पीछे जीरो।
1: क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
4: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम और इसमें बातें होती हैं खेती बाड़ी की और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आज एक खास विषय हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए। हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे बिहार में इनकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएँ हैं। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
3: मैम नींबू वर्गीय फलों के बारे में और हमारे श्रोताओं को आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जो है नींबू वर्गीय इस वर्ग में कौन कौन से फल आते हैं नहीं जानते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है उनके बारे में भी बताएं।
5: सही कहा, नींबू वर्गीय फलों में खास करके मौसमी, संतरा, गागर नींबू, पूर्वी नींबू, कागजी नींबू इत्यादि प्रमुख है। लेकिन किसान भाई इसको लगाते हैं, किचन गार्डन के रूप में लगाते हैं, किचन में एक दो पौधा लगाते हैं, लेकिन बिहार में देखें तो इसकी व्यावसायिक खेती उतना प्रचलन में नहीं है। जबकि नींबू की खेती के लिए बिहार का जलवायु काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ अगर व्यावसायिक खेती की जाए तो किसान भाई को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बिहार में नींबू की खेती प्रचलित है, यहाँ संतरा और मौसमी की खेती की जा सकती है, जैसे कि पंजाब में होता है, महाराष्ट्र में मौसमी होता है, पंजाब में किन्नू होता है जिसको संतरा बोलते हैं, तो यहाँ भी वैसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई अभी इसके प्रति उतना अवेयर नहीं है, उतना नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको अभी उतना व्यावसायिक तौर पे अपना नहीं रहे हैं
3: जी।
5: अब इसकी बात करें कि इससे क्या क्या बन सकता है। इसको हम लोग एक तो फ्रेश खाते हैं, संतरा कहें तो उसको छिलकर खाते हैं, और नींबू कहें तो आपका दाल में गाड़ के खाते हैं, उसका सलाद में डाल के खाते हैं, चाय बनाकर पीते हैं, इसका अचार भी बनता है, चटनी बनता है, स्क्वाश बनता है, आरटीएस बनता है। इसका छिलका जो है उसमें काफ़ी ऑयल होता है, तेल होता है, तो इसको अगर हम व्यावसायिक तौर पे करें तो फैक्ट्री वाले इसके छिलका को भी ले जाएंगे, वो अपना ऑयल निकालेंगे, तो इस तरह से इसका बहुत सारा यूज है, बहुत सारी उपयोगिताएँ हैं।
3: तो यहाँ पर आपने नींबू वर्गीय फलों के बारे में जाना और ख़ास तौर पर मैम ने बताया कि अभी फ़िलहाल बिहार में जो लोग हैं इसे व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अभी कम जानकारी है। तो मैम इसकी कौन कौन सी किस्में जो हैं जो हमारे किसान भाई

0: लगा सकते हैं।
1: इसकी जो है इसको हम वर्गीकरण इसका करना बहुत ही कठिन है। इस छोटा फल से लेके बहुत बड़ा बड़ा फल होता है। छोटा फल कहें तो जैसे कि कागजी नींबू है, बहुत छोटा होता है
0: जी।
1: और बड़ा कहें तो आप देखते हैं चकोतरा है, जिसको कि डावा नींबू कहते हैं, छठ पर्व में चढ़ता है। तो इसका अगर हम वर्गीकरण करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन होता है इसका वर्गीकरण। जैसे कि आम है तो आम ही है, लेकिन नींबू के केस में क्या है कि फल का जो साइज में भिन्नता बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गीकरण थोड़ा कठिन होता है। अब संतरा की बात करें तो संतरा को हम लोग छील कर खाते हैं, यानी कि पौधा में ही फल पक जाता है, उसको तोड़ते हैं और छिलका छिलकर हम लोग खाते हैं। जैसे कि फरवरी में इसका मेन फसल आता है, हार्वेस्ट होता है। आप देखती होंगी कि ये होली के टाइम में बहुत अधिक संतरा रहता है बाजार में, और इतना रहता है कि 100 रुपीज़ में 3-4 केजी तक दे देता है रिटेलर। तो ये बहुत अधिक उपज देता है संतरा। संतरा में वेराइटी है, ये वर्ग हुआ संतरा, जिसे बोले कि वर्गीकरण करना काफ़ी कठिन है, तो संतरा एक वर्ग हुआ। उसी तरह से एक नारंगी वर्ग होता है, कागजी नींबू वर्ग होता है, तो इसका वर्गीकरण बहुत है। तो संतरा में अगर हम वैरायटी की बात करें, किस्म की बात करें, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट किस्म है, मुख्य है किन्नो, जो कि हम लोग यहाँ भी लगाए थे, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी किन्नो हम लोग लगाए थे, 200 के करीब प्लांट हम लोग लगाए थे, और यहाँ भी अच्छा उपज दिया और दे रहा है। अभी तो बहुत 10 साल हो गया है, तो पौधा करीब करीब डिक्लाइन के कंडीशन में है, लेकिन यहाँ उपज बहुत अधिक आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का जलवायु जो है संतरा के लिए उपयुक्त है। इसमें किस्में हैं, किन्नो है, कुर्ग है, नागपुर है, खासी है, लेकिन किन्नो में बहुत अधिक उपज आता है। अब नारंगी की बात करें तो इसमें सभी किसान भाई जानते हैं कि बाजार में मौसमी बहुत बिकता है, सभी लोग, बच्चे बड़े आदमी सभी लोग जानते हैं मौसमी, और इसका जूस खास करके इसका हम लोग जूस निकाल कर पिया जाता है। क्यों पिया जाता है? क्योंकि इसका छिलका जो होता है आप हाथ से नहीं हटा सकते हैं, छिलका काफ़ी उसका जो जूसी पार्ट रहता है अंदर में वो उससे सटा हुआ रहता है, वो इजीली अलग नहीं होता है, उसको चाकू से अलग करना पड़ता है। यही सब इसका, इसीलिए इसको वर्गीकरण किया गया। संतरा अलग है, हम छील के खाते हैं, लेकिन नारंगी में किस्म है, जैसे हेमलिन है, मौसमी है, ब्लड रेड है, जाफा है, बहुत सारी किस्में हैं, तो इसको हम लोग छिल कर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइट स्किन, यानी कि वो सटा रहता है, गूदा से सटा हुआ रहता है। अच्छा। तो उसको चाकू से छिल करके फिर उसका जूस निकाल कर लोग पीते हैं, इसलिए कहता है कि मौसमी का जूस मार्केट में बहुत मिलता है
0: जी।
1: अब बात करें कागजी नींबू की, तो कागजी नींबू क्या है कि इसको हम लोग जैसे कि सलाद में डालकर खाते हैं, या चाय बनाकर पीते हैं, या दाल में डालकर खाते हैं, मतलब इसको हम लोग इसके रस को यूज करते हैं खाने में, और इसका अचार भी बना सकते हैं। कागजी नींबू का ही हम लोग अचार भी बनाते हैं। तो ये पुराना है, घर में लोग अचार बनाकर रखते हैं, ये बहुत ही एपेटाइजर का काम करता है। इसको खाने से पेट का दर्द कहता ठीक हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाता है। तो इसके फल से अचार, शरबत, साइट्रिक एसिड इत्यादि बनाया जा सकता है
0: जी। तो किसान भाई, यहाँ पर किस्मों की बात आपने यहाँ पर आपको बताई गई, जिसमें कि वर्गीकरण के बारे में मैम ने आपको बताया। मैम, पौध तैयार, जब खेती की ओर जाते हैं तो पौध तैयार की बात सबसे पहले की जाती है, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई?
1: हम पौध तैयार करने की का बहुत सारा विधि है, जैसे कि कलम विधि से भी कर सकते हैं। कलम विधि क्या है कि आप जो सूट होता है, जो तना होता है, परिपक्व तना, जैसे कि ब्राउन जिसको हो जाता है तना, उसको परिपक्व कहते हैं। अर्ध परिपक्व, जैसे कि हरा ही है तना और उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश भी आ गया है, तो उसको अर्ध परिपक्व कहते हैं। और तीसरा है मुलायम, कि हरा ही है तना, हरा है। तो तीनों का कटिंग करके हम इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। किसी इसमें क्या है कि 15 से 20 सेंटीमीटर काटते हैं, और 3 भाग को सॉइल में डालना है, मिट्टी में डालना है, 1 भाग ऊपर रहेगा मिट्टी से ऊपर।
0: अच्छा।
1: और ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए इस काड़ी को, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो जून जुलाई में वर्षा का सीजन है हम लोग के जगह यहाँ, तो जून जुलाई

0: करने से सक्सेस अच्छा होता है। किसान भाई इसको मार्च अप्रैल या फरवरी फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं जहाँ की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। अगर कटिंग हम लगाते हैं तो फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं और सिंचाई करते रहेंगे तो उसमें भी सक्सेस होता है। और है गूटी बांधना, आप देखेंगे कि गूटी पौधा में ही मिट्टी ले जाकर बांधते हैं और उसको पॉलीथीन से रैप करते हैं, फिर 20-25 दिन के बाद उसमें जड़ आता है, उसको काट कर अलग कर लिया जाता है और फिर पॉटिंग करके कुछ दिन छोड़ दिया जाता है जिससे कि उसके जड़ का ग्रोथ अच्छा हो। जब जड़ का ग्रोथ अच्छा हो जाता है तब उसको मेन फील्ड में लगाता है। और है चश्मा मेथड, चश्मा मेथड उसको बोलते हैं बडिंग, यानी कि बडिंग मेथड से भी इसका प्रवर्धन करते हैं। ये भी अगस्त सितंबर में इसका अच्छा देखा गया है और हम लोग के कंडीशन में दिसंबर में और फरवरी मार्च में इसका जो है चश्मा मेथड या वेज ग्राफ्टिंग भी हम लोगों ने किया है। वेज ग्राफ्टिंग में भी ये अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, 80% सक्सेस आता है और ये इसको हम लोग दिसंबर में और फरवरी मार्च में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि मूल वृंत का जरूरत पड़ता है, मूल वृंत जिसको बोलते हैं कि नीचे का जो रूट स्टॉक बोलते हैं जिस पर कि हम लोग ग्राफ्ट करते हैं पौधा को, उसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक या मूल वृंत हिंदी में बोलते हैं। तो इसका अलग वेराइटी होता है। इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मूल वृंत होता है, रूट स्टॉक होता है, वो काफ़ी हार्डी होता है तो वो बीमारी से बचाता है, वो जलवायु से बचाता है, एडवर्स सिचुएशन जो जलवायु का होता है प्रतिकूल स्थिति जैसे हवा वर्षा आंधी तूफान, उससे ये जो मूल वृंत है, रूट स्टॉक है, वो पौधा को बचाता है। इसलिए रूट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बहुत सारी वेराइटी है, जंभीरी है, जट्टी खट्टी है, करना खट्टा है, बहुत सारा रूट स्टॉक है, उसको प्रयोग में लाने से पौधा का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है।
1: तो इस प्रकार किसान भाइयों, अभी आपने पौध तैयार की जो विधि है वो जानी, और मैम इसके बाद ज़रूरी है इसकी खेती में या फिर किसी भी फसल की खेती में कि खाद हम कितनी मात्रा में दें, कौन से खाद दें, सिंचाई कब करें, कटाई छटाई कब करें, पौध रोपण कब करें, कैसे करें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नींबू वर्गीय फलों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए इन सभी चीज़ों को कैसे करना चाहिए?
0: हम जैसे पौधरोपण की बात करें तो जैसे सब फल वृक्ष का पौधरोपण करते हैं, जैसे कि मिट्टी का मिट्टी को तैयार करना, फिर गड्ढा बनाना, तो ये कार्य जो है अप्रैल मई में हम लोग कहते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को तैयार करने के लिए अगर अप्रैल मई में जुताई उसकी की जाए और जुताई कर 10-15 दिन छोड़ दिया जाए तो उसमें जो कीड़े हैं, जो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अप्रैल मई में ज़मीन की जुताई करनी चाहिए, उसके बाद फिर पाटा चलाकर 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बना लेना चाहिए। गड्ढा हम देखिए नींबू का हम शुरू में ही बोले कि इसका वर्गीकरण अलग होता है, इसका पौधा का साइज भी सबका अलग अलग होता है। तो हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं, अब डवा नींबू लगा रहे हैं या कागजी नींबू लगा रहे हैं या संतरा लगा रहे हैं या मौसमी लगा, उस अनुसार से उसका लेआउट करना पड़ता है, यानी कि पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी हम लोग उसी अनुसार से रखते हैं जो हम लोगों ने सोचा है कि हमको ये लगाना है, उसी अनुसार से करते हैं। जैसे आप मौसमी के केस में 5 मीटर आप रख सकते हैं पौधा से पौधा और कतार से कतार। संतरा आप लगाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके लिए 6 मीटर है, और महानींबू है उसके लिए 7 मीटर है। अब चकोतरा है जिसको कि डाभा नींबू को बोलते हैं, इसके लिए 8 मीटर, इसका पौधा और बड़ा होता है। तो इस अनुसार से हम लोग कहते हैं कि प्लांटिंग डिस्टेंस आप बना लीजिए और ले आउट कर लेना है। उसके बाद गड्ढा खोद कर उसमें 40 किलो गोबर की खाद, 2.5 किलो हड्डी का चूरा और 1 किलो राख 3 टोकरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। अब गड्ढा भरने के बाद एक बारिश कम से कम जरूर होना चाहिए, पौधा लगाने से पहले एक बारिश हो जाए जिससे कि गड्ढा का मिट्टी जो है जो हम भरे हैं वो अच्छी तरह बैठ जाए। फिर उसको लेआउट करके जहाँ बीच सेंटर पे जहाँ पौधा लगाने का जगह है वहाँ पर पौधों को लगा देना चाहिए। ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए। पौधे

0: लगाने का कार्य जून जुलाई में करना चाहिए जब बरसात शुरू हो जाता है
1: जी।
0: अब खाद की बात करें तो पहला वर्ष आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो अनुपात है 75 ग्राम 40 ग्राम और 75 ग्राम रखना चाहिए और ये अनुपात हर एक साल बढ़ते जाएगा। जैसे 75 ग्राम पहली साल था नाइट्रोजन तो दूसरे साल 150 ग्राम होगा, फिर तीसरे साल 225 ग्राम होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये दसवें साल में नाइट्रोजन की मात्रा 750 ग्राम होगा और फास्फोरस की मात्रा 400 ग्राम होगा और पोटास की मात्रा 750 ग्राम होगा। ये दसवें वर्ष में देना है पौधा को और यही जो खाद की मात्रा है यही हर एक वर्ष पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि पौधा मेरा मैच्योर हो गया है, अब उसको इतना ही भोजन हर एक वर्ष चाहिए। इसके अलावे हम लोग कहते हैं कि खाद FYM जो होता है सड़ी हुई गोबर की खाद 50 किलो प्रति पौधा देते रहना चाहिए। अब सिंचाई की बात करें तो गर्मी के दिन में वीकली इंटरवल पे सिंचाई करना चाहिए यानी सप्ताह में एक बार और जाड़ा में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए
1: जी।
0: अब निकाई गुड़ाई की बात है तो वो तो बरसात के समय में घास बहुत निकल आता है तो उसका बीच बीच में सफाई होते रहना चाहिए जिससे कि मेरा जो मेन क्रॉप है नींबू का वो अच्छा रहे। अगर अधिक घास रहेगा तो उससे बीमारी और कीड़ा का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। अब कटाई छटाई की बात करें तो नीचे 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर कोई तना नहीं रखना चाहिए। जैसे पौधा हम लगाए तो 40 सेंटीमीटर मेरा फ्री रहना चाहिए क्योंकि हम बाद में गड्ढा के चारों ओर खाद डालेंगे वो सब कार्य करने में हमको आसानी होगा। निकाई गुड़ाई करेंगे तो वो सब कार्य करने में अगर नीचे से ही मिट्टी के सतह से ही अगर दूसरा सूट निकल जाएगा तना निकल जाएगा तो वो जो निकोनी गरोनी का जो कार्य है खाद पानी देने का जो कार्य है वो बाधित होगा। तो इस तरह से कटाई छटाई करनी चाहिए
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने पूरी जानकारी पाई कि कैसे आपको पौधरोपण करना है, खाद आपको कैसे देना है, सिंचाई कटाई छटाई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। और अब अंत में बात करते हैं फलों की तुड़ाई और उपज के बारे में। मैम तो ये भी बता दें कि क्या मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को उपज।
0: फलों को तोड़ना जैसे कि अब जब फूल लगता है नींबू में उसके 6 से 9 महीने बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी और कौन सा नींबू हमने लगाया है। तो इस तरह से और जब फल सेट होता है जब पकने की स्थिति में होती है जब मैच्योर होने की स्थिति में होती है तो कलर का उसका फल का जो कलर है थोड़ा चेंज होता है। ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा किस्म है। सभी का फल जो है पीला पूरा नहीं होता है तो किसी किसी में हरा ही रहता है थोड़ा लाइट ग्रीन रहता है थोड़ा सा किसी में अधिक पीला होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है। अब उपज की बात करें तो नींबू वर्गीय फल वृक्ष से 5 से 8 वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। तो फलों का उत्पादन जाति उसके जाति किस्म बाग की देखरेख और जलवायु पर निर्भर करती है। एक अच्छे माल्टे के पौधे से 500 करीब फल प्राप्त होता है, प्रति पेड़ 500 फल मिलता है। संतरा की बात करें तो 1000 से 1500 फल प्रति पेड़ मिलता है। अब ग्रेप फ्रूट की बात करें कि 300 फल प्रति पेड़ मिलता है। लाइम की बात करें तो 1000 फल प्रति पेड़ मिलता है। इस तरह से जो किस्म है जो जाति है उस अनुसार से उसका उपज प्राप्त होता है
1: जी। तो किसान भाइयों इस प्रकार यहाँ पर बातें हुई नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में और साथ ही बिहार में इसकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं उनकी बातें यहाँ पर हमने की हैं। तो आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नींबू वर्गीय फलों के बारे में और अगर आप व्यावसायिक तौर पर खेती करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कि कितना उपज प्राप्त हो सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय को लेकर और हम हाजिर होंगे एक अलग विषय के साथ। तो फिलहाल आज के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पक्षियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले

0: अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और

बिरजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी शुभम गौरव। सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला में हम आज बहुत खास प्रोग्राम लेके आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में स्वास्थ्य की बातें पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद आरजे बाबू, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन

0: भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब अपने साथ मिलकर समझाना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। अब आप ही सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और यह समझे कि हर व्यक्ति को अच्छी सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल, होती है। और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्टैंड विद साइंस, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी भी अफवाह यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर ले। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है घरेलू नुस्खा अपनाओ, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गाँव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट संस्था दिल्ली के सौजन्य से चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ उठाएं और लोगों की जेब पर भी स्वास्थ्य पर खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान अपना स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा होगा, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसान पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण को भी ध्यान रखना चाहिए।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आजकल जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज कर लेते हैं। कई बार छोटी छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैली रहती हैं, जैसे वैक्सीन के नुकसान होते हैं या कुछ बीमारियों का इलाज घर पर ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए, सही समय पर डॉक्टर के से सलाह लेनी चाहिए।
0: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलनी चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जाँच, इलाज और बाद की देखभाल भी, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता। जरूरी यह है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोगों को उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। यह इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे सही खान पान एवं व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी, मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरा है सांक्रामक बीमारियाँ, जैसे निमोनिया, मलेरिया, दस्त। इससे बचने के लिए साफ सफाई, टीकाकरण या सही जानकारी बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जैसे मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है लेकिन चुनौतियां अभी भी है। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा है।

0: और जीवन शैली की बीमारियां है तो 60% मौत के कारण बन चुकी है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ लेकिन हर राज्य में सामान्य नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है।
1: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
0: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है। टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। रक्तदान शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इस सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
1: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की क्या भूमिका होती है?
0: सबसे अहम भूमिका होती है। हर गाँव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं जहाँ HO होते हैं, जहाँ रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है। बहुत ही दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत सी जांचें होती हैं। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं होती हैं। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोग सिस्टम पर भरोसा होगा तब वो समय पर इलाज करवाएंगे।
1: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे समझा जाए?
0: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यही वह जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता और सभी कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर भी करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर आता है जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़ा अस्पताल जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
1: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है? इस स्थिति को कैसे समझा जाए?
0: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यह वही जगह है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता, कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को रेफर करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती है, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिन्हें सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत होती है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
1: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगह पर अभी भी डॉक्टरों की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती जहाँ जांच की सुविधाएं सीमित होती हैं। लेकिन सरकार लगातार इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों में पहले से ही धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता है, वे बिना कोशिश किए वहाँ जाना ही बंद कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है।
1: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुधार कर रही है, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए ना ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसके तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी बड़े अस्पतालों में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है जिसको दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएँ जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जानकारी और सलाह भी मिलती है। और

0: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना PMVVY जो इसी आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
1: आजकल डिजिटल चीज़ों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
0: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा आईडी बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इसका फायदा यह होता है कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराना इलाज का रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा यूवेन जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिसका टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोग समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगवाना है।
1: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारियाँ बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
0: हाँ, और यह बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार यह अफवाह फैलाई जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे ज़माने में टीका तो लगाया ही नहीं, फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोसी की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
1: तो इन बातों का सच क्या है?
0: सच यह है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द तो हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और यह दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे ज़माने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारी से मर जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था और हम उस सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें यह ताकत दी है कि हम बीमारियों को पहले ही से बचाव कर सकें।
1: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
0: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच ना माने, पहले पूछे, समझे, फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति समझदारी रूप से पूरे गांव को सही दिशा दे सकता है।
1: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी, सही जानकारी पर भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम कहीं सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुरक्षित भविष्य का बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों की जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसी प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत से

जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12।

0: 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए खास विषय हर रोज की तरह लेकर आते हैं, तो आज भी बिल्कुल कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज हम जानेंगे। और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर मंकेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद मैडम।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कतरनी धान के बारे में थोड़ा सा बताएं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताएं।
7: नमस्कार कृषक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं जो आप सब कतरनी धान की खेती, खासकर भागलपुर और बांका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आप कतरनी धान की खेती बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं, और जो जिस हिसाब से ये किसान आगे बढ़कर खेती कर रहे हैं, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता शुरुआत करता हूँ। मैं डॉक्टर मंकेश कुमार हूँ, मैं पौधा प्रजनन विभाग में कनीय वैज्ञानिक हूँ, और मेरा काम विशेषकर सुगंधित चावल और खासकर कतरनी पर ही रहा है। तो कतरनी धान जो आप किसान बंधु जानते ही हैं, कतरनी धान जो है बिहार का एक गौरव है, खासकर भागलपुर जिले का एक पहचान इसे जाना जाता है। तो ये एक बहुत प्रचलित सुगंधित चावल है जो मध्यम पतला दाना होता है इसका, और एक नदी जो चानन नाम की नदी है बांका ज़िले में बहती है, उस नदी के आसपास के इलाकों में इसको लगाने के बाद इसमें एक विशेष तरह की खुशबू आती है। साथ ही साथ बांका के अलावा जैसे भागलपुर में दो प्रखंड हैं, जैसे आपका सुल्तानगंज है और आपका भागलपुर के दो प्रखंड, और मुंगेर के भी दो तीन प्रखंड हैं, और बांका के 4-5 प्रखंड हैं, इसमें कतरनी धान में अजीब एक विशेष प्रकार की गुणवत्ता वाली कतरनी धान होती है, जिसके कारण इसको 2017 में एक भौगोलिक सूचकांक का टैग प्राप्त हुआ है। इस टैग के प्राप्त होने के बाद किसानों को एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, जो उसको उनको एक कतरनी धान उगाने के लिए एक अधिकार प्राप्त, एक पेटेंट की तरह एक अधिकार, स्पेशल अधिकार देती है। जिसके चलते उसको कमर्शियल लेवल पर

0: ले जा सक करके वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं थोड़ा खेती की, तो कतरनी धान के बिचड़े लगाने की क्या विधि होगी?
0: किसान बंधु, कतरनी धान का बिचड़ा जैसे अन्य धान लगाया जाता है उसी प्रकार लगाते हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बस ये है कि इसमें कतरनी धान जैसे लंबे दिनों की प्रजाति है, तो इसको किसान बंधु इसको जुलाई के दूसरे हफ्ता में इसको लगाएं, जिसका बीज दर लगभग 25-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। और बीज लगाने से पहले बीजोपचार अगर कर दे तो किसान बंधुओं को आगे कीट और व्याधियों की समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। तो बीजोपचार के लिए बेबिस्टिन जो है पाउडर है 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम, या ट्राइकोडर्मा जो एक फंजाई होता है उसको बाज़ार में उपलब्ध होता है उसका 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ PSB कल्चर के साथ मिला करके, और एजेटोबैक्टर भी अगर चाहें तो एजेटोबैक्टर का कल्चर भी साथ में मिला करके बीज को ट्रीट करें, और उसके साथ ट्रीट करने के बाद उसको जूट गीले जूट बैग में उसको रखते हैं करीब 24 घंटे के लिए, और उसके बाद देखें कि बीज अगर अंकुरित हो रहा है, हल्का अंकुरित हो गया है, तो उसको एक उप जो बिचड़े लगाने के लिए थोड़ा सा ऊपरी जमीन को ऊपर करके एक क्यारी बनाते हुए ऊपर उसके बीज को छिड़काव करें, और फिर आप देखेंगे कि बीज मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे रूप में और हेल्दी बीज का जो है जर्मिनेशन हो जाता है। तो आप बीज उपचार करें, उसके बाद बुआई का समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसका बुआई जो है 15 से 25 जुलाई के बीच में करना चाहिए, या आप चाहेंगे कि पहले हम कर दें जून के माह में कर दें और हमारा फसल अच्छा आएगा उपज, तो ऐसा नहीं है। आपको ये क्योंकि ये प्रकाश संवेदनशील प्रजाति है तो पहले लगाएंगे आप तो इससे उसके उपज में असर पड़ेगा, उसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा लेकिन उसका दाना कम बनेगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको 15 से 25 जुलाई के बीच के समय में ही उसको लगाएं। और रोपने के लिए आप 20 से 25 दिन के बिचड़े को आप यूज कर सकते हैं, उसको आप क्यारी से अच्छे तरह से उखाड़े, उसको पानी उसका रहना चाहिए, जड़ नहीं टूटना चाहिए उखाड़ते समय, और प्रति खूंटा बिचड़ा जो है आपको 3 से 4 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मतलब एक हिल पे या एक जगह 4 से 5 पौधे से ज़्यादा मत लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। रोपाई की दूरी आप चाहें तो 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति पौधे से पौधे के बीच में और पंक्ति के से पंक्ति के बीच में रखें तो ज़्यादा अच्छा आपका फसल होगा। जी
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिचड़े लगाने की विधि की, अब बात करते हैं थोड़ा सस्य क्रियाओं की, तो क्या कुछ सस्य क्रियाएँ होंगी कतरनी धान में?
0: जी जी, ये कतरनी धान जैसे किसान बंधु आपको कतरनी धान की जो खेती करते हैं उनको अनुभव होता ही होगा कि कतरनी धान में आप अन्य जैसे फसल धान की प्रजातियां हैं जैसे उसमें उर्वरक आप ज़्यादा डालते हैं, छिड़काव मतलब इंसेक्टिसाइड का या जो भी खरपतवार नाशी जो केमिकल है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का अनुभव ये बताता होगा कि कतरनी धान में ये सभी चीज़ों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। इसका उल्टा ये परिणाम है कि अगर आप खाद अगर ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे या ज़्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तो कतरनी का जो विशेष गुण है जिसके लिए वो जाना जाता है वो उसमें नहीं रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कतरनी धान में जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है या जैविक खेती जो किया जाए उस पर ही आप ज़्यादा उस पर आप आगे बढ़ें। तो इसमें जो खाद हरे खाद का ऊपर अगर उपयोग करते हैं तो सबसे बढ़िया है, इसके लिए जो ढांचा जो कहते हैं एक वो उसको आप परती जमीन जैसे रवि का फसल कटने के बाद परती जमीन जो रहता है उसमें आप ढांचा का प्रयोग करें, उसको आप बीज जो है आप जून माह के अंत में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में छिड़काव कर दें, और जब वो पौधा ढांचा का 55 से 60 दिन का हो जाए जो जुलाई के अंत तक जब कतरनी को रोपने का जब समय आए तब उस ढांचा को काट दें, उसको दबा दें उस खेत में और FIM का प्रयोग करें तो ज़मीन जो है बहुत ही अच्छा कंडीशन में आ जाता है जिससे कतरनी का खेती बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो सामान्यतः NPK का 40, 30 और 20 का ये रेशियो होना चाहिए, और इससे ज़्यादा आप NPK का प्रयोग ना करें, जो है आप

0: जिंक, फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी करते समय दे दें, और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है पहले तो आप एक आधी मात्रा आप बुआई के समय करें, फिर एक तिहाई भाग 7 दिन पर और शेष एक तिहाई भाग कल्ले निकलने पर आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी करते समय डाल दें। बासमती धान जो है उर्वरक की उर्वरक की मांग कम होती है, इसलिए कार्बनिक खेती को ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कार्बनिक खेती करने से पोषक तत्वों की आपूर्ति गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद तथा जैसे मुर्गी पोल्ट्री का जो बीट है आदि स्रोतों से पूरी करनी चाहिए। तो कार्बनिक खादों को खेत के में रुपाई से 2 सप्ताह पहले ही मिला देना चाहिए, क्योंकि आप रुपाई करने के बाद डालेंगे तो कोई उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। और इसके लिए खरपतवार रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैविक संसाधनों का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो खरपतवार, जैसे आप कहते हैं कि खरीफ के फसल में खरपतवार का भी ज़्यादा समस्या होता है, तो खरपतवार के लिए आप रोपनी के 3 से 5 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर 50 EC का प्रयोग करें। उसको 15 किलोग्राम 50 ब्यूटाक्लोर लेकर के 500 लीटर जल में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, और उसके बाद रोपनी के 25 से 30 दिनों के बाद एक बिस्पारी वेक सोडियम 10 ग्राम प्रतिशत जो है SC 25 ग्राम सक्रिय दवा को 500 लीटर प्रति हेक्टेयर जल के में घोल करके आप करें। तो ये आपका सस्य क्रियाएँ कतरनी है जिसको आप अपना सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब अगर फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद भंडारण किस प्रकार से करें?
0: जी जी, जैसे कतरनी में आप मैंने कहा था कि कतरनी जो है लंबे दिन की प्रजाति है, और ये पकने की जो अवधि है इसकी 150 दिन से ऊपर होती है। इसका मतलब है कि ये जब ये पकता है तो हमारा जाड़ा का सीजन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो समस्या ये होती है कि उस टाइम धूप निकलना बंद हो जाता है और दाने में मॉइस्चर का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो किसानों को इसका भंडारण में समस्या आती है। तो आप ये भंडारण के समय ये ध्यान रखें कि इसमें 14% तक नमी रहे ये भंडारण के समय, और इसको अच्छी तरह से सुखा लेने का कोशिश करें, और नई बोरी का प्रयोग करें, पुरानी बोरियों को ना यूज़ करें। अगर पुरानी जो बोरी है तो उसमें आप कोशिश करें कि दाना जो है पूरा पुराना धान का दाना उसमें ना रहे, उसको झड़वा दें, और गोदाम वाले भंडारण वाले गोदाम को अच्छी तरह से साफ कर 4 लीटर मलाथियन या DDVP का 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर देना चाहिए। और कुछ लोग मटके में भी भंडारण करते हैं, तो उसमें भंडारण करने के लिए आप 500 ग्राम सूखी नीम की पत्तियों को डालकर धुआं करें तथा ऊपर से बंद करके वायु अवरोधी करें। किसान भाइयों, इसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि कतरनी जो एक सुगंधित धान है, तो इसमें आप कोशिश करें कि जब छांव में इसको जब सुखाएंगे तो इसका जो सुगंध है ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहता है। अगर तेज़ तीखे धूप में अगर सुखाएंगे तो इसका सुगंध जो है थोड़ा कम हो जाता है, जैसा मेरा अनुभव है। तो जब खिली धूप हो और कहीं छांव में इसको सुखाएं तो इसका सुगंध जो है बहुत दिनों तक बरकरार रहता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, और कतरनी धान में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के रोग, व्याधि और कीट भी लगते हैं, तो इसका उपचार कैसे करें?
0: जी जी, कतरनी धान एक सुगंधित प्रजाति होने के चलते ये जो कीटों के लिए बहुत आकर्षण का ये फसल होता है। जी
1: सुगंध की।
0: जी, तो इसमें एक गंधी भाग एक कीड़ा होता है जो ज़्यादातर सुगंधित धानों में ज़्यादा अटैक करता है, तो उसके लिए ये गंधी भाग जो है ये जब बालियाँ निकल जाती हैं तो इसके बालियों से रस चूस करके बालियों को सुखा देता है। तो इसके लिए आप मालाथियन या कार्बोरिल 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें, और इसमें एक येलो स्टेम बोरर का एक प्रॉब्लम है जो पीला तना छेदक कहा जाता है इसको।
1: अच्छा।
0: तो उसके लिए आपको आपको जैसे इसका प्रकोप नर्सरी के टाइम से ही शुरू हो जाता है, पीला तना छेदक उसमें अंडा देना शुरू कर देता है। तो जब आप रोपनी करने जाएं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका जो ऊपर का पत्ता का हिस्सा है उसको तोड़ दें, तो ऊपर के पत्ते के हिस्से में जो इसका अंडा है वो हट जाएगा और रोग मुक्त हो, ये कीड़ा के अंडे से रहित हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फसल लगने के बाद रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण करने के लिए रोपनी के 3 हफ्ता के बाद आप कार्बोफ्यूरॉन प्रति 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 4-8-10-10 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर एक कारटाप एक दवा आती है जिसकी 10

0: ग्राम प्रति 25 केजी ग्राम प्रति हेक्टेयर का एक बार प्रयोग करना चाहिए
1: जी।
0: और इसके बाद 20 दिनों के बाद मोनोक्रोटोफॉस 36 सीसी जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में, या क्लोरोपाइरीफॉस एक दवा आती है जो 20 सीसी इसका स्ट्रेंथ होता है, और 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर जैविक तरीके से अगर इसका नियंत्रण करना चाहें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इससे इसका सुगंध बरकरार रहता है। तो जैविक नियंत्रण के लिए रुपाई के 30 दिनों के बाद 10 दिनों के अंतराल पर एक ट्राइको कार्ड आता है, जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा भी ये कई किसानों को दिया गया है, और ये ट्राइको कार्ड हमारे यहाँ अवेलेबल भी है। इसका प्रयोग करेंगे तो ये येलो स्टेम बोरर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है
1: जी। अब अंत में बात आती है उत्पादकता बढ़ाने की, तो क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि कतरनी धान की उत्पादकता को हम बढ़ा सकें?
0: जी जी, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि कतरनी का जो उत्पादन है, उत्पादकता जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, क्योंकि वो प्रजाति जो है लंबा होता है, और अपने दाना के वजन से ये जो है जब पकता है तो ये गिर जाता है, इसके चलते इसमें जो है उपज बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ ये दिक्कत है ये कि जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत लंबी है, तो जो किसान गेहूं लगाना चाहते हैं वो लगा नहीं सकते हैं दिसंबर के माह में। तो उत्पादकता मतलब किसान जो है कतरनी की धान की खेती नहीं करना चाहते हैं, इसके चलते इसकी कम उत्पादकता भी जिम्मेदार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2013 या 12 के आसपास किसानों के यहाँ से शुद्ध कतरनी को ला करके उसमें एक ब्रीडिंग प्रोग्राम किया और बौना कतरनी को डेवलप किया है, और वो अंतिम चरण के स्टेज में है। और उस बौने कतरनी के में ये खासियत है कि वो उसकी उत्पादकता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और उसके पकने की अवधि भी कतरनी से 15 से 20 दिनों की कम है। तो अगर ये बौने प्रजाति किसानों के बीच में आएगी तो इसकी उत्पादकता अधिक होने के चलते किसान भी इसको लगाएंगे, और इसको लगाने के साथ साथ किसानों का जो है इससे आय भी वृद्धि हो सकता है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती को लेकर बहुत सारे किसानों के मन में उत्सुकता रहती है, बहुत सारे सवाल भी रहते हैं, जिसका जवाब आपने दिया। और मुझे लगता है कि हमारे बिहार क्षेत्र में, हमारे भागलपुर क्षेत्र में खास कतरनी धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और लोग इसे पसंद भी करते हैं, बाज़ार में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है इसके खास विशेषताओं की वजह से। तो आज जो भी वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है, आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों को ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात।

0: सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
1: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
4: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि।
6: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और जहाँ तक बात आती है हमारी मिट्टी की, तो जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमें स्वस्थ फसल प्राप्त होंगे, और मिट्टी रसायन मुक्त रहेगी तभी हमें जो पोषक तत्व हमारी फसलों से, हमारे अनाज से मिलने चाहिए वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि मिट्टी को कैसे स्वस्थ रखें और फसलों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो दलहनी फसलों में जब तक जैव उर्वरक का प्रयोग हम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो फसल है वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आज इसके विषय में हम जानेंगे कि दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग क्यों और कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं मृदा विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर AK झा, जो आप सभी को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सर स्वागत है आपका।
7: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: सर सबसे पहले तो जैव उर्वरक क्या होता है इसकी जानकारी दें।
7: बड़ा आपने शमचीन प्रश्न पूछा। जैव उर्वरक का मतलब होता है वह जीवित पदार्थ जो उर्वरक की तरह प्रयोग किया जा सके। अब जीवित पदार्थ का मैंने कहा तो उसमें देखिए बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया, एक्टोमाइसिट्स, ये सब भी क्या है? जीवित पदार्थ ही हैं। और उर्वरक का काम क्या होता है? पोषक तत्व प्रदान करना। तो वह जीवित पदार्थ यानी जैसे आप राइजोबियम की बात करती हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, तो वो प्रयोग में आता है। इसी तरह से एजोटोबैक्टर है तो वहां पर एजोटोबैक्टर नाम का जो जीवाणु है वह काम करता है। तो इसी तरह से कोई भी जीवित पदार्थ जो उर्वरक की तरह काम करे यानी पोषक तत्व प्रदान करने का काम करे पौधों को, उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं।
6: जी, ये कितने प्रकार के होते हैं सर, कितने तरह के होते हैं?
7: ऐसा है कि देखिए जैव उर्वरक, अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे नाइट्रोजन यदि वो प्रदान करता है तो उसको नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कहते हैं या जैव उर्वरक कहते हैं। अब जैसे इसमें हमने अभी बताया दलहनी की बात कहा, तो दलहनी फसलों में जो राइजोबियम है या ब्रेडी राइजोबियम है उसकी जड़ में गांठ बनाने का काम करता है, तो वह भी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ही है लेकिन यह सहजीवी है। इसमें आप देखते हैं कि जो हमारा राइजोबियम है इस राइजोबियम को खाना और रहने का जगह यह प्रदान करता है पौधा, और उसके एवज में वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो यानी सहजीवी जीवाणु ये है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, तो दलहनी फसल नहीं है तो क्या वो उसमें नाइट्रोजन के लिए नहीं है कोई उपाय? बिल्कुल है जी। अब जैसे मैं आपको बताऊं जो एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि धान वगैरह बरब है उसमें एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो कई तरह के इस ढंग के नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, लेकिन अब यहां पर केवल नाइट्रोजन से तो हमारी फसल नहीं बढ़ेगी, उसको फॉस्फोरस भी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं जो फास्फोरस घुलनकर जीवाणु है उसके भी कल्चर आ गए हैं, वो भी जैव उर्वरक हैं। वास्तव में क्या है कि फास्फोरस हमारी मिट्टी में काफी है लेकिन वह फास्फोरस पौधे को मिल नहीं पाता है, क्योंकि वह फास्फोरस किसी दूसरे रूप में है। जैसे हम धान नहीं खाते हैं उसको, पहले हम चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, तो इसी तरह से वह जो फास्फोरस है वह फास्फोरस आपको नहीं मिल पा रहा है। तो फास्फोरस घुलनकर जिसको फास्फेट सोलबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो वह PSV का भी कल्चर आ गया हुआ है, तो वह भी है। इसके अतिरिक्त आज के तारीख में बहुत सारी कंपनी जिंक मोबलाइजर बनाती हैं जो जिंक को मोबलाइज करने का काम करता है। इसी तरह से पोटेशियम मोबलाइजर भी आ गया है जो पोटेश को मोबलाइज करता है। इस तरह से बहुत सारे जो द्वितीयक या सूक्ष्मात्रिक तत्व हैं उसको भी करने की बात है, लेकिन उसके अभी कल्चर मार्केट में नहीं आए हैं। अभी मुख्य रूप से जो राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर कल्चर है, एजोस्पर्म है, PSV है, ये सब मार्केट में आपको ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन कई और भी हैं जो शोध के स्तर पर हैं। तो कई तरह के आपके ये होते हैं
6: जी। इसके प्रयोग के फायदों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
7: अभी हमने इसमें ही

0: को बताया कि नाइट्रोजन स्थिरी कारक जो है वह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। अब देखिए दो बातें यहां पर है, एक है अमोनियम फिक्सेशन। तो अमोनिया फिक्सेशन जो है वो गड़बड़ चीज है। यह जो हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के रूप में मिट्टी में स्थिरीकृत कर देता है, यानी जो उपलब्ध है उसको अनुपलब्ध रूप में आपने कर दिया। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लगभग 78-79% नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में है, लेकिन पौधा उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है जब तक कि उस नाइट्रोजन को आप परिवर्तित नहीं कर लेते हैं उसके उपलब्ध रूप में। अभी हमने आपको पीछे भी बताया है कि हम धान नहीं खाते हैं, हम भात खाते हैं, तो धान को भात में बदलने का काम यह सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि यह अपने आप में एक छोटा यूरिया की फैक्ट्री है। अब देखिएगा, यूरिया जहां पर बनता है वहां पर हाई टेम्परेचर रहता है और वहां पर फॉसिल फ्यूल जो नेफ्था नाम का हो सकता है या नेचुरल गैस है उसकी उपस्थिति में आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर में उसमें आप जो है बुश एंड हेबर प्रोसेस से आप यूरिया बनाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को बनाने का काम करते हैं। वही काम यह जो आपका राइजोबियम है वह जो समान आपका खेत का टेम्परेचर है उस पर करने का काम करता है। वास्तव में उसमें एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, और लेग होमोग्लोबिन होता है, तो इसकी उपस्थिति में यह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पर्म है, यह सहजीवित नहीं है लेकिन ये आपको एसोसिएटिव है। इसके जड़ से जो कुछ निकलता है रूट एक्जुडेट, उसी रूट एक्जुडेट को खा करके और उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकृत करता है। तो यह उतना नहीं करता है जितना राइजोबियम करेगा, लेकिन यह भी काफी अच्छी मात्रा में करता है। इसके अतिरिक्त कुछ आपको फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे ड्रक्सिया हो गया, बेजरिंकिया हो गया, या ब्लू ग्रीन अलगी जो नील हरित शैवाल कहते हैं। तो नील हरित शैवाल में कई प्रजातियां हैं, जो नस्टा, कैनाबिना, एनाबिनप्सिस, एफेंजोमिना, एलोसिरा, प्लेक्टोनिमा, तो कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आपको यह वायुमंडल के नाइट्रोजन लेकर के और उसको स्थिरीकृत करते हैं, यानी पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और इसी तरह से हमने आपको बताया, जैसे फास्फोरस की बात कहा, तो फास्फोरस को घुला दिया, पौधे को उपलब्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कम भी फास्फोरस है। आज हमारी निर्भरता रासायनिक उर्वरकों के ऊपर ज़्यादा है, तो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर हमारी निर्भरता न रहे। हमारी जो पहले देखिए ना, हमारी मिट्टी में खुद ब खुद था, क्योंकि हमारी मिट्टी में कार्बन काफ़ी था, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी थी, तो हमारी मिट्टी में इसकी संख्या खुद ब खुद थी, अलग से आपको कल्चर डालने की जरूरत नहीं होती है। यदि बुजुर्ग लोगों से पूछें कि क्या आप राइजोबियम कल्चर डालते थे, क्या आपने पीएसबी डालते थे, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं डालते थे, क्योंकि हमारी मिट्टी में इसकी संख्या थी। जो भी कालक्रम में हमने जो रसायन, जहरीले रसायन प्रयोग किए, कार्बन की मात्रा घट गई। पहले आपको बताएं कि 70 वर्ष पहले हमारी मिट्टी में 1% से ज्यादा कार्बन था और वो आज घट करके 0.3% के आसपास हो गया हुआ है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन आपके जल धारण क्षमता को भी प्रभावित करता है, तो इन सब कारणों से उसकी संख्या घट गई है, इसीलिए अलग से हम इसको कल्चर मिला करके देते हैं। इसी तरह से फॉस्फोरस का भी बताया और दूसरे भी जैसे KM भी बताया, पोटेशियम मोबिलाइजर या जिंक मोबिलाइजर, ये सभी प्रयोग करते हैं तो पोटेशियम को बढ़ाता है, जिंक मोबिलाइजर जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है, तो ये सब फायदे हैं हमारे।
1: जी हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग हम कैसे करेंगे?
0: बहुत आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि किसान इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ढंग से कर नहीं पाते हैं, इसलिए फायदा नहीं ले पाते हैं। जो दलहनी फसल है, दलहनी फसल में मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो सहजीवी जीवाणु हैं, खास करके राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, उसका प्रयोग करता है। लेकिन हमारे किसान ये समझते हैं कि राइजोबियम कल्चर मतलब हर एक फसल में हर एक राइजोबियम डाल दो। जी नहीं साहब, इसमें इसके क्रॉस इनाकुलेशन ग्रुप होते हैं, यानी कि हर एक दलहन के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम की आवश्यकता होती है। कई प्रजातियां हैं, वह अलग अलग प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, लेग्युमिनोसोरम, फेजोली, मेलिलोटी, कई तरह के प्रजातियां हैं। तो आप प्रयोग करने के पहले यह देख लें कि क्या जो हम दलहन प्रयोग करने जा रहे हैं उस दलहन के लिए उचित है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आप यदि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको उपचारित अवश्य करें। अब उपचारित करने के लिए आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी में आपको ज्यादा मात्रा में लगेगी। तो सबसे बढ़िया है कि आप बीज उपचार करें। अब बीज उपचार कैसे करेंगे भाई, कि आप जैसे क्या कीजिए कि थोड़ा सा 200-300 ग्राम आप ले लीजिए पानी, उसको हल्का गर्म कीजिए, उसी में गुड़ 50-100 ग्राम डाल दीजिए, वो जब घुल जाए तो उसको ठंडा कर दीजिए। ठंडा करके उसमें एक पैकेट, जिसमें कि मोटे तौर पर 200 ग्राम होता है, वो कल्चर उसमें ठंडा हो जाने पर मिला दीजिए, और उसके जो 10 किलो बीज हैं जो आपके दलहन के 10 किलो बीज हैं उस पर आप बढ़िया से हल्के हाथ उसको मिला दीजिए, जिसके

0: इसके ऊपर एक परत उसकी बन जाए। अब इसके ऊपर यदि परत बन गई तो उसके बाद आप इसको छाया में रखें और छाया में रख करके फिर छाया में ही इसकी बुआई कर दें। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे किसान होते हैं जो पीएसवी भी डालना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर भी डालना चाहते हैं, वह कैप्टन थीराम से अपने या ट्राइकोडर्मा से अपने बीज का उपचार भी करना चाहते हैं कीड़ा से या बीमारी से बचाने के लिए। तो अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं FIR, यानी पहले फंजीसाइड से उपचारित करना चाहिए, उसके घंटा दो घंटा के बाद इंसेक्टिसाइड से यानी कीटनाशी से उपचारित कीजिए, उसके बाद आप जो है फॉस्फेट सोलबलाइजिंग यानी PSV जिसको कहते हैं तो PSV से उपचारित कीजिए, और सबसे अंत में आप जो नाइट्रोजन स्थिरी कारक जो आपके राइजोबियम है उससे उपचारित कीजिए, और तब उपचारित करके छाया में रखिए और छाया में ही उसकी बुआई कर दीजिए। और तरीका वही रहेगा जो अभी हमने आपको राइजोबियम के लिए उपचार के लिए बीज उपचार के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो मात्रा है यदि आप मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए आपको इस ढंग से नहीं करना चाहिए। तो ये दलहनी फसल में आपको जो जैव उर्वरक है उस जैव उर्वरक का उपचार करना चाहते हैं तो ये उसके तरीके हैं
1: जी। इसके प्रयोग के लिए बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होती हैं, क्या कुछ वो सावधानियां हैं उनके बारे में जानना चाहिए?
0: वो मैंने आपको इसी के क्रम में बता दिया। हमने इसके क्रम में ये बताया कि आप जब भी आप प्रयोग करते हैं तो एक तो पहली बात कि जो भी राइजोबियम कल्चर है ये सारी चीजें उसको रसायन से दूर रखिए और छाए में रखिए। तीसरी बात हमने अभी आपको बताया कि जो जिस दलहनी में आप डालना चाहते हैं उसके लिए अलग तरह के राइजोबियम हैं, उस राइजोबियम का प्रयोग कीजिए। चौथी बात यह मैं बताना चाहता हूं कि इसका भी एक्सपायरी डेट होता है, तो जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो पैकेट पर यह भी देख लीजिए कि यह अभी एक्सपायर तो नहीं किया है, एक्सपायरी डेट के बाद आपको नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें है क्या, उसमें तो जीवाणु है, और उसमें जीवाणु में 1 ग्राम में लगभग 10^8 सेल्स जो कैलोरी फॉर्मिंग यूनिट हम लोग CFU बोलते हैं तो उसमें उतना होना चाहिए। तो यदि आप एक्सपायरी डेट के बाद प्रयोग करते हैं तो उसकी संख्या आपको काफ़ी जो है क्या कहते हैं घट जाएगी, तो उतना फायदा नहीं देगा, तो आपको एक्सपायरी डेट भी देखना है। और धूप में नहीं रखना है, धूप में ना इसका आपको प्रयोग करके बुआई करना है। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं, ये सावधानी आप करते हैं तो अच्छा। दूसरी बात, एक चीज़ और इस सावधानी बात करें कि आप अपनी मिट्टी में थोड़ा कार्बन की मात्रा भाई बढ़ाइए, कार्बन नहीं बढ़ाइएगा तो खेत कल की तारीख में आपकी बड़ी समस्या हो जाएगी, खेती करने में बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए कार्बन की मात्रा यदि ठीक ठाक है तो आपके वैसे भी जो फायदे हैं वो ज़्यादा होंगे, और कल हो सकता है यदि कार्बन की मात्रा अधिक है तो आपने राइजोबियम कल्चर प्रयोग किया है या PSV प्रयोग किया है, हो सकता है आने वाले समय में पुनः आपको उसका प्रयोग न करना पड़े। अरे भाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी मिट्टी में उसकी संख्या नहीं है इसीलिए ऊपर से डालना पड़ रहा है। यदि हम पुनः पुराने वाले वातावरण में चले जाएं, सारी व्यवस्था हो जाए तो हमको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बात हमको किसान भाइयों को समझाना है, ऐसा कीजिए, अपनी मिट्टी की सेहत ठीक कीजिए, अपनी उपज बढ़ाइए, और यदि ऐसा करते हैं तो आप भी खुश, वातावरण भी खुश, और जो आपके प्लानर हैं और सारे व्यवस्थापक हैं वो भी खुश, और आपके बच्चे भी खुश।
1: तो श्रोताओं आज ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिली है, आशा करते हैं आप इन बातों को ज़रूर अपनाएंगे, ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी मिट्टी अपनी फसलों को आप स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे

0: जीरो आगे जीरो पीछे जीरो।
1: क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।

0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा

का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: In the first image, the sun is shining brightly. There's a tulsi plant with many branches in the yard. A lady is sitting on the staircase, having three stairs. She's holding a hand fan of blue and red color. In the first image, the lady is wearing a yellow sari with geometrical small prints which are pink in color. Blue sandals are kept on the doormat. The lady's hairdo is a bun with flicks on her forehead. There is a big window behind her. In the second image, the sun is shining. A tulsi plant with less branches is kept in the yard. Yellow footwear is kept on the doormat. A lady is sitting on the staircase having two stairs. She is holding a hand fan of yellow and red color. In the second image, the lady is wearing a yellow sari with floral big prints, blue in color. The lady's hair are neatly tied with less flicks and no bun. A small window is behind the lady. Chapter 8 ends here.
1: Santoor, you were just listening to this audiobook. Textbook of English for grade 5. Narration, Mansi Chauhan. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Kusum Lata. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार.
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल. लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ. माथा पीटता रह गया शिकारी. एक भी चिड़िया लगी ना हाथ. तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल. अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात. अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ. टीका सुरक्षित है. टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है.
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
6: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन. टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो. टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान. घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे. खांसी खोखो खांसी. बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो. खांसी खोखो खांसी. टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे देश भी बचाए.
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा.
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर.
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर.
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक.
9: उन्नत कृषि. नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूँ आरजे अनु और एक बार फिर हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ. दोस्तों, मशरूम की अगर बात करें तो हम सभी वाकिफ़ हैं इसके पोषक गुणों से और पोषक तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं, कैसे ये बीमारियों से हमें बचाता है. पोषक तत्व बहुत सारे इसमें हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं. तो खेती की अगर बात करें तो खेती की तरफ भी किसान भाई और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया हो चुका है आज आर्थिक तौर पर मुनाफा पाने का. अब बात कर ले भूमिहीन किसान भाइयों की, तो वो भी इसके

0: खेती आराम से कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मशरूम के एक अलग प्रकार के बारे में, ऑयस्टर मशरूम के बारे में। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
1: थैंक यू मैडम।
0: सबसे पहले तो ऑयस्टर मशरूम की प्रजातियों के बारे में बता दें डॉक्टर साहब, कौन कौन से अच्छे प्रजाति हैं?
1: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम को अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो ढिंगरी मशरूम बोलते हैं, जो किसानों के बीच में बहुत पहले से ही प्रचलित है। इसमें अगर प्रजातियों की बात की जाए तो एक्चुअली जीनस के नाम इसमें प्लोरोटस आता है, तो उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू, प्लोरोटस ओस्ट्रिएटस, कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें दो मुख्य प्रजातियाँ जो हमने अभी बताया, ओस्ट्रस प्लोरोटस ओस्ट्रिएटस और प्लोरोटस सोजोर काजू। तो ये डेजेमर भी एक वैरायटी है। तो ये तीन प्रजातियाँ बेसिकली फेमस मानी जाती है। एक है प्लोरोटस फ्लोरिडा, जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, और ये बेसिकली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है ठंडक में, उसमें इसको उगाया जा सकता है। और अगर हम प्लोरोटस सोजोर काजू की बात की जाए, तब जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 के या 26 तक पहुंचता है, उसमें प्लोरोटस सोजोर काजू की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये दो तीन प्रजातियां हैं जो ऑयस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम में प्रचलित हैं किसानों के बीच में।
0: जी, तो ये तो हो गई प्रजातियों की बात, और खासियत के बारे में बताएं डॉक्टर साहब, की अन्य जो मशरूम के प्रकार है उनसे कैसे खास है?
1: खास बात इसमें होती है, इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अगर पोषाहार की बात की जाए तो इसमें गेहूं का भूसा या कुछ हमारे जो दलहन भूसा होते हैं, जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा, या आप तिल का भूसा भी ले सकते हैं। और इसको आप एक नाइट पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन आप इसमें इसको सुखा के बिजाई कर देते हैं। और तो इसलिए इसमें दूसरे मशरूम से इसलिए अलग है कि इसकी खेती करना बिल्कुल आसान है। और अगर तत्व की बात की जाए, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, तो ये दूसरे मशरूमों से कम नहीं है।
0: जी, मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं खेती की, तो किस समय इसकी खेती की जाती है मुख्य तौर पर?
1: जी मैडम, अगर खेती की बात की जाए तो वैसे तो ये ठंडक का मशरूम है, ठंडक में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, बिना कोई बाहर से अवरोध दिए हुए।
0: मतलब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए?
1: जी मैडम, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आराम से खेती की जा सकती है। जैसे हमने अभी एक स्पीसीज की बात की थी प्लोरोटस सोजोर काजू, इसकी खेती हम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो हम अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं, बिना कोई रुकावट किए हुए।
0: मतलब ये ठंड के मौसम में इसकी खेती ज्यादा कर सकते हैं। और अब पोषाहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषाहार की जरूरत होती है इसकी खेती के
1: लिए? अगर पोषाहार की बात की जाए तो हम भूसा की जरूरत पड़ती है इसमें। भूसा बेसिकली हमारे बिहार में गेहूं की खेती खूब होती है, तो गेहूं को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और गेहूं का भूसा ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, तो मक्के की कुट्टी को काट कर हम भूसे के रूप में बदल कर उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में दलहन का भूसा, दलहन की खेती होती है, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, उसका भी भूसा हम इसकी खेती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं।
0: जी, और एक अगर खेती की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ये प्रक्रिया होती है इसकी खेती के लिए, वो भी जानना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट करें हम?
1: जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था कि ये बिना खेत की खेती है, तो इसमें खेत की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी झोपड़ी आप बना लीजिए, झोपड़ी के अंदर आप या तो मेज या चचरी बना लीजिए बांस की, उस पे आप बैग में इसकी खेती की जाती है ऑयस्टर मशरूम की। तो इसके लिए आपको मान लीजिए भूसा की बात किया, तो गेहूं मान लीजिए आपने गेहूं का भूसा लिया, तो उसको आप एक रात भिगोएंगे पानी में। भिगोने के बाद उसको शाम को भिगो दिया आपने, और सुबह दूसरे दिन उसको भूसे को ड्रम या किसी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको 4-5 घंटे इसको छाया में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें बिल्कुल, जब हम सुखाने के बाद कितना के हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि ये हमारा भूसा बीज मिलाने लायक हो गया, तब हम मुट्ठी में भूसे को पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं मुट्ठी को, तो अगर पानी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये भूसा हमारा बिजाई के लायक हो गया, तब इसमें हम बिजाई करेंगे। बेसिकली 1 kg बीज से हम लोग 10 बैग भर सकते हैं। बैग का जो साइज होगा 45x35 cm, 35 cm चौड़ाई होगी और 45 cm लंबाई होगी। उस एक बैग में लगभग 3 kg भूसा आएगा, तो 3 kg भूसा में हम 100 ग्राम बिजाई मशरूम की बीज की करेंगे।
0: जी।
1: और उसके बाद हम जब बैग आपका

0: बिजाई हो जाए अच्छी तरह, इस बैग को हम टाइटली बांध देंगे और बैग में 15-16 छिद्र कर देंगे चारों तरफ, और उसको फिर हम मशरूम हट में रख देंगे। और मशरूम हट में रखने के बाद आप 10 दिन बाद देखेंगे कि जो बैग है, बैग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम फैल जाएगी। जब सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम बैग के अंदर फैल जाए, तब आप उसमें सुबह शाम हल्का सा 1000 के रूप में पानी का स्प्रे बैग में करेंगे, और सफ़ेद माइसीलियम निकलने होने के लगभग 10 दिन बाद आपको मशरूम की पहली फलन प्राप्त होगी। इस तरीके से आप एक बार बैग से 3 मशरूम के फलन प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई कि कैसे इसके ऑयस्टर मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। प्रबंधन की बात करें, कुछ उसमें देखरेख की जरूरत होती है, सावधानी की जरूरत होती है?
0: अगर प्रबंधन की बात किया है तो पहले तो जो हमारा झोपड़ी है उसको उसमें उसके अंदर साफ सफाई रखना चाहिए, और झोपड़ी के 1-2 मीटर तक चारों तरफ से 2-3 मीटर तक किसी प्रकार का कोई खरपतवार या जंगल नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जब हम पोषाहार लेते हैं तो पोषाहार में किसी तरीके की बदबू या महक नहीं आनी चाहिए, कोई उसके अंदर दूसरा कवक या कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तब आपको भूसा को, जब हम भूसा को पानी में भिगोएंगे एक रात के लिए, उस समय हम 2 केमिकल का प्रयोग भूसे में करेंगे पानी में। तो अगर मान लीजिए 1 क्विंटल अगर 50 kg भूसा को हमको भिगोना है, तो आप 80-90 लीटर ड्रम में पानी ले लीजिए, ड्रम में या किसी नाद में सीमेंट की, उसमें हम 1 क्विंटल 100 लीटर पानी के लिए लगभग 80 ग्राम बेबस्टीन केमिकल और 100 ml फार्मलिन सॉल्यूशन उसमें घोल देंगे, और उसके बाद उसमें भूसे को हम डिप कर देंगे, डुबो देंगे एक रात के लिए, जैसे हमने पहले बताया, और सुबह इसको हम लोग उसे निकाल देंगे, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भूसे से एक केमिकल दोनों उसको मार देंगे। तो ये सावधानी पहले बरतनी है। इसके बाद सबसे मुख्य बात होती है कि जब हम बिजाई करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि भूसे में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, 70-75% नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो मशरूम जो बीज बोया है वो उसमें जो वाइट सफ़ेद माइसीलियम है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और मशरूम उसी में ही मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नंबर 3, जब हम बिजाई, जब हम बैग में मशरूम निकलने लगता है उस समय हम ये ध्यान दे, क्योंकि सुबह शाम को 1000 के रूप में हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कभी नहीं देना चाहिए जब उसमें फ्रूटिंग फल हो लगा हुआ। तो फल लगते समय हम उस पर बैग पे स्प्रे नहीं करेंगे, हमेशा फल तोड़ने के बाद ही स्प्रे करेंगे, नहीं तो जो फल पे अगर स्प्रे कर देंगे तो जो फल का कलर बदल जाएगा, और आप जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो वो उसको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि ये बीच बीच हम हटके जब हम मतलब एक फलन आपने तोड़ एक एक बैग से पूरा तीनों फलन तोड़ने के बाद जब हम दोबारा बैग लगाएंगे, तो अच्छे से बैग झोपड़ी की सफाई करने के बाद उसमें हम किसी दवा का स्प्रे कर देंगे, जैसे बेबस्टीन का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि उसमें जो भी अगर कोई रोग वगैरह हो वो निकल जाना चाहिए। और ये भी एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि झोपड़ी के अंदर लोगों का आना जाना कम होना चाहिए, जो आदमी इसको उसकी देख रेख कर रहा है वही सुबह शाम अंदर जाए, और बेफालतू में झोपड़ी को खुला नहीं रखना चाहिए।
1: तो ये कुछ सावधानियां हैं, प्रबंधन है जब आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफ़ी है। आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कौन से पोषाहार का इस्तेमाल करना है आपको, किस समय इसकी खेती की जाती है ये भी आपने जान लिया, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा

0: पा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद उमा, थैंक यू, नमस्कार सभी को।
6: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
9: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी।
6: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
9: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली, एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR। ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो

किस्म की हम बात करते हैं, आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि डीएसआर के लिए अच्छे से, मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराए तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो डीएसआर के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो डीएसआर के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले चीज़, डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजली हम मीडियम ड्यूरेशन, मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम डीएसआर करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर, आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें, जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। डीएसआर में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं, हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे, तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपके बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरण दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, मैंने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होता है हैंड से, हैंड हैरो, यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी, आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपके सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उसे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले, फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया, बुआई करने के आधे घंटे पहले मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक, उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई, उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बार

में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें, डीएसआर में। तो डीएसआर मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे, जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब दो लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि डीएसआर का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब आप हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन एक हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस दो स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उस पर खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 kg प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 kg फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम SSP डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 kg प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम MOP यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, SSP और MOP दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 kg प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, तो उस 220 kg प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है, यानी जब उसकी फलियां आती हैं, तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है DSR को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि DSR जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर DSR में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने, मैंने बताया, जैसे ड्राई DSR होती है, वेट DSR होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर DSR के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है, उस तरह से तो अगर हम, जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप DSR आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये DSR की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और
और दूसरी चीज ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं डीएसआर का वो ये है कि इसमें खरपतवार

0: काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन DSR में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसकी वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है DSR में, वो होती है कि वीडिंग। आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, और उसके दो हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को मतलब वीड्स को खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं DSR के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो DSR में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके DSR के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम DSR पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
1: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
0: अभी हम जो धान की बुआई DSR के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ हो गए जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका PHB 71 हो गया, पूसा RH 10 हो गया, ठीक है, और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम इस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपके फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे आपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
1: जी मैम। तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम

0: सीआईईटी एनसीईआरटी प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया।
1: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगूं संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई।
2: पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं।
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
4: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देती तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
4: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
4: चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
4: ठीक है,
3: चल हट, हट,
4: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
1: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को

0: ठिठोली सूझती।
1: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
2: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
0: जी?
2: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
0: जी।
2: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
0: जी। अच्छा पिताजी।
3: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
1: अरे अरे,
2: अरे
1: क्या करते हो जी?
2: गलती से लग गया।
1: आराम से।
3: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
2: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
3: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
2: अरे
1: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
3: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
1: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
2: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
1: सुनो तो। अरे रुक जाओ।
3: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ा और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
2: गई।
3: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही हैं। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
4: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी ये।
3: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
1: तुम्हारे बस की नहीं है।
2: फिर कोशिश करता।
3: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
2: अब देखो,
3: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके, बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
0: पिताजी देखो देखो देखो, ऊपर देखो माँ। पिताजी
1: हाँ,
0: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
1: अरे हाँ बेटी।
2: अरे
3: पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे, चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ हैं हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
1: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया, आ जाओ गोरैया।
3: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
2: अरे
3: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर

दो गौरैया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास

0: रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
1: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
0: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
1: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
0: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है। लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
1: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के
0: लिए? सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहाँ जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
1: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
0: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं, इसके बाद उस

0: फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भूटा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
1: जी सर, सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
0: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
1: और बुआई की विधि क्या?
0: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा, और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पछिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
1: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में।
0: देखिए, जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर, बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं, तो उसको

0: रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास, क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पर अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है, और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है। उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है, ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की,

0: आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए। लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया, सिर्फ 2 ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवे का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।

0: को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
9: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, मैं हूँ आरजे अनु, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास बातें होती हैं आपके लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। जानते हैं खेती के बारे में और खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें। फिलहाल आज का विषय है हमारा अरहर में लगने वाले कीटों का प्रबंधन। दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें बहुत, मतलब ये पौष्टिक से भरे हुए रहते हैं और हमारे शरीर को जो एक पौष्टिकता चाहिए वो मिलता है हमें इन दलहनी फसलों से। लेकिन जब हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं इन्हें उगाने में, इन फसलों को उगाने में, तो कई बार उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और वो वजह है कीटों का। जी हाँ, कीट पतंगे जो ये हमला कर देते हैं, तो नुकसान भी होता है फसलों के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को। तो आज हम बातें करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में, यानी कीटों के प्रबंधन के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, और साथ ही मैं बता दूँ कि ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारा विषय है मैम, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अरहर फसलों को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से कीट हो सकते हैं?
12: अरहर फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख हैं फली छेदक कीट, दूसरा है प्लूम मॉथ, पॉड फ्लाई, पॉड बग, काला भृंग एवं दीमक। ये सभी कीट जो हैं अरहर को हानि पहुंचाते हैं।
11: तो हमने जाना कि कौन कौन से कीट हो सकते हैं जो अरहर को मतलब कि हानि पहुंचा सकते हैं। तो

0: इसके बाद मैम, अगर हमारे किसान भाई अगर इसे पहचान जाएंगे तो आई थिंक इसका जो प्रबंधन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हम इन कीटों को, जो अलग अलग कीटों के नाम आपने कहे, कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। साथ ही ये भी बताएं कि ये जो कीट हैं, जितने भी प्रकार के कीटों के नाम कहे आपने, ये भी बताएं कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं।
1: जी, फली छेदक कीट से हम शुरू करते हैं, क्योंकि यह जो है इसका जो लार्वा है ये लगभग 40-50% तक हानि पहुंचाता है। तो फली छेदक कीट, इसका वयस्क वो एक पतंगा है, यह पत्तियों पर, अरहर की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर अंडे दे देते हैं, और इन अंडों से फुटकर फिर इल्लियां निकलती हैं जिसे हम पिल्लू कहते हैं। पिल्लू शिशु, ये जो इनके पिल्लू हैं वो फिर पत्तियों पर खाती हैं, और जब ये फली लगती हैं तो फलियों में घुसकर खाती हैं। और ये पिल्लू जो हैं शुरू में हरे रंग के होते हैं, बाद में धीरे धीरे भूरे हो जाते हैं। और ये इनके जो पिल्लू के जो शरीर है, उस शरीर पर उनके शरीर के बगल में साइड, जिसको बोलते हैं साइड में, तीन तीन धारियां होती हैं, भूरे रंग की धारियां होती हैं। इससे हम आसानी से पहचान जाएंगे कि यह जो है फली छेदक कीट का लार्वा है, या जिसे पिल्लू कहते हैं। और यह जब फली लगता है तो फली में घुसकर खाता है। जब जैसे ये बड़ा हो जाता है तो ये अपने आधे शरीर को फली के अंदर घुसा देता है और आधे शरीर को फली के बाहर रखकर उसे खाता है। और ये जो प्लूम मॉथ है, प्लूम मॉथ जो ये, इसका भी वयस्क पतंगा ही होता है, और ये भी पत्तियों पर अंडे दे देती हैं, और इनसे भी फुट करके अंडों से वो पिल्लू निकलते हैं, और जिनके शरीर पर रोएं रहते हैं। और ये जनवरी से फरवरी तक इनका जो प्रकोप अधिक होता है, और शुरू में ये तो कलियों और फूलों में छेद कर हानि पहुंचाते हैं, फिर जिससे कि फूल और फलियां भी झड़ जाते हैं, और जब फली बनती हैं तब फली में भी छेद कर ये हरे जो दाने होते हैं उनको खा जाते हैं। कभी कभी अधखाए जो दाने होते हैं उन पर सफ़ेद या काले फफूंद भी आ जाते हैं। और जो पॉड फ्लाई है, जिसे फली मक्खी कहते हैं, ये काले रंग का और चमकीले पंखों वाली ये मक्खी होती है, और ये जो मादा की मक्खी होती है ये फली के अंदर अंडे देती हैं, और अंडों से सफ़ेद रंग का वो पिल्लू निकलता है जिसे मैगोट भी हम लोग कहते हैं। ये फली के अंदर ही विकसित होकर जो हरे दाने हैं उनको नष्ट कर खाता है। और जिस ये बारीक छेद कर, मतलब बारीक यानी बहुत ही छोटे छोटे महीन छेद कर फलियों पर छेद बनाकर खाते हैं, और इन छेदों को देखकर जब छेद महीन महीन हो जाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है फली मक्खी का आक्रमण हो गया है।
0: अच्छा।
1: और पॉड बग ये जो है चूसक कीट है, ये भूरे रंग के होते हैं, और इसके वयस्क और जो निम्फ होते हैं, इसके जो शिशु होते हैं उसको निम्फ कहा जाता है। ये निम्फ भी ये फलियों से रस चूसकर खाते हैं, जिससे फलियां सिकुड़कर छोटी पतली हो जाती हैं। और काला भृंग, यह भी एक कीट है जिसे एपियन भी कहते हैं। ये पत्तों एवं फूलों पर इनका ये खाते हैं, और जल्द मध्य एवं देर से पकने वाली सभी किस्मों पर जो है, अरहर के जो किस्म है इन पर इसका प्रकोप होता है। काला भृंग बहुत ही छोटे आकार का होता है, और इसका आगे का मुंह जो वो नुकीला होता है। खरीफ मौसम में यह जो है उड़द और मूंग पर भी दिखाई पड़ता है, और जब अरहर के पत्ती फूल जब अरहर फसल लग जाते हैं तब

0: ये अरहर के पत्तियों और फूलों को छेद कर खाते हैं, और इस तरह से जब फूल को खा छेद कर खाते हैं तो फूल सूखने लगते हैं। इसका शिशु जो है वो गंदे उजले रंग का होता है, उजला रंग होता है परंतु वो थोड़ा गंदा लिए हुए रंग का होता है, और इसका मुंह का रंग जो है ये मुंह का रंग वो गहरा भूरा होता है, और इसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जैसे सी आकार में मुड़ जाता है उस तरह से इसका शरीर मुड़ा हुआ होता है, और यह फलियों में भी प्रवेश कर जो हरे दाने हैं उनको खाता है जी। और कभी कभी दीमक का भी प्रकोप देखा गया है, सभी इलाकों में तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में जिसमें जिन मिट्टी में थोड़ा सा नमी अधिक होती है उसमें दीमक का भी प्रकोप देखा गया है। ये दीमक जो है जो नवजात जो पौधे होते हैं उनके जड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों आपने जाना कि ये कौन कौन से कीट हैं, किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं, और इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनका प्रबंधन करें इनके पहचानने के बाद, ताकि हम अपने फसलों को बचा सकें। तो मैम अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रबंधन के बारे में
0: जी। हम शुरू करते हैं फली छेदक कीट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो फली छेदक कीट का प्रबंधन जो है वो जैसे ही वो चना ये सॉरी अरहर अरहर जो हम लगाते हैं वैसे ही फेरोमोन ट्रैप लगा देना चाहिए, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप जो है इसका फली छेदक जो है ये फली छेदक चना को भी हानि पहुंचाता है, और जब अरहर के फूल आते हैं तो उसमें खेतों में चना भी होता है, तो चना में भी यह कीट जो है आक्रमण करता है, इसलिए इसे चना फली छेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे चना में हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं उस तरह से अरहर में भी फेरोमोन ट्रैप, कम से कम जब अरहर में फूल आने लगे फूल आने के पहले फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य लगा देना चाहिए, और 3 सप्ताह के अंतराल पर जो फेरोमोन का ल्यूर होता है उसे बदल देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए 3-3 सप्ताह के अंतराल पर। और अगर रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना है तो रासायनिक कीटनाशी कीटनाशियों में प्रोफेनोफॉस 50 EC दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रथम छिड़काव 50% जब फूल आ जाए तब करना चाहिए, एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां जब लग जाएं तब करना चाहिए। दूसरा कीटनाशी है स्पिनोसाइड, स्पिनोसाइड दवा कीटनाशी जो है उसका 1 ml प्रति 5 L पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही नीम आधारित दवा का भी प्रयोग करना चाहिए, नीम आधारित दवा में निम्बिसिडीन नीमार्क नीमाजल इन कीटनाशियों में इन कीटनाशियों का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्लूम मॉथ कीट के लिए प्रोफेनोफॉस जो कीटनाशी है उस दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है, प्रोफेनोफॉस दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसे भी फूल आने 50% फूल आने के पहले 50% फूल आ जाए तो पहला छिड़काव एवं दूसरा छिड़काव 50% फलियां लग जाएं तब करना चाहिए। और पॉड फ्लाई का नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पॉड फ्लाई का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है पॉड बग, पॉड बग कीट का प्रबंधन के लिए चूंकि यह चूसक दवा है इसलिए इस कीट का नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवा का भी छिड़काव किया जा सकता है। नीम आधारित दवाओं में निम्बिसिडीन निमार्क नीमाजल अचूक या नीम का तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। अगर नीम

0: का तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। रासायनिक कीटनाशियों में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 liter पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन के बाद फिर इसका इसी कीटनाशी का यानी इमिडाक्लोप्रिड से छिड़काव करना चाहिए। जो मैंने बताया काला भृंग एपियन, इसके नियंत्रण के लिए भी इंडोक्साकार्ब 14.5 SC दवा का 0.5 ml यानी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दीमक का भी प्रकोप जिन एरिया में इनका प्रकोप होता है तो इसके लिए बीजोपचार करके लगाना चाहिए। बीजोपचार के लिए क्लोरपाइरीफॉस दवा का 4 ml प्रति किलो बीज में मिलाकर और इसमें 15 ml पानी मिलाकर तब बीज को उपचारित कर लगाना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर दीमक का प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस दवा का 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कीट के प्रकार को जाना, अपने साथ ही ये भी जाना कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, वो हानि कैसे पहुंचाते हैं। साथ ही बहुत ज़रूरी बात था प्रबंधन इनका, तो ये भी आपने जाना कि हम कैसे इनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपको बता दें इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थी स्टूडियो में डॉक्टर किरण कुमारी मैम और ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो किसान भाइयों, आशा करती हूँ कि अगर आपके अरहर के फसलों में कीट लग चुके हैं या कुछ ऐसे आपको पहचान दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द उसका प्रबंधन करें ताकि आप अपने फसलों को बचा पाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें करूंगी मैं और लेकर आऊंगी एक और भी अलग विषय को। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8

गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की

डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन। सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है. लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है. इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है. दोस्तों आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा. मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद उमा और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार.
0: मैम जैसे कि अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री लगभग पहुंच जाता है और पछुआ हवा भी साथ चल रही है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
1: हाँ बिल्कुल. जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं जिसे हम गुम्मा बीमारी, मुर्छया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल को लगाते हैं और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है. लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में. ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि हाँ बढ़ना ही बढ़ना है ये.
0: तो मैम ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
1: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है. जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है. उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद, अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा

0: पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा। और उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों के जो पत्ते के किनारे किनारे से, ठीक है। उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है जिसमें हमारा दाना बनता है वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
1: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
0: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको अपने पौधों पर नज़र आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
1: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मैम, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपने सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जा करके देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहाँ आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज़ करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तिले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर ले करके आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले

0: ये आप सूर्यास्त के बाद, जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई, इवन हम जो वैज्ञानिक है वो भी हमें छिड़काव करना रहता है तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।
1: तो मैम यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
1: जी मैम। मैम तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
0: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही हैं किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया। तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी। फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है 1-2 जगह पे लगाया, खरीफ में तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है, काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया तो काले तिल की अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था, मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
1: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
0: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
1: जी मैम। तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
0: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाए, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
1: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए

0: तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी शायद पुरुषों से बराबर की होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है जो महिलाओं को मदद करती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधुमिता। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: धन्यवाद उमा।
0: मैम, आपसे पहला सवाल तो यही है कि कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं?
9: नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस पे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कृषि में महिलाओं की भूमिका हम लोग बखूबी रूप से जानते हैं, बहुत ज़्यादा अहम उनकी भूमिका होती है। बीज की बुआई से लेकर के फसल की कटाई, थ्रेशिंग एवं पैकेजिंग से लेकर उसके विपणन या कहें मार्केटिंग तक उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने अपने बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो हैं नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लखपति दीदी योजना, फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा स्टार्टअप कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर है प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कृषि यांत्रिकरण योजना, निजी नलकूप पर सब्सिडी, थ्रेशिंग फ्लोर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादि। तो हम ऐसे जान सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, और हम इनमें से कुछ मुख्य योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे।
1: जी मैम, और आप विस्तार से बता दीजिए इन सारी योजनाओं के बारे में।
0: जी बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले क्रम में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लखपति दीदी योजना। यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1,00,000 रुपए से ऊपर पहुंचाना है। इसमें महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन, सिलाई एवं कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 5,00,000 का ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। बिहार में अब तक लाखों महिलाएं इस पहल से लखपति बन चुकी हैं। इसमें जो है उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसपे की रियायती ब्याज दरें होती हैं। अगर हम बिहार में इसकी स्थिति की बात करें तो 25-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लाखों ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दूसरी जो अहम योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि जो जीविका के द्वारा जिसे हम जान सकते हैं। इसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की पहली किश्त मिलती है, और इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि बकरी मुर्गी पालन या दुकान शुरू कर निर्भर बनाना होता है। सफल रोजगार के बाद इसमें 2,00,000 की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वह अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र, जो CSP पॉइंट हम बोलते हैं, उस वहां पे जाकर के या फिर खुद ही इंटरनेट पर इसे इसके बारे में जान सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक और अहम योजना की, जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इसमें जो है महिला किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा है। इसकी पात्रता एवं लाभ की हम अगर बात करते हैं तो इसमें महिला किसान भारत की निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनके पास खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए और आवेदन के लिए वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय या जीविका के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। और एक अन्य मुख्य योजना है वह है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
1: जी,
0: बिहार सरकार की एक ये बहुत अहम पहल है, जिसमें कि महिलाओं को अपना नया कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, और फिर इसमें 5,00,000 रुपए का अनुदान और 5,00,000 का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, जिसे कि वे 7 साल में आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होता है। यह योजना सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुली है। इसके अलावा भी एक योजना है जो नमो ड्रोन दीदी योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े करना है। ये तो थे कुछ अहम योजनाएं। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें महिला किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर विशेष सब्सिडी मिलती है। मखाना, मशरूम और मक्का की खेती के लिए 10 क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण में भी प्राथमिकता दी जाती है। फिर निजी नलकूप पर सब्सिडी है, जैसे कि जो जल संकट वाले क्षेत्र में महिला किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 50 से 80

0: प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। फिर एक है थ्रेशिंग फ्लोर योजना, फसल सुखाने के समय समस्या को दूर करने के लिए पक्का थ्रेशिंग फ्लोर बनाने के लिए भी सरकार 50,000 तक का अनुदान दे रही है। फिर उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी है, जो कि जीविका समूह की महिलाओं को इस योजना से जोड़कर पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाएं आगे आएं, इनका लाभ लें और वो अपना पूरा जो कोई उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं।
1: जी मैम, तो आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, और अंत में आप महिला किसान, ख़ास तौर से महिला किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वह अभिन्न है, वो हर एक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो कृषि जो कि हमारा देश जिस पे की आधारित है, उस पे भी उनका रोल, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा उनका अहम उनका रोल है। तो जब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, सारी वो गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनका पूरा पूरा लाभ लें, वो सजग हों, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ लाभ मौजूद है, क्या कुछ स्कीम या योजनाएं मौजूद हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और वो अपना कृषि में भरसक योगदान दे सकें।
1: जी मैम बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वो कृषि में अपना और भी योगदान दे सके। और महिलाओं के पास जो सरकार की योजनाएं तो हैं वो हैं ही, साथ ही होना चाहिए उनके पास हौसला और ये जुनून कि वो कुछ कर सकती हैं, और कुछ करने के लिए उनके पास हर क्षेत्र में जो मौके हैं, और खेती के जब वो खेती करना चाहती है तो उसमें भी उनके पास मौके हैं और साथ ही सरकार की योजना है। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी
1: मैम
0: कि कृषि सखी, सरकार द्वारा एक पहल चल रही है कृषि सखी, ये ऐसी पहल है जिसमें कि कौशल पर, महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें जैविक खेती, पशुपालन एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ उत्पादन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है अच्छा मुनाफा के लिए, उत्पादन के साथ साथ हमें उसे प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू एडिशन पर अगर हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इस पहल से भी वो अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा कर सकती हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हो है या फिर जो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित ये योजना के तहत, कृषि सखी योजना के तहत, पहल के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आएं और इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। जो ये सारी योजनाएं मैंने बताई आपको, वो जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर इस पर विशेष जानकारी चाहती हैं तो वो ग्राहक सेवा केंद्र, जो जिसे हम CSP भी बोलते हैं, वहाँ जा कर के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय, चाहे वो प्रखंड कृषि कार्यालय हो या जिला कृषि कार्यालय हो, वहाँ जा कर के, या फिर खुद ही अपने कहीं इंटरनेट पर वो अगर सक्षम है तो खुद से ही वो इस पे जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकती हैं लाभ लेने हेतु।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज के लिए हमारे कृषि कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है,

तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब, जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है, और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए, और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है, हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से, उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही हैं, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर

सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं और क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, ना सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना ज़रूरी है नौकरी करना, उतना ही ज़रूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना ज़रूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा समझेगा समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये ज़रूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है, हर पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल

सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान

24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें।

जिम की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: सुन

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है, ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज़ का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफ़ी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि

रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर, स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है। अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता, बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि

आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12 एक बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज एक बजे सोइए। आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम एक बजे के बाद ही सोएंगे और एक बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आप को ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहां से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2 बजे 3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप एक हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9:00 सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस एक हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं, फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि।
7: हेलो नमस्कार, मैं आरजेनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। दोस्तों,

0: तो आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें। और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है, और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।
1: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरी के रूप में भी जाना जाता है, और विश्व स्तर पर ये 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
0: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में, और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जाना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और उनसे क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में बताएं।
1: मक्के में बहुत सारे बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
0: मैग्नीशियम
1: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 मिलीग्राम, विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं
0: जी।
1: मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण, मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में मौजूद फाइबर जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उसको कम करने का काम करता है, और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है
0: जी।
1: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित जो पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है, और फोलेन एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पैटोथेनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूस अगर सेवन करते हैं मक्के को तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह के बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं, और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है
0: जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
1: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं। इसमें मेनली जो हैं कॉर्नफ्लैक्स जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में।

हैं, आप लेते भी होंगे, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पे भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लैक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फायदे, अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा, इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्न फ्लैक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्नफ्लैक्स होते हैं ये जो होते हैं इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्नफ्लैक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7 बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा, और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का यदि पैटर्न है, वो काफ़ी ही मीन्स करने का मतलब चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जा रहे हैं, और वो और क्योंकि ये आसानी से मीन्स बाजार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मीन्स कॉटेज टाइप के इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई उसको मार्केट से खरीदते हैं, या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसको औद्योगिक स्तर पर मीन्स फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मीन्स करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको क्या करेंगे स्टीमिंग कर देंगे, मीन्स उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं, और ये समय जो है 4 घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है, तापमान अगर ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान उसको सुखा लेंगे। जब उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है मीन्स उसमें जो नमी है 16 से 24% आ जाए तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं, और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें दो रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं फ्लैक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है जो कि जिसमें कि 16 से 24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं, और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लैक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है पैकिंग करना है और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लैक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए, जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग

0: मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडेड टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लैक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं जी। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं। इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16-20% के लगभग में रखना होता है। और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, जिससे जिससे कि हम लोग मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है और आफ्टरवर्ड क्या होता है एक्सट्रूजन होता है। और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स कनेक्ट मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं और फ्लैक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप
1: डिफरेंट शेप में
0: डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को रिड्यू कम कर लेते हैं, देन आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूँगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफ़ी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे स्वस्थ बचपन।

0: भविष्य।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
2: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो ये जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहाँ पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है? और
2: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात, पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं। अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई, हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी हैं, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है तो बहुत ज्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है तो हम लोग ब्रॉडबैंड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं, BBF से, ब्रॉडबैंड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम

0: मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं वहाँ। अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है, हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रुपाई कर देंगे, हमारा 45 से 50 दिन में रुपाई करने के 45 से 50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके ज़मीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया है, और 20 सितंबर को ये पक्कर तैयार हो गया, 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
1: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
0: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए, 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगा कर खेत तैयार कर लिया। उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे 2 कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहाँ पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पर लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6 से 7 लाइनें, तो वहाँ BBF पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहाँ कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज़्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा, जैसे बाकी मिलेट की फसलें वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
1: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
0: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चीना की बात कर रहे हैं, तो चीना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये तमिलनाडु की हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151। TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं, इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7, जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहाँ की निकली हुई प्रजाति है BR7, इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है।

0: तो चीना की ये जो चारों प्रजातियां हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है। हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निःशुल्क हम किसानों को जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निःशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज़्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें। उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार, साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है। 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है। आप श्री अन्न की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
1: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
0: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35-40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेंडीमिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है। ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है। क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो इस पर 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडीमिथिलीन देना पड़ता है। या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और 1 एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 2,40 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20-25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 2,40 दवा नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 2,40 हम ले करके जैसे उसका रिकमेंडेशन 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 2,40 जो 58% इसी का आता है, उसकी बात करें तो लगभग 22-25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं होता, बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों जो भी श्री अन्न की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए 1 बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी 1 बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को 2

0: भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस प्रकार देखा जाए, एक बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
0: मिलेगा,
1: दिया जा रहा है जी, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप ज़रूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आए कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव

बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें।

किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3, और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ

18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं हमारे स्टूडेंट्स के लिए।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्री छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्री छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दे, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon फायर स्टिक, गूगल क्रोमकास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में

नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है, यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है, और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दे, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है, और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है, और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: Coco, Kasi.
1: Kasi, Coco, Kasi.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की

0: हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं प्याज के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण जगह रखता है हमारे किचन में, और ऐसे में बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा होती है। तो किसान भाई बहनों को खरी प्याज की खेती से मुनाफा भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए, कीटों का प्रकोप हो जाए, तो काफी हद तक मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खरीफ प्याज की खेती करें, और आज इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता श्री। आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप हैं चेयरमैन सब्जी विज्ञान विभाग के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। प्याज एक महत्वपूर्ण कंद वाली फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के कारण भी है। भारतीय आहार में प्याज का बहुत अधिक उपयोग होता है। किसान प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर अच्छी उपज ले सकते हैं। प्याज की खेती मुख्यतः रबी मौसम में की जाती है, लेकिन प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कंद अंकुरित हो जाते हैं। इस अवधि यानी कि अक्टूबर से अप्रैल में प्याज की उपलब्धता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ़ जाते हैं। परंतु प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि खरीफ में भी प्याज का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, और इससे प्याज को सालों भर उपलब्धता बनी रहेगी।
0: तो मैम, अगर हम खरीफ प्याज के लिए भूमि का चयन करें और खेती की तैयारी करें, तो किस तरीके से ये सारी चीजें करनी होती है?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से की जा सकती है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखनी पड़ती है। भूमि जल निकास की सुविधा हो।
0: तो मैम, खरी प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, और किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए?
1: प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि जिसमें जीवाश्म की भरपूर मात्रा हो व जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, आसानी से किया जा सकता है। परंतु दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। खरीफ प्याज की खेती ऊंची भूमि या उठी हुई क्यारियों पर करना लाभदायक होता है। खरीफ में खेती हेतु खेत चयन में सावधानी रखें कि चयनित भूमि में जल निकास की सुविधा हो एवं वर्षा का पानी खेत में जमा ना होने पाए। प्याज की खेती 5.5 से 6.5 pH मान वाली भूमि में सर्वोत्तम होती है। भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करने के बाद रोपाई करने के लिए 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना चाहिए।
0: और अगर मैम हम बात करें किस्मों की, तो किस प्रकार का किस्म होना चाहिए, और पौध तैयार करने का उचित समय क्या होता है, साथ ही नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए खरीफ प्याज के लिए?
1: खरीफ में बोने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो है एग्रीफाउन डार्क रेड, N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, बसवंत 780 इत्यादि। एग्रीफाउन डार्क रेड रोपाई के 95 से 110 दिनों पश्चात तक तैयार होती है, और इसकी औसतन उत्पादन 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खरीफ प्याज हेतु नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए बुआई 15 से 30 जून तक करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद बुआई करने पर कंद के उत्पादन में फर्क पड़ता है। बुआई के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद रोपाई कर देना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने हेतु सदैव पौध तैयार करके रोपण द्वारा ही खेती करनी चाहिए। नर्सरी हेतु उपजाऊ उपयुक्त जल निकास एवं सिंचाई की सुविधा युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। प्याज का 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर की फसल लेने हेतु 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यानी कि 1.25 मीटर चौड़ी तथा 8 मीटर लंबी क्यारियां पर्याप्त होती है। बीज को थीरम अथवा बेवेस्टिन दवा की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% कप्तान या 0.5

0: दशमलव 2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन के घोल से नर्सरी बेड पर छिड़काव करना चाहिए। सामान्यतः 1.5 से 2 माह में पौधा तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज उत्पादन हेतु सेट से तैयार करना उत्तम होता है। सेट तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी क्यारियों में 15 फरवरी से 1 मार्च की अवधि में बीजा जाता है। इसके बाद पौधों की नर्सरी में ही छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है। खरीफ प्याज की पैदावार करने के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठों की आवश्यकता होती है। गांठों का साइज 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अच्छी प्रकार से खेत में प्याज की रोपाई पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना अच्छा होता है।
1: जी मैम, ये तो पौध की दूरी की बात होगी। अगर अब हम खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो किस प्रकार इनका प्रबंधन किया जा सकता है?
0: सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ा हुआ गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खरीफ प्याज की अधिक पैदावार लेने हेतु नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम एवं पोटैश 100 किलोग्राम तथा सल्फर 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नत्रजन की 1/3 तथा स्फूर, पोटैश और सल्फर की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की आखिरी जुताई के समय डालें। बची हुई यूरिया की मात्रा खेत में 2 बार में डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई कर दें। इसके अतिरिक्त प्याज को सूक्ष्म तत्व जैसे मैंगनीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम या बोरॉन की भी उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मृदा परीक्षण के में इन तत्वों की मात्रा कम होने पर प्रयोग करना चाहिए।
1: मैम, जल प्रबंधन कैसे करें और खरपतवार नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?
0: खरीफ में प्याज की खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतः खरीफ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 2 बारिश के मध्य ज्यादा अंतराल होने पर खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। कंद विकास के समय फसल में पानी की कमी होने से उत्पादन अधिक प्रभावित होता है, अतः कंद विकास की अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। अच्छे प्याज उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू है। खरीफ मौसम में खरपतवार अधिक होते हैं, अतः नियमित निराई गुड़ाई कर खेतों के खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। रासायनिक निंदा नियंत्रण हेतु पेंडामिथिलीन 30% एसी का 3.5 से 4 मिलीमीटर प्रति लीटर का अनुप्रयोग एवं इसके बाद रोपाई के 40 से 60 दिनों पश्चात हाथ से 1 बार निराई गुड़ाई करने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।
1: रोग और कीटों से बचाव के लिए मैम किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं?
0: प्याज में जो मुख्य रूप से रोग लगते हैं वो है आद्र गलन, जो कि नर्सरी में ज्यादा दिखते हैं, और बैगनी पर्ण धब्बा, और कीटों में प्रमुख है थ्रिप्स। आद्र गलन बीमारी मुख्य रूप से पौधशाला में होती है। इस रोग में पौधे का निचला हिस्सा जो कि जमीन के पास होता है कवक के संक्रमण के कारण गल जाता है और पौध गिर जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए उचित विधि से पौध प्रबंधन आवश्यक है। सर्वप्रथम पौधशाला की क्यारियों को जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना चाहिए एवं पानी के निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बोने के पूर्व कार्बेंडाजीम या थीरम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। कप्तान नामक फफूंद नाशक 2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बीज क्यारी को पानी के घोल से तर बतर कर देना चाहिए। जिस स्थान पर पौध क्यारी बनानी है उस भूमि को ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई कर पॉलिथीन शीट से सॉइल सोलराइजेशन कर देना चाहिए। बैगनी धब्बा, इस रोग में पत्तियों एवं पुष्प वृंद पर बैगनी केंद्र वाले सफेद लंबवत धब्बे बनते हैं। खरीफ की फसल में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है।

0: इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर 12 से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। नत्रजन युक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज में छिड़काव करते समय घोल में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपॉल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर स्टिकर का प्रयोग करें ताकि घोल पत्तियों पर ठीक से चिपके, क्योंकि प्याज की पत्तियां चिकनी, खड़ी और गोलाई युक्त होती है। अब कीट की बात करें तो थ्रिप्स प्याज का प्रमुख रूप से हानि पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियों पर असंख्य सफेद निशान बन जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोपाई के पूर्व पौधों की जड़ों को 2 घंटे तक कार्बोसल्फान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल से उपचारित करना चाहिए। फसल में कीट नियंत्रण हेतु 12 से 15 दिन के अंतराल पर डाइमिथेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक के सही प्रभाव हेतु चिपकने वाले पदार्थ जिसे हम स्टिकर कहते हैं जैसे कि सैंडोविट या टीपॉल 2.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम प्याज की खुदाई की बात करें तो कब खुदाई करनी चाहिए और उपज कितनी होती है खरीफ प्याज की?
0: सामान्यतः जब प्याज के कंद परिपक्व हो जाते हैं तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। प्याज की फसल रोपाई के 4 से 5 माह में परिपक्व हो जाती है। इस समय सिंचाई खुदाई के 10 दिन पूर्व तक रोक देना चाहिए। पत्तियों को पैरों से या ट्रैक्टर चालित यंत्रों से तोड़ देना चाहिए जिससे प्याज की गर्दन टूट जाए। इसे फसल को गिराना कहते हैं। इस प्रक्रिया के 1 हफ्ता बाद प्याज के कंदों को खोद कर निकालना चाहिए। खोदे हुए कंदों की सूखी पत्तियों एवं जड़ों को काटकर इन्हें छायादार पेड़ या शेड में 1 हफ्ता तक सुखाया जाता है। खरीफ में उत्पादित प्याज को लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसे तुरंत ही बाजार में खपत हेतु बेच देना चाहिए। उचित प्रबंधन से 250 से 350 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है।
1: जी मैम, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वार्ता काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फसलों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 2 दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें।

किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है। महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो

निर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है।
जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ

0: चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। सबसे जरूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के

0: जिसका भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
4: मैम बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
5: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
4: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
5: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं, और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में

लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और

0: बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है, उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहीं अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 MHz पर। मैं हूँ RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख़ासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में, उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
6: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो है, हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान

0: भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40 रुपये 30 रुपये से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इसे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत, आप देखिए ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है, तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैटो इसमें पॉइंटेड गार्ड में, परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूज़र है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जियों और फलों से ही फाइबर मिलती है, तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
1: परवल में,
0: हाँ परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
1: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, खास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्व की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में, तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
0: देखिए, परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए, जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीना में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे लगा दीजिए। इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं। इसमें आप मचान विध भी लगाते हैं, टेलिस विध भी लगाते हैं।

0: फ्लैट में भी लगाते हैं, तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पे तैयार करिए या 2x1 मीटर पे तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है आप जो है वहाँ 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी लेकर के आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूरा डाल डालिए, 2 ग्राम, एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उसमें पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए। और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहे तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए। इतना उसके साथ कोई मरोवत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद वो जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
1: जी।
0: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए, पुआल से या किसी चीज़ से ढक दीजिए और हल्का सा उसमें फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का, ज़्यादा पानी नहीं देना इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है। और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको। तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा, आपको जो है वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा। और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल अगर किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के ले चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे जितनी भी नोड्स है उसमें 7-8 नोड, आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोड उसमें थे, तो जितने नोड्स है सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए। जो मेच्योर है, खाने लायक है, टेंडर है, आप उसको हार्वेस्ट करिए और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए।
1: जी, तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं परवल की खेती करने में

0: रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो है इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
1: देखिए, परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियाँ हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्रॉप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है, तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले आते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है, कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पे विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियाँ जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है, तो इस तरह की ये प्रजातियाँ हैं। नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है, तो ये सब प्रजातियाँ हैं जिसको आप, जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के, 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
0: जी।
1: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं
0: जी। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब, कि किस प्रकार की खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
1: देखिए, अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके, 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे, और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट से देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
0: जी।
1: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है, और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है, फ्यूराडान, ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं, तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है। और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं, तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए, जाके उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
0: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं, और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
1: देखिए किसान भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है, और वह क्यों होती है किसान भाई, इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पे आता है और मादा फूल अलग पौधे पे आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है, वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है, तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप

0: जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
1: जी,
0: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है 1:10 जरूर रखिए। जब तक आप 1:10 मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो 10 पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ का विषय। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, आप फेरोमोन ट्रैप जो है 1 एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फेरोमोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है, वो तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
1: अच्छा,
0: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता वहीं वो मर जाता है। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है
1: जी।
0: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
1: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पश्चिम हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसानौ, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का

प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गाँव खिंदासा तहसील कोडायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्बा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
3: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
3: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
3: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय

0: पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं?
1: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
2: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
1: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
2: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
1: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
2: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
1: कैसे बना हिमालय।
2: आज रिद्धि,
1: नव्या
2: और रिदित
1: सब बहुत खुश है
2: क्योंकि उनका परिवार
1: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
3: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
4: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
3: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
4: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
3: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
4: बहुत मजा आएगा।
2: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
1: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
2: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
1: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
2: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
1: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
3: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
3: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
3: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
2: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
4: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
3: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
3: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
2: वाह,
3: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
3: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
3: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
4: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
3: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया या

0: यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट।
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
1: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
1: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।

0: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे।

रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।

0: उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए?
1: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
0: अच्छा।
1: दादी काफी प्रभावित हुई।
0: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा।
1: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
1: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
0: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना?
1: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
0: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
2: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
2: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
2: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
1: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
2: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
2: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
1: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
2: अच्छा बताओ, कितने शेर आए?

0: दो शेर आजम पर झपटे थे।
1: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
2: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
1: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
2: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
1: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
2: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
1: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
1: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगमंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?

0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
3: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम और इसमें बातें होती हैं खेती बाड़ी की और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आज एक खास विषय हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए। हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे बिहार में इनकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएँ हैं। और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
2: मैम नींबू वर्गीय फलों के बारे में और हमारे श्रोताओं को आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जो है नींबू वर्गीय इस वर्ग में कौन कौन से फल आते हैं नहीं जानते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है उनके बारे में भी बताएं।
4: सही कहा, नींबू वर्गीय फलों में खास करके मौसमी, संतरा, गागर नींबू, पूर्वी नींबू, कागजी नींबू इत्यादि प्रमुख है। लेकिन किसान भाई इसको लगाते हैं, किचन गार्डन के रूप में लगाते हैं, किचन में एक दो पौधा लगाते हैं, लेकिन बिहार में देखें तो इसकी व्यावसायिक खेती उतना प्रचलन में नहीं है। जबकि नींबू की खेती के लिए बिहार का जलवायु काफ़ी उपयुक्त है। यहाँ अगर व्यावसायिक खेती की जाए तो किसान भाई को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। बिहार में नींबू की खेती प्रचलित है, यहाँ संतरा और मौसमी की खेती की जा सकती है, जैसे कि पंजाब में होता है, महाराष्ट्र में मौसमी होता है, पंजाब में किन्नू होता है जिसको संतरा बोलते हैं, तो यहाँ भी वैसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई अभी इसके प्रति उतना अवेयर नहीं है, उतना नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको अभी उतना व्यावसायिक तौर पे अपना नहीं रहे हैं
2: जी।
4: अब इसकी बात करें कि इससे क्या क्या बन सकता है, इसको हम लोग एक तो फ्रेश खाते हैं, संतरा कहें तो उसको छिलकर खाते हैं, और नींबू कहें तो आपका दाल में गाड़ के खाते हैं, उसका सलाद में डाल के खाते हैं, चाय बनाकर पीते हैं, इसका अचार भी बनता है, चटनी बनता है, स्क्वाश बनता है, आरटीएस बनता है। इसका छिलका जो है उसमें काफ़ी वाइल होता है, तेल होता है, तो इसको अगर हम व्यावसायिक तौर पे करें तो फैक्ट्री वाले इसके छिलका को भी ले जाएंगे, वो अपना वाइल निकालेंगे, तो इस तरह से इसका बहुत सारा यूज है, बहुत सारी उपयोगिताएँ हैं।
2: तो यहाँ पर आपने नींबू वर्गीय फलों के बारे में जाना और ख़ास तौर पर मैम ने बताया कि अभी फ़िलहाल बिहार में जो लोग हैं इसे व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अभी कम जानकारी है। तो मैम इसकी कौन कौन सी किस्में जो हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं?
4: इसकी जो है इसको हम वर्गीकरण इसका करना बहुत ही कठिन है। इस छोटा फल से लेके बहुत बड़ा बड़ा फल होता है। छोटा फल कहें तो जैसे कि कागजी नींबू है, बहुत छोटा होता है
2: जी।
4: और बड़ा कहें तो आप देखते हैं चकोतरा है जिसको कि डावा नींबू कहते हैं, छठ पर्व में चढ़ता है। तो इसका अगर हम वर्गीकरण करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन होता है इसका वर्गीकरण। जैसे कि आम है तो आम ही है, लेकिन नींबू के केस में क्या है कि फल का जो साइज में भिन्नता बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गीकरण थोड़ा कठिन होता है। अब संतरा की बात करें तो संतरा को हम लोग छिल कर खाते हैं, यानी कि पौधा में ही फल पक जाता है, उसको तोड़ते हैं और छिलका छिलकर हम

0: खाते हैं, जैसे कि फरवरी में इसका मेन फसल आता है, हार्वेस्ट होता है। आप देखती होंगी कि ये होली के टाइम में बहुत अधिक संतरा रहता है बाजार में, और इतना रहता है कि 100 रुपीज में 3-4 केजी तक दे देता है रिटेलर। तो ये बहुत अधिक उपज देता है संतरा। संतरा में वैरायटी है, ये वर्ग हुआ संतरा, जिसे बोले कि वर्गीकरण करना काफ़ी कठिन है, तो संतरा एक वर्ग हुआ। उसी तरह से एक नारंगी वर्ग होता है, कागजी नींबू वर्ग होता है, तो इसका वर्गीकरण बहुत है। तो संतरा में अगर हम वैरायटी की बात करें, किस्म की बात करें, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट किस्म है, मुख्य है किन्नू, जो कि हम लोग यहाँ भी लगाए थे, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी किन्नू हम लोग लगाए थे, 200 के करीब प्लांट हम लोग लगाए थे, और यहाँ भी अच्छा उपज दिया और दे रहा है अभी तो। बहुत 10 साल हो गया है, तो पौधा करीब करीब डिक्लाइन के कंडीशन में है, लेकिन यहाँ उपज बहुत अधिक आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का जलवायु जो है संतरा के लिए उपयुक्त है। इसमें किस्में हैं, किन्नू है, कुर्ग है, नागपुर है, खांसी है, लेकिन किन्नू में बहुत अधिक उपज आता है। अब नारंगी की बात करें तो इसमें सभी किसान भाई जानते हैं कि बाजार में मौसमी बहुत बिकता है, सभी लोग, बच्चे बड़े आदमी सभी लोग जानते हैं मौसमी, और इसका जूस खास करके इसका हम लोग जूस निकाल कर पिया जाता है। क्यों पिया जाता है? क्योंकि इसका छिलका जो होता है आप हाथ से नहीं हटा सकते हैं, छिलका काफ़ी उसका जो जूसी पार्ट रहता है अंदर में वो उससे सटा हुआ रहता है, वो इजीली अलग नहीं होता है, उसको चाकू से अलग करना पड़ता है। यही सब इसका, इसीलिए इसको वर्गीकरण किया गया। संतरा अलग है, हम छिलके खाते हैं, लेकिन नारंगी में किस्म है जैसे हेमलिन है, मौसमी है, ब्लड रेड है, जाफा है, बहुत सारी किस्में हैं, तो इसको हम लोग छिल कर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइट स्किन, यानी कि वो सटा रहता है, गूदा से सटा हुआ रहता है। अच्छा। तो उसको चाकू से छिल करके फिर उसका जूस निकाल कर लोग पीते हैं, इसलिए कहता है कि मौसमी का जूस मार्केट में बहुत मिलता है जी। अब बात करें कागजी नींबू की, तो कागजी नींबू क्या है कि इसको हम लोग जैसे कि सलाद में डालकर खाते हैं, या चाय बनाकर पीते हैं, या दाल में डालकर खाते हैं, मतलब इसको हम लोग इसके रस को यूज करते हैं खाने में, और इसका अचार भी बना सकते हैं, कागजी नींबू का ही हम लोग अचार भी बनाते हैं। तो ये पुराना है, घर में लोग अचार बनाकर रखते हैं, ये बहुत ही एपेटाइजर का काम करता है, इसको खाने से पेट का दर्द कहता ठीक हो जाता है, पाचन शक्ति बढ़ जाता है, तो इसके फल से अचार, शरबत, साइट्रिक एसिड इत्यादि बनाया जा सकता है
1: जी। तो किसान भाई यहाँ पर किस्म

0: पौधा में ही मिट्टी ले जाकर बांधते हैं और उसको पॉलीथीन से रैप करते हैं। फिर 20-25 दिन के बाद उसमें जड़ आता है, उसको काट कर अलग कर लिया जाता है और फिर पॉटिंग करके कुछ दिन छोड़ दिया जाता है जिससे कि उसके जड़ का ग्रोथ अच्छा हो। जब जड़ का ग्रोथ अच्छा हो जाता है तब उसको मेन फील्ड में लगाता है। और है चश्मा मेथड। चश्मा मेथड उसको बोलते हैं बडिंग, यानी कि बडिंग मेथड से भी इसका प्रवर्धन करते हैं। ये भी अगस्त सितंबर में इसका अच्छा देखा गया है और हम लोग के कंडीशन में दिसंबर में और फरवरी मार्च में इसका जो है चश्मा मेथड या वेज ग्राफ्टिंग भी हम लोगों ने किया है। वेज ग्राफ्टिंग में भी ये अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, 80% सक्सेस आता है और ये इसको हम लोग दिसंबर में और फरवरी मार्च में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि मूल वृंत का जरूरत पड़ता है। मूल वृंत जिसको बोलते हैं कि नीचे का जो रूट स्टॉक बोलते हैं, जिस पर कि हम लोग ग्राफ्ट करते हैं पौधा को, उसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक या मूल वृंत हिंदी में बोलते हैं। तो इसका अलग वेराइटी होता है। इसको क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मूल वृंत होता है, रूट स्टॉक होता है, वो काफ़ी हार्डी होता है, तो वो बीमारी से बचाता है, वो जलवायु से बचाता है। एडवर्स सिचुएशन जो जलवायु का होता है, प्रतिकूल स्थिति जैसे हवा, वर्षा, आंधी, तूफान, उससे ये जो मूल वृंत है, रूट स्टॉक है, वो पौधा को बचाता है। इसलिए रूट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बहुत सारी वेराइटी हैं, जंभीरी है, जट्टी खट्टी है, करना खट्टा है, बहुत सारा रूट स्टॉक है। उसको प्रयोग में लाने से पौधा का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है।
1: तो इस प्रकार किसान भाइयों, अभी आपने पौध तैयार की जो विधि है वो जानी, और मैम इसके बाद ज़रूरी है इसकी खेती में या फिर किसी भी फसल की खेती में कि खाद हम कितनी मात्रा में दें, कौन से खाद दें, सिंचाई कब करें, कटाई छटाई कब करें, पौध रोपण कब करें, कैसे करें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नींबू वर्गीय फलों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए इन सभी चीज़ों को कैसे करना चाहिए?
0: हम जैसे पौधरोपण की बात करें तो जैसे सब फल वृक्ष का पौधरोपण करते हैं, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, फिर गड्ढा बनाना, तो ये कार्य जो है अप्रैल मई में हम लोग कहते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को तैयार करने के लिए अगर अप्रैल मई में जुताई उसकी की जाए और जुताई कर 10-15 दिन छोड़ दिया जाए तो उसमें जो कीड़े हैं, जो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अप्रैल मई में ज़मीन की जुताई करनी चाहिए, उसके बाद फिर पाटा चलाकर 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बना लेना चाहिए। गड्ढा हम देखिए नींबू का हम शुरू में ही बोले कि इसका वर्गीकरण अलग होता है, इसका पौधा का साइज भी सबका अलग अलग होता है। तो हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं, अब डावा नींबू लगा रहे हैं या कागजी नींबू लगा रहे हैं या संतरा लगा रहे हैं या मौसमी लगा, उस अनुसार से उसका लेआउट करना पड़ता है, यानी कि पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी हम लोग उसी अनुसार से रखते हैं जो हम लोगों ने सोचा है कि हमको ये लगाना है, उसी अनुसार से करते हैं। जैसे आप मौसमी के केस में 5 मीटर आप रख सकते हैं पौधा से पौधा और कतार से कतार। संतरा आप लगाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके लिए 6 मीटर है, और महानींबू है उसके लिए 7 मीटर है। अब चकोतरा है जिसको कि डाभा नींबू को बोलते हैं, इसके लिए 8 मीटर, इसका पौधा और बड़ा होता है। तो इस अनुसार से हम लोग कहते हैं कि प्लांटिंग डिस्टेंस आप बना लीजिए और ले आउट कर लेना है। उसके बाद गड्ढा खोद कर उसमें 40 किलो गोबर की खाद, 2.5 किलो हड्डी का चूरा और 1 किलो राख 3 टोकरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। अब गड्ढा भरने के बाद एक बारिश कम से कम जरूर होना चाहिए, पौधा लगाने से पहले एक बारिश हो जाए जिससे कि गड्ढा का मिट्टी जो है, जो हम भरे हैं, वो अच्छी तरह बैठ जाए। फिर उसको लेआउट करके जहाँ बीच सेंटर पे जहाँ पौधा लगाने का जगह है वहाँ पर पौधों को लगा देना चाहिए। ये कार्य जून जुलाई में करना चाहिए, पौधे लगाने का कार्य जून जुलाई में करना चाहिए जब बरसात शुरू हो जाता है
1: जी।
0: अब खाद की बात करें तो पहला वर्ष आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो अनुपात है 75 ग्राम, 40 ग्राम और 75 ग्राम रखना चाहिए, और ये अनुपात हर एक साल बढ़ते जाएगा। जैसे 75 ग्राम पहली साल था नाइट्रोजन, तो दूसरे साल 150 ग्राम

0: होगा, फिर तीसरे साल 225 ग्राम होगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये दसवें साल में नाइट्रोजन की मात्रा 750 ग्राम होगा और फॉस्फोरस की मात्रा 400 ग्राम होगा और पोटास की मात्रा 750 ग्राम होगा। ये दसवें वर्ष में देना है पौधा को और यही जो खाद की मात्रा है यही हर एक वर्ष पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि पौधा मेरा मैच्योर हो गया है, अब उसको इतना ही भोजन हर एक वर्ष चाहिए। इसके अलावे हम लोग कहते हैं कि खाद FYM जो होता है, सड़ी हुई गोबर की खाद 50 किलो प्रति पौधा देते रहना चाहिए। अब सिंचाई की बात करें तो गर्मी के दिन में वीकली इंटरवल पे सिंचाई करना चाहिए, यानी सप्ताह में एक बार, और जाड़ा में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए
1: जी।
0: अब निकाई गुड़ाई की बात है तो वो तो बरसात के समय में घास बहुत निकल आता है, तो उसका बीच बीच में सफाई होते रहना चाहिए जिससे कि मेरा जो मेन क्रॉप है नींबू का वो अच्छा रहे। अगर अधिक घास रहेगा तो उससे बीमारी और कीड़ा का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। अब कटाई छटाई की बात करें तो नीचे 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर कोई तना नहीं रखना चाहिए। जैसे पौधा हम लगाए तो 40 सेंटीमीटर मेरा फ्री रहना चाहिए, क्योंकि हम बाद में गड्ढा के चारों ओर खाद डालेंगे, वो सब कार्य करने में हमको आसानी होगा। निकाई गुड़ाई करेंगे तो वो सब कार्य करने में अगर नीचे से ही मिट्टी के सतह से ही अगर दूसरा सूट निकल जाएगा, तना निकल जाएगा, तो वो जो निकोनी गरोनी का जो कार्य है, खाद पानी देने का जो कार्य है, वो बाधित होगा। तो इस तरह से कटाई छटाई करनी चाहिए
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने पूरी जानकारी पाई कि कैसे आपको पौधरोपण करना है, खाद आपको कैसे देना है, सिंचाई कटाई छटाई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। और अब अंत में बात करते हैं फलों की तुड़ाई और उपज के बारे में। मैम तो ये भी बता दें कि क्या मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को उपज।
0: फलों को तोड़ना, जैसे कि अब जब फूल लगता है नींबू में उसके 6 से 9 महीने बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी और कौन सा नींबू हमने लगाया है। तो इस तरह से, और जब फल सेट होता है, जब पकने की स्थिति में होती है, जब मैच्योर होने की स्थिति में होती है, तो कलर का, उसका फल का जो कलर है थोड़ा चेंज होता है। ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा किस्म है। सभी का फल जो है पीला पूरा नहीं होता है, तो किसी किसी में हरा ही रहता है, थोड़ा लाइट ग्रीन रहता है, थोड़ा सा किसी में अधिक पीला होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है। अब उपज की बात करें तो नींबू वर्गीय फल वृक्ष से 5 से 8 वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। तो फलों का उत्पादन जाति, उसके जाति, किस्म, बाग की देखरेख और जलवायु पर निर्भर करती है। एक अच्छे माल्टे के पौधे से 500 करीब फल प्राप्त होता है, प्रति पेड़ 500 फल मिलता है। संतरा की बात करें तो 1000 से 1500 फल प्रति पेड़ मिलता है। अब ग्रेपफ्रूट की बात करें कि 300 फल प्रति पेड़ मिलता है। लाइम की बात करें तो 1000 फल प्रति पेड़ मिलता है। इस तरह से जो किस्म है, जो जाति है, उस अनुसार से उसका उपज प्राप्त होता है
1: जी। तो किसान भाइयों इस प्रकार यहाँ पर बातें हुई नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में और साथ ही बिहार में इसकी खेती को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं उनकी बातें यहाँ पर हमने की हैं। तो आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नींबू वर्गीय फलों के बारे में। और अगर आप व्यावसायिक तौर पर खेती करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कि कितना उपज प्राप्त हो सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय को लेकर और हम हाजिर होंगे एक अलग विषय के साथ। तो फिलहाल आज के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल।

0: जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 cm की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ

अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फॉस्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी शुभम गौरव। सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला में हम आज बहुत खास प्रोग्राम लेके आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज अपने

0: साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में स्वास्थ्य की बातें पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद आरजे बाबू और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब अपने साथ मिलकर समझाना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। अब आप ही सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और यह समझे कि हर व्यक्ति को अच्छी सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्टैंड विद साइंस तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी भी अफवाह यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर ले। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है घरेलू नुस्खा अपनाओ, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गाँव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट संस्था दिल्ली के सौजन्य से चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ उठाएं और लोगों की जेब पर भी स्वास्थ्य पर खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान अपना स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा होगा, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसान पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण को भी ध्यान रखना चाहिए।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आजकल जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज कर लेते हैं। कई बार छोटी छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैली रहती हैं, जैसे वैक्सीन के नुकसान होते हैं या कुछ बीमारियों का इलाज घर पर ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए, सही समय पर डॉक्टर के से सलाह लेनी चाहिए।
0: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलनी चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जाँच, इलाज और बाद की देखभाल भी, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता। जरूरी यह है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोगों को उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। यह इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे सही खान पान एवं व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी, मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरा है सांक्रामक बीमारियाँ, जैसे निमोनिया, मलेरिया, दस्त। इससे बचने के लिए साफ सफाई, टीकाकरण या सही जानकारी बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जैसे मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति?

0: सकती है।
1: भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी है। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा है। और जीवन शैली की बीमारियाँ तो 60% मौत के कारण बन चुकी है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन हर राज्य में समान ये नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है।
0: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है। टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। रक्तदान शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इस सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
0: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे अहम भूमिका होती है। हर गाँव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं जहाँ HO होते हैं, जहाँ रोज़मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है। बहुत ही दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत सी जांचें होती हैं। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं होती हैं। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है भरोसा। अगर लोग सिस्टम पर भरोसा होगा तब वो समय पर इलाज करवाएंगे।
0: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे समझा जाए?
1: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यही वह जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता और सभी कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आगे रेफर भी करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर आता है जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़ा अस्पताल जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है? इस स्थिति को कैसे समझा जाए?
1: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यह वही जगह है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता, कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को रेफर करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती है, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिन्हें सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत होती है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगह पर अभी भी डॉक्टरों की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती जहाँ जांच की सुविधाएँ सीमित होती हैं, लेकिन सरकार लगातार इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों में पहले से ही धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता है, वे बिना कोशिश किए वहाँ जाना ही बंद कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है।
0: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुधार कर रही है, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए ना, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
1: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसके तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी बड़े अस्पतालों में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है जिसको दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो पुराने

0: सब सेंटर और पीएचसी को मजबूत बनाकर वहां और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहां सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जानकारी और सलाह भी मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना PMVVY, जो इसी आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
1: आजकल डिजिटल चीज़ों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
0: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा आईडी बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इसका फायदा यह होता है कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराना इलाज का रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा यूवेन जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिसका टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोग समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगवाना है।
1: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारियाँ बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
0: हाँ, और यह बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार यह अफवाह फैलाई जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे जमाने में टीका तो लगाया ही नहीं, फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोसी की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
1: तो इन बातों का सच क्या है?
0: सच यह है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द तो हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और यह दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे ज़माने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारी से मर जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था और हम उस सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें यह ताकत दी है कि हम बीमारियों को पहले ही से बचाव कर सकें।
1: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
0: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच ना माने, पहले पूछे, समझे, फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति समझदारी रूप से पूरे गांव को सही दिशा दे सकता है।
1: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खान पान और व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी, सही जानकारी पर भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुरक्षित भविष्य का बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों की जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसी प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए खास विषय हर रोज की तरह लेकर आते हैं, तो आज भी बिल्कुल कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज हम जानेंगे। और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर मंकेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद मैडम।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कतरनी धान के बारे में थोड़ा सा बताएं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताएं।
7: नमस्कार कृषक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं जो आप सब कतरनी धान की खेती, खासकर भागलपुर और बांका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग कतरनी धान की खेती बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं, और जो जिस हिसाब से ये किसान आगे बढ़कर खेती कर रहे हैं, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता शुरुआत करता हूँ। मैं डॉक्टर मंकेश कुमार हूँ, मैं पौधा प्रजनन विभाग में कनीय वैज्ञानिक हूँ और मेरा काम विशेषकर सुगंधित चावल और खासकर कतरनी पर ही रहा है। तो कतरनी धान जो आप किसान बंधु जानते ही हैं, कतरनी धान जो है बिहार का एक गौरव है, खासकर भागलपुर जिले का एक पहचान इसे जाना जाता है। तो ये एक बहुत प्रचलित सुगंधित चावल है जो मध्यम पतला दाना होता है इसका, और एक नदी जो चानन नाम की नदी है जो बांका ज़िले में बहती है, उस नदी के आसपास के इलाकों में इसको लगाने के बाद इसमें एक विशेष तरह की खुशबू आती है। साथ ही साथ बांका के अलावा जैसे भागलपुर में दो प्रखंड हैं, जैसे आपका सुल्तानगंज है और आपका भागलपुर के दो प्रखंड और मुंगेर के भी दो तीन प्रखंड हैं और बांका के 4-5 प्रखंड हैं, इसमें कतरनी धान में अजीब एक विशेष प्रकार की गुणवत्ता वाली कतरनी धान होती है, जिसके कारण इसको 2017 में एक भौगोलिक सूचकांक का टैग प्राप्त हुआ है। इस टैग के प्राप्त होने के बाद

0: बाद किसानों को एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, जो उसको उनको एक कतरनी धान उगाने के लिए एक अधिकार प्राप्त, एक पेटेंट की तरह एक अधिकार, स्पेशल अधिकार देती है, जिसके चलते उसको कमर्शियल लेवल पर भी ले जा सक करके वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं थोड़ा खेती की, तो कतरनी धान के बिचड़े लगाने की क्या विधि है?
0: किसान बंधु कतरनी

0: पाउडर है 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम, या ट्राइकोडर्मा जो एक फंजाई होता है उसको बाजार में उपलब्ध होता है, उसका 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ पीएसबी कल्चर के साथ मिला करके, और एजेटोबैक्टर भी अगर चाहें तो एजेटोबैक्टर का कल्चर भी साथ में मिला करके बीज को ट्रीट करें, और उसके साथ ट्रीट करने के बाद उसको जूट गीले जूट बैग में उसको रखते हैं करीब 24 घंटे के लिए, और उसके बाद देखें कि बीज अगर अंकुरित हो रहा है, हल्का अंकुरित हो गया है, तो उसको एक उप जो बिचड़े लगाने के लिए थोड़ा सा ऊपरी जमीन जमीन को ऊपर करके एक क्यारी बनाते हुए ऊपर उसके बीज को छिड़काव करें, और फिर आप देखेंगे कि बीज मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे रूप में और हेल्दी बीज का जो है जर्मिनेशन हो जाता है। तो आप बीज उपचार करें, उसके बाद बुआई का समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसका बुआई जो है 15 से 25 जुलाई के बीच में करना चाहिए, या आप चाहेंगे कि पहले हम कर दें जून के माह में कर दें और हमारा फसल अच्छा आएगा उपज, तो ऐसा नहीं है। आपको ये क्योंकि ये प्रकाश संवेदनशील प्रजाति है तो पहले लगाएंगे आप तो इससे उसके उपज में असर पड़ेगा, उसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा लेकिन उसका दाना कम बनेगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको 15 से 25 जुलाई के बीच के समय में ही उसको लगाएं। और रोपने के लिए आप 20 से 25 दिन के बिचड़े को आप यूज कर सकते हैं, उसको आप क्यारी से अच्छे तरह से उखाड़े, उसको पानी उसका रहना चाहिए, जड़ नहीं टूटना चाहिए उखाड़ते समय, और प्रति खूंटा बिचड़ा जो है आपको 3 से 4 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मतलब एक हिल पे या एक जगह 4 से 5 पौधे से ज़्यादा मत लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। रोपाई की दूरी आप चाहें तो 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति पौधे से पौधे के बीच में और पंक्ति के से पंक्ति के बीच में रखें तो ज़्यादा अच्छा आपका फसल होगा। जी
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिचड़े लगाने की विधि की, अब बात करते हैं थोड़ा सस्य क्रियाओं की, तो क्या कुछ सस्य क्रियाएं होंगी कतरनी धान में?
0: जी जी, ये कतरनी धान, जैसे किसान बंधु आपको कतरनी धान की जो खेती करते हैं उनको अनुभव होता ही होगा कि कतरनी धान में आप अन्य जैसे फसल धान की प्रजातियाँ हैं जैसे उसमें उर्वरक आप ज़्यादा डालते हैं, छिड़काव मतलब इंसेक्टिसाइड का या जो भी खरपतवार नाशी जो केमिकल है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का अनुभव ये बताता होगा कि कतरनी धान में ये सभी चीज़ों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो इसका उल्टा ये परिणाम है कि अगर आप खाद अगर ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे या ज़्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तो कतरनी का जो विशेष गुण है जिसके लिए वो जाना जाता है वो उसमें नहीं रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कतरनी धान में जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है या जैविक खेती जो किया जाए उस पर ही आप ज़्यादा उस पर आप आगे बढ़ें। तो इसमें जो खाद हरे खाद का ऊपर अगर उपयोग करते हैं तो सबसे बढ़िया है, इसके लिए जो ढैंचा जो कहते हैं एक वो उसको आप परती ज़मीन जैसे रबी का फसल कटने के बाद परती ज़मीन जो रहता है उसमें आप ढैंचा का प्रयोग करें, उसको आप बीज जो है आप जून माह के अंत में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में छिड़काव कर दें, और जब वो पौधा ढैंचा का 55 से 60 दिन का हो जाए जो जुलाई के अंत तक जब कतरनी को रोपने का जब समय आए तब उस ढैंचा को काट दें, उसको दबा दें उस खेत में और FIM का प्रयोग करें तो ज़मीन जो है बहुत ही अच्छा कंडीशन में आ जाता है जिससे कतरनी का खेती बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो सामान्यतः NPK का 40, 30 और 20 का ये रेशियो होना चाहिए, और इससे ज़्यादा आप NPK का प्रयोग ना करें, जो है आप जिंक फॉस्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी करते समय दे दें, और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है पहले तो आप एक आधी मात्रा बुआई के समय करें, फिर 1/3 भाग 7 दिन पर और शेष 1/3 भाग कल्ले निकलने पर आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी करते समय डाल दें। बासमती धान जो है उर्वरक की उर्वरक की मांग कम होती है, इसलिए कार्बनिक खेती को ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कार्बनिक खेती करने से पोषक तत्वों की आपूर्ति गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद तथा जैसे मुर्गी पोल्ट्री का जो बीट है आदि स्रोतों से पूरी करनी चाहिए। तो कार्बनिक खादों को खेत के में रोपाई से 2 सप्ताह पहले मिला देना चाहिए, क्योंकि आप रोपाई करने के बाद डालेंगे तो कोई उसका ज़्यादा असर नहीं होगा।

0: और इसके लिए खरपतवार रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैविक संसाधनों का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो खरपतवार, जैसे आप कहते हैं कि खरीफ के फसलों में खरपतवार का भी ज़्यादा समस्या होता है, तो खरपतवार के लिए आप रोपनी के 3 से 5 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर 50 EC का प्रयोग करें। उसको 15 किलोग्राम 50 ब्यूटाक्लोर लेकर के 500 लीटर जल में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, और उसके बाद रोपनी के 25 से 30 दिनों के बाद एक बिस्पारी वेक सोडियम 10 ग्राम प्रतिशत जो है SC 25 ग्राम सक्रिय दवा को 500 लीटर प्रति हेक्टेयर जल के में घोल करके आप करें। तो ये आपका सस्य क्रियाएँ हैं, कतरनी की ये जो है जिसको आप अपना सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब अगर फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद भंडारण किस प्रकार से करें?
0: जी जी, जैसे कतरनी में आप मैंने कहा था कि कतरनी जो है लंबे दिन की प्रजाति है, और ये पकने की जो अवधि है इसकी 150 दिन से ऊपर होती है। इसका मतलब है कि ये जब ये पकता है तो हमारा जाड़ा का सीजन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो समस्या ये होती है कि उस टाइम धूप निकलना बंद हो जाता है और दाने में मॉइस्चर का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो किसानों को इसका भंडारण में समस्या आती है। तो आप ये भंडारण के समय ये ध्यान रखें कि इसमें 14% तक नमी रहे ये भंडारण के समय, और इसको अच्छी तरह से सुखा लेने का कोशिश करें, और नई बोरी का प्रयोग करें, पुरानी बोरियों को ना यूज़ करें। अगर पुरानी जो बोरी है तो उसमें आप कोशिश करें कि दाना जो है पूरा पुराना धान का दाना उसमें ना रहे, उसको झड़वा दें, और गोदाम वाले भंडारण वाले गोदाम को अच्छी तरह से साफ कर 4 लीटर मालाथियन या DDVP का 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर देना चाहिए। और कुछ लोग मटके में भी भंडारण करते हैं, तो उसमें भंडारण करने के लिए आप 500 ग्राम सूखी नीम की पत्तियों को डालकर सूखा डालकर धुआं करें तथा ऊपर से बंद करके वायु अवरोधी करें। किसान भाइयों, इसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि कतरनी जो एक सुगंधित धान है, तो इसमें आप कोशिश करें कि जब छांव में इसको जब सुखाएंगे तो इसका जो सुगंध है ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहता है। अगर तेज़ तीखे धूप में अगर सुखाएंगे तो इसका सुगंध जो है थोड़ा कम हो जाता है, जैसा मेरा अनुभव है। तो जब खिली धूप हो और कहीं छांव में इसको सुखाएं तो इसका सुगंध जो है बहुत दिनों तक बरकरार रहता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, और कतरनी धान में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि और कीट भी लगते हैं, तो इसका उपचार कैसे करें?
0: जी जी, कतरनी धान एक सुगंधित प्रजाति होने के चलते ये जो कीटों के लिए बहुत आकर्षण का ये फसल होता है। जी
1: सुगंध की
0: जी, तो इसमें एक गंधी बग एक कीड़ा होता है जो ज़्यादातर सुगंधित धानों में पाया ज़्यादा अटैक करता है, तो उसके लिए ये गंधी बग जो है ये जब बालियाँ निकल जाती हैं तो इसके बालियों से रस चूस करके बालियों को सुखा देता है। तो इसके लिए आप मालाथियन या कार्बोरिल 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें, और इसमें एक येलो स्टेम बोरर का एक प्रॉब्लम है जो पीला तना छेदक कहा जाता है इसको।
1: अच्छा।
0: तो उसके लिए आपको आपको जैसे इसका प्रकोप नर्सरी के टाइम से ही शुरू हो जाता है, पीला तना छेदक उसमें अंडा देना शुरू कर देता है। तो जब आप रोपनी करते रहें करने जाएं तो आपको आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब उसको आप जो ऊपर का पत्ता का हिस्सा है उसको तोड़ दें, तो ऊपर के पत्ते के हिस्से में जो इसका अंडा है वो हट जाएगा और रोग मुक्त हो, ये कीड़ा के अंडे से रहित हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फसल लगने के बाद रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण करने के लिए रोपनी के 3 हफ्ता के बाद आप कार्बोफ्यूरॉन प्रति 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर एक कारटाप एक दवा आती है जिसकी 10 ग्राम प्रति 25 केजी ग्राम प्रति हेक्टेयर का एक बार प्रयोग करना चाहिए
1: जी।
0: और इसके बाद 20 दिनों के बाद मोनोक्रोटोफॉस 36 EC जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में, या क्लोरोपाइरीफॉस एक दवा आती है जो 20 EC इसका स्ट्रेंथ होता है, और 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर जैविक तरीके से अगर इसका नियंत्रण करना चाहें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इससे इसका सुगंध बरकरार रहता है। तो जैविक नियंत्रण के लिए रुपाई के 30 दिनों के बाद 10 दिनों के अंतराल पर एक ट्राइकोकार्ड आता है जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा भी ये कई किसानों को दिया गया है, और ये ट्राइकोकार्ड हमारे यहाँ अवेलेबल भी है। इसका प्रयोग करेंगे तो ये येलो स्टेम बोरर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है
1: जी। अब अंत में बात आती है उत्पादकता बढ़ाने की, तो क्या

0: कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि कतरनी धान की उत्पादकता को हम बढ़ा सकें?
1: जी जी, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि कतरनी का जो उत्पादन है, उत्पादकता जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, क्योंकि वो प्रजाति जो है लंबा होता है और अपने दाना के वजन से ये जो है जब पकता है तो ये गिर जाता है, इसके चलते इसमें जो है उपज बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ ये दिक्कत है ये कि जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत लंबी है, तो जो किसान गेहूं लगाना चाहते हैं वो लगा नहीं सकते हैं दिसंबर के माह में, तो उत्पादकता मतलब किसान जो है कतरनी की धान की खेती नहीं करना चाहते हैं, इसके चलते इसकी कम उत्पादकता भी जिम्मेदार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2013 या 12 के आसपास किसानों के यहाँ से शुद्ध कतरनी को ला करके उसमें एक ब्रीडिंग प्रोग्राम किया और बौना कतरनी को डेवलप किया है और वो अंतिम चरण के स्टेज में है। और उस बौने कतरनी के में ये खासियत है कि वो उसकी उत्पादकता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और उसके पकने की अवधि भी कतरनी से 15 से 20 दिनों की कम है। तो अगर ये बौने प्रजाति किसानों के बीच में आएगी तो इसकी उत्पादकता अधिक होने के चलते किसान भी इसको लगाएंगे और इसको लगाने के साथ साथ किसानों का जो है इससे आय भी वृद्धि हो सकता है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती को लेकर बहुत सारे किसानों के मन में उत्सुकता रहती है, बहुत सारे सवाल भी रहते हैं जिसका जवाब आपने दिया। और मुझे लगता है कि हमारे बिहार क्षेत्र में, हमारे भागलपुर क्षेत्र में खास कतरनी धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और लोग इसे पसंद भी करते हैं, बाज़ार में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है इसके खास विशेषताओं की वजह से। तो आज जो भी वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है, आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों को ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
10: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और जहां तक बात आती है हमारी मिट्टी की, तो जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमें स्वस्थ फसल प्राप्त होंगे, और मिट्टी रसायन मुक्त रहेगी तभी हमें जो पोषक तत्व हमारी फसलों से, हमारे अनाज से मिलने चाहिए वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि मिट्टी को कैसे स्वस्थ रखें और फसलों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो दलहनी फसलों में जब तक जैव उर्वरक का प्रयोग हम नहीं करेंगे तब तक हमारी जो फसल है वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आज इसके विषय में हम जानेंगे कि दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग क्यों और कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं मृदा विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एके झा, जो आप सभी को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सर, स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले जैव उर्वरक क्या होता है इसकी जानकारी दें।
1: बड़ा आपने शमशीन प्रश्न पूछा। जैव उर्वरक का मतलब होता है वह जीवित पदार्थ जो उर्वरक की तरह प्रयोग किया जा सके। अब जीवित पदार्थ का मैंने कहा तो उसमें देखिए बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया, एक्टोमाइसिट्स, ये सब भी क्या है, जीवित पदार्थ ही हैं। और उर्वरक का काम क्या होता है, पोषक तत्व प्रदान करना। तो वह जीवित पदार्थ यानी जैसे आप राइजोबियम की बात करती हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, तो वो प्रयोग में आता है। इसी तरह से एजोटोबैक्टर है तो वहां पर एजोटोबैक्टर नाम का जो जीवाणु है वह काम करता है। तो इसी तरह से कोई भी जीवित पदार्थ जो उर्वरक की तरह काम करे यानी पोषक तत्व प्रदान करने का काम करे पौधों को, उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं।
0: जी, ये कितने प्रकार के होते हैं सर, कितने तरह के होते हैं?
1: ऐसा है कि देखिए जैव उर्वरक, अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे नाइट्रोजन यदि वो प्रदान करता है तो उसको नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कहते हैं या जैव उर्वरक कहते हैं। अब जैसे इसमें हमने अभी बताया दलहनी की बात कहा, तो दलहनी फसलों में जो राइजोबियम है या ब्रेडी राइजोबियम है उसकी जड़ में गांठ बनाने का काम करता है, तो वह भी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ही है लेकिन यह सहजीवी है। इसमें आप देखते हैं कि जो हमारा राइजोबियम है, इस राइजोबियम को खाना और रहने का जगह यह प्रदान करता है पौधा, और उसके एवज में वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो यानी सहजीवी जीवाणु ये है। तो एक तो ये हो गया, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, तो दलहनी फसल नहीं है तो क्या वो उसमें नाइट्रोजन के लिए नहीं है कोई उपाय? बिल्कुल है जी। अब जैसे मैं आपको बताऊं जो एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि धान वगैरह बरब है उसमें एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो कई तरह के इस ढंग के नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं, लेकिन अब यहां पर केवल नाइट्रोजन से तो हमारी फसल नहीं बढ़ेगी, उसको फॉस्फोरस भी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं जो फास्फोरस घुलनकर जीवाणु है उसके भी कल्चर आ गए हैं, वो भी जैव उर्वरक हैं। वास्तव में क्या है कि फास्फोरस हमारी मिट्टी में काफी है लेकिन वह फास्फोरस पौधे को मिल नहीं पाता है, क्योंकि वह फास्फोरस किसी दूसरे रूप में है। जैसे हम धान नहीं खाते हैं उसको, पहले हम चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, तो इसी तरह से वह जो फास्फोरस है वह फास्फोरस आपको नहीं मिल पा रहा है। तो फास्फोरस घुलनकर जिसको फास्फेट सोलबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो वह पीएसवी का भी कल्चर आ गया हुआ है, तो वह भी है। इसके अतिरिक्त आज के तारीख में बहुत सारी कंपनी जिंक मोबलाइजर बनाती हैं जो जिंक को मोबलाइज करने का काम करता है। इसी तरह से पोटेशियम मोबलाइजर भी आ गया है जो पोटेश को मोबलाइज करता है। इस तरह से बहुत सारे जो द्वितीयक या सूक्ष्मात्रिक तत्व हैं उसको भी करने की बात है, लेकिन उसके अभी कल्चर मार्केट में नहीं आए हैं। अभी मुख्य रूप से जो राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर कल्चर है, एजोस्पर्म है, पीएसबी है, ये सब मार्केट में आपको ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन कई और भी हैं जो शोध के स्तर पर हैं। तो कई तरह के आपके ये होते हैं
0: जी। इसके प्रयोग के फायदों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
1: अभी हमने इसमें ही आपको बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो है वह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। अब देखिए दो बातें यहां पर है, एक है अमोनियम फिक्सेशन। तो अमोनिया फिक्सेशन जो है वो गड़बड़ चीज है। यह जो हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के रूप में मिट्टी में स्थिरीकृत कर देता है, यानी जो उपलब्ध है उसको अनुपलब्ध रूप में आपने कर दिया। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लगभग 78-79% नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में है, लेकिन पौधा उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है जब तक कि उस नाइट्रोजन को आप परिवर्तित नहीं कर लेते हैं उसके उपलब्ध रूप में। अभी हमने आपको पीछे भी बताया है कि हम धान नहीं खाते हैं, हम भात खाते हैं, तो धान को भात में बदलने का काम यह सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि यह अपने आप में एक छोटा यूरिया की फैक्ट्री है। अब देखिएगा यूरिया जहां पर बनता है वहां पर

0: हाई टेम्परेचर रहता है और वहाँ पर फॉसिल फ्यूल जो नेफ्था नाम का हो सकता है या नेचुरल गैस है उसकी उपस्थिति में आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उसमें आप जो है बुश एंड हेबर प्रोसेस से आप यूरिया बनाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को बनाने का काम करते हैं। वही काम यह जो आपका राइजोबियम है वह जो समान आपका खेत का टेम्परेचर है उस पर करने का काम करता है। वास्तव में उसमें एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम और लेग होमोग्लोबिन होता है, तो इसकी उपस्थिति में यह नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरम है, यह सहजीवित नहीं है लेकिन ये आपको एसोसिएटिव है। इसके जड़ से जो कुछ निकलता है रूट एक्जुडेट, उसी रूट एक्जुडेट को खा करके और उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकृत करता है, तो यह उतना नहीं करता है जितना राइजोबियम करेगा लेकिन यह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में करता है। इसके अतिरिक्त कुछ आपको फ्री लिविंग भी होते हैं जैसे ड्रक्सिया हो गया, बेजरिंकिया हो गया या ब्लू ग्रीन अलगी जो नील हरित शैवाल कहते हैं, तो नील हरित शैवाल में कई प्रजातियां हैं जो नस्टा, कैनाबिना, एनाबिनप्सिस, एफेंजोमिना, एलोसिरा, प्लेक्टोनिमा, तो कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आपको ये वायुमंडल के नाइट्रोजन लेकर के और उसको स्थिरीकृत करते हैं यानी पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और इसी तरह से हमने आपको बताया जैसे फास्फोरस की बात कहा तो फास्फोरस को घुला दिया, पौधे को उपलब्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कम भी फास्फोरस है। आज हमारी निर्भरता रासायनिक उर्वरकों के ऊपर ज़्यादा है, तो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर हमारी निर्भरता न रहे। हमारी जो पहले देखिए ना, हमारी मिट्टी में खुद ब खुद था क्योंकि हमारी मिट्टी में कार्बन काफ़ी था, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी थी, तो हमारी मिट्टी में इसकी संख्या खुद ब खुद थी, अलग से आपको कल्चर डालने की जरूरत नहीं होती है। यदि बुजुर्ग लोगों से पूछें कि क्या आप राइजोबियम कल्चर डालते थे, क्या आपने पीएसबी डालते थे, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं डालते थे क्योंकि हमारी मिट्टी में इसकी संख्या थी। जो भी कालक्रम में हमने जो रसायन, जहरीले रसायन प्रयोग किए, कार्बन की मात्रा घट गई। पहले आपको बताएं कि 70 वर्ष पहले हमारी मिट्टी में 1% से ज़्यादा कार्बन था और वो आज घट करके 0.3% के आसपास हो गया हुआ है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन आपके जल धारण क्षमता को भी प्रभावित करता है, तो इन सब कारणों से उसकी संख्या घट गई है, इसीलिए अलग से हम इसको कल्चर मिला करके देते हैं। इसी तरह से फॉस्फोरस का भी बताया और दूसरे भी जैसे KMB बताया, पोटेशियम मोबिलाइजर या जिंक मोबिलाइजर, ये सभी प्रयोग करते हैं तो पोटेशियम को बढ़ाता है, जिंक मोबिलाइजर जिंक की उपलब्धता को बढ़ाता है, तो ये सब फायदे हैं हमारे।
1: जी हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग हम कैसे करेंगे?
0: बहुत आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि किसान इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं और ढंग से कर नहीं पाते हैं, इसलिए फायदा नहीं ले पाते हैं। जो दलहनी फसल है, दलहनी फसल में मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो सहजीवी जीवाणु हैं खास करके राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम उसका प्रयोग करता है, लेकिन हमारे किसान ये समझते हैं कि राइजोबियम कल्चर मतलब हर एक फसल में हर एक राइजोबियम डाल दो। जी नहीं साहब, इसमें इसके क्रॉस इनाकुलेशन ग्रुप होते हैं, यानी कि हर एक दलहन के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम की आवश्यकता होती है। कई प्रजातियां हैं, वह अलग अलग प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, लेग्युमिनोसोरम, फेजोली, मेलिलोटी, कई तरह के प्रजातियां हैं। तो आप प्रयोग करने के पहले यह देख लें कि क्या जो हम दलहन प्रयोग करने जा रहे हैं उस दलहन के लिए उचित है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आप यदि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको उपचारित अवश्य करें। अब उपचारित करने के लिए आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं लेकिन उसमें मिट्टी में आपको ज़्यादा मात्रा में लगेगी, तो सबसे बढ़िया है कि आप बीज उपचार करें। अब बीज उपचार कैसे करेंगे भाई, कि आप जैसे क्या कीजिए कि थोड़ा सा 200-300 ग्राम आप ले लीजिए पानी, उसको हल्का गर्म कीजिए, उसी में गुड़ 50-100 ग्राम डाल दीजिए, वो जब घुल जाए तो उसको ठंडा कर दीजिए। ठंडा करके उसमें एक पैकेट जिसमें कि मोटे तौर पर 200 ग्राम होता है वो कल्चर उसमें ठंडा हो जाने पर मिला दीजिए और उसके जो 10 किलो बीज हैं, जो आपके दलहन के 10 किलो बीज हैं, उस पर आप बढ़िया से हल्के हाथ उसको मिला दीजिए, जिसके ऊपर इसके ऊपर एक परत उसकी बन जाए। अब इसके ऊपर यदि परत बन गई तो उसके बाद आप इसको छाया में रखें और छाया में रख करके फिर छाया में ही इसकी बुआई कर दें। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे किसान होते हैं जो पीएसवी भी डालना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर भी डालना चाहते हैं, वह कैप्टन थीराम से अपने या ट्राइकोडर्मा से अपने बीज का उपचार भी करना चाहते हैं कीड़ा से या बीमारी से बचाने के लिए। तो अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं FIR, यानी पहले फंजीसाइड से उपचारित करना चाहिए, उसके घंटा दो घंटा के बाद इंसेक्टिसाइड से यानी कीटनाशी से उपचारित कीजिए, उसके बाद आप जो है फॉस्फेट सोलबलाइजिंग यानी PSV जिसको कहते हैं, तो PSV से उपचारित कीजिए, और सबसे अंत में आप जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो आपके राइजोबियम है उससे उपचारित कीजिए, और तब उपचारित करके छाया में रखिए और छाया में ही

0: बुआई कर दीजिए, और तरीका वही रहेगा जो अभी हमने आपको राइजोबियम के लिए उपचार के लिए, बीज उपचार के लिए कहा। अब देखिए यहां पर आपकी जो मात्रा है, यदि आप मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए आपको इस ढंग से नहीं करना चाहिए। तो ये दलहनी फसल में आपको जो जैव उर्वरक है, उस जैव उर्वरक का उपचार करना चाहते हैं तो ये उसके तरीके हैं
1: जी। इसके प्रयोग के लिए बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होती हैं, क्या कुछ वो सावधानियां हैं, उनके बारे में जानना चाहिए?
0: वो मैंने आपको इसी के क्रम में बता दिया। हमने इसके क्रम में ये बताया कि आप जब भी आप प्रयोग करते हैं तो एक तो पहली बात कि जो भी राइजोबियम कल्चर है ये सारी चीजें, उसको रसायन से दूर रखिए और छाए में रखिए। तीसरी बात हमने अभी आपको बताया कि जो जिस दलहनी में आप डालना चाहते हैं उसके लिए अलग तरह के राइजोबियम हैं, उस राइजोबियम का प्रयोग कीजिए। चौथी बात यह मैं बताना चाहता हूं कि इसका भी एक्सपायरी डेट होता है, तो जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो पैकेट पर यह भी देख लीजिए कि यह अभी एक्सपायर तो नहीं किया है, एक्सपायरी डेट के बाद आपको नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें है क्या, उसमें तो जीवाणु है, और उसमें जीवाणु में एक ग्राम में लगभग 10^8 सेल्स, जो कैलोरी फॉर्मिंग यूनिट हम लोग CFU बोलते हैं, तो उसमें उतना होना चाहिए। तो यदि आप एक्सपायरी डेट के बाद प्रयोग करते हैं तो उसकी संख्या आपको काफी जो है क्या कहते हैं घट जाएगी, तो उतना फायदा नहीं देगा, तो आपको एक्सपायरी डेट भी देखना है। और धूप में नहीं रखना है, धूप में ना इसका आपको प्रयोग करके बुआई करना है। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं, ये सावधानी आप करते हैं तो अच्छा। दूसरी बात, एक चीज और इस सावधानी बात करें कि आप अपनी मिट्टी में थोड़ा कार्बन की मात्रा भाई बढ़ाइए। कार्बन नहीं बढ़ाइएगा तो खेत कल की तारीख में आपकी बड़ी समस्या हो जाएगी, खेती करने में बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए कार्बन की मात्रा यदि ठीक ठाक है तो आपके वैसे भी जो फायदे हैं वो ज़्यादा होंगे। और कल हो सकता है यदि कार्बन की मात्रा अधिक है तो आपने राइजोबियम कल्चर प्रयोग किया है या PSB प्रयोग किया है, हो सकता है आने वाले समय में पुनः आपको उसका प्रयोग न करना पड़े। अरे भाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी मिट्टी में उसकी संख्या नहीं है, इसीलिए ऊपर से डालना पड़ रहा है। यदि हम पुनः पुराने वाले वातावरण में चले जाएं, सारी व्यवस्था हो जाए, तो हमको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात हमको किसान भाइयों को समझाना है, ऐसा कीजिए, अपनी मिट्टी की सेहत ठीक कीजिए, अपनी उपज बढ़ाइए, और यदि ऐसा करते हैं तो आप भी खुश, वातावरण भी खुश, और जो आपके प्लानर हैं और सारे व्यवस्थापक हैं वो भी खुश, और आपके बच्चे भी खुश।
1: तो श्रोताओं, आज ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिली है, आशा करते हैं आप इन बातों को ज़रूर अपनाएंगे, ज़रूर फॉलो करेंगे, और अपनी मिट्टी, अपनी फसलों को आप स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आप

0: आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: With many branches in the yard, a lady is sitting on the staircase, having three stairs. She is holding a hand fan of blue and red color. In the first image, the lady is wearing a yellow sari with geometrical small prints which are pink in color. Blue sandals are kept on the doormat. The lady's hairdo is a bun with flicks on her forehead. There is a big window behind her. In the second image, the sun is shining. A tulsi plant with less branches is kept in the yard. Yellow footwear is kept on the doormat. A lady is sitting on the staircase having two stairs. She is holding a hand fan of yellow and red color. In the second image, the lady is wearing a yellow sari with floral big prints, blue in color. The lady's hair are neatly tied with less flicks and no bun. A small window is behind the lady. Chapter 8 ends here.
1: Santur, you were just listening to this audiobook. Textbook of English for grade 5. Narration, Mansi Chauhan. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Kusum Lata. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार.
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल. लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ. माथा पीटता रह गया शिकारी. एक भी चिड़िया लगी ना हाथ. तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल. अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात. अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ. टीका सुरक्षित है. टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है.
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
6: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन. टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो. टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान. घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे. खांसी खोखो खांसी. बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो. खांसी खोखो खांसी. टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे देश भी बचाए.
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा.
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर.
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर.
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक.
9: उन्नत कृषि. नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूँ आरजे अनु और एक बार फिर हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ. दोस्तों, मशरूम की अगर बात करें तो हम सभी वाकिफ हैं इसके पोषक गुणों से और पोषक तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं, कैसे ये बीमारियों से हमें बचाता है. पोषक तत्व बहुत सारे इसमें हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं. तो खेती की अगर बात करें तो खेती की तरफ भी किसान भाई और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की मैं बात करूँ तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जरिया हो चुका है आज आर्थिक तौर पर मुनाफा पाने का. अब बात कर ले भूमिहीन किसान भाइयों की तो वो भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं. तो आज हम जानेंगे मशरूम के एक

0: अलग प्रकार के बारे में, ऑयस्टर मशरूम के बारे में, और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका।
1: थैंक यू मैडम।
0: सबसे पहले तो ऑयस्टर मशरूम की प्रजातियों के बारे में बता दें डॉक्टर साहब, कौन कौन से अच्छे प्रजाति हैं?
1: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम को अगर

0: प्लोरोटस सोजोर काजू, प्लोरोटस ओस्टिएटस, कई सारी प्रजातियां होती हैं जिसमें दो मुख्य प्रजातियां जो हमने अभी बताया ओस्टरस प्लोरोटस ओस्टिएटस और प्लोरोटस सोजोर काजू, तो ये डजेमर भी एक वैरायटी है। तो ये तीन प्रजातियां बेसिकली फेमस मानी जाती है। एक है प्लोरोटस फ्लोरिडा जो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है और ये बेसिकली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है ठंडक में उसमें इसको उगाया जा सकता है। और अगर हम प्लोरोटस सोजोर कॉजी की बात की जाए तब जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए फरवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 के या 26 तक पहुंचता है, उस समय प्लोरोटस सोजोर काजू की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये दो तीन प्रजातियां हैं जो ओस्टर मशरूम या ढिंगरी मशरूम में प्रचलित हैं किसानों के बीच में।
1: जी, तो ये तो होगी प्रजातियों की बात, और खासियत के बारे में बताएं डॉक्टर साहब की अन्य जो मशरूम के प्रकार है उनसे कैसे खास है।
0: खास बात इसमें होती है इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कुछ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अगर पोषाहार की बात की जाए तो इसमें गेहूं का भूसा या कुछ हमारे जो दलहन भूसा होते हैं जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा या आप तिल का भूसा भी ले सकते हैं। और इसको आप एक नाइट पानी में भिगो देते हैं, दूसरे दिन आप इसमें इसको सुखा के बिजाई कर देते हैं। और तो इसलिए इसमें दूसरे मशरूमों से इसलिए अलग है कि इसकी खेती करना बिल्कुल आसान है। और अगर तत्व की बात की जाए, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये दूसरे मशरूमों से कम नहीं है।
1: जी, मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं खेती की, तो किस समय इसकी खेती की जाती है मुख्य तौर पर?
0: जी मैडम, अगर खेती की बात की जाए तो वैसे तो ये ठंडक का मशरूम है, ठंडक में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है बिना कोई बाहर से अवरोध दिए हुए।
1: मतलब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए?
0: जी मैडम, टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं हम तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आराम से खेती की जा सकती है। जैसे हमने अभी एक स्पीसीज की बात की थी प्लोरोटस सोजोर काजू, इसकी खेती हम 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। अगर मंथ की बात की जाए तो हम अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती आराम से कर सकते हैं
1: जी,
0: बिना कोई रुकावट किए हुए।
1: मतलब ये ठंड के मौसम में इसकी खेती ज्यादा कर सकते हैं। और अब पोषाहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से पोषाहार की जरूरत होती है इसकी खेती?
0: अगर पोषाहार की बात की जाए तो हम भूसा की जरूरत पड़ती है इसमें। भूसा बेसिकली हमारे बिहार में गेहूं की खेती खूब होती है तो गेहूं को हम रोप प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और गेहूं का भूसा ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती भी बहुत अच्छे से होती है, तो मक्के की कुट्टी को काट कर हम भूसे के रूप में बदल कर उस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई जिनके खेत में दलहन का भूसा, दलहन की खेती होती है जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, उसका भी भूसा हम इसकी खेती के लिए प्रयोग में ला सकते हैं
1: जी। और एक अगर खेती की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ ये प्रक्रिया होती है इसकी खेती के लिए, वो भी जानना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें हम?
0: जी मैडम, जैसे आपने अभी बताया था कि ये बिना खेत की खेती है तो इसमें खेत की इसमें खेत की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी झोपड़ी आप बना लीजिए, झोपड़ी के अंदर आप या तो मेज या चचरी बना लीजिए बांस की, उस पे आप बैग में इसकी खेती की जाती है ओस्टर मशरूम की। तो इसके लिए आपको मान लीजिए भूसा की बात किया तो गेहूं, मान लीजिए आपने गेहूं का भूसा लिया तो उसको आप एक रात भिगोएंगे पानी में
1: जी।
0: भिगोने के बाद उसको शाम को भिगो दिया आपने और सुबह दूसरे दिन उसको भूसे को ड्रम या किसी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद उसको 4-5 घंटे इसको छाया में सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें बिल्कुल जब हम सुखाने के बाद कितना हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि ये हमारा भूसा बीज में बीज मिलाने लायक हो गया, तो हम मुट्ठी में भूसे को पकड़ते हैं और प्रेस करते हैं मुट्ठी को, तो अगर पानी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये भूसा हमारा बिजाई के लायक हो गया, तब इसमें हम बिजाई करेंगे। बेसिकली 1 kg बीज से हम लोग 10 बैग भर सकते हैं। बैग का जो साइज होगा 35x35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 45 सेंटीमीटर लंबाई होगी। उस एक बैग में लगभग 3 kg भूसा आएगा, तो 3 kg भूसा में हम 100 ग्राम बिजाई मशरूम की बीज की करेंगे
1: जी।
0: और उसके बाद हम जब बैग आपका बिजाई हो जाए अच्छी तरह, इस बैग को हम टाइटली बांध देंगे और बैग में 15-16 छिद्र कर देंगे चारों तरफ, और उसको फिर हम मशरूम हट में रख देंगे। और मशरूम हट में रखने के बाद आप 10 दिन बाद देखेंगे कि जो बैग है बैग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम फैल जाएगी। जब सफ़ेद सफ़ेद मशरूम की माइसीलियम बैग के अंदर फैल जाए तब आप उसमें सुबह शाम हल्का सा हजारे के रूप में पानी का स्प्रे बैग में करेंगे, और सफ़ेद माइसीलियम निकलने होने के लगभग 10 दिन बाद आपको मशरूम की पहली फलन प्राप्त होगी। इस तरीके से आप एक बार बैग से 3 मशरूम के फलन प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई कि कैसे इसके ऑयस्टर मशरूम

0: हम खेती कर सकते हैं। प्रबंधन की बात करें, कुछ उसमें देख रेख की जरूरत होती है, सावधानी की जरूरत होती है?
1: अगर प्रबंधन की बात किया है तो पहले तो जो हमारा झोपड़ी है उसको उसमें उसके अंदर साफ सफाई रखना चाहिए, और झोपड़ी के एक दो मीटर तक, चारों तरफ से 2-3 मीटर तक किसी प्रकार का कोई खरपतवार या जंगल नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, जब हम पोषाहार लेते हैं तो पोषाहार में किसी तरीके की बदबू या महक नहीं आनी चाहिए, कोई उसके अंदर दूसरा कवक या कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तब आपको भूसा को, जब हम भूसा को पानी में भिगोएंगे एक रात के लिए, उस समय हम 2 केमिकल का प्रयोग भूसे में करेंगे, पानी में। तो अगर मान लीजिए 1 क्विंटल अगर 50 kg भूसा को हमको भिगोना है, तो आप 80-90 लीटर ड्रम में पानी ले लीजिए, ड्रम में या किसी नाद में सीमेंट की, उसमें हम 1 क्विंटल 100 लीटर पानी के लिए लगभग 80 ग्राम बेबस्टीन केमिकल और 100 ml फार्मलिन सॉल्यूशन उसमें घोल देंगे, और उसके बाद उसमें भूसे को हम डिप कर देंगे, डुबो देंगे एक रात के लिए, जैसे हमने पहले बताया, और सुबह इसको हम लोग उसे निकाल देंगे, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भूसे से एक केमिकल दोनों उसको मार देंगे। तो ये सावधानी पहले बरतनी है। इसके बाद सबसे मुख्य बात होती है कि जब हम बिजाई करते हैं उस समय हम ये देखते हैं कि भूसे में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, 70-75% नमी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगी तो मशरूम जो बीज बोया है वो उसमें जो वाइट सफ़ेद माइसिलियम है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, और मशरूम उसी में ही मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नंबर 3, जब हम बिजाई, जब हम बैग में मशरूम निकलने लगता है उस समय हम ये ध्यान दे, क्योंकि सुबह शाम को हजारे के रूप में हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी कभी नहीं देना चाहिए जब उसमें फ्रूटिंग फल हो लगा हुआ। तो फल लगते समय हम उस पर बैग पे स्प्रे नहीं करेंगे, हमेशा फल तोड़ने के बाद ही स्प्रे करेंगे, नहीं तो जो फल पे अगर स्प्रे कर देंगे तो जो फल का कलर बदल जाएगा, और आप जब बेचने जाएंगे मार्केट में तो वो उसको कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तीसरी बात ये कि ये बीच बीच हम हटके, जब हम मतलब एक फलन आपने तोड़, एक बैग से पूरा तीनों फलन तोड़ने के बाद जब हम दोबारा बैग लगाएंगे, तो अच्छे से बैग झोपड़ी की सफाई करने के बाद उसमें हम किसी दवा का स्प्रे कर देंगे, जैसे बेबस्टीन का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि उसमें जो भी अगर कोई रोग वगैरह हो वो निकल जाना चाहिए। और ये भी एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि झोपड़ी के अंदर लोगों का आना जाना कम होना चाहिए, जो आदमी इसको उसकी देख रेख कर रहा है वही सुबह शाम अंदर जाए, और बेफालतू में झोपड़ी को खुला नहीं रखना चाहिए। ये सावधानियाँ
0: तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, प्रबंधन है जब आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफ़ी है। आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कौन से पोषाहार का इस्तेमाल करना है, आपको किस समय इसकी खेती की जाती है ये भी आपने जान लिया, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है।

है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहां जुले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर. और जहां तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी. तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी ख़ास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है. ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की. बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है. और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. बांस क्या होता है, तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे, बांस जो है वो एक इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दीजिए.
1: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसके हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है. बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है. और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये. और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है. देश का लगभग 60% जो बांस है वो का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है. और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की, उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुल्गैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में ये सारी प्रजातियां हैं.
0: जी जी. बांस लगाने की

0: विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे।
1: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है पहला है बीजों की सीधी बुआई। ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है और 1 सप्ताह के अंदर ही 1 पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है। फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर
0: तना है उसमें कोई भी नुकसान।

0: बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो उसमें। कलम के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेज़ी से बढ़ें और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है और जहां हम लोग को लगाना है वहां पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियाँ जिससे हम लोग बाँस की खेती आसानी से कर सकते हैं
1: जी। इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं, बाँस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
0: बाँस की बात करें तो बाँस में जो प्रमुख रोग हैं सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की ज़रूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन भारत और जापान में और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सीन है थिया बेडाजोल है इस फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूथ मूथ जो कि भारत चीन कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं क्योंकि जो ये एफिड्स हैं वो प्राकृतिक शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ब्लैक मिल्ड्रिव ये जो है आप सब इसमें भी क्या होता है कि काले रंग की चूर्ण आपको ऐसा लगेगा कि पत्तों के ऊपर एक चूर्ण काले रंग का चूर्ण आ गया है और ये भी डंठ जैसे जैसे संक्रमण फैलता जाएगा

0: सतह से नीचे निचली सतह पर और फिर जो छोटी छोटी शाखाएँ होती हैं उन पर ये फैलने लगती हैं। इसके लिए भी हम लोग जो फफूंदी नाशक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट में देखें कि इसको कैसे हम लोग रोकेंगे, तो इसके लिए हम लोग को जो कैनोपी होती है, जो कैनोपी है पौधे की, उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले, कहीं भी उनको छाया ना हो, क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेज़ी से फैलता है।
1: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
0: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं, अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है, तो इस वजह से जैसा पहले भी हम लोगों ने हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में और छप्पर जो होता है, जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी और बहुत सारे कृषि यंत्र, और अब जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक जैसे हम लोग पानी के बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स में हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा आपका अलमीरा, और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है, जो जो कास्ट है जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है। तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
1: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे?
0: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है, और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदावार के साथ साथ उचित किस्म है बांस की, उन

0: हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देना, पारंपरिक विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी जो है वो किसानों के बीच पहुंचाना, और कुशल और अकुशल व्यक्तियों को, विशेष रूप से जो बेरोजगार युवक हैं, उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बांस मिशन का हम लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार, नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना। बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले, जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती मुनाफे की हो सकती है। किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का विकास करना, और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना, और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको समाप्त करते हुए सीधे जो ये राष्ट्रीय मिशन है इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना, ताकि सबसे ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी खेती पर एक विशेष चर्चा। आशा करते हैं आज आपको एक नई जानकारी मिली होंगी, और अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं,
4: जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रच

0: 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए।

0: बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं आप सभी को बता दूं कि हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, और ऐसे में जैविक खाद की बात करना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि जैविक खाद हमारी फसलों के लिए सुरक्षित हैं, हमारी मिट्टी के लिए सुरक्षित हैं, हम सभी के लिए सुरक्षित हैं। तो जैविक खाद आप कैसे बनाएंगे, घरेलू उपाय क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक हमारा जो आज है, विषय है, वो है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय। और इस विषय को लेकर, जी हाँ, मृदा विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सोनल कुमारी हमारे साथ हैं, जो आप सभी को एक पूरी जानकारी देंगी इसके बारे में, घरेलू उपाय के द्वारा आप जैविक खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैविक खाद होता क्या है, क्या है ये?
5: मैं सोनल, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की सॉइल साइंटिस्ट हूँ, उस पद पर कार्यरत हूँ, और मैंने आज का विषय चुना है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय क्या हैं, इसको कैसे हम घर पे ही रह के बना सकते हैं। ये आज के जरूरत समय में सारे लोग जाने, बहुत जानकारियां हमें गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे ये जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म का अगर कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो हमारे जो भी रिमोट विलेजेज हैं वहाँ पर लोग एटलीस्ट रेडियो के अभी भी शौकीन है, रेडियो को सुनते हैं। अगर आप मेरी बातें आप तक पहुँच जा रही है, तो आप जरूर इसको सुनेंगे, कैसे हम घर पे रहते हैं, हमारे पास जो भी किचन वेस्ट अवेलेबल हैं, आपके पास उतने जगह ज़मीन नहीं है, तो कैसे उस लिमिटेड रिसोर्स में हम अपने चीज़ों को, अपने जैविक जो हमारे जैविक चीज़ें हमारे हैं, जो हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जो हमारे प्रकृति में डेली उसको एज अ कचरा समझ के, वेस्ट समझ के उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, उसका कैसे हम सही यूटिलाइज कर सकें, उससे कैसे हम एक जैविक खाद का बना सकें, उसका सही से उसका संरक्षण कर सकें, सही से उसको स्टोर कर सकें, एंड देन उसके फर्दर हम जो हमारे फसल है, हमारे जो हमारे सीजनल हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो भी हम साग सब्जी घर में भी अपने लगाते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसमें ही प्रयोग कर सकें। तो हमारा आज क्वेश्चन हमारे लिए है, जैविक खाद क्या है? पहले हम जैविक खाद के बारे में जानेंगे, जैविक खाद आखिर है क्या, हम क्यों जैविक सबको आज के डेट में बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, एवरीवन इज टारगेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी या ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, और जैविक खेती में जैसी में जो खाद प्रयोग करते हैं वो जैविक खाद होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैविक खाद जो है एक प्राकृतिक खाद है, जिसमें और कुछ नहीं, कोई भी रासायनिक पदार्थ या हमारे जो होते उसमें प्रयोग नहीं किया जाते हैं, जो भी हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पौधे हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, हमारे जो भी जैविक और इसके अलावा जो हमारे अन्य जैविक अवशेष हैं, उस जैविक अवशेषों से उसको सड़ा गलाकर, और या जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रयोग से जो खाद तैयार किया जाता है, उसको ही हम जैविक खाद कहते हैं, या पूर्णतः कम्प्लीटली जिसको बोलते हैं, ये प्रकृति रूप से ही प्राप्त की जाती है। जैविक खाद में जैसे हम जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे जो मुख्य पोषक तत्व सत्र है, हमारे इसेंशियल जिसको बोलते हैं, उसको प्रदान करने को, जिससे हमको पौधे प्रदान कर सकें, उसको इसके लिए हम डालते हैं अपने पौधों के लिए, वैसे ही हमारा जैविक खाद है। जैविक खाद में जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो सारे जब ये विघटन इसकी हो जाती है, तो सारे इसमें आवश्यक पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, और जब इसको हम अपने मट्टी पर अप्लाई करते हैं, मृदा पर अप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारे फसल है उसको उस सारे आवश्यक पोषक तत्व को वहाँ से प्रदान करते हैं, और वो इसके साथ साथ वो तो प्रदान करते ही करते हैं। और जैविक जैसे मैं बोली रही, बिल्कुल कम्प्लीटली पूर्णतः यह प्राकृतिक रूप से होता है, तो मिट्टी का जो हमारा गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है, उसकी जो हमारे प्रॉपर्टी है, उसकी जो गुणवत्ता है उसको कभी घटाता नहीं है और बढ़ाता ही है।
4: जी, अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने की विधि की, तो कैसे बनाया जा सकता है घर पर?
5: हाँ, अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, हम जहाँ भी जिस लोकेशन में रहते हैं, वेदर हमारा चाहे हमारा बहुत बड़ा लोकेशन हो, छोटा लोकेशन है, चाहे बहुत छोटे से घर में आप रह रहे हैं, 1 BHK घर में रह रहे हैं, गांव में बहुत कम छोटे किले हैं, बहुत हमारे जो मार्जिनल किसान हैं, हमारे बहुत छोटे स्तर के जो किसान हैं, उनके पास उतने जगह ज़मीन नहीं होते हैं, तो उनके पास जो ही रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ से तो वो अपना जैविक खाद बना ही सकते हैं, क्योंकि किचन जो हमारा रसोईया हम जब खाना पकाते हैं, तो बहुत सारे हमारे फल साग सब्जी उसके जो छिलके आते हैं, तो उसको हम क्या करें, अगर आपके पास मवेशी है तो मवेशी को देते हैं, मवेशी का वो

नहीं तो अगर नहीं है तो वो ऐसे आप वेस्ट कर देते हैं, उसको वेस्ट करने से बेटर है उसको हम कंपोस्ट खाद तैयार कर लें, जैविक खाद तैयार कर लें। तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन कुछ कुछ विधियों के बारे में बताऊँगी मैं जिसको आप बहुत आसानी तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं, जिससे कौन कौन सा हमारे विधियाँ हैं जिसको हम घर पर आसानी से तैयार कर सकें। एक खाद हम जिसको बोलते हैं जिसको हम घर पर ही तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं किचन वेस्ट खाद, जिसको किचन वेस्ट खाद मतलब कंपोस्टिंग करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स है कंपोस्टिंग। किचन वेस्ट जो हमारा है, किचन वेस्ट का मतलब जो हम रसोई में हमारे वेस्ट चीज़ मिलते हैं, मैंने जैसे ही बोला वो फल होते हैं, साग होते हैं, सब्जी होते हैं, इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं उसको तो हम उतार फेंकते हैं ना, उसको तो हम नहीं खाते हैं, उसको हम कंज्यूम मनुष्य नहीं करता है, तो उसका प्रयोग हम खाद बनाने में कर लेंगे। उसी से जो खाद तैयार होता है उसको हम किचन वेस्ट खाद कहते हैं। अब इसके लिए जैसे मान लो आप साग सब्जी कुछ भी सब्जी घर में बनाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं उसके लिए एक रेसिपी लोग बोलते हैं ना, रेसिपी के लिए हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हिंदी में अगर बोले तो सामग्री, क्या क्या उसमें सामग्री लगेंगे। अगर हम पनीर प्याजा की बात करें तो हम बताते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। वैसे ही हमारा खाद है, खाद को भी हम जब तैयार करते हैं ना उसके लिए हमें कुछ कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में बोले तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो ऐसे ही हम जब किचन वेस्ट खाद की बता रहे हैं तो हम पहले बताएंगे आपको क्या क्या इसमें सामग्री आपको लग जाएंगे बनाने के लिए। पहले तो आपको जो भी हमको रसोई में हमारे कचरा, जिसको कचरा ना बोले तो बेटर होगा, कचरा बोले एक बैड टर्म्स हो गया, उसको हमारे लिए हम उसको वेस्ट समझ रहे हैं, बट इट इज नॉट वेस्ट, वो वेस्ट नहीं है, वो हमारा धन है, उससे हम एक बढ़िया बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो कचरा ना बोल के मैं रसोई में जो भी हमारे फल सब्जियाँ, जो चाय पत्ती होते हैं, अंडे के छिलके हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े आपके हैं, जो भी हम सब्जियाँ खाते हैं उनके जितने छिलके हैं आप उनको क्या करें, एक जगह इकट्ठी कर रखें। और आप पेड़ पौधे कहीं भी आपको देखते हैं सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं हमें, और नहीं भी कुछ हुआ था, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं बहुत सारे कागज को ऐसे वैसे फाड़ कर फेंक देते हैं, बहुत सारे हम जिसके हम न्यूज़पेपर आते रहते हैं उसके भी टुकड़े मिल जाते हैं, उसकी भी वो सब चीज़ बहुत बर्बाद होते हैं। तो कागज को टुकड़े को भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हैं। और मिट्टी, थोड़ी मिट्टी तो कहीं भी आपको सबको अवेलेबल हो सकते हैं, वेदर वो बहुत ज़्यादा एक मेट्रोपोलिटन सिटी में रह रहे हों, अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरिया में रह रहे हैं या रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में रह रहे हैं, इतनी चीज़ें तो आपको किसी को अवेलेबल हो जाएंगे। तो सामग्री क्या क्या को लगेगी, जो भी हमारे रसोई के हमारे जो भी रसोई समय जो बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स आप बोल लो, हमारा खाना बनाने के बाद जो भी बचते हैं, मतलब फल सब्जियां के छिलके हो गए हैं, अंडे के छिलके हो गए हैं, चाय पत्ती बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाते हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े हो गए हैं, हमारे साग सब्जी के जो भी हमारे छिलके हो गए हैं, कागज के टुकड़े हो गए, सूखी पत्तियां हो गई, थोड़ी सी मिट्टी है हमारी सामग्री हो गई। और इसकी विधि बनाने के लिए जब ये चीज़ हम बोलते हैं कुछ चीज़ हमें बनाना है, अगर मैं बोलूँ चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो इट मीन्स हमें कुछ ना कंटेनर चाहिए इसको बनाने के लिए, उसको हवा में हम नहीं बना सकते ना, कंटेनर आपको लगेंगे। तो ऐसे ही है, जब हमको इसको बनाना है, जब इसकी सामग्री की बात करें तो जाहिर सी इसके लिए हमको कुछ बनाने की चीज़ चाहिए, तभी तो हम इसको बना पाएंगे। वेदर मेरे पास चाहे मेरे पास कंटेनर रहे, एक कंटेनर का हम व्यवस्था कर ले, नहीं तो किसी पास अगर जमीन है तो गड्ढा खून ले, और गड्ढा भी ऐसा खोलना है, कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो, जिससे हवा आ भी सके, जा भी सके, और नमी भी उतना ही मेंटेन रख सके जितने हमें नमी चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान में हमको रखना है। फिर वो क्या, अगर मान लो आपके पास नहीं ज़्यादा ज़मीन है, छोटा सा कोई प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें छोटे छोटे आपने छेद कर दिया जिससे हमारा हवा पास होता रहे, हवा आता रहे जाता रहे, जिसको हम इंग्लिश वर्ड्स में बोले तो एरेसन बोलते हैं, मतलब हवा का आदान प्रदान होता रहे, और हमारा मॉइस्चर भी जिसको नमी बोलते हैं हिंदी में वो मेंटेन रहे, ये चीज़ें का हमें व्यवस्था कर लेना है। फिर क्या करना है हमको, उस जो हमारा कंटेनर हमने लिया है, जो हम डब्बा एक बोल लें अगर हिंदी में बोलते हैं, एक डब्बा लें, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा किचन वेस्ट है, जो हमारा रसोई में जो हमारे आ रहे हैं, जो भी हमारे सब चीज़ के बचे हुए जो जिसका मैंने बताया जिक्र किया, उसको एक लेयर डाल देना है आपको, उसको पहले बिछा देना है, पहला लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारी थोड़ी मिट्टी है उस थोड़ी मिट्टी को डाल देना है, उस फिर सेकंड लेयर जिसको बोलते हैं सेकंड लेयर, उस सेकंड लेयर मिट्टी के लेयर को डाल देना है। फिर इसी मिश्रण को आपको चार पांच लेयर करके ऐसे बनाने हैं, और फिर इस मिश्रण को क्या करना है आपको, हर दो तीन दिन पे या उसको आपको हिलाते रहना है। हिलाना क्यों है, हिलाने के पीछे भी रीजन है, उसमें जो एरेसन होता है, उसमें जो हवा है, जो नमी है, जितना चाहिए उतना उसमें मेंटेन रहे, उसमें जितना हमें ज़रूरत है उतना उसमें रहे वो, इसलिए हिलाते रहना उसको, और उसको ज़्यादा भी नमी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, इसको कोशिश करना है कि थोड़ा छायादार जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट सूर्य का धूप ना पड़ता हो, तो और थोड़ा सूखा रखें, नमी भी उतना ही रहे जितना जरूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं पानी उसमें से निकल रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं जैसे हम बोलते हैं, नहीं, नमी जितनी जरूरत है उतनी ही, कोशिश करें हल्का भुरभुरा टाइप का, सूखे टाइप का हल्का रहे, और फिर इसको ढक कर रखना है, और यही इस ढक के बस आपको डालते रहना। आप देखेंगे दो से तीन महीना जैसे होगा ये भीतर ये खाद तैयार हो जाएगा, जैसे आपने जो डाला था जिसके बड़े बड़े टुकड़े थे, आप वो टुकड़े को देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए हैं, और सर हल्के भूरे से काले रंग में बदल जाएंगे, और इनकी गंध से भी पहचान सकोगे कि ये हमारी खाद क्या है, तैयार हो गई है। ये तो पहला हमारा रहा जो हमारा किचन खाद, जिसको हम किचन वेस्ट खाद बोलते हैं। और दूसरी भी विधियाँ हैं जिसमें अगर मान लो इसी खाद में प्रयोग करने में, मैंने अगर जिसको केचुआ होता है, केचुआ का

इसको हम क्या बोलते थे, इस खाद को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको, केचुआ खाद बोलते हैं। तो इसकी भी सामग्री की हम बात कर लेंगे, क्या क्या हमें सामग्री इनको लगेगी बनाने के लिए। इनकी सामग्री में आपको केचुआ लगेगा ही लगेगा, जब मैंने केचुआ खाद ही बोला तो केचुआ से ही तैयार होगा। रसोई का हमारे जो कचरे हो गए, हमारे जो भी हमारे हो, फल साग सब्जी जितने अंडे के छिलके वो हो गए, वो सारे लगेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, पहले वाली विधि में बताया। दूसरी सूखी पत्तियां भी बताया था, गोबर भी मैंने आपको बताया था। गोबर आप याद रखिए, गोबर जब भी डालना है कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर डालिएगा, कि ताज़ा गोबर जो रहता है ना उस पर जल्दी हमारे जो सूक्ष्म जीव है ग्रो करने का ज़्यादा चांस रहता है, अटैक ज़्यादा करते हैं वो। तो कोशिश कीजिए 15 से 20 दिन पुराना गोबर ले लीजिएगा आप, और नमीदार मिट्टी जो हमारी होती है वो मिट्टी का थोड़ा हमको प्रयोग करना है। इसके लिए भी हमें क्या लगेंगे, आपके पास डब्बे हैं तो वो सही है, अगर नहीं है तो आप एक बक्सा ले भी सकते हैं, उसको छेद नुमा बना देंगे जिससे हमारा हवा का आदान प्रदान होता रहे। फिर उसमें हमें क्या करना है, एक नमी की मिट्टी जो हमने बोला है उसको बिछा देना है। फिर उसमें हमें क्या करना है, आपको जो हमारे रसोई के हमारे कचड़े आए सूखी पत्तियाँ उनको क्लियर बना देना है। फिर हमारे जो केचुए लगे, केचुए के हम मैं ये आपको यहाँ नहीं बताऊँगी कितना स्क्वायर फीट का बना रहे हो, जब हम कभी अपने जहाँ कॉमर्शियल इसकी खाद की प्रोडक्शन करते हैं इतना स्क्वायर फीट के लिए हमको इतना 1500 से 2000 केचुए छोड़ने पड़ते हैं, उसमें लगाने पड़ते हैं। यहाँ हमें कोई तय नहीं है, हम अपने घर के लिए बस जो डेली यूज में हम जिसको बर्बाद करते थे फेंक देते हैं रोड पर, ऐसे कचरा फैलता है देखने में हमारा अच्छा नहीं लगता है, जो भी हम जगह पर रहते हैं गंदगी फैलती है, उससे अच्छा है कि इसका हम खाद का प्रयोग कर लें। तो जैसा आप कंटेनर ले लें उसके अनुसार अपनी सूझबूझ को प्रयोग करते हुए आप केचुओं का प्रयोग कीजिए। कितना इसमें, अगर बड़ा सा कंटेनर है मान लो 200-500 लीटर का कंटेनर है, तो आप उसमें कितना केचुआ जाने से समय केचुआ बन जाए। केचुआ क्या करता है, जो भी हम ये सब डाल रहे हैं हमारे रसोईया से जो हमारे पदार्थ मिले हैं, जो हमारे किचन वेस्ट मिले हैं, जो हमें सूखी पत्तियां हम डाल रहे हैं, उसको केचुआ क्या करता है, मट्टी जो नमीदार डाले उसका ये भोजन का है, भोजन का स्रोत है। और ये जो भोजन के स्रोत में ये खाता है उस तो खाएगा तो क्या करता है, जब ये उसका कास्ट निकलता है खाने के बाद जो उसकी कास्ट निकलते हैं जिसको हम उसका क्या बोल सकते हैं, हाँ तो जो मैं बता रही थी केचुआ का क्या, ये भोजन का स्रोत है। तो भोजन का स्रोत है, जब भोजन करता है तो जाहिर सी बात वो भी मलमूत्र त्याग करता है, और उससे जो मलमूत्र का त्याग होता है और उससे जो खाद बनते जाते हैं ना, वो देखोगे कास्ट जिसको बोलते हैं अर्थ होम कास्ट बोलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक खाद तैयार कर देता है, और ऐसे ही करके इसका भी लेयर तैयार कर देते हैं। और हर इसको ढककर हमें रखना है कि दूसरा जो सूक्ष्म जीव है उस पर ग्रो ना कर जाए। और थोड़ा इसको अगर आपको गोबर मिलता है तो गोबर डाल दें, नहीं तो थोड़ा नमी मेंटेन करने के कागज़ जो अवेलेबल होता है ना, तो कागज़ को थोड़ा गीला करके भी आप फैला सकते हैं। और इसको आप क्या करें, ढक कर रखें, हर 15 दिन पे थोड़ा आपको उलट फेर करना होगा, जिससे हमारा प्रॉपर एरेशन जिसको हवादार नमी हवा उसकी सब वर्तमान जितनी हमें चाहिए संतुलित मात्रा में सब उसमें अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मौजूद रहें। और 15 दिन पे जैसे उलट फेर कर रहे हैं हम, तो और ऐसे ही करना है हमको 2-3 महीने तक। और 2-3 महीने के लास्ट में आप देखेंगे ना, ये केचुआ खाद जो हमारा जैविक खाद केचुआ खाद जो हमारा था, ये बिल्कुल अच्छे तरह से अपने हल्के भूरे रंग, इसका भी रंग वैसा ही होगा हल्के भूरे रंग का, इससे काला रंग में अब बिल्कुल दानेदार में ये बदल जाता है, जो अच्छा वाला खाद जैविक खाद बनता हमारा केचुआ के माध्यम से, जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं। और 2-3 महीने में खाद हमारा तैयार करते हैं कर सकते हैं। ये हमारा केचुआ खाद के बारे में हो गया। इसके अलावा हमारे और चीज़ें बहुत सारे हमारे पारंपरिक खाद तैयार किए जाते थे, जो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे पहले ज़माने में, जब हम जीवामृत करते थे हमको वो सब हम तैयार करते थे। और अभी भी हम जब जैविक खाद की ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो सारे प्रयोग हमारे फिर से हमारे ज्ञान में आ गए हैं, और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक ये बात हमारी नहीं पहुँच पा रही उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, हम जहाँ रहते हर हमारे अड़ोस पड़ोस में अवेलेबल है, बस उनको हमको अपने आँख उठाकर देखने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने देखने की जरूरत भी है और इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने प्रयोग में लाने की जरूरत है। प्रयोग में लाने के बाद हमें जहाँ इसको उपयोग करना है उसको उपयोग करने की बात है। ये बहुत चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं बट उसको हम ना कभी एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तो हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है एंड देन उसको एक्शन में भी लाना है। और तीसरा मैं आपको बताने जा रही थी वैसा जीवामृत, ऐसे तो बहुत तरीके हैं हमारे बनाने के, और तीसरी मैं बता रही हूँ जीवामृत जिसको बड़े ईजिली तरीके से आप बना सकते हैं, मैं उसी खाद को लिस्ट की हूँ यहाँ पर। तीसरी खाद के बारे में बता रही हूँ आपको जीवामृत, ये जीवामृत कैसे तैयार करते हैं। जीवामृत सब समझ ही रहे हो क्या होगा, जो हमारे मवेशी होते हैं, हमारे गाय भैंस ये सब होते हैं, तो उनकी चीज़ों से हमें तैयार करना है। जिसके यहाँ मवेशी ओवेशी है तो आपको इसके लिए क्या सामग्री लग जाएंगे, गोबर लग जाएंगे, गोमूत्र लग जाएंगे, गुड़ लग जाएगा, थोड़ा बेसन लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगा। जब इसके बनाने की विधि क्या है ना, जब आप इसकी बनाने की विधि बने तो जो इसका अनुपात मैंने बताया ना, अनुपात अभी बोला नहीं है, बस सामग्री में जो बताया इसका अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अनुपात में आप गोबर ले रहे हो, कितने अनुपात में गोमूत्र ले रहे हो, कितने अनुपात का गुड़ का प्रयोग कर रहे हो, बेसन का

बनाने से पहले आती है, बात आती है कि आप कितने लीटर क्वांटिटी में, जैसे ये आपको यूजुअली क्या होता है, इसको मिट्टी पे भी प्रयोग करते हैं और पौधे के ऊपर भी प्रयोग करते हैं। ये जो जीवामृत बनाते हैं हम ना, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको हम बोलते हैं तरल जैविक खाद है, ये तरल नुमा होता है। तो कितने लीटर पानी में इस घोल को तैयार करना चाहते हैं, बात ये आती है। तो मैं आपको सामग्री का जो लिस्ट दूंगी 200 लीटर के बेसिस पे दे रही हूँ, आप अपने अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हो, आप अपने अनुसार इसका गणना करके कैलकुलेशन करके आप बढ़ा सका घटा सकते हैं। अगर मैं 200 लीटर की कैपेसिटी के अनुसार बता रही हूँ आपको, 200 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करने हैं, तो 200 लीटर में कितना किलो गोबर लगेगा? 200 लीटर के लिए आप इसको जरूर कहीं आप होगा सुन रहे होगे, आप इसको मेंशन करना। अगर 200 लीटर पानी में आप घोल तैयार करना चाहते हो, उसमें 10 किलो हमको गोबर डालना है। गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए, 15 से 20 दिन, जैसे उसका जो हमारा तापमान हो ना, जो ताज़ा गोबर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें तापमान में कमी आ जाए, कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। 10 किलो आपको गोबर प्रयोग करना है और सेम मात्रा में 10 किलो आपको गोमूत्र रिच करना है। और सेम मात्रा, देखो गोबर और गोमूत्र दोनों का मात्रा क्या हो गया, सेम हो गया 200 लीटर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 10 10, गुड़ बोला बेसन बोला, ये गुड़ और बेसन का भी मात्रा अनुपात जो है एक सेम रहेगा, एक एक रहेगा, 1 kg गुड़ हो जाएगा, 1 किलो आपका बेसन हो जाएगा। और थोड़ी मिट्टी प्रयोग करना है हमें, थोड़ी मिट्टी को उसमें 200 लीटर पानी ले लेंगे और घोल को तैयार कर लेते हैं। और इस मिश्रण को हम क्या करते हैं ना, ढक कर रखते हैं, हर 2 से 3 दिन पर इसको हम क्या करते हैं, एक लकड़ी बड़ा सा ले लेते हैं, अगर ड्राम में तैयार कर रहे हो तो, जो हमारे ड्रम होते हैं, और 2-3 दिन पे

0: जाते हैं घर पर जैविक खाद बनाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है?
1: हाँ, अब बात आती है कि अब तो हम बनाने की विधि हमने बता दिया, क्या क्या सामग्री लगेंगे, क्या लगेंगे, अब आते किन किन बातों को हमें ध्यान रख रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, इन छोटी छोटी बातों को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा जैविक खाद घर पर ही हम तैयार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने अगर आपको बोला है कंटेनर, आपके पास इतनी जगह ज़मीन नहीं है जहाँ आप गड्ढे खोद कर बना सकें, प्लास्टरिंग कर सकें, प्लास्टरिंग मतलब एक सीमेंटेड आप एक एरिया तैयार कर लो उसके लिए गड्ढा नहीं आपके पास है, तो कंटेनर लेना आता है। कंटेनर आप जब भी लोगे ना, जो हम कंटेनर सामग्री में जो हम सामग्री को डालने के लिए कंटेनर का प्रयोग या डब्बे का प्रयोग जो भी करते हैं उसका चयन सही होना चाहिए। जो भी हम जैविक खाद हमको बनाना है तो कभी भूल कभी जैसे हम कर तो लेते हैं ऐसा, बहुत जगह आप देखो जैविक खाद प्लास्टिक का या धातु का है, कोई भी रासायनिक जो हमारे धातु मतलब वो रासायनिक चीज़ है उसका प्रयोग लोग कर लेते हैं। आप उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, उसका ना करें, आप इसका प्रयोग ना करें। और दूसरी बात है, जब हम खाद बनाने के दौरान जो हम कंटेनर पर्याप्त कंटेनर लेते हैं ना, उसमें कभी कभी बहुत जगह देखा गया कि उसमें पर्याप्त छेद नहीं किया हुआ रहता है, अगर नहीं बनाया आप तो उसमें पर्याप्त हवा और नमी बना नहीं रहता है, और पर्याप्त अगर हवा नमी नहीं बना रहेगा तो खाद हमारा पूर्णतः विघटित नहीं होता है और खाद मेरा अच्छा तैयार नहीं होता है, ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हमको सूखापन या बहुत ज़्यादा अधिक नमी में खाद में हमको बनाए नहीं रखना है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही बनाना है, मीन्स बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है उसको और बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं रखना है कि जिससे हमको वहाँ से पानी निकलने लगे, तो अगर ऐसा होगा कंडीशन तो आपकी जो खाद की गुणवत्ता है ना वो प्रभावित हो सकती है। चौथी बात आपको क्या रखना है, हमको जो जैविक खाद की मैंने आपको सामग्री बताया उसका अनुपात आप बिल्कुल सही रखिएगा। जैसे हम जैविक कचरे के लिए हमारे जो हमारे किचन का वेस्ट हो गया, सूखी पत्तियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, इसका अनुपात सही बना कर रखिए कितने कितने जाएंगे जिससे हमारे खाद अच्छे प्रयोग में आ सकें। और चौथी बात है, पांचवी बात यह है, जब हम खाद बनाने के सही स्थान का चयन करते हैं ना, वो स्थान का चयन सही कीजिएगा। वो स्थान जो होना चाहिए आपको डायरेक्ट जो हमारे सूर्य की धूप होती है वो जगह का कभी ना चयन करें, वो जगह कोशिश करें कि छायादार हो, सूखे स्थान पर हो, सूखे स्थान पर हो मतलब ऐसा जगह ना चयन करें जहाँ पानी बहुत जल्दी लग जाता हो, पानी लग जाता है जहाँ उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाता है, थोड़े पानी वहाँ पर लगे रह जाते हैं, तो ऐसा स्थान का प्रयोग कभी ना करें। जगह छायादार होनी चाहिए, अगर धूप आ रही है तो धूप आए, धूप भी जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए ये कोशिश करनी है। पाँच छः बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है।
0: इसके बाद जैविक खाद को हमें स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे स्टोर?
1: अब आते हैं बनाने का, तो ये हो गया, हम जैविक खाद को स्टोर कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि जिस कंटेनर में आपने बनाया उसी में छोड़ दोगे, क्योंकि आपने एक लॉट तैयार कर लिया था। किचन जो हमारे वेस्ट होते हैं उनको कंटिन्यू प्रोसेस है, हम डेली खाना बनाते हैं, डेली हमारे वेस्ट जनरेट होते हैं किचन से, तो आप और बनाना चाहोगे, जो आपने खादे बना लिया अब उसको कैसे उसको हम उसको स्टोर करें, संरक्षित करके अपने जगह पर रखें जिससे हम आगे चल के हम अपने फसल के लिए जो भी हम मतलब छत पे उगाते हैं साग सब्जी उसमें भी प्रयोग कर सकें, चाहे थोड़े से ज़मीन हमारे वहाँ पर भी फल साग सब्जी उगा रहे हैं उसमें भी प्रयोग कर सकें। तो इसको स्टोर कैसे किया जाए? आपको जैविक खाद को क्या करना है, एक सूखे और छायादार स्थान पर रखें जो बन गए हमारे, और इसे ढक्कन वाले जो कंटेनर होते हैं ना उसका प्रयोग करें, जो बन गया है उस डब्बा में डाल दें और उसका ढक्कन का प्रयोग जरूर करें। अगर ढक कर रखोगे ना जितने सूक्ष्म जीव उस पर ग्रो ना करें, अब बाकी चीज़ में जिसका गुणवत्ता हमारा मेंटेन रखें, और नमी से बहुत ज़्यादा नमी नहीं उसमें होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी, ऐसा नहीं जब खाद को आप हाथ में ले उसे पानी निकलने लगे, थोड़ा सा भी दबाया तो पानी निकल जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, नमी से भी उसको बचा कर रखना है। और कंटेनर कैसा प्रयोग करना है, जो डब्बा है उसका जिसका ढक्कन वाला होना चाहिए, उसमें आपको जो हमारे खाद तैयार हो गए उसमें रखें, नमी से बचा कर रखना है। और यही सही इस तरीके से आप ना जो हमारे बने हुए खाद हैं हमारे जो कंपोस्ट खाद तैयार हो गए उस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे तक सुरक्षित रखेंगे तभी आप अपने फसलों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। छोटी सी विधि है इसको कैसे प्रयोग कैसे इसको स्टोर कर रख सकते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं हमारे जूट सैक जूट वाली बोरा उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है हमारा नमी बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, कहीं थोड़ी बारिश वारिश हुई तो नमी वो बहुत इजीली ऑब्जर्व करता है, जो हमारा खाद बनाते हैं ये बहुत पोरस नेचर का होता है तो बहुत जल्दी पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, ये शोषित कर लेता है, तो वो कोशिश करना है कि ऐसा कंटेनर लें जिसमें छेद वेद कहीं ना हो, उसमें रख दें, ढक्कन से लगा दें उसका, नमी बहुत ज़्यादा ना जाए, नमी उतना ही जितना ऑलरेडी बना था उतना ही नमी उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उसमें होना चाहिए, तभी आप लंबे समय के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं।
0: जी, जैविक खाद के उपयोग के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ फ़ायदे होंगे अगर किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करते हैं?
1: जैविक खाद करने के उपयोग के फ़ायदे तो आपको इस बातें से समझ में आ रही, मैंने पहले ही बोला जैविक खाद मतलब प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक खाद बोलने का मतलब जहाँ प्राकृतिक चीज़ों का जिसके जो हमारे यूज में नहीं है उस चीज़ों का प्रयोग करके हम बनाते हैं उसको हम जैविक खाद कर रहे हैं।

0: सब्जियों का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो पहला फायदा तो हमारा यही हो गया कि रासायनिक जब इसका प्रयोग हम खेती करेंगे तो हमारा खेत कैसा होगा, वो रासायनिक मुक्त खेती होगा हमारा। इसमें जैविक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं तो जो जैविक खाद का प्रयोग करें फसल भी वही खाएगा क्योंकि फसल का भोजन वही है। तो जो हम उस फसल का उस फसल में रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो फसल आ जाते हैं जो फसल का इल्ड आता है वो हम खाते हैं, तो जैविक चीज़ें जो हमारे हैं वो हम तक पहुँचेंगे, तो हम भी शुद्ध, पौधा भी शुद्ध, हमारे मृदा भी शुद्ध, हम भी स्वस्थ, तीनों चीज़ स्वस्थ हो गए हमारे। हम जो चेन में बोलते हैं ना एक फूड चेन से हम कनेक्टेड होते हैं, तो फूड चेन हमारा बिल्कुल शुद्धता हो गया, बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें आ गई, ये फायदा हो गया। प्रकृति का संरक्षण हो ही रहा है, प्रकृतिक संरक्षण आप इसे समझ सकते हो जहाँ रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये जैविक प्रकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना रहे हैं, ऐसी का प्रयोग मिट्टी में कर रहे हैं, और जो चीज़ मिट्टी में जाती है वो फसल में जाती है, फसल में जो जाती है वही हम खाते हैं, वही जानवर तक पहुंचती है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। और वही मिट्टी में जो चीज़ डालते हैं तो ये पोषक तत्व, मैंने पहले ही बताया पोषक तत्व प्रदान करता है फसलों को, जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व चाहिए पौधों को वो प्रदान करता है। अब बहुत हमारे पोषक तत्व होते हैं पौधे उसको वहाँ से ग्रहण किए तो किए, नहीं तो वो बह कर पानी में चला जाता है। अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे पानी भी प्रदूषित होता है, हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। जब हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो जो वहाँ से बहकर पानी मिल जाएगा तो वो भी प्राकृतिक है, वो पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं होगा, मिट्टी प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा जलवायु प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा हम मनुष्य हम जानवर कोई भी प्रदूषित नहीं होगा, सब प्योर प्राकृतिक रहेंगे। ये हमारे फायदे हो गए, जो हमारे मतलब हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें आते हैं सब सुरक्षित रहेंगे, सब प्राकृतिक तरह से स्वस्थ रहेंगे, धनी रहेंगे।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय के बारे में, तो इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं ये आपने जाना। तो आशा करते हैं कि जैविक खाद की तरफ आप भी जोर देंगे इस प्राकृतिक खाद की तरफ, और अपनी भूमि अपने खेत को आप अपनी मिट्टी को आप स्वस्थ बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता।

0: शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
1: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
1: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
1: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन, आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में

प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ करें।

श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक।

0: चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाई है, मन ही की परती।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन

0: एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
1: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
2: Thank you.
4: Happy birthday, Stephen!
2: Thank you,
4: congratulations!
2: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
5: Oh, fine.
2: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
5: Come. Yeah. Hey.
3: Come.
5: John, please come here.
3: Oh, sure.
2: Join us for a drink, please.
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है।

0: इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।

0: कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूँ, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं।

0: 1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था, जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
5: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो।

0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
1: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
3: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
5: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
6: आग का गोला?
5: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
7: सूरज।
5: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: रोज बहुत आसान पूछते हो।
5: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
7: अगली बार में बहुत मुश्किल।
5: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
5: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
5: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
5: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
5: एकदम सही एकदम सही।
8: वो हमें धूप भी देता है।
5: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
5: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
7: विटामिन डी।
5: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
8: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं भरता।
5: हाँ बिल्कुल।
7: पेड़ों को खाना भी देता है।
5: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
7: धीरे धीरे आग

0: आती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
0: हाँ,
2: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर, हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
0: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना,
0: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता
0: है।
1: तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
0: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है,
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कई
0: दूर होता है, इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
0: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ,
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
1: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
0: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं
1: है
3: करता।
1: सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: सूरज ये
4: कहलाता है।
1: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो, अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
0: वो भी दस
1: पहेलियाँ। चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
0: डर जाती हूँ।
1: सेवेंटी हो जाएंगे। वो टेन से एकदम सेवेंटी
3: नहीं, एट्टी हो जाएंगे।
1: फिर हंड्रेड हो जाएंगे, फिर टू हंड्रेड। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग
7: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
8: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
8: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

0: बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार

0: महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें वर्तमान समय में मॉनसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दें उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं, उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं, वो किसान भाई बहन ध्यान दें भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन

0: ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
5: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम रेडियो रिविजन में। दोस्तों, मंडे को आपका आखिरी एग्जाम है और वो एग्जाम है APP 1-1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर प्राची हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिविजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद उमा, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 1-1, के का रेडियो रिविजन करेंगे।

टर्मिनोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज में इनोकुलम, इनोकुलेशन, पैथोजेनेसिस, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उनके डेफिनेशंस क्या क्या, जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, व्हाट आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा. और हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि पाइनियरिंग साइंटिस्ट एंटोन डी बेरी जो फादर हैं प्लांट पैथोलॉजी के, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, माइकेली पी एम ए माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक जो है नोवा प्लांटरम जेनरा, ये सब बुक्स भी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं उनको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, और साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड ये ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल टर्म्स में, प्लस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जैसे कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ई जे बटलर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक का नाम, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लस फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी जो हैं आपके एम के पटेल जी, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा. फिर और भी फंजी साइट्स में जैसे तिरुमला चार का कॉन्ट्रीब्यूशन, वायल नेने का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, उसके अलावा आप वायरोलॉजी में भी डिफरेंट वायरोलॉजिस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, एम डब्ल्यू वेजरिंग फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था, और भी जो उन्होंने वायरस टर्म्स भी दिया था, ये सारा जो क्लास में पढ़ाया गया है डिफरेंट वायरसेस का डिफरेंट साइंटिस्ट, फंजाई और उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उस फील्ड में, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा. उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज में डिफरेंट बेसिस पढ़ाया गया होगा, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज, जैसे कि आपका जो सिस्टेमिक डिजीजेज हैं, लोकलाइज डिजीजेज हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इपिडेमिक डिजीजेज, इंडेमिक डिजीजेज, पैंडेमिक डिजीजेज, स्पोरेडिक डिजीजेज, ये डिजीजेज क्या हैं, इनका डेफिनेशन, प्लस एग्जाम्पल्स फॉर ईच केसेस, एग्जाम्पल्स हर एक डिजीज का एक एक एग्जाम्पल्स आप लोग एटलीस्ट मेमोराइज कर लीजिएगा. जैसे एंडेमिक में पोटैटो वाट है जिस पे डोमेस्टिक क्वारंटाइन है जो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है, फिर इसको ध्यान रखिएगा. फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ परपिचुएशन के बेसिस पे जो डिजीज है, जैसे सीड बॉर्न डिजीजेस, सॉयल बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस, ओके, तो इन सारे को आप लोगों को याद रखना है. जैसे कि सीड बॉर्न डिजीज में आपका इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज लूज स्मट ऑफ वीट है, तो इसको याद रखिएगा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी याद रख लीजिएगा. फिर सॉयल बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से हैं आपके, विल्ट, और वो किन से होते हैं ये याद रखिएगा. एयर बॉर्न डिजीजेस के भी कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को मेमोराइज करना है, जैसे कि वीट रस्ट हो गया आपका एयर बॉर्न डिजीज, आपका पाउडरी मिल्डिव है, और लीफ स्पॉट्स, और जो भी डिजीजेज है जो एयर के थ्रू स्प्रेड्स होती हैं उनको भी आपको याद रखना है. फिर डिजीज साइकिल या पैथोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोकुलेशन टू कॉलोनाइजेशन स्प्रेड एंड अपियरेंस ऑफ द सिम्टम, जो पूरा साइकिल आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान रखना है. और हर स्टेप में जैसे इनोकुलेशन क्या है, सबसे पहले जो अराइवल होता है पैथोजन का प्लांट सरफेस पे, उसके बाद वो अटैच करता है, उसके बाद फिर वो पेनिट्रेट करता है, फिर रिकॉग्निशन, इन्फेक्शन, जो भी होता है सारे स्टेप्स टिल द सिम्टम्स डेवलप्ड ऑन द प्लांट, ये सारा आप लोगों को मेमोराइज करना है. फिर ए बायोटिक एंड बायोटिक डिजीज, जैसे कि ए बायोटिक में आप लोग डिफरेंट डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं, जैसे कॉपर डिफिशियंसी से डिजीज होता है, या फिर बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है आपका ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो उस तरह का सारा एग्जांपल्स आप ले आते हैं. जैसे कि जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है, तो जो एबायोटिक या डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी से जो डिजीज होते हैं इनका भी एक टेबल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया होगा, उसको भी आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है. और डिफरेंट डिजीजेज और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स भी, स्पेसिफिकली जो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको पढ़ते वक्त आए होंगे, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है. फिर आपका हो गया फंजाई, व्हाट आर फंजाई,

जैसे कि सेल वॉल उनका काइटिन का है, जिसमें नॉन ओमाइकोटा में सेलुलोज का है, और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंजाई के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, तीनों के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है। फंजाई में आपका ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडीज आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर स्पोर्स भी ध्यान रखिएगा कि ए सेक्शुअल कौन कौन से स्पोर हैं और सेक्शुअल कौन कौन से स्पोर्स होते हैं। जैसे ए सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडीज में मान लीजिए कि जैसे कि हम अगर डिस्कस करें तो सिनेमा है, सिनेमाटा, फिर स्पोरोडोकियम है। तो स्पोरोडोकियम किस फंगस में एक एग्जांपल भी याद रखना है आपको, जैसे पिकनीडियम है तो उसका सेप आपका फ्लास सेप होगा। तो इसका सारे का एग्जांपल्स प्लस उसका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका सेप कैसा होगा ये आपको मेमोराइज रखना है। अब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जैसे कि आपका क्लिस्टोथीशियम है, पेरीथीशियम है, तो सारे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का शेप वो किस तरह के होते हैं, प्लस वन एग्जांपल फॉर द ईच फ्रूटिंग बॉडीज कि वो किस फंगस में ये वाला, किस जीनस एंड स्पीसीज में फंगस के ये वाला फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडी। ओके, फिर आपका क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली जो आपके न्यूअर क्लासिफिकेशन में एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, मतलब कि टिल द जीनस लेवल कि कौन कौन से किस ग्रुप ऑफ फंजाई में कौन कौन से जीनस आते हैं, फैमिली ऑर्डर क्या क्या है उसके अंदर में, और किस तरह का जो अगर कोई स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी या कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सब आप लोग को मेमोराइज करके रखना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जैसे प्लाज्मोगैमी। अब रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी ये सेपरेटेड होता है फंजाई का इन टाइम इन स्पेस। तो अब प्लाज्मोगैमी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को प्लाज्मोगैमी डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाएगा, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन। तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ इनके ये मतलब किस तरह से होता है, जैसे गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है और किस फंजाई, एक एग्जाम्पल एटलीस्ट एक जीनस जिसमें ये होता हो ये आप लोग को मेमोराइज करना है। फिर कारियोगैमी फंजाई में किस तरह से होता है, सेप्टेशन पैटर्न्स भी पढ़ लीजिएगा किस तरह का सेप्टा किस में बनता है फंजाई में। फिर बैक्टीरियाज हो गया, बैक्टीरिया का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का आपका क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से मतलब किंगडम जो है आपका उसके अंदर कौन कौन से फाइलम हैं, फिर क्लासेस, ऑर्डर, जीनस जो भी है सारा उसमें से आप लोग को मेमोराइज करना है। फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है बैक्टीरिया में आपका, जैसे कि पेरीट्राइकस, ए ट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और उनके एग्जांपल्स, ये सब आपके प्रोबेबली एग्जाम्स में आते हैं किसी न किसी फॉर्म में तो आएगा ये सब। फिर उधर आप लोग मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटोजोअन्स, ग्रीन एल्गी, इनसे थोड़ा सा जैसे ग्रीन एल्गीज वगैरह से कुछ माइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेजर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पैरासिटिक हायर प्लांट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पैरासिटिक हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके टोटल स्टेम पैरासाइट, कौन से हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, फिर टोटल रूट पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट और उनके एग्जांपल्स कि मतलब किस में आपका जैसे कसकटा है स्टेम तो उसका आप लोगों को याद रखना है कसकटा, लोरेंथस, फिर वो कौन से मतलब उनके होस्ट प्लांट्स कौन से हैं, मतलब कौन सा पैरासिटिक प्लांट किस प्लांट पे होस्ट करता है, तो वो उसको ध्यान रखना है आप लोगों को मेमोराइज कर लेना है। फिर आपका वायरसेस के डेफिनेशन, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर आपको बताया गया TMV का, टोबैको मोजैक वायरस का, तो टोबैको मोजैक वायरस का स्ट्रक्चर जैसे वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट का बना होता है और किस में किस तरह का प्रोटीन कोट होता है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। और वायरस में आपका ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस से भी क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 50-50 चांसेस है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आने का, हो सकता है कि आ जाए आपका। तो ट्रांसमिशन में आप लोग किस किस मेथड से ट्रांसमिट होता है वायरस, जैसे कि आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन है तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन किस में होता है, सीड के थ्रू ट्रांसमिशन। फिर आपका जो वेक्टर ट्रांसमिशन है जैसे इंसेक्ट से, फंजाई से ट्रांसमिशन, निमेटोड से ट्रांसमिशन, ये सब आप लोगों को डिटेल में क्लास में बताया गया है।

एक बार रिवाइज कर लेना है। फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में आपको बताया गया होगा 7 प्रिंसिपल्स, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड थेरेपी, 6 हुआ। तो इसको आप लोग कि किसमें मतलब अवॉइडेंस क्या है इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स यानी कि कैसे आप डिजीज को अवॉइड कर सकते हो, एक्सक्लूजन में जैसे

0: पॉसिबिलिटी होती है कि लॉन्ग आंसर्स में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर कभी कभी आ जाता है फिलअप में आ जाता है कि कल्चरल मेथड्स, जैसे कि कल्चरल डैश एंड डैश आर कल्चरल मेथड्स ऑफ, या फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इन मेथड्स के एग्जांपल्स भी ध्यान रखें, जैसे सॉयल सोलराइजेशन किस में आ रहा है आपका, या आपका जो डीप समर प्लाविंग है, रॉगिंग है, तो ये सब इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड, मतलब कौन सा प्रैक्टिस किस मेथड के अंदर आता है, तो ये आप लोगों को मेमोराइज रख करना है। इसके अलावा होल सोल क्लास में सब चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हुई हैं आपकी, तो जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी काम का साबित होगा। तो दोस्तों ये था आपका रेडियो रिविजन, कल जाकर बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं। और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुन

ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है। और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे, तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं, तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी, तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था, उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है, तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो

0: समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती है तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती है। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज़ को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीज़ें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीज़न ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहाँ महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज़ को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए, आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। Ladies first.
1: Zero के आगे zero, zero के पीछे zero, आगे zero पीछे zero. टिको, क्यों इतने zero?
2: Zero नहीं, बल्कि मैं उन zero dose बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो pentavalent के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा

0: 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम रेडियो रिविजन में। दोस्तों, मंडे को आपका आखिरी एग्जाम है और वो एग्जाम है APP 121, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर प्राची हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिविजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद उमा, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 121, उसके का रेडियो रिविजन करेंगे। उसमें जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका टर्मिनोलॉजीज में इनोकुलम, इनोकुलेशन, पैथोजेनेसिस, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उनके डेफिनेशंस क्या क्या है, जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, व्हाट आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि पाइनियरिंग साइंटिस्ट एंटोन डी बेरी, जो फादर हैं प्लांट पैथोलॉजी के, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, माइकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक जो है नोवा प्लांटरम जेनरा, ये सब बुक्स भी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं उनको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, और साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड ये ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल टर्म्स में, प्लस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जैसे कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ईजे बटलर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक का नाम, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लस फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी जो हैं आपके MK पटेल जी, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर और भी फंजी साइट्स में जैसे तिरुमला चार का कॉन्ट्रीब्यूशन, वायल नेने का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, उसके अलावा आप वायरोलॉजी में भी डिफरेंट वायरोलॉजिस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, MW वेजरिंग,

जी उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था और भी जो उन्होंने वायरस टर्म्स भी दिया था, ये सारा जो क्लास में पढ़ाया गया है डिफरेंट वायरस का, वायरसेस का, डिफरेंट साइंटिस्ट, फंजाई और उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उस फील्ड में, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज में डिफरेंट बेसिस पढ़ाया गया होगा, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज, जैसे कि आपका जो सिस्टेमिक डिजीजेज हैं, लोकलाइज डिजीजेज हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इपिडेमिक डिजीज, इंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज, स्पोरेडिक डिजीजेज, ये डिजीजेज क्या हैं, इनका डेफिनेशन, प्लस एग्जाम्पल्स फॉर ईच केसेस, एग्जाम्पल्स हर एक डिजीज का एक एक एग्जाम्पल्स आप लोग एटलीस्ट मेमोराइज कर लीजिएगा। जैसे एंडेमिक में पोटैटो वाट है, जिस पे डोमेस्टिक क्वारंटाइन है, जो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है, फिर इसको ध्यान रखिएगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ परपिचुएशन के बेसिस पे जो डिजीज है, जैसे सीड बॉर्न डिजीजेस, सॉयल बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस, ओके, तो इन सारे को आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि सीड बॉर्न डिजीज में आपका इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज लूज स्मट ऑफ वीट है, तो इसको याद रखिएगा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी याद रख लीजिएगा। फिर सॉयल बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से हैं आपके, विल्ट, और वो किन से होते हैं ये याद रखिएगा। एयर बॉर्न डिजीजेस के भी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मेमोराइज करना है, जैसे कि वीट रस्ट हो गया आपका एयर बॉर्न डिजीज, आपका पाउडरी मिल्डिव है, और लीफ स्पॉट्स, और जो भी डिजीजेज है जो एयर के थ्रू स्प्रेड्स होती हैं उनको भी आपको याद रखना है। फिर डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल या पैथोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोकुलेशन टू कॉलोनाइजेशन स्प्रेड एंड अपियरेंस ऑफ द सिम्टम, जो पूरा साइकिल आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान रखना है। और हर स्टेप में, जैसे इनोकुलेशन क्या है, सबसे पहले जो अराइवल होता है पैथोजन का प्लांट सरफेस पे, उसके बाद वो अटैच करता है, उसके बाद फिर वो पेनिट्रेट करता है, फिर रिकॉग्निशन, इन्फेक्शन, जो भी होता है सारे स्टेप्स टिल द सिम्टम्स डेवलप्ड ऑन द प्लांट, ये सारा आप लोगों को मेमोराइज करना है। फिर ए बायोटिक एंड बायोटिक डिजीज, जैसे कि ए बायोटिक में आप लोग डिफरेंट डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं, जैसे कॉपर डिफिशियंसी से डिजीज होता है, या फिर बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है आपका ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो उस तरह का सारा एग्जांपल्स आप ले याद करें। जैसे कि जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है, तो जो एबायोटिक या डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी से जो डिजीज होते हैं, इनका भी एक टेबल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया होगा, उसको भी आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। और डिफरेंट डिजीजेज और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स भी, स्पेसिफिकली जो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको पढ़ते वक्त आए होंगे, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका हो गया फंजाई, व्हाट आर फंजाई, फंजाई आपके उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई, जैसे कि सेल वॉल उनका काइटीन का है, जिसमें नॉन ओमाइकोटा में सेलुलोज का है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंजाई के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, तीनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है। फंजाई में आपका ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर स्पोर्स भी ध्यान रखिएगा कि ए सेक्सुअल कौन कौन से स्पोर हैं और सेक्सुअल कौन कौन से स्पोर्स होते हैं। जैसे ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में मान लीजिए कि जैसे कि हम अगर डिस्कस करें तो सिनेमा है, सिनेमाटा, फिर स्पोरोडोकियम है, तो स्पोरोडोकियम किस फंगस में एक एग्जाम्पल याद रखना है आपको, जैसे पिकनीडियम है तो उसका सेप आपका फ्लास्क सेप होगा, तो इसका सारे का एग्जाम्पल्स प्लस उसका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका सेप कैसा होगा, ये आपको मेमोराइज रखना है। अब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जैसे कि आपका क्लिस्टोथीशियम है, पेरीथीशियम है, तो सारे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का शेप वो किस तरह के होते हैं, प्लस वन एग्जाम्पल फॉर द ईच फ्रूटिंग बॉडीज कि वो किस फंगस में ये वाला, किस जीनस एंड स्पीसीज में फंगस के ये वाला फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडी, ओके। फिर आपका क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जो आपके न्यूअर क्लासिफिकेशन में एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, मतलब कि टिल द जीनस लेवल,

0: से जीनस आते हैं, फैमिली ऑर्डर क्या क्या है उसके अंदर में, और किस तरह का जो अगर कोई स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी या कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सब आप लोग को मेमोराइज करके रखना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जैसे प्लाज्मोगैमी। अब रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी, ये सेपरेटेड होता है फंजाई का इन टाइम इन स्पेस। तो अब प्लाज्मोगैमी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को प्लाज्मोगैमी डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाएगा, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन। तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ इनके, ये मतलब किस तरह से होता है, जैसे गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है और किस फंजाई, एक एग्जाम्पल एटलीस्ट एक जीनस जिसमें ये होता हो, ये आप लोग को मेमोराइज करना है। फिर कारियोगैमी फंजाई में किस तरह से होता है, सेप्टेशन पैटर्न्स भी पढ़ लीजिएगा, किस तरह का सेप्टा किसमें बनता है फंजाई में। फिर बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरिया का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का आपका क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन से मतलब किंगडम जो है आपका उसके अंदर कौन कौन से फाइलम हैं, फिर क्लासेस, ऑर्डर, जीनस जो भी है सारा उसमें से आप लोग को मेमोराइज करना। फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है बैक्टीरिया में आपका, जैसे कि पेरीट्राइकस, ए ट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और उनके एग्जाम्पल्स, ये सब आपके प्रोबेबली एग्जाम्स में आते हैं, किसी न किसी फॉर्म में तो आएगा ये सब। फिर उधर आप लोग मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रोटोजोअन्स, ग्रीन एल्गी, इनसे थोड़ा सा जैसे ग्रीन एल्गीज वगैरह से कुछ माइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेजर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पैरासिटिक हायर प्लांट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पैरासिटिक हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके टोटल स्टेम पैरासाइट, कौन से हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, फिर टोटल रूट पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट, और उनके एग्जाम्पल्स कि मतलब किस में आपका, जैसे कसकटा है स्टेम तो उसका आप लोगों को याद रखना है कसकटा, लोरेंथस, फिर वो कौन से मतलब उनके होस्ट प्लांट्स कौन से हैं, मतलब कौन सा पैरासिटिक प्लांट किसके किस प्लांट पे होस्ट करता है, तो वो उसको ध्यान रखना है आप लोगों को, मेमोराइज कर लेना है। फिर आपका वायरसेस के डेफिनेशन, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर आपको बताया गया TMV का, टोबैको मोजैक वायरस का, तो टोबैको मोजैक वायरस का स्ट्रक्चर, जैसे वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट का बना होता है और किस में किस तरह का प्रोटीन कोट होता है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। और वायरस में आपका ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस से भी क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 50-50 चांसेस है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आने का, हो सकता है कि आ जाए आपका। तो ट्रांसमिशन में आप लोग किस किस मेथड से ट्रांसमिट होता है वायरस, जैसे कि आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन है तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन किस में होता है, सीड के थ्रू ट्रांसमिशन। फिर आपका जो वेक्टर ट्रांसमिशन है, जैसे इंसेक्ट से, फंजाई से ट्रांसमिशन, निमेटोड से ट्रांसमिशन, ये सब आप लोगों को डिटेल में क्लास में बताया गया है, तो इसको आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है। फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में आपको बताया गया होगा 7 प्रिंसिपल्स, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड थेरेपी, 6 हुआ। तो इसको आप लोग कि किसमें मतलब अवॉइडेंस क्या है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स यानी कि कैसे आप डिजीज को अवॉइड कर सकते हो। एक्सक्लूजन में जैसे आपका एक्सक्लूजन में सीड सर्टिफिकेशन एंड क्वारंटाइन आता है, तो आप लोग क्वारंटाइन के बारे में कि क्वारंटाइन क्या है, मतलब किस तरह से क्वारंटाइन लगता है, ये सब चीज़ें जो भी आप लोगों को बताया गया। फिर IDM का डेफिनेशन, व्हाट इज़ IDM और कौन कौन से अप्रोचेज हैं IDM में, जैसे कल्चरल मेथड्स बताया गया होगा, डिफरेंट मेथड्स हैं कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इससे पॉसिबिलिटी होती है कि लॉन्ग आंसर्स में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर कभी कभी आ जाता है फिलअप में आ जाता है कि कल्चरल मेथड्स, जैसे कि कल्चरल डैश एंड डैश आर कल्चरल मेथड्स ऑफ, या फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इन मेथड्स के एग्जांपल्स भी ध्यान रखें, जैसे सॉयल सोलराइजेशन किस में आ रहा है आपका, या आपका जो डीप समर प्लाविंग है, रॉगिंग है, तो ये सब इसमें ध्यान रखना कि कौन सा मेथड मतलब कौन सा प्रैक्टिस किस मेथड के अंदर आता है, तो ये आप लोगों को मेमोराइज करना है। इसके अलावा होल सोल क्लास में सब चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हुई हैं आपकी, तो जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट,
1: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए

0: था आपका रेडियो रिविजन, तो जाकर बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उन्नत कृषि नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज से यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, जिसमें हम बातें करते हैं किसान भाइयों की। आज किसान भाई, जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, खेती बाड़ी के नए नए गुण अपना रहे हैं, और इसी में से एक आता है जलवायु अनुकूल या मौसम अनुकूल खेती। जी हाँ, आज हमारा विषय है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। और आप सभी को पता है कि वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ख़ास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय पर खास चर्चा होगी। आज हमारे बीच हैं वरीय वैज्ञानिक अंशुमन कोहली, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं ये, और आज पूरी जानकारी मिलेगी हमें इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद। किसान भाइयों को, आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज कहा जाता है कि जैसे कि आज का ये एरा है, उसमें मौसम अनुकूल या जलवायु अनुकूल खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये समझा दें, हमारे श्रोताओं को आप ये समझाएं कि मौसम अनुकूल खेती और जलवायु अनुकूल खेती में क्या अंतर है, क्या है ये?
1: धन्यवाद। किसान भाइयों को जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले कुछ और जानकारी मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं, और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व समान ही हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि तापमान, वायु का दबाव, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इत्यादि। और यदि हम बात करें कि आज गर्मी अधिक है, आज उमस अधिक है, आज वर्षा हो रही है, अथवा आज तेज़ हवा चल रही है, तो यह तो हुई मौसम की बात। परंतु यदि हम कहें कि मेघालय में वर्षा अधिक होती है, या जून में भागलपुर में उमस अधिक होती है, भागलपुर में वर्षा का वार्षिक औसत 900 मिलीमीटर है इत्यादि, तो यह बात है जलवायु की। अब मौसम के अनुकूल कृषि क्या हुई? जैसे कि रबी और खरीफ की फसलों की खेती, जो कि आमतौर पर सभी किसान करते हैं। कुछ प्रगतिशील किसान ग्रीन हाउस पद्धति से गैर मौसमी फसलों की भी खेती करते हैं तथा भरपूर लाभ उठाते हैं। यह सब अपनी जगह ठीक है, पर जलवायु अनुकूल कृषि क्या हुई? जो हमारे दीर्घकालिक मौसम का जो औसत है, उसके अनुरूप की जाए।
0: जी, तो सर, आपने अभी कहा था शुरुआत में कि जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो बेहतर तरीके से अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दें तो और ज़्यादा उन्हें ज्ञान हो जाएगा इनके बारे में।
1: जी, तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम दीर्घकालिक मौसम के औसत के हिसाब से खेती करें तो वो होगी जलवायु अनुकूल कृषि, यानी उस जलवायु के हिसाब से खरीफ में कौन सी फसलें किस पद्धति से लगाई जाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, तो वो जलवायु के अनुकूल हो सकती हैं। अब किसी भी पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति वहाँ की जलवायु के अनुसार ही अवतरित होते हुए पनपे हैं। सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों की पारंपरिक फसलें अधिकतर जलवायु के अनुकूल ही हैं। जो हमारी पुराने ज़माने से जो पारंपरिक फसलें चल रही थीं, वो सब जलवायु के अनुकूल ही हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या एवं प्रगति की होड़ में अक्सर गैर टिकाऊ प्रक्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को कम करने के लिए कृषि में जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही स्तर पर परिवर्तन करने होंगे।

0: स्तर पर अर्थात किसान के व्यक्तिगत स्तर पर तथा एक वृहद भौगोलिक स्तर पर फसलों का चयन जलवायु के अनुकूल किया जाना चाहिए। मसलन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ के दौरान धान की जगह मक्का का चुनाव करने से भूमिगत जल स्रोतों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह रबी के दौरान गेहूं के स्थान पर वर्षा सिंचित दलहनी एवं तिलहनी फसलों यथा चना मसूर खेसारी तिस्सी सरसों इत्यादि का चयन पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ माना जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि जलवायु अनुकूल फसलों के चुनाव से हम उस पारिस्थितिकी में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन मृदा जल प्रकाश वायु अथवा जैव संसाधन कुछ भी हो सकते हैं।
1: तो जैसा कि डॉक्टर साहब आज का जो हमारा विषय है वो है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। तो अगर हम बात करते हैं वर्षा जल संचयन की, हम इसे करके कैसे मतलब जलवायु अनुकूल कृषि की ओर बढ़ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: जी, अब आज की चर्चा का विषय चूंकि जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन है, आगे की चर्चा में हम जल प्रबंधन पर ही केंद्रित रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तम फसलोत्पादन में सिंचाई और जल निकासी का बहुत महत्व है। किसी पारिस्थितिकी में वर्षा का होना या ना होना, किस वेग से होना, कितनी वर्षा होना इत्यादि वहाँ की जलवायु का प्रतीक है। इसी तरह तापमान आर्द्रता इत्यादि यह सब भी वहाँ की जलवायु को डिफाइन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को भान है, हर फसल के लिए जल की आवश्यकता कितनी हो यह फसल के साथ साथ मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करता है। अर्थात फसल का चुनाव व जलवायु इन दोनों पर ही यह निर्भर करता है कि जल की आवश्यकता आपकी फसल के लिए कितनी होगी। सिंचाई के लिए जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है यथा जीवाश्म ईंधन भूमिगत जल स्रोत सतही जल स्रोत इत्यादि, उन सभी का योगदान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सराहनीय है आशातीत है। साथ ही साथ कृषि हेतु भूमिगत जल के प्रयोग से भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। इसकी वजह से गैर कृषि कार्यों के लिए जल और अधिक गहराई से निकाला जाता है जिससे कि जल के उपभोग की पर्यावरण लागत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सतही जल के सिंचाई हेतु प्रयोग से सतही जल की उपलब्धता गैर कृषि कार्यों के लिए घट जाती है। वर्षा जल का संचयन करने से जल के भूमिगत एवं सतही संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही साथ कृषि की पर्यावरण लागत भी कम की जा सकती है तथा कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वर्षा जल संचयन के द्वारा परंपरागत जल स्रोतों के दोहन को कम करके कृषि की पर्यावरण लागत को कम करते हुए जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि के सभी क्रियाओं को बेहतर ढंग से करते हुए तथा जल की बचत करते हुए कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो उसमें लिमिट लेस तो नहीं है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी में से एक है हमारा जल। जी हाँ, क्योंकि ये हमें बचाना, इसे संरक्षित रखना है, और क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी में अगर किसान भाइयों से हम इसे जोड़ें तो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्षा जल वो संचयन करें तो बेहतर होगा कि उनकी जो पानी है उसकी बर्बादी कम होगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे वो वर्षा जल संचयन कर सकते हैं अपनी खेती के लिए, और इसका भरपूर इस्तेमाल वो अगर वर्षा ना हो तो उस समय भी कैसे कर सकते हैं वो बताएं।
0: जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाई अपने खेतों में वर्षा का जल संचयन करें। कैसे करें इस पर अब हम थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए मूल मंत्र एक ही है कि खेत का पानी खेत में ही रहे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि खेत में जो वर्षा होती है उसका जल खेत में ही इकट्ठा रहे, बाहर बह के ना जाने पाए। इसके लिए किसान भाइयों को खेत में वर्षा जल संचयन हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा तथा सदैव तैयार रहना होगा। अपने खेत में प्रबंध रखने से यदा कदा पड़ने वाली वर्षा का जल संचित

0: जैसे कि खेत के चारों ओर की मेड़ मजबूत एवं ऊंची रखनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी खेतों के अंदर ही एकत्रित रखा जा सके तथा खेत की जमीन में पानी को रिसने के लिए समुचित अवसर मिल सके। और दूसरी बात कि खेत में समुचित मात्रा में कार्बनिक खाद का व्यवहार निरंतर करना चाहिए ताकि मृदा की भौतिक अवस्था स्थिर एवं कायम रह सके तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अच्छी बनी रहे। इसके बाद तीसरी बात कि यथासंभव न्यूनतम जुताई तथा श्रेष्ठ फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाना चाहिए जो कि मिट्टी की भौतिक अवस्था को अच्छा रखने में सहायक होते हैं तथा वर्षा जल संचयन में मददगार साबित होते हैं। फिर खेतों को जोत के अनुसार लेजर लेवलर इत्यादि उपकरणों की मदद से समतल करना चाहिए ताकि सिंचाई एवं वर्षा जल नियंत्रित रखा जा सके तथा समान रूप से पूरे खेत में सिंचाई एवं जल निकासी की व्यवस्था की जा सके। और फिर किसान भाइयों को यह भी चाहिए कि अपने खेतों में सदैव वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप ही कीटनाशक एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि अपरिहार्य स्थिति में खेत से निकासी किया गया जल पर्यावरण को दूषित ना कर सके। इसके बाद फसल चक्र का सही चुनाव से एक फसल के बाद मृदा में बचा हुआ जल अगली फसल के प्रयोग में आ सकता है। अतः पारिस्थितिकी के अनुसार फसल चक्र का चुनाव करने से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वर्षा जल का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। एक और बात कि आकस्मिक एवं असामयिक वर्षा तथा तीव्र गति की वर्षा होने की स्थिति में खेतों से जल निकासी का भी समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। निकासी किया गया जल किसी गड्ढे या पोखर में इकट्ठा करने से हम आने वाले दिनों में उसको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर अंत में एक बात कि खेत के बाहरी किनारों एवं मेड़ों पर साल भर हरी रहने वाली चारे की फसल या घास जैसे कि हाइब्रिड नेपियर इत्यादि लगाने से वर्षा जल का बहाव धीमा होने के साथ साथ मृदा का अपरदन भी कम हो सकता है तथा मृदा की भौतिक अवस्था भी अच्छी बनी रहती है। तो यदि किसान भाई इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है और इस परिस्थिति में सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ऐसी व्यवस्था होने से हमारा कृषि तंत्र एक बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की ओर अग्रसर होगा तथा जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ व्यवस्था का हिस्सा बन सकेगा।
1: जी, तो इस प्रकार आपने श्रोताओं जाना कि कैसे जलवायु अनुकूल कृषि में जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच थे डॉक्टर अंशुमन कोहली जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस खास विषय के बारे में। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
0: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा

0: बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें हम बातें करते हैं खेती से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज भी कुछ ऐसी ही बातें हम लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। आज का हमारा विषय है केचुआ खाद बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता, यानी कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शिव पूजन यादव, जो कि वैज्ञानिक हैं KVK बसूली महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, जो आप सभी को बताएंगे कि क्या होता है ये केचुआ खाद, इसे बनाने का तरीका क्या है, इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो केचुआ खाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
3: तो जो हम आज बात करेंगे केचुआ खाद की या बर्मी कंपोस्ट की, तो हम चाहेंगे कि जो, जैसा हम जानते हैं कि विगत वर्षों में जब हरित क्रांति आई तो हमने रासायनिक खादों का अंधाधुंध और अनियंत्रित तरीकों से प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई और आज हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की भी कमी होने लगी है। ऐसे में हमें ऑर्गेनिक खाद, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, उसमें केचुआ की खाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो केचुआ की खाद है क्या, तो हम बात करेंगे कि केचुआ जो हमारे अपशिष्ट हैं, चाहे कृषि से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे किचन से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर है, गौमूत्र है, उसके द्वारा जब हम उसको सड़ा के केचुआ डाल के, केचुआ अपने मल के रूप में उसको खा के मल के रूप में जो निकालता है, या केचुए का कोकून सड़कर खाद बन जाता है, तो इसे हम केचुआ खाद कहते हैं।
2: इसे बनाने की विधि के बारे में जानना चाहेंगे।
3: तो सबसे पहले हम केचुआ खाद बनाने के लिए, हमें सबसे पहला जरूरी होता है कि हम स्थान का चुनाव कैसे करें। जहाँ पे हम केचुआ खाद बनाने जा रहे हैं उसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ जो समतल जगह है उससे लगभग 3 फीट ऊँचा हो, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए। और वो जगह छायादार स्थान में होना चाहिए। अगर छायादार स्थान में नहीं है तो हमें टीन का शेड लगाना पड़ेगा, जिससे उसको छायादार बनाया जा सके। इसके साथ ही उसकी बनाने की विधि क्या है, तो हम इसको क्यारी बना के, ईंट से तैयार, कंक्रीट से तैयार क्यारी बना के उसमें केचुआ की खाद बनाते हैं। तो क्यारी का साइज हमें क्या रखना चाहिए, तो 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की या 50 सेंटीमीटर का क्यारी बनाएंगे। इसमें 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1/2 मीटर गहरा क्यारी बनाएंगे। इस तरह की अगर हम क्यारी बनाते हैं ईंट से, तो उसमें लगभग 5 टन सड़ा हुआ हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है हमारे पास, वो उसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें होता है, हम उसको अवशिष्ट पदार्थ को किस तरह से क्यारी में डालना है। तो कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जिसको, जिससे भी हम अपना खाद बनाने जा रहे हैं, केचुए की खाद बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी अवशिष्ट हमारे पास है उसको हम कहीं एक छायादार स्थान में ढेर बना के इकट्ठा कर लें और लगभग 15 से 20 दिन तक उसको कूड़ बना के, ढेर बना के रखे रहें और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे क्या होगा कि वो पार्शली डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कुछ मात्रा में वो सड़ जाएगा बाहर ही। पूरी तरह अगर हम डायरेक्ट उसको क्यारी में डाल देंगे, बनाने वाले गड्ढे में डाल देंगे, तो उसका तापमान अच्छा नहीं रहेगा और केचुए पे नुकसान पहुंचाएगा केचुए को। तो इसीलिए उसको हम पहले पार्शली डिकम्पोज कर लें, उसके बाद ले जाके हम जिस, जो क्यारी हमने बनाई है छायादार स्थान में, उसमें हम उसको भर देंगे। भरने के बाद लगभग 4 से 5 दिन तक हम उसको पानी छिड़कते रहेंगे और भर के रखे रहेंगे। जब उसका तापमान एक पूरे गड्ढे में देखेंगे अगर बराबर आ जाता है, लगभग केचुए के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अगर इस तापमान पे जब हमारा गोबर या जो कंपोस्ट बना रहे हैं, जो भी सड़ा मटेरियल है उसमें भरा हुआ है, वो आ जाए, तो हम उसमें केचुआ डालेंगे। एक टंकी में, जो एक क्यारी मैंने बनाई है, उसमें लगभग 1 किलोग्राम केचुआ डालेंगे, जिसमें लगभग 5,000 केचुआ होंगे। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम केचुआ किस प्रजाति का केचुआ डालेंगे। तो उसमें होता है एसिनिया फोइटिडा है, एडुलस इजैनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केचुआ की प्रजाति है। इसको हम डाल के इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता खाद बदलने

0: उसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे कि उसमें केचुआ भरने के बाद जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको भरने के बाद हम उसमें पानी का छिड़काव 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे, जिससे उसका तापमान बना रहेगा और उसमें नमी बनी रहेगी और केचुआ अपना विकास उसमें अच्छे से कर पाएगा और खाद को खाकर अच्छे से बदल पाएगा।
1: अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग के बारे में कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: तो जो हमारा खाद बनकर तैयार हुआ है उसको अगर हम एक ही क्यारी में बनाए हैं तब तो हमें लेयर बाय लेयर उसको आसानी से निकालेंगे। अगर कई क्यारी में बना ली है, जैसे अगर हम 100 वर्ग मीटर में अगर हम केचुआ की खाद बना रहे हैं तो इसमें लगभग 90 क्यारी हमारी, जितना मैंने साइज बताया है 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की क्यारी, लगभग 90 क्यारी बन जाएंगी। इस तरह से अगर हम खाद बनाते हैं तो हमें उसको लगभग खाद बनने में लगभग 30 से 40 दिन लगेगा डिकम्पोज होने में। तो उसमें हम 30 से 40 दिन बाद एक क्यारी में ऊपर की 6 इंच लेयर को निकालते रहेंगे और वो खाद केचुआ अपना नीचे की तरफ जाता है तो खाद बनाता हुआ चला जाएगा और हमारा खाद भी हम प्रयोग करते जाएंगे। केचुआ एक क्यारी से इस तरह बनाते हैं तो दूसरी क्यारी में अपने आप ही मूव करता है चला जाएगा और खाद बनती निकल जाएगी। तो उसको निकालने के बाद हम उसको छानते हैं, 2 मिलीमीटर छन्नी से उसको अच्छे से छान लेंगे, जो उसमें कंकड़ पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, जो खाद होगी हमारी वो अच्छे से हमें मिल जाएगी। तो इस खाद में जो वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार होगा इसमें लगभग 1.5% नत्रजन होता है, 1.5 से 3% फास्फोरस होता है और 1.5% के आसपास पोटास होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी मिट्टी में अभी खासकर कमी दिखने लगी है। तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, उसके साथ ही इसमें बहुत कई तरह के एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अब इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, किस फसल में इसका कितना प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जो धान्य फसलें हैं, जैसे चावल है, धान है, गेहूँ है, ये सब हैं, इसके साथ ही सब्जी है, तिलहन की फसलें हैं, दलहन है, तो इसमें हम 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे। इसको हम बुआई से पहले खेत में बिखेर देंगे और उसको जुताई करके अच्छे से खेत में मिला देंगे। इसी के साथ ही अगर हम फलदार वृक्षों में इसको प्रयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को हम प्रत्येक पौधे पर डाल के अच्छे से खुरपी से मिला देंगे। इसी तरह अगर हम घास के लान में डाल रहे हैं तो 3 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं।
1: और इससे क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा किसान भाइयों को?
0: तो जैसा मैंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट जो हमारा जैविक खाद है, तो जैविक खाद होने के कारण ये इसमें किसी तरह का कोई रसायन नहीं होता है, रसायन ना होने के कारण ये हमारी मृदा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। मृदा के भौतिक गुण में, भौतिक गुण मतलब उसकी संरचना और उसके संगठन में सुधार लाता है। उसी के साथ ही मृदा में वायु संचार, क्योंकि इसका पोरोसिटी अच्छा होता है तो वायु संचार मृदा में पोरोसिटी बढ़ा के उसका वायु संचार अच्छे से करता है। और जो हमारे वर्मी कंपोस्ट अगर हम खेत में डालते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव, जो हमारे बेनिफिशियल, जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, उनका भी संख्या बढ़ जाती है, जिससे खेत में वातावरण से नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण बढ़ जाता है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट को लघु या कुटीर उद्योग के रूप में हम बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
1: इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: और श्रोताओं, आप सभी से फिर मुलाकात होगी। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं

Yeah.

0: माने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
5: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियां जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियां हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और आज हम जानेंगे कि क्या है बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर RB वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं।
6: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियाँ। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हट के अगर हम कोई चीज़ उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता है, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता है उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
5: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाज़ार सब्जियों को ख़रीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में ख़रीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं उन्हें ख़रीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
6: बिल्कुल।
5: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी।
6: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज

0: साधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव
1: नहीं
0: है।
1: हो पाता।
0: इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
1: जी जी।
0: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
1: प्राइस कम
0: हाँ उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज़्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जाम्पल आपको बता दी, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है, फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर आगेती कर लेते हैं
1: पहले।
0: तो ये हाँ थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं मौसम से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि 50-60 रुपए गोभी बिक जाती है।
1: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से
0: हाँ,
1: थोड़े महीने
0: थोड़ा
1: पहले।
0: सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये ज़रूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की ज़रूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन पर डे पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की ज़रूरत है और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पर जाना हमारा जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीज़न बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय में गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियाँ उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित है, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी
1: उगाते
0: हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं और हम जैसा
1: चैलेंजिंग हो जाता
0: है, चैलेंजिंग होता है और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जिसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं,

0: लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
1: होती है,
0: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ड कर सकते हैं तो उसको एफर्ड मतलब उसको एडाप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडाप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ड नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली और जो कूलिंग, हाँ ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर से हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर हम उसको हटा देते हैं। अच्छा। तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो
0: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं तो उसको ले जा करके अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा ये होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, जो इस
1: छोटे
0: किसान हैं, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडाप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
1: अच्छा।
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की, वैसे हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी, कद्दू की जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
1: ठंडी
0: का मौसम
1: आने से पहले, कुछ
0: नहीं गर्मी आने से पहले।
1: अच्छा।
0: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च में, तो सबके मार्च अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता है।
1: जी जी।
0: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक, कुछ
1: मौसम में उसकी जो दाम है वो
0: बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें, थोड़ा सा हमने क्या किया, ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई उसको अडाप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज़्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज़्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं। तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडाप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडाप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें,
0: हाँ,
1: तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई

0: भी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की। वो हाँ, थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: जलवायु चाहिए, मिट्टी
0: और
1: चाहिए।
0: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है, या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़
1: कि नवसिखिए नहीं होना चाहिए, बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें
0: उगाइए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको बताते हैं, लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफ़ी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है, टमाटर है, तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
1: जी, जी, जी।
0: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
1: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
0: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
1: नहीं
0: होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित वाली सब्जियां में आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इससे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको कुछ नहीं हुआ, तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है, या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहाँ भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जा कर के वहाँ से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है
1: जी जी।
0: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है
1: जी।
0: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहाँ लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपये का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपये गवर्नमेंट देगी
1: जी।
0: 15,000 रुपये आपको लगाना है, जहाँ 2-2.5 लाख रुपये खर्च आते हैं
1: 50% सब्सिडी सरकार की,
0: 50% सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है, 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फ़ायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुँह से मैं सुनना चाहूँगी कि बेमौसमी सब्जियाँ अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके।
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं

0: एक चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती है, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गई, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है और कम क्षेत्रफल से। देखिए ना आप कितना जो है
1: लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट,
0: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते हैं, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं, और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर एक एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पोली हाउस बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है, बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं, तो मेन सीजन में हमारे फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं, तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज़्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल गया, आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त पैसा निकाल लिया, जो ये तमाम सारे फायदे हैं इसके।
1: तो किसान भाइयों आपने सुना ना क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं, और उन्होंने फ़ायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
7: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
5: तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के

0: जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बड़े सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छतरी छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की ज़रूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छतरी छाया को कमज़ोर कर दी। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता है। समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्टफोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के ज़माने में टेलीविज़न आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है। बस कुछ सेटिंग्स करने

आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें। रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें, तो फिर आप अपने पुराने टीवी में अमेज़न फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है, यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है, और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा, तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है पर उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है, और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है, और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: जीरो जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

और दूसरा एमआरटी का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।

0: बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ अनु, और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और खास कर जब और बात करें किसानों की, तो आप सभी को पता है कि किसान जो हैं आजकल रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो होता है, लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, और उनसे मैं पूछना चाहूँगी, सर, कैसे जो किसान हैं वो अपनी उत्पादकता, फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाएं, और तो इन रासायनिक उर्वरकों से बचकर कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से।
5: देखिए, इसमें जो किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद से आजकल क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसको उत्पाद हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो, गेहूँ हो, ज्वार हो, उसका जो अवशेष, रासायनिक खादों का अवशेष हमारी बॉडी के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। तो प्रश्न आता है कि हम पोषक तत्व किससे दें। यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक। पहले जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का प्रायोगिक सम्मिश्रण है, जो कि समुचित मात्रा एवं तकनीक से व्यवहार करने पर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक कभी भी किवी कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जाकर के अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन का स्थिरण करते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं या बेकार होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु जाकर के मिट्टी में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील या बेकार पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, और उस अवस्था में उपलब्ध कराते हैं जिस अवस्था में पौधा लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सही तरह से करते हैं, तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं और पौधों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
4: तो सर ने बताया यहाँ पर कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, आप उनसे हटकर जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों, और उनके महत्व पर और भी ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और इनसे हम और भी बातें जानेंगे। और आगे सर हमें क्या बताना चाहेंगे आप इस जैविक उर्वरक के बारे में?
5: इसके बारे में हमको जानना होगा कि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है। तो ये हमको जानना बहुत अत्यावश्यक है कि जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में।
4: तो सर ने हमें बताया कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये और किस प्रकार ये रासायनिक खादों से अलग ये अपना काम करता है, सर आप हमें बताना चाहेंगे?
5: देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करते हैं या फिक्सेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78.6% नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, चना, मसूर, अरहर, उसकी जड़ों के अंदर ये गांठें बनाता है और गांठों के अंदर उस वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और ये अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अवस्था में चेंज कर देता है जिस अवस्था में पौधा लेता है, जैसे कि अमोनिकल है या नाइट्रेट है। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है, और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता जो कि हम DAP से यूरिया से देते हैं, तो इस तरह से ये उससे अलग होता है केमिकल से, और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है खेती पर या मिट्टी पर। इसलिए ये बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा होता है पौधों को ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। तो फास्फोरस मुख्यतः पौधा आयनिक फॉर्म में लेता है,

0: डालते हैं, और जब हम डीएपी अप्लाई करते हैं तो डीएपी या एसएसपी फास्फोरस किसान भाई अप्लाई करते हैं तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 15 से 20% होती है। मतलब कहने का यह है कि 80% से 85% भाग मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है या उस अवस्था में हो जाता है जो कि पौधे के लिए बेकार होता है, अनुपलब्ध होता है। तो ये जो बैक्टीरिया जीवाणु खाद है जब मिट्टी में जाता है और अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा उसको अनुपलब्ध फॉस्फोरस को उपलब्ध कराता है और पौधा उसको यूज़ करने लगता है अपने कार्य के लिए।
1: तो आज ही उन्नत कृषि में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। ने हमें बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो इसमें एक जीवाणु का नाम आता है सर, और उसका नाम है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम। सर, इसका क्या काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी बातें होंगी उनके लिए।
0: देखिए, अभी जो राइजोम के बारे में बताया, तो राइजोम का प्रयोग केवल दलहनी फसलों में किया जाता है। और अभी आपने जो पूछा है एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरलम का क्या काम होता है, तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी के अंदर करते हैं, और ये जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी वाली फसल जितनी भी है, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल वाले वृक्ष जैसे कि लीची, आम, अमरूद, पपीता, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यदि किसान भाई साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने खेतों के अंदर, तो ये जीवाणु प्रति हेक्टेयर एक साल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनका प्रयोग करते हैं तो हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि DAP या यूरिया से देते हैं उसको सेव कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो सर, हमने अभी बहुत सारी बातें जानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जाना और जीवाणु के बारे में जाना। और इसके बाद सर, ऐसा अक्सर देखा गया है कि खेतों में और मिट्टी में खासकर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, और इन अगतिशील पोषक तत्वों से पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से जैव उर्वरक इन अगतिशील पोषक तत्वों को गतिशील बनाकर जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सकें।
1: देखिए, आपने जो बात करी है अगतिशील पोषक तत्व, तो मृदा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि अगतिशील होते हैं। उसको उदाहरण बताना चाहूँगा। नंबर एक पर आता है फॉस्फोरस, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिंक है और आयरन है। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि मृदा घोल में अगतिशील होते हैं और पौधे की जड़ जहाँ होती है वहाँ तक वो आ नहीं पाते। तो पौधे की जड़ के आसपास जो भी पोषक तत्व होता है, फॉस्फोरस, जिंक या आयरन, पौधे के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसकी फिर से कमी हो जाती है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो दूर रखा हुआ फॉस्फोरस है वो उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्षण होता है कि वो अगतिशील है। तो इसके अंदर एक जैव उर्वरक आता है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो माइक्रोराइजा एक फंगस या फफून का एसोसिएशन होता है, सहजीवी होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ में, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है और ये अपना भोजन उस पौधे से ही लेता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो हाइफी होती है या माइसिलियम होते हैं, ये पौधे की जड़ों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो दूर तक फैलते हैं, कितना फैल जाते हैं, जो मान लीजिए पौधे की जो जड़ है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो भी अनुपलब्ध फॉस्फोरस था उसको ये लेकर के आती है, पौधे की जड़ के अंदर दे देती है। तो इसका मुख्य कार्य है कि पौधे की जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देना और दूर से अगतिशील पोषक तत्वों को मृदा और पौधे की जड़ के अंदर लेकर के आना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। यदि किसान भाई इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम तक हम कटौती कर सकते हैं, जो कि हम रासायनिक खाद के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक खादों के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं इसके बायोफर्टिलाइजर के या जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से,
0: या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करते हैं अगतिशील पोषक तत्वों को, मतलब गतिशील बनाने में और पौधों तक इसे अच्छे तरीके से पहुँचाने में।
1: हाँ, क्योंकि जो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बेकार पड़े होते हैं, क्योंकि पौधे से वो दूर है, पौधे से दूर है, पौधे के जब तक जड़ के पास में नहीं आएगा तो पौधे के लिए तो बेकार है। तो माइक्रोराइजा क्या करता है कि जो दूर पड़ा हुआ था अपनी हाइफी के द्वारा उसको पौधे की जड़ के अंदर डाल देता है और पौधे की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज़ करने लगता है।
0: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, और आगे कुछ बातें और भी जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो हैं मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि। हमारे आज चर्चा का विषय है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। और डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं जैव उर्वरक के बारे में, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। और अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ये इनका जो इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, किस तरीके से वो इन्हें अपने खेत में डालकर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सर, अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनकी प्रयोग विधि है या फिर क्या होती है।
1: देखिए, सबसे अहम पहलू होता है जैव उर्वरकों की मात्रा और उसकी प्रयोग विधि। किसान भाई यदि सही से इसका प्रयोग विधि जानते हैं तभी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल पाता है खेत में। तो प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर एक पे आता है बीज उपचार, यानी कि सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ द बीज होता है, यानी 20 से 25 ग्राम हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं और 1 kg बीज के लिए लेते हैं। जितना हम बायोफर्टिलाइजर या कल्चर लेते हैं उसका दुगनी मात्रा में पानी लेते हैं, और जितना पानी लेते हैं उसका 10% हम गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का जो गुड़ होता है जैगरी और या गुड़ ले लेते हैं, पानी के अंदर गुड़ को डाल लेते हैं और हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद केवल होता है कि गुड़ अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। जब ये गुड़ पानी में घुल जाता है तो उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में जो मैंने अभी मात्रा बताई थी जैव उर्वरक की या बायोफर्टिलाइजर की, उसको डाल करके हम एक लकड़ी की सहायता से उसको घोल देते हैं और ये अब ये घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद में

0: जो कर रहे हैं हम, ये छायादार स्थान होना चाहिए, या कोई कमरा हो या पेड़ हो, उसके नीचे सारा काम करते हैं। और एक फर्श पर पॉली शीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं, और जो आपके बीज की मात्रा थी उस बीज को हम उस पर पॉलीथीन की शीट पर डाल देते हैं और ढेर लगा कर छोड़ देते हैं। फिर जो घोल आपने जैव उर्वरक का बनाया उसके ऊपर डालकर को उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं। हथेली से नहीं करेंगे, हथेली से करते हैं तो क्या होता है कि वो लेप उसका आ नहीं पाता है और लेप छूट जाता है। तो उंगलियों की सहायता से हम उस पर लेप लगाते हैं, और लेप लगाने के बाद में, उस सॉल्यूशन का लेप लगाने के बाद में, उस प्लास्टिक की शीट पर हम बीज को बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूखने में लगभग 45 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। यदि हवा चले जल्दी सूख जाता है, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो देर में सूखता है। सुखाने के बाद जिस खेत में आपको इसको बोना होता है या छींटना होता है, लाइन में लगाना होता है, उस खेत में ले जाते हैं और इसको बुवाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। दूसरा विधि होती है मृदा उपचार। तो बायोफर्टिलाइजर के द्वारा या जैव उर्वरक के द्वारा हम मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दर है उसकी 2 किलोग्राम पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, चाहे वो एजिटोवेक्टर हो या एजस्पाइलम हो या PSB हो। 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेकर के उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको, 5 किलोग्राम कल्चर को, और पूरी नाइट या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद में सुबह जा करके जिस खेत में बिखेरना होता है उसमें हम इसको बिखेर देते हैं, और हल्का सा फिर हल्का कल्टीवेटर या हैरो से इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रखते हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट करें बायोफर्टिलाइजर को खेत के अंदर तो धूप ना हो। तो हम संतुष्ट, हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो बखेरते हैं इसको सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और बखेरने के तुरंत बाद इसको मिक्स करना होता है। तीसरी विधि आती है बिचड़ा उपचार या पौध उपचार। तो पौध उपचार के लिए इसकी जो दर है वो 2 kg पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसको मात्रा को लेकर के 100 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं और एक घोल बन जाता है। घोल बनाने के बाद जो बिचड़ा है उस बिचड़ा को उखाड़ेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, और फिर 45 मिनट के बाद में जिस खेत में रोपाई करनी होती है उसमें हम इसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये 3 विधियाँ मैंने बताई हैं। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो इसका भरपूर और जो जितना हर संभव लाभ है वो मिल पाता है, और पौधों को अधिक से अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो जाती है।
1: तो सर, आपने ये बताया अभी जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, उनके प्रयोग विधि के बारे में आपने बताया, और अब हम जानना चाहेंगे आपसे और किसान भाइयों, और किसान भाई भी आपसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि हम किन किन फसलों के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो जैव उर्वरक का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से किया जाता है, और हर एक फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए मुख्यतः हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, और ये रिकमेंड करा जाता है, संशोधित किया जाता है कि जब भी हम राइजोबियम का प्रयोग करें उसके साथ में फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB का प्रयोग करना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए 2 जैव उर्वरक मैंने बताए, एक तो राइजोबियम है और दूसरा है PSB। और एजोटोवेक्टर का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली फसलें हों, धान्य फसलें हों, फूल वाली सब फसलें हों, फलों वाली सब फसलें हों। और इसके साथ में भी हम संशोधित किया जाता है कि PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि PSB का काम होता है पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराना। जब पौधों को फास्फोरस उपलब्ध ज़्यादा होती है तो पौधों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा होता है एजोस्पाइलम जैव उर्वरक। एजोस्पाइलम का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान्य फसलें, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि, और जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, गोभी हो, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फल वाली फसलें और पुष्प वाली सब फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा हमने बताया था माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, या फूलों वाली फसलें हैं, या फिर धान्य फसलें होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको किन किन फसलों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात और है जो कि होती है, क्या ध्यान रखें इनका जब हम प्रयोग करते हैं, तब ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमेशा बोला जाता है कि नाइट्रोजन वाले बायोफर्टिलाइजर के साथ में PSB या

0: वाले बायोफर्टिलाइजर या जैवों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है कभी भी रासायनिक खादों के साथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया डीएपी भी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ हो जाती है उसकी और वो मर जाता है।
1: तो सर आपने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए और जितने भी बहनें हैं, किसान बहनें हैं मेरी, उन सभी के लिए सवाल है और वो ये है कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ, यानी कि इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है?
0: देखिए, जैव उर्वरक आपको किसी भी जो रासायनिक खाद बेचता है या दवाई बेचता है उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं। और यदि आपको हमारे विश्वविद्यालय का लेना है तो हम लोगों के यहाँ पर भी हम लोगों की जो प्रोडक्शन इकाई है, उत्पादन इकाई है, उसकी क्षमता 500 मेट्रिक टन है। 500 मेट्रिक टन आप जानते हैं कि बहुत होता है, तो साल भर जितना आपको चाहिए उतना उपलब्ध रहता है। तो हमारे यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बायोलैब है जिसके अंदर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है और आपको ये राउंड द ईयर कभी भी आप आएँ, किसी भी टाइम आएँ, किसी भी प्रकार का जैव उर्वरक लेना हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
1: तो किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम उन्नत कृषि में आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दी हैं और आपसे आगे भी मुलाकात होगी, हमारे किसान भाइयों और बहनों से भी आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर करा।

0: लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने

की महावारी के बारे में, पीरियड्स के बारे में बातें, खास तौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती हैं। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है। लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने ज़माने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं या फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने ज़माने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएँ बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने ज़माने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है, है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज़ नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है।

चाहिए, आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियां, महिलाएं, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज़्यादा

साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए। और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही ये कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है। ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज़ करना वो रिस्की होता है, और ख़ास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ़ किए रीयूज़ करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन वो भी सेफ़ है, पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखा कर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे ख़ास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ ख़ास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, ये बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स है, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एक आध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा। लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज़ है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमज़ोर होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कम

0: इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाल।

0: प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज एक बार फिर आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु आप सभी के पास लेकर आई है एक अलग विषय और एक अलग चर्चा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, पशुपालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है। और इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं पशुओं को भी और पशुपालकों को भी। और इसलिए आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है।
2: देखिए, टीका वही चीज़ है जो जीव रोग उत्पन्न करता है,

0: विषाणु है वो यदि पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है, लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो टीका पशु के अंतर्गत पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है, रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। ये एक टीका हुआ। और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं, हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है यानी कि विकसित होता है और वो जब हमारे जो पशु हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई टीका के बारे में और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है।
0: देखिए, वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
1: जी जी।
0: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत हो जाते हैं। पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है। यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में उस दिन वीक एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है यानी कि उसका उद्देश्य है। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका। उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही। तो आप एक शेड्यूल बना लें या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें और उसमें ये चीज़ पशु जो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए और क्या क्या ज़रूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की और इसके बाद जब हम किसी भी चीज़ को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसके महत्व को समझें और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का महत्व क्या होता है।
0: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के

0: समाप्त कर देता है। जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम एंटी सीरम कहते हैं, और कुछ ऐसा जीवाणु होते हैं प्रोटोजोआ भी होते हैं जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोअन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन वो बदलते रहते हैं, तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और महत्व को अगर बताया जाए तो एक ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पुनः टीकाकरण यानी कि उसके बाद जो एक लिमिटेशन रहता है उस टीकाकरण का, यानी कि समय समय पर आपको एक डेट दिया जाता है और उस डेट के बाद आपको पुनः टीकाकरण करवाना पड़ता है अपने पशुओं का। और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी यही है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं के अंदर उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया उद्देश्य और महत्व के बारे में टीकाकरण के। और पशुओं को स्वस्थ रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है आपके। आप जितना स्वस्थ रहेंगे आपका पशु भी उतना स्वस्थ रहेगा, आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब पशुओं को टीकाकरण करवाया जाए तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम पशुओं को टीकाकरण करवाने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें।
0: देखिए, किसान बंधु के लिए सबसे ज़रूरी है कि पशु को पहचानना कि वह बीमार है या स्वस्थ है। जब आप पशुपालन करते हैं तो पशु के व्यवहार लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह बीमार पड़ गया, और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पशु बीमार पड़ा आप उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु से बीमार पशु को अलग रखें, उसका खान पान उसका देख रेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें, और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता, और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है, इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के या समय अवधि पर किया जा सकता है,
1: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र होता है।
0: हर टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है। उसको सपोज़ कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज़ हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका लगा दिए हैं, FMD में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। FMD रोग यदि देखा जाए खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरिएंट्स हैं, एशिया AO करके आता है। तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं, कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है, तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी है थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। आप कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और ख़ासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार

0: पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं, एक्सपायर टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं, बिल्कुल कम टेम्परेचर पर उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
1: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों आप सभी का उन्नत कृषि में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, अध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब से आज हम बातें कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में, और बहुत सारी जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, आप सबों के सामने रखी हैं, और कुछ बातें और बाकी हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया था कि पशुओं को टीका देने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर पहले की बात हो गई तो अब बाद की भी बात हो जाए, तो टीकाकरण कराने के बाद पशुओं को किस तरीके से रखा जाए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे।
5: बिल्कुल, आप ये तो

0: पशु रखते हैं साफ सफाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि पशु का आप टीकाकरण तो कर दिए हैं लेकिन फिर भी दूसरी बीमारी भी हो सकती है उसमें।
1: यानी कि साफ
0: तो साफ सफाई
1: बहुत
0: उसका
1: जरूरी है।
0: जो आवास प्रबंधन है बिल्कुल आप एक क्लीन इन्वायरमेंट में, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं पशु को साफ सुथरा रखें, और उसको जो आप खाना देते हैं वो कभी भी दूषित ना हो, कभी भी गंदा ना हो, कभी भी जो परचेज करते हैं जो खरीद करके लाते हैं तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो, ऐसे खाना को दें, दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें। चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें, जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें। कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें। बछड़ा है बछड़ा को एक साथ रखें, जो गाय है उसको एक साथ रखें, बाछी को एक साथ रखें। अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं छोटे और बड़े पशु जो होते हैं उन्हें अलग अलग रखें, और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रखरखाव की, और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग विरोधी टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है, और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
0: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है जो हो मतलब देखने को मिलता है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुरहा मुँहपका रोग, इसको खुरपका मुँहपका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से, यह विषाणु जनित रोग।
1: ये किस जानवर में देखा जाता है?
0: ये गाय और भैंस में देखा जाता है, बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है,
1: गाय
0: और भैंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको, यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है। इस बीमारी से गला में सूजन होता है और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया। कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है गला, इसलिए इसका नाम गला घोटू रखा गया है। यह जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, यह भी जीवाणु जनित है, यह भी गाय भैंस में होता है। यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसे सड़न सा रोग हो जाता है, मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है, इसलिए इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पर चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है।
1: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है?
0: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है, और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता है, और बहुत ही संक्रामक बीमारी है, एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं, इससे ब्रुसेलोसिस इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है। यह जो समय से गर्भवती पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं, ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है। इसमें मृत्यु तो बहुत कम होती है लेकिन यह जो है एबॉर्शन कॉज करता है, पूरा का पूरा एक किसान को जो नई गाय मिलती बछड़ा मिलता वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है। यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा, और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं।
1: ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब,
0: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है, और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है, आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुरहा मुँहपका गलघोटू लंगड़ी ब्रुसेलोसिस एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण कर

0: पालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: और सर इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है। यह पशुओं में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें टीकाकरण कराएं। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं। मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोंटू हेमराजिक सेप्टिसीमिया। बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है। मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी, इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं।
1: पॉलीवेलेंट,
0: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है। आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है। यह भी गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में दिया जाता है और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं। इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए। यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात को रोकता है। जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में, या फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। मेल में होता है यह बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स। इस रोग में स्पोर का टीका दिया जाता है। एंथ्रेक्स का स्पोर टीका के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह टीका है। 1 मिलीलीटर टीका दिया जाता है।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जो बहुत सारे रोगों के नाम बताए और इसके साथ ही इन्होंने रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में टीकों के नाम भी बताए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो पशुपालक भाई हैं, अगर वो सफल टीकाकरण करवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, सावधानियाँ ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
1: प्रिकॉशन
0: करते हैं, बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना, रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं, उसे आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य जांच करें।

0: ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है, और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा
1: थनेला रोग।
0: थनेला रोग के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है, हमने उस जीवाणु को पहचाना है।
1: रिसर्च
0: हमारे यहाँ
1: किया गया।
0: रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है, और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
1: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए, तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए, और उनके जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियां बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा
0: बिल्कुल,
1: रहेगा।
0: हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसानों कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है और बस, उससे कोई मतलब नहीं रहा। बांध दिए, रस्सी में बंधा हुआ है, और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर, ऐसा नहीं हो। आप पशु के साथ जुड़ें, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
1: क्योंकि
0: लेकिन जब
1: मनुष्य के जैसे जुबान नहीं है
0: हाँ
1: उनकी।
0: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है। आप उसकी आंख देख करके, उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ठीक हो जाएगा। आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उचित उपचार कराएं। और हमेशा आप देखते रहें अगल बगल के क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैला है।
1: इस बात का भी ध्यान रखना।
0: हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से हम देखते हैं ठंडी के दिन में खुरहा मुँहपका रोग बहुत फैलता है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में खुरपका मुँहपका रोग FMD के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज। यह रोग ठंडी के दिन में फैलता है। और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी, यह बरसात के सीजन में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में ये रोग ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने पशु को इस समय में इस रोग से बचाएं, और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें, जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएं और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन उसका शरीर
1: जो
0: में विकास
1: पोषक
0: नहीं,
1: तत्व उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है।
0: हाँ, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित रूप समय अवधि पर जरूर करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनकी देखभाल करते हैं, मतलब हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी।

0: बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की, तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए, तो आपको, अगर आप नए पशु पालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया।

0: पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना दिया है।
1: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गुड़िया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
0: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
1: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है?
0: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
1: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
0: ये अब नहीं निकलेंगी।
1: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ। मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था, पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर, उधर माँ को चिठोली सूझती।
0: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद कर, तभी ये निकलेगी। हाँ
1: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी,
1: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी,
1: और सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
3: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गौरैया से लोहा लेने को लग गए। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
0: अरे अरे, अरे क्या करते हो जी,
1: गलती से लग गया।
3: गौरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
1: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
3: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि बंके के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
1: अरे
0: फिर से आ गई घर में।
3: दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गौरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
0: सुनो सुनो, देखो जी इन चूहों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
1: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
0: सुनो तो, रुक जाओ।
3: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए और लाठी झलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ा और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गौरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया। दिन में गौरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
0: तुम्हारे बस की नहीं

Titi.

0: आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी।

0: माने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका पसंदीदा चैनल, जी हाँ 90.8। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, ड्रम सीडर से धान की बुआई के बारे में। और इस बारे में इस बहुत ही खास चर्चा को लेकर हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी। और मैं आपको बता दूं, ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से कृषि अभियंत्रण विभाग से। और आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंकज सर से हम कि धान की कौन सी प्रजाति, अगर हम ड्रम सीडर विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो धान की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहेगी?
2: धान की खेती दो तरह से होता है, जैसे असिंचित एवं सिंचित, दोनों परिस्थितियों में की जाती है। असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मुख्य जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों व पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेत में पानी भरने में बीए यानी कि खर्च अधिक आता है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई की तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है और दूसरी विधि में खेत में कदवा करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। अब है क्या कि बहुफसलीय बिजाई यंत्र खेत को कल्टीवेटर या डिस्क हैरो के द्वारा अच्छी जुताई करने के बाद लेजर लैंड लेवलर यंत्र द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उपर्युक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है तथा खेत के समतल होने से सिंचाई के समय में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। बुआई के समय खेत अच्छी तरह जुताई किया हुआ होना चाहिए और भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बुआई करें। अब बुआई का समय, धान की सीधी बुआई का उपयुक्त समय 20 मई से 30 जून तक होता है। मानसून आने से 10 से 15 दिन पहले है या मई के आखिरी सप्ताह से लेकर मध्य जून तक है। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर

0: चाहिए, इससे अधिक गहराई होने पर जमाव कम हो जाता है। अब आप का क्वेश्चन है कि प्रजातियाँ इसमें कौन सी लेना चाहिए और बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो लंबी अवधि की अगर धान आप अगर लेते हैं तो 145 से 60 दिन की अगर धान यहाँ पर ले सकते हैं, जो 20 मई से 10 जून तक आप इसमें बुआई कर सकते हैं। मध्य अवधि वाली अगर आप बुआई करते हैं, जो 135 दिन की अवधि होती है वाली बीज, जिसको आप 25 मई से 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और छोटी अवधि वाली अगर आप बुआई करना चाहते हैं बीज को, तो 115 से 120 दिन का वो फसल होगा, जो 1 जून से 30 जून तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। यदि 30 जून के बाद बुआई करनी है तो कम अवधि वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए, जैसे पढ़वात है, तुरंता है, ये सब वैरायटी आपको प्रजाति आपको ले लेना चाहिए।
1: जी, तो ये कुछ प्रजातियों के नाम है जो सर ने आपको बताया कि कौन कौन से आप प्रजाति लगा सकते हैं ड्रम सीडर विधि से अगर आप लगाना चाहते हैं। तो सर, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी होता है धान की सीधी बिजाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ड्रम सीडर है क्या। ड्रम सीडर, अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बुआई किया जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है, ये तो हम पहले बता दिए हैं। खेत में पानी भरकर कदवा कर लें, यदि खेत में पानी भरा हो तो उसे निकाल दें। कादो करने के 48 घंटे पूर्व बीज को पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो दें। जूट की बोरी को भिंगोकर बीज को उपचारित करके लगभग 15 से 20 घंटे तक अंकुरण होने के लिए छोड़ दें। बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दें और इसे ड्रम सीडर में आधी आधी मात्रा भर कर आप कदवा किए हुए खेत में चला दें। बीज बोते समय खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, बीज को चिड़िया से शाम के वक्त बचाना चाहिए।
1: तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं ड्रम सीडर की जो आप बता रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है, कार्य क्षमता इसकी कितनी होती है।
0: देखिए, इस मशीन का बनावट एवं कार्य क्षमता, जैसे कि इसमें दो चक्का होता है, 4 से 6 तक वाली ड्रम इसमें हो सकता है, जिसे 4 ड्रम का अगर होगा तो ये 8 लाइन में बुआई करेगा, और 6 ड्रम का अगर आप लेते हैं तो आप उसमें जो है 6 ड्रम का में 12 लाइन में आपको उसमें बुआई होगा। लेकिन इसको एक हैंडी बनाने के लिए, जैसे कि आप इजी से अगर यूज कर सकने के लिए 4 ड्रम ठीक होता है। हाथ से खींचने के लिए हैंडल होता है। यंत्र का कार्य क्षमता 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकते हैं। आप जैसे पहले आप क्वेश्चन किए कि धान की सीधी बुआई क्यों, वर्षा एवं सिंचाई जल की कमी होता है, वर्षा का असमान वितरण और भूमि जल में निरंतर गिरावट हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य में निरंतर ह्रास हो रहा है, मृदा में दरारें फटना, सिंचाई नमी का तीव्र ह्रास हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कार्य क्षमता और बनावट ड्रम सीडर मशीन की, और इसके साथ ही सीधी बिजाई के बहुत सारे लाभ हैं। तो सर, आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को।
0: धान की सीधी बुआई से लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कम जल की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व ईंधन की बचत होती है। आप जानते हैं कि 1 लीटर अगर आप डीजल जलाते हैं तो 2.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो वातावरण को गर्म कर रहा है, और आप उत्पादन के कुछ खर्चे में बचत होता है, किसान के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी, मृदा की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होता है, अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल की परिपक्वता अवधि में कमी होती है। वो कमी इस कारण से होता है कि आप जब कदवा करके जब बिचड़ा को आप जब खेत में लगाते हैं तो लगभग 6 दिन तक बिचड़ा जो है एक स्टैंडिंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो उसमें कोई तरह का बढ़वार नहीं होता है, तो ये इसमें वो समय को काउंट किया जाता है।

0: मृदा जैव कार्बन में वृद्धि एवं मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है। और मीथेन उत्सर्जन, जो कदवा आप करते हैं, मीथेन उत्सर्जन में उसमें आप कमी आता है, कदवा की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। और हमें ये कहना चाहेंगे कि इसमें कि पोषक तत्व भी कुछ प्रबंधन करना चाहिए। बुआई के समय में 50 किलोग्राम DAP बुआई के साथ तथा 25 किलोग्राम MOP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव 3 बार में देना चाहिए, एक तो 15 किलोग्राम बुआई के 15 दिन बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए, 30 किलोग्राम कल्ले निकलते समय, 45 किलोग्राम बाली निकलने के पूर्व प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व की अगर कमी दिखाई दे तो आप आयरन और जिंक 1% यूरिया और 0.5% जिंक और 0.5% फोरस सल्फेट के घोल में 2 से 3 बार 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करें
1: जी।
0: और इसमें जो ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, रिक्त स्थानों को भरना। तो बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद देखें कि यदि कहीं कहीं जमा ना हुआ हो और जगह खाली हो तो सिंचाई या वर्षा के समय उसी खेत में से जहां अतिरिक्त पौधे हों उखाड़कर खाली स्थानों पर रोपाई कर दें, इससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
1: तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और अगले दिन अगले विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम

0: जोशी और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। वैसे तो पता है आप सभी को किसान भाइयों की हमारे राज्य में धान की खेती बहुत आयात में हो रही है, और अगर समय पर खरपतवार प्रबंधन ना किया जाए तो 50 से 70% तक उत्पादन में गिरावट दर्ज हो सकती है। तो ज़रूरी है कि खरपतवार का प्रबंधन किया जाए। तो डॉक्टर साहब आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि में। और डॉक्टर साहब हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खरपतवार प्रबंधन है क्या।
1: देखिए, खरपतवार प्रबंधन में अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी फसल हो, जितने भी उसमें अनवांटेड वीड हैं, जैसे कोई पौधा है, धान की हम कोई प्रजाति लगाए हुए हैं, उसके अलावा धान का दूसरी प्रजाति हो या कोई दूसरा प्रकार का पौधा हो, उसको हम खरपतवार की श्रेणी में लाते हैं। तो उसका सही समय पे उसका पूर्णतया नियंत्रण करना, जिससे कि मुख्य फसल पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े, हम उसको खरपतवार प्रबंधन में कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत सी विधियाँ हैं हमारे पास। कुछ एग्रोनॉमिकल मेथड हैं, सस्य वैज्ञानिक मेथड्स हैं, कल्चरल मेथड्स है, इंजीनियरिंग मेथड्स है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं, खरपतवार नाशी हैं, इत्यादि बहुत सी विधियों का हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार के प्रबंधन के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि धान के खेत हमारे बिहार राज्य में 3.5 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में हो रही है, और अगर शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन ना किया जाए, इन खरपतवारों को समय नियंत्रण ना किया जाए, तो शुरू के 40-50 दिन का समय जो होता है, 40 दिन तक का जो समय होता है, वो बहुत ही क्रांतिक होता है। अगर इसमें हम इसका प्रबंधन कर देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और 40 दिनों तक हम खरपतवार को नहीं प्रबंधन कर पा रहे हैं तो उत्पादन में 40% से लेकर के 70-80% तक भारी कमी देखी गई है, उत्पादन में कमी हो जाती है। इसलिए इन खरपतवार का प्रबंधन समय करना बहुत जरूरी है।
0: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया किसान भाइयों और बहनों कि 40 दिन के अंदर खरपतवार का प्रबंधन हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उत्पादन में कमी आ सकती है, और अगर आप उत्पादन में वृद्धि लाना चाहते हैं तो खरपतवार प्रबंधन 40 दिन के अंदर कर दें। इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार प्रबंधन क्यों करना चाहिए।
1: देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो मुख्य फसल धान है या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है छड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन बढ़ जाती है। या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है छड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन।
0: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, और इनसे हम चर्चाएं कर रहे हैं आज धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी, आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि,
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी

0: द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लिंक

0: माने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आज हम बातें कर रहे हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो कौन कौन से जो खरपतवार हैं वो धान में आते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
5: क्योंकि धान जो है खरीफ फसल है, जिसकी बुआई हम विभिन्न जिलों में मानसून के शुरुआत होने से लेकर के जुलाई 15 अगस्त तक कर लेते हैं। तो चूँकि खरीफ मौसम में खरपतवार बहुत अच्छे से उगते हैं और इनका ग्रोथ रेट, जो विकास दर है, बहुत फास्ट होता है। तो जितने भी खरीफ के खरपतवार हैं, लगभग सभी आते हैं। इन खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बाँट सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें आपका गाजर घास है या ऐसे घास जिनकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं और लंबाई कम होता है। दूसरा ग्रुप होता है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार में अपेक्षाकृत देखा जाए तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जनरली थोड़ा सा लंबा होता है और चौड़ाई इनका कम होता है। जैसे आप धान में देख लीजिए, सावा, सवई इत्यादि, ये सब प्रमुख हैं सकरी पत्ती के ग्रुप में। तीसरा ग्रुप हम बांटते हैं मोथा कुल के खरपतवारों का, जिसमें विभिन्न प्रकार के, जो 6 प्रकार के मोथा होते हैं, जैसे साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस, साइप्रस एरिया, इस प्रकार के मोथा कुल के कुल 6 खरपतवार हैं जो इस सीरीज में आते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं तो जो हमारा खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं वो खरपतवारों के प्रकार के आधार पर भी हम देते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले ग्रुप के खरपतवार हैं तो उसके लिए हम 2,4-D या ऐसी दवाएं जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारती हैं वो प्रयोग करेंगे। सकरी पत्ती वाला खरपतवार, उसके लिए हमारे पास अलग दवाइयां होंगी, और सिर्फ मोथा कुल खरपतवार के लिए अलग दवाइयां होंगी। तब हम बात करते हैं धान में जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। चूँकि धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे राज्य की और ससमय इसकी बुआई किया जाए तो खरपतवार एक प्रमुख समस्या के रूप में आती है। खरपतवार का ससमय प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन देखा गया है कि अगर हम शुरू के 40 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हैं, अर्थात खरपतवारों का हम 40 दिनों के अंदर अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं, तो उत्पादन में

बढ़ोतरी हो जाती है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम खरपतवारों को ऐसे ही छोड़ दें, 40 दिनों तक उसका कोई नियंत्रण ना करें, तो हमारे खेत में जो है 50 से 70%, 75% तक उत्पादन में कमी आ जाती है। तो हम बात करते हैं खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए जैसे हमने पहले बताया कि खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 बड़े ग्रुपों में बांट सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार एवं मोथा कुल के खरपतवार। अब हम धान की आज अपने राज्य में 2 तरह से बुआई होती है। एक जो है धान की हम सीधी बुआई कर लेते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवाएं थोड़ा सा दूसरी प्रयोग होती हैं, और दूसरा है रोपित धान जिसको हम नर्सरी डालते हैं। नर्सरी के बाद हम मुख्य फसल में, मुख्य खेत में जो है 20-21 दिन बाद जो नर्सरी है, सीडलिंग है, उसकी रोपाई कर देते हैं। तो चूँकि जो रोपित फसल है उसमें एक सेचुरेटेड कंडीशन होता है, उसमें हम धान में कादवा लगा देते हैं जिसको हम पडलिंग कहते हैं, पडलिंग करके उसको रोपाई करते हैं, तो खरपतवार उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं धान की सीधी बुआई, जो आजकल बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है अपने क्षेत्र में, राज्य में। तो धान की सीधी बुआई हम जब किए हैं या कर रहे हैं, तो उसमें हमें खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि हम खरपतवार प्रबंधन के विभिन्न जो विधियां हैं उनका प्रयोग में लाएं। तो सबसे पहले अगर हम धान में धान की सीधी बुआई करना है तो हमें ध्यान देना होता है कि हम जो है खेत की एक गहरी जुताई कर दें गर्मी में। जो ही हमारा धान रबी फसलें जैसे गेहूँ है या दलहनी फसल है रबी की सीजन की, तो वो जनरली अप्रैल तक या मई के फर्स्ट सप्ताह तक जो है कट के खाली कर देते हैं खेत को। जो ही हमारा खेत खाली होता है गर्मी में गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है जो खरपतवार के बीज हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे चले जाते हैं। तो जब खरपतवार के बीज जो है एक बार ज़मीन में नीचे की सतह में चले जाते हैं तो उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, प्रकाश न मिलने से उनका जमाव नहीं होता है। तो पहला तो हमें खेत की गहरी जुताई करना है जिससे कि सरफेस लेयर पर जो भी खरपतवार के बीज हैं वो जमीन के नीचे चले जाएँ। दूसरा जो पेरेनियल वीड्स होते हैं, जो बहुवर्षीय खरपतवार हैं, जैसे मोथा है, दूब है, ये सभी कास है, ये सभी जो है शकर से या उसकी गांठों से फैलाव करते हैं। तो जब हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं एक बार, तो क्या होता है कि ये गांठे या इसके शकर से हैं ये सब सूख जाते हैं और आगे खरपतवार का प्रेशर जो है मुख्य फसल में कम हो जाता है। तो ये जरूरी होता है कि सबसे पहले हम गर्मी की गहरी जुताई करें, उसके बाद हम खेत की जब बुआई कर देते हैं तो दूसरा विधि है धान की सीधी बुआई में हम ब्राउन मैन्योर का प्रयोग कर सकते हैं, या धान की सीधी बुआई जब हम करते हैं तो उसमें हम 25 से 30 किलोग्राम बीज धान का लेते हैं, उसी में हम 30 किलोग्राम ढैंचा का बीज भी मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है,

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर, कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात,

नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दें। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप
2: इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल

0: पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं।

0: फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। दोस्तों, मंडे को आपका आखिरी एग्जाम है और वो एग्जाम है एपीपी 1-1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर प्राची हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिवीजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद उमा, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है एपीपी 1-1, उसके का रेडियो रिवीजन करेंगे। उसमें जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका टर्मिनोलॉजीज में इनोकुलम, इनोकुलेशन, पैथोजेनेसिस, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उनके डेफिनेशंस क्या क्या है, जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, व्हाट आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि पाइनियरिंग साइंटिस्ट एंटोन डी बेरी जो फादर हैं प्लांट पैथोलॉजी के, उनका कंट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, माइकेली पीएमए माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी बुक जो है नोवा प्लांटरम जेनरा, ये सब बुक्स भी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं उनको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, और साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड ये ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल टर्म्स में, प्लस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जैसे कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ई जे बटलर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक का नाम, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लस फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी जो है आपके एमके पटेल जी, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर और भी फंजी साइट्स में जैसे तिरुमला चार का कॉन्ट्रीब्यूशन, वायल नेने का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, उसके अलावा आप वायरोलॉजी में भी डिफरेंट वायरोलॉजिस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, M.W. वेजरिंग फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम दिया था, और भी जो उन्होंने वायरस टर्म्स भी दिया था, ये सारा जो क्लास में पढ़ाया गया है डिफरेंट वायरसेस का डिफरेंट साइंटिस्ट, फंजाई और उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उस फील्ड में, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस में डिफरेंट बेसिस पढ़ाया गया होगा, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, जैसे कि आपका जो सिस्टेमिक डिजीजेस हैं, लोकलाइज्ड डिजीजेस हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इपिडेमिक डिजीज, इंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज, स्पोरेडिक डिजीजेस, ये डिजीजेस क्या हैं, इनका डेफिनेशन, प्लस एग्जाम्पल्स फॉर ईच केसेस, एग्जाम्पल्स हर एक डिजीज का, एक एक एग्जाम्पल्स आप लोग एटलीस्ट मेमोराइज कर लीजिएगा। जैसे एंडेमिक में पोटैटो वाट है जिसपे डोमेस्टिक क्वारंटाइन है जो सिनकाइट्रेमिंडोबायोटिकम से होता है, फिर इसको ध्यान रखिएगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ परपिचुएशन के बेसिस पे जो डिजीज है, जैसे सीड बॉर्न डिजीजेस, सॉयल बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस, ओके, तो इन सारे को आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि सीड बॉर्न डिजीज में आपका इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज लूज स्मट ऑफ वीट है, तो इसको याद रखिएगा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी याद रख लीजिएगा। फिर सॉइल बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से हैं आपके, विल्ट, और वो किन से होते हैं ये याद रखिएगा। एयर बॉर्न डिजीजेस के भी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मेमोराइज करना है, जैसे कि वीट रस्ट हो गया आपका एयर बॉर्न डिजीज, आपका पाउडरी मिल्डिव है, और लीव स्पॉट्स, और जो भी डिजीजेज है जो एयर के थ्रू स्प्रेड्स होती हैं उनको भी आपको याद रखना है।

फिर डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल या पैथोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोकुलेशन टू कॉलोनाइजेशन स्प्रेड एंड अपियरेंस ऑफ द सिम्टम. जो पूरा साइकिल आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान रखना है. और हर स्टेप में, जैसे इनोकुलेशन क्या है, सबसे पहले जो अराइवल होता है पैथोजन का प्लांट सरफेस पे, उसके बाद वो अटैच करता है, उसके बाद फिर वो पेनिट्रेट करता है, फिर रिकॉग्निशन, इन्फेक्शन, जो भी होता है सारे स्टेप्स टिल द सिम्टम्स डेवलप्ड ऑन द प्लांट, ये सारा आप लोगों को मेमोराइज करना है. फिर ए बायोटिक एंड बायोटिक डिजीज, जैसे कि ए बायोटिक में आप लोग डिफरेंट डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं, जैसे कॉपर डिफिशियंसी से डिजीज होता है या फिर बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है आपका ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो उस तरह का सारा एग्जांपल्स आप लोग याद करें. जैसे कि जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है, तो जो ए बायोटिक या डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी से जो डिजीज होते हैं, इनका भी एक टेबल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया होगा, उसको भी आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है. और डिफरेंट डिजीजेज और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स भी, स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको पढ़ते वक्त आए होंगे, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है. फिर आपका हो गया फंजाई, वॉट आर फंजाई, फंजाई आपके उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई, जैसे कि सेल वॉल उनका काइटीन का है, जिसमें नॉन ट्रू माइकोटा में सेलुलोज का है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंजाई के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, तीनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है. फंजाई में आपका ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडीज आप लोग ध्यान रखिएगा. फिर स्पोर्स भी ध्यान रखिएगा कि ए सेक्शुअल कौन कौन से स्पोर हैं और सेक्शुअल कौन कौन से स्पोर्स होते हैं. जैसे ए सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडीज में मान लीजिए कि जैसे कि हम अगर डिस्कस करें तो सिनेमा है, सिनेमाटा, फिर स्पोरोडोकियम है. तो स्पोरोडोकियम किस फंगस में, एक एग्जांपल भी याद रखना है आपको. जैसे पिकनीडियम है तो उसका सेप आपका फ्लास्क सेप होगा, तो इसका सारे का एग्जाम्पल्स प्लस उसका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका सेप कैसा होगा, ये आपको मेमोराइज रखना है. अब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जैसे कि आपका क्लिस्टोथीशियम है, पेरिथीशियम है, तो सारे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का शेप वो किस तरह के होते हैं, प्लस वन एग्जाम्पल फॉर द ईच फ्रूटिंग बॉडीज कि वो किस फंगस में ये वाला, किस जीनस एंड स्पीसीज में फंगस के ये वाला फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडी. ओके, फिर आपका क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं. स्पेशली जो आपके न्यूअर क्लासिफिकेशन में एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, मतलब कि टिल द जीनस लेवल कि कौन कौन से किस ग्रुप ऑफ फंजाई में कौन कौन से जीनस आते हैं, फैमिली ऑर्डर क्या क्या है उसके अंदर में, और किस तरह का जो अगर कोई स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी या कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सब आप लोग को मेमोराइज करके रखना है. उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से. जैसे प्लाज्मोगैमी, अब रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी, ये सेपरेटेड होता है फंजाई का इन टाइम इन स्पेस. तो अब प्लाज्मोगैमी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को प्लाज्मोगैमी डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाएगा, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन. तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ इनके, ये मतलब किस तरह से होता है, जैसे गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है और किस फंजाई, एक एग्जाम्पल एटलीस्ट एक जीनस जिसमें ये होता हो, ये आप लोग को मेमोराइज करना है. फिर कारियोगैमी फंजाई में किस तरह से होता है, सेप्टेशन पैटर्न्स भी पढ़ लीजिएगा, किस तरह का सेप्टा किसमें बनता है फंजाई में. फिर बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरिया का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का आपका क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से, मतलब किंगडम जो है आपका उसके अंदर कौन कौन से फाइलम है, फिर क्लासेस, ऑर्डर, जीनस जो भी है सारा उसमें से आप लोग को मेमोराइज करना है. फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न्स है बैक्टीरिया आपका, जैसे कि पेरिट्राइकस, एट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और उनके एग्जांपल्स, ये सब आपके प्रोबेबली एग्जाम्स में आते हैं, किसी न किसी फॉर्म में तो आएगा ही ये सब. फिर उधर आप लोग मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटोजोअंस, ग्रीन एल्गी, इनसे थोड़ा सा जैसे ग्रीन एल्गीज वगैरह से कुछ माइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेजर क्वेश्चंस नहीं होते हैं. पैरासिटिक हायर प्लांट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पैरासिटिक हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके टोटल स्टेम पैरासाइट, कौन से हैं पार्ट

0: पार्शियल स्टेम पैरासाइट, फिर टोटल रूट पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट, और उनके एग्जांपल्स कि मतलब किस में आपका जैसे कसकटा है तो स्टेम, तो उसका आप लोगों को याद रखना है कसकटा, लोरेंथस, फिर वो कौन से मतलब उनके होस्ट प्लांट्स कौन से हैं, मतलब कौन सा पैरासिटिक प्लांट किसके किस प्लांट पे होस्ट करता है, तो वो उसको ध्यान रखना है आप लोगों को, मेमोराइज कर लेना है। फिर आपका वायरसेस, वायरसेस के डेफिनेशन, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर आपको बताया गया टीएमवी का, टोबैको मोजैक वायरस का, तो टोबैको मोजैक वायरस का स्ट्रक्चर जैसे वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट का बना होता है और किस में किस तरह का प्रोटीन कोट होता है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। और वायरस में आपका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस से भी क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 50-50 चांसेस है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आने का, हो सकता है कि आ जाए आपका। तो ट्रांसमिशन में आप लोग किस किस मेथड से ट्रांसमिट होता है वायरस, जैसे कि आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन है तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन किस में होता है, सीड के थ्रू ट्रांसमिशन, फिर आपका जो वेक्टर ट्रांसमिशन है जैसे इंसेक्ट से, फंजाई से ट्रांसमिशन, निमेटोड से ट्रांसमिशन, ये सब आप लोगों को डिटेल में क्लास में बताया गया है, तो इसको आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है। फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में आपको बताया गया होगा 7 प्रिंसिपल्स, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड थेरेपी, ठीक है 6 हुआ। तो इसको आप लोग कि किसमें मतलब अवॉइडेंस क्या है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स यानी कि कैसे आप डिजीज को अवॉइड कर सकते हो, एक्सक्लूजन में जैसे आपका एक्सक्लूजन में सीड सर्टिफिकेशन एंड क्वारंटाइन आता है, तो आप लोग क्वारंटाइन के बारे में कि क्वारंटाइन क्या है, मतलब किस तरह से क्वारंटाइन लगता है, ये सब चीजें जो भी आप लोग को बताया गया। फिर आईडियम, आईडियम का डेफिनेशन, वॉट इज आईडियम और कौन कौन से अप्रोचेज हैं आईडियम में, जैसे कल्चरल मेथड्स बताया गया होगा, डिफरेंट मेथड्स हैं कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इससे पॉसिबिलिटी होती है कि लॉन्ग आंसर्स में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर कभी कभी आ जाता है फिलअप में आ जाता है कि कल्चरल मेथड्स, जैसे कि कल्चरल डैश एंड डैश आर कल्चरल मेथड्स ऑफ, या फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इन मेथड्स के एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखें, जैसे सॉयल सोलराइजेशन किस में आ रहा है आपका, या आपका जो डीप समर प्लाविंग है, रॉगिंग है, तो ये सब इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड मतलब कौन सा प्रैक्टिस किस मेथड के अंदर आता है, तो ये आप लोगों को मेमोराइज रख करना है। इसके अलावा होल सोल क्लास में सब चीजें ऑलमोस्ट कवर हुई हैं आपकी, तो जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट,
1: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफी काम का साबित होगा। तो दोस्तों ये था आपका रेडियो रिविजन, कल जाकर बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक

आकर्षित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज़ को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीज़ें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए, आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।

0: आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: जीरो जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम रेडियो रिविजन में। दोस्तों, मंडे को आपका आखिरी एग्जाम है और वो एग्जाम है APP 1-1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर प्राची हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिविजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद उमा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 1-1, उसके का रेडियो रिविजन करेंगे। उसमें जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका टर्मिनोलॉजीज में इनोकुलम, इनोकुलेशन, पैथोजेनेसिस, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उनके डेफिनेशंस क्या क्या है। जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, व्हाट आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि पाइनियरिंग साइंटिस्ट एंटोन डी बेरी, जो फादर हैं प्लांट पैथोलॉजी के, उनका कंट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, माइकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी बुक जो है नोवा प्लांटरम जेनरा, ये सब बुक्स भी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं उनको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, और साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड ये ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल टर्म्स में, प्लस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जैसे कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ई जे बटलर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक का नाम, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लस फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी जो है आपके एमके पटेल जी, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर और भी फंजी साइट्स में जैसे तिरुमला चार का कॉन्ट्रीब्यूशन, वायल नेने का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, उसके अलावा आप वायरोलॉजी में भी डिफरेंट वायरोलॉजिस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, MW वेजरिंग, फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था, और भी जो उन्होंने वायरस टर्म्स भी दिया था, ये सारा जो क्लास में पढ़ाया गया है डिफरेंट वायरसेस का डिफरेंट साइंटिस्ट, फंजाई और उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उस फील्ड में, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस में डिफरेंट बेसिस पढ़ाया गया होगा, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, जैसे कि आपका जो सिस्टेमिक डिजीजेस हैं, लोकलाइज डिजीजेस हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इपिडेमिक डिजीज, इंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज, स्पोरेडिक डिजीजेस, ये डिजीजेस क्या हैं, इनका डेफिनेशन, प्लस एग्जाम्पल्स फॉर ईच केसेस, एग्जाम्पल्स हर एक डिजीज का, एक एक एग्जाम्पल्स आप लोग एटलीस्ट मेमोराइज कर लीजिएगा। जैसे एंडेमिक में पोटैटो वाट है, जिसपे डोमेस्टिक क्वारंटाइन है, जो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है, फिर इसको ध्यान रखिएगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ परपिचुएशन के बेसिस पे जो डिजीज है, जैसे सीड बॉर्न डिजीजेस, सॉयल बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस, ओके, तो इन सारे को आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि सीड बॉर्न डिजीज में आपका इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज लूज स्मट ऑफ वीट है, तो इसको याद रखिएगा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी याद रख लीजिएगा। फिर सॉयल बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से हैं आपके, विल्ट, और वो किन से होते हैं ये याद रखिएगा। एयर बॉर्न डिजीजेस के भी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मेमोराइज करना है, जैसे कि वीट रस्ट हो गया आपका एयर बॉर्न डिजीज, आपका पाउडरी मिल्डिव है, और लीफ स्पॉट्स, और जो भी डिजीजेस है जो एयर के थ्रू स्प्रेड्स होती हैं उनको भी आपको याद रखना है। फिर डिजीज साइकिल या पैथोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोकुलेशन टू कॉलोनाइजेशन स्प्रेड एंड अपियरेंस ऑफ द सिम्टम, जो पूरा साइकिल आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान रखना है। और हर स्टेप में, जैसे इनोकुलेशन क्या है, सबसे पहले जो अराइवल होता है पैथोजन का प्लांट सरफेस पे, उसके बाद वो अटैच करता है, उसके बाद फिर वो पेनिट्रेट करता है, फिर रिकॉग्निशन, इन्फेक्शन, जो भी होता है सारे स्टेप्स टिल द सिम्टम्स डेवलप्ड ऑन द प्लांट, ये सारा आप लोगों को मेमोराइज करना है। फिर ए बायोटिक एंड बायोटिक डिजीज, जैसे कि ए बायोटिक में आप लोग डिफरेंट

फोलेट डिफिशियंसी से जो डिजीजेस होते हैं, जैसे कॉपर डिफिशियंसी से डिजीज होता है या फिर बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है आपका ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो उस तरह का सारा एग्जांपल्स आप ले आते हैं। जैसे कि जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है, तो जो एबायोटिक या डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी से जो डिजीज होते हैं, इनका भी एक टेबल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया होगा, उसको भी आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। और डिफरेंट डिजीजेज और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स भी, स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको पढ़ते वक्त आए होंगे, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका हो गया फंजाई, व्हाट आर फंजाई, फंजाई आपके उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई, जैसे कि सेल वॉल उनका काइटीन का है, जिसमें नॉन ओमाइकोटा में सेलुलोज का है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंजाई के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, तीनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है। फंजाई में आपका ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर स्पोर्स भी ध्यान रखिएगा कि ए सेक्शुअल कौन कौन से स्पोर हैं और सेक्शुअल कौन कौन से स्पोर्स होते हैं। जैसे ए सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडीज में मान लीजिए कि जैसे कि हम अगर डिस्कस करें तो सिनेमा है, सिनेमाटा, फिर स्पोरोडोकियम है, तो स्पोरोडोकियम किस फंगस में एक एग्जांपल याद रखना है आपको, जैसे पिकनीडियम है तो उसका सेप आपका फ्लास्क सेप होगा, तो इसका सारे का एग्जाम्पल्स प्लस उसका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका सेप कैसा होगा ये आपको मेमोराइज रखना है। अब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जैसे कि आपका क्लिस्टोथीशियम है, पेरिथीशियम है, तो सारे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का शेप वो किस तरह के होते हैं, प्लस वन एग्जाम्पल फॉर द ईच फ्रूटिंग बॉडीज कि वो किस फंगस में ये वाला, किस जीनस एंड स्पीसीज में फंगस के ये वाला फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडी। ओके, फिर आपका क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जो आपके न्यूअर क्लासिफिकेशन में एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, मतलब कि टिल द जीनस लेवल कि कौन कौन से किस ग्रुप ऑफ फंजाई में कौन कौन से जीनस आते हैं, फैमिली ऑर्डर क्या क्या है उसके अंदर में, और किस तरह का अगर कोई स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी या कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सब आप लोग को मेमोराइज करके रखना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जैसे प्लाज्मोगैमी, अब रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी ये सेपरेटेड होता है फंजाई का इन टाइम इन स्पेस, तो अब प्लाज्मोगैमी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को प्लाज्मोगैमी डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाएगा, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन, तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ इनके ये मतलब किस तरह से होता है, जैसे गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है और किस फंजाई एक एग्जाम्पल, एटलीस्ट एक जीनस जिसमें ये होता हो ये आप लोग को मेमोराइज करना है। फिर कारियोगैमी फंजाई में किस तरह से होता है, सेप्टेशन पैटर्न्स भी पढ़ लीजिएगा किस तरह का सेप्टा किस में बनता है फंजाई में। फिर बैक्टीरियाज हो गया, बैक्टीरिया का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का आपका क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से मतलब किंगडम जो है आपका उसके अंदर कौन कौन से फाइलम है, फिर क्लासेस, ऑर्डर, जीनस जो भी है सारा उसमें से आप लोग को मेमोराइज करना है। फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न्स है बैक्टीरिया में आपका, जैसे कि पेरिट्राइकस, एट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और उनके एग्जांपल्स, ये सब आपके प्रोबेबली एग्जाम्स में आते हैं किसी न किसी फॉर्म में तो आएगा ही ये सब। फिर उधर आप लोग मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटोजोअंस, ग्रीन एल्गी, इनसे थोड़ा सा जैसे ग्रीन एल्गीज वगैरह से कुछ माइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेजर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पैरासिटिक हायर प्लांट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पैरासिटिक हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके टोटल स्टेम पैरासाइट, कौन से हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, फिर टोटल रूट पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट, और उनके एग्जाम्पल्स कि मतलब किस में आपका जैसे कसकटा है तो उसका आप लोगों को याद रखना है कसकटा, लोरेंथस, फिर वो कौन से मतलब उनके होस्ट प्लांट्स कौन से हैं, मतलब कौन सा पैरासिटिक प्लांट किसके किस प्लांट पे होस्ट करता है, तो वो उसको ध्यान रखना है आप लोगों को, मेमोराइज कर लेना है। फिर आपका वायरसेस, वायरसेस के डेफिनेशन, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर आपको बताया गया टीएमवी का, टोबैको मोजैक वायरस का, तो टोबैको मोजैक वायरस का स्ट्रक्चर जैसे वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट का बना होता है और किस में किस तरह का प्रोटीन कोट होता है।

0: तो ये सब आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। और वायरस में आपका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस से भी क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 50-50 चांसेस है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आने का, हो सकता है कि आ जाए आपका। तो ट्रांसमिशन में आप लोग किस किस मेथड से ट्रांसमिट होता है वायरस, जैसे कि आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन है तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन किस में होता है, सीड के थ्रू ट्रांसमिशन। फिर आपका जो वेक्टर ट्रांसमिशन है, जैसे इंसेक्ट से, फंजाई से ट्रांसमिशन, निमेटोड से ट्रांसमिशन, ये सब आप लोगों को डिटेल में क्लास में बताया गया है, तो इसको आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है। फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में आपको बताया गया होगा 7 प्रिंसिपल्स, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड थेरेपी, ठीक है, 6 हुआ। तो इसको आप लोग कि किसमें, मतलब अवॉइडेंस क्या है इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स, यानी कि कैसे आप डिजीज को अवॉइड कर सकते हो। एक्सक्लूजन में, जैसे आपका एक्सक्लूजन में सीड सर्टिफिकेशन एंड क्वारंटाइन आता है, तो आप लोग क्वारंटाइन के बारे में, कि क्वारंटाइन क्या है, मतलब किस तरह से क्वारंटाइन लगता है, ये सब चीजें जो भी आप लोग को बताया गया। फिर आईडीएम, आईडीएम का डेफिनेशन, व्हाट इज आईडीएम, और कौन कौन से अप्रोचेज हैं आईडीएम में, जैसे कल्चरल मेथड्स बताया गया होगा, डिफरेंट मेथड्स हैं कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इससे पॉसिबिलिटी होती है कि लॉन्ग आंसर्स में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर कभी कभी आ जाता है फिलअप में, आ जाता है कि कल्चरल मेथड्स, जैसे कि कल्चरल डैश एंड डैश आर कल्चरल मेथड्स ऑफ, या फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इन मेथड्स के एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखें, जैसे सॉयल सोलराइजेशन किस में आ रहा है आपका, या आपका जो डीप समर प्लाविंग है, रॉगिंग है, तो ये सब इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड, मतलब कौन सा प्रैक्टिस किस मेथड के अंदर आता है, तो ये आप लोगों को मेमोराइज रख करना है। इसके अलावा होल सोल क्लास में सब चीजें ऑलमोस्ट कवर हुई हैं आपकी, तो जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफी काम का साबित होगा। तो दोस्तों, ये था आपका रेडियो रिविजन, तो जाकर बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उन्नत कृषि, नमस्कार, ये है 90.8 MHz से यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, जिसमें हम बातें करते हैं किसान भाइयों की। आज किसान भाई, जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, खेती बाड़ी के नए नए गुण अपना रहे हैं, और इसी में से एक आता है जलवायु अनुकूल या मौसम अनुकूल खेती। जी हाँ, आज हमारा विषय है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। और आप सभी को पता है कि वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ख़ास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय पर खास चर्चा होगी। आज हमारे बीच हैं वरीय वैज्ञानिक अंशुमन कोहली, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं ये, और आज पूरी जानकारी मिलेगी हमें इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद, किसान भाइयों को, आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज कहा जाता है कि जैसे कि आज का ये एरा है, उसमें मौसम अनुकूल या जलवायु अनुकूल खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये समझा दें, हमारे श्रोताओं को आप ये समझाएं कि मौसम अनुकूल खेती और जलवायु अनुकूल खेती में क्या अंतर है, क्या है ये।
2: धन्यवाद। किसान भाइयों को जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले कुछ और जानकारी मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं, और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व समान ही हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि तापमान, वायु का दबाव, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इत्यादि। और यदि हम बात करें कि आज गर्मी अधिक है, आज उमस अधिक है, आज वर्षा हो रही है, अथवा आज तेज हवा चल रही है, तो यह तो ही मौसम की बात। परंतु यदि

0: हम कहें कि मेघालय में वर्षा अधिक होती है या जून में भागलपुर में उमस अधिक होती है। भागलपुर में वर्षा का वार्षिक औसत 900 मिलीमीटर है इत्यादि। तो यह बात है जलवायु की। अब मौसम के अनुकूल कृषि क्या हुई, जैसे कि रबी और खरीफ की फसलों की खेती, जो कि आमतौर पर सभी किसान करते हैं। कुछ प्रगतिशील किसान ग्रीनहाउस पद्धति से गैर मौसमी फसलों की भी खेती करते हैं तथा भरपूर लाभ उठाते हैं। यह सब अपनी जगह ठीक है, पर जलवायु अनुकूल कृषि क्या हुई, जो हमारे दीर्घकालिक मौसम का जो औसत है उसके अनुरूप की जाए।
1: जी, तो सर आपने अभी कहा था शुरुआत में कि जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो बेहतर तरीके से अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दें तो और ज़्यादा उन्हें ज्ञान हो जाएगा इनके बारे में।
0: जी, तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम दीर्घकालिक मौसम के औसत के हिसाब से खेती करें तो वो होगी जलवायु अनुकूल कृषि, यानी उस जलवायु के हिसाब से खरीफ में कौन सी फसलें किस पद्धति से लगाई जाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, तो वो जलवायु के अनुकूल हो सकती हैं। अब किसी भी पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति वहाँ की जलवायु के अनुसार ही अवतरित होते हुए पनपे हैं। सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों की पारंपरिक फसलें अधिकतर जलवायु के अनुकूल ही हैं। जो हमारी पुराने ज़माने से जो पारंपरिक फसलें चल रही थीं वो सब जलवायु के अनुकूल ही हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या एवं प्रगति की होड़ में अक्सर गैर टिकाऊ प्रक्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को कम करने के लिए कृषि में जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही स्तर पर परिवर्तन करने होंगे। सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों स्तर पर, अर्थात किसान के व्यक्तिगत स्तर पर तथा एक वृहद भौगोलिक स्तर पर फसलों का चयन जलवायु के अनुकूल किया जाना चाहिए। मसलन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ के दौरान धान की जगह मक्का का चुनाव करने से भूमिगत जल स्रोतों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह रबी के दौरान गेहूं के स्थान पर वर्षा सिंचित दलहनी एवं तिलहनी फसलों यथा चना, मसूर, खेसारी, तिस्सी, सरसों इत्यादि का चयन पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ माना जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि जलवायु अनुकूल फसलों के चुनाव से हम उस पारिस्थितिकी में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, प्रकाश, वायु अथवा जैव संसाधन कुछ भी हो सकते हैं।
1: तो जैसा कि डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। तो अगर हम बात करते हैं वर्षा जल संचयन की, हम इसे करके कैसे मतलब जलवायु अनुकूल कृषि की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: जी, अब आज की चर्चा का विषय चूंकि जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन है, आगे की चर्चा में हम जल प्रबंधन पर ही केंद्रित रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तम फसलोत्पादन में सिंचाई और जल निकासी का बहुत महत्व है। किसी पारिस्थितिकी में वर्षा का होना या ना होना, किस वेग से होना, कितनी वर्षा होना इत्यादि वहाँ की जलवायु का प्रतीक है। इसी तरह तापमान, आर्द्रता इत्यादि, यह सब भी वहाँ की जलवायु को डिफाइन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को भान है, हर फसल के लिए जल की आवश्यकता कितनी हो यह फसल के साथ साथ मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करता है। अर्थात फसल का चुनाव व जलवायु, इन दोनों पर ही यह निर्भर करता है कि जल की आवश्यकता आपकी फसल के लिए कितनी होगी। सिंचाई के लिए जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यथा जीवाश्म ईंधन, भूमिगत जल स्रोत, सतही जल स्रोत इत्यादि, उन सभी का योगदान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सराहनीय है, आशातीत है। साथ ही साथ कृषि हेतु भूमिगत जल के प्रयोग से भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। इसकी वजह से गैर

0: कृषि कार्यों के लिए जल और अधिक गहराई से निकाला जाता है, जिससे कि जल के उपभोग की पर्यावरण लागत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सतही जल के सिंचाई हेतु प्रयोग से सतही जल की उपलब्धता गैर कृषि कार्यों के लिए घट जाती है। वर्षा जल का संचयन करने से जल के भूमिगत एवं सतही संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है, साथ ही साथ कृषि की पर्यावरण लागत भी कम की जा सकती है तथा कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वर्षा जल संचयन के द्वारा परंपरागत जल स्रोतों के दोहन को कम करके कृषि की पर्यावरण लागत को कम करते हुए जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि के सभी क्रियाओं को बेहतर ढंग से करते हुए तथा जल की बचत करते हुए कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें लिमिट लेस तो नहीं है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी में से एक है हमारा जल। जी हाँ, क्योंकि ये हमें बचाना, इसे संरक्षित रखना है, और क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी में अगर किसान भाइयों से हम इसे जोड़ें, तो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्षा जल वो संचयन करें तो बेहतर होगा कि उनकी जो पानी है उसकी बर्बादी कम होगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे वो वर्षा जल संचयन कर सकते हैं अपनी खेती के लिए, और इसका भरपूर इस्तेमाल वो अगर वर्षा ना हो तो उस समय भी कैसे कर सकते हैं, वो बताएं।
0: जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाई अपने खेतों में वर्षा का जल संचयन करें। कैसे करें, इस पर अब हम थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए मूल मंत्र एक ही है कि खेत का पानी खेत में ही रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि खेत में जो वर्षा होती है उसका जल खेत में ही इकट्ठा रहे, बाहर बह के ना जाने पाए। इसके लिए किसान भाइयों को खेत में वर्षा जल संचयन हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा तथा सदैव तैयार रहना होगा। अपने खेत में प्रबंध रखने से यदा कदा पड़ने वाली वर्षा का जल संचयन किया जा सकता है। जैसे कि खेत के चारों ओर की मेड़ मजबूत एवं ऊंची रखनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी खेतों के अंदर ही एकत्रित रखा जा सके तथा खेत की जमीन में पानी को रिसने के लिए समुचित अवसर मिल सके। और दूसरी बात कि खेत में समुचित मात्रा में कार्बनिक खाद का व्यवहार निरंतर करना चाहिए ताकि मृदा की भौतिक अवस्था स्थिर एवं कायम रह सके तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अच्छी बनी रहे। इसके बाद तीसरी बात कि यथासंभव न्यूनतम जुताई तथा श्रेष्ठ फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाना चाहिए, जो कि मिट्टी की भौतिक अवस्था को अच्छा रखने में सहायक होते हैं तथा वर्षा जल संचयन में मददगार साबित होते हैं। फिर खेतों को जोत के अनुसार लेजर लेवलर इत्यादि उपकरणों की मदद से समतल करना चाहिए ताकि सिंचाई एवं वर्षा जल नियंत्रित रखा जा सके तथा समान रूप से पूरे खेत में सिंचाई एवं जल निकासी की व्यवस्था की जा सके। और फिर किसान भाइयों को यह भी चाहिए कि अपने खेतों में सदैव वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप ही कीटनाशक एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि अपरिहार्य स्थिति में खेत से निकासी किया गया जल पर्यावरण को दूषित ना कर सके। इसके बाद फसल चक्र का सही चुनाव से एक फसल के बाद मृदा में बचा हुआ जल अगली फसल के प्रयोग में आ सकता है। अतः पारिस्थितिकी के अनुसार फसल चक्र का चुनाव करने से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वर्षा जल का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। एक और बात कि आकस्मिक एवं असामयिक वर्षा तथा तीव्र गति की वर्षा होने की स्थिति में खेतों से जल निकासी का भी समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। निकासी किया गया जल किसी गड्ढे या पोखर में इकट्ठा करने से हम आने वाले दिनों में उसको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर अंत में एक बात कि खेत के बाहरी किनारों एवं मेड़ों पर साल भर हरी रहने वाली चारे की फसल या घास जैसे कि हाइब्रिड नेपियर इत्यादि लगाने से वर्षा जल का बहाव धीमा होने के साथ साथ मृदा का अपरदन भी कम हो सकता है तथा मृदा की भौतिक अवस्था भी अच्छी बनी रहती है। तो यदि किसान भाई इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे

0: सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है और इस परिस्थिति में सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ऐसी व्यवस्था होने से हमारा कृषि तंत्र एक बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की ओर अग्रसर होगा तथा जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ व्यवस्था का हिस्सा बन सकेगा।
1: जी, तो इस प्रकार आपने श्रोताओं जाना कि कैसे जलवायु अनुकूल कृषि में जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच थे डॉक्टर अंशुमन कोहली, जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस खास विषय के बारे में। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ, जुले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर। और जहाँ तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी। तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी ख़ास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है। ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की। बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है। और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में। और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: मैडम। बांस क्या होता है? तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे, बांस जो है वो एक, इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दीजिए।
6: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसके हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है। बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है। और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि भी वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये। और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। देश का लगभग 60% जो बांस है

0: का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है, और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुल्गैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में ये सारी प्रजातियां हैं।
1: जी जी, बांस लगाने की विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे।
0: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है पहला है बीजों की सीधी बुआई। ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं, और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है, और एक सप्ताह के अंदर ही एक पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है। फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं, और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर उसमें हम लोग ताज़ा बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी सफाई करते हैं। अगर हमें उस समय पर नहीं लगाना है तो उसको हम लोग सुखा कर वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं। बोने से पहले बीजों को 48 घंटे पानी में भिंगो कर रखना चाहिए, और फिर जिस पानी में उसे भिंगाए हैं हम लोग उसमें हम लोग को कवकनाशी को मिला देना चाहिए ताकि बीजों पर कवक का कोई भी प्रभाव ना हो। जो सीधे बीजों की बुआई हेतु उपजाऊ भूमि में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की खुदाई करके बीजों को लगाना चाहिए, और जो हम लोग उसको लाइन वाइज लगाते हैं तो उसमें हर एक लाइन के बीच में 4 से 6 मीटर का अंतराल होना चाहिए, और बोने के बाद हम लोग उसको हल्की मिट्टी से ढक देते हैं। दूसरी विधि जो है जिसमें हम लोग लगाते हैं बीजों को तो उसमें है पौधा रोपण। इसमें हम लोग सबसे पहले पौधे को नर्सरी में उपजाते हैं, जिससे कि जो हम लोग इस विधि से जब लगाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियां बना के जो ऊपर क्यारियों में हम लोग इसको लगाते हैं, और एक सप्ताह में ही जो नन्हे पौधे बांस के उगते हैं उसको हम लोग थैलियों में डालकर, जिसको हम लोग पॉलीथीन बैग भी कहते हैं, उस पॉलीथीन बैग में डालकर उसको हम लोग हल्की सिंचाई देते रहते हैं। इस सामान्यतः 1 से 2 माह में जो पौधा है वो रोपण हेतु तैयार हो जाता है, और फिर हम लोग को जहाँ भी उसे लगाना है उसको हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। जो जिन गड्ढों में हम लोग को लगाना है, जो हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं वो 30x30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और हम लोग को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि जहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जब बारिश हो तो वहाँ ज़्यादा जल जमाव की परेशानी ना हो, और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे जो ये चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, तो हम लोग को उसका भी ध्यान रखना है ताकि इसका जो हम लोग अच्छे से इसको लगा सके। तीसरी विधि जो आती है बांस को लगाने में उसमें हम लोग प्रकंदों द्वारा रोपण। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकंद जो निकलते हैं बांस से तो हम लोग प्रकंदों को समूह में भी लगा सकते हैं और एकल प्रकंद में भी हम लोग लगा सकते हैं। एकल प्रकंद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग बिना किसी इसको नुकसान किए हुए लगा सकते हैं, और इसमें हम लोग एक उचित दूरी हम लोग को लगाना होता है ताकि जो जब बांस का पौधा बड़ा हो तो उसमें किसी तरीके का दोनों एक दूसरे जो दो पौधे निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। जो अगली विधि है वो है ऑफसेट रोपण। ये सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसके लिए 1 से 2 वर्ष की आयु का कलम सबसे उपयुक्त होता है। यदि कलम अधिक बड़ा है तो 1 सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर और एक

0: से 1.5 सेंटीमीटर उसको तिरछा काट कर जिस प्रकंद से वह पैदा हुआ है उसे जड़ सहित उसी आकार में हम लोग लगाते हैं, और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम उसमें एक आँख हो। प्रकंद को इतनी ग्रीवा से काटा जाता है ताकि जो हम लोग कटाई कर रहे हैं तने का, उसमें कोई भी दरार या फिर जो मातृ तना है उसमें कोई भी नुकसान ना हो। और प्रकंदों को हम लोग एक आद्र युक्त बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो उसमें। कलम के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेजी से बढ़ें और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है और जहां हम लोग को लगाना है वहां पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियां जिससे हम लोग बांस की खेती आसानी से कर सकते हैं
1: जी। इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं, बांस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
0: बांस की बात करें तो बांस में जो प्रमुख रोग है सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की जरूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन भारत और जापान में और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सीन है थिया बेडाजोल है इन फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूट मूट जो कि भारत चीन कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा, मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो ये एफिड्स है वो प्राकृतिक

0: शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ब्लैक मिल्ड्रियो, ये जो है आप सब, इसमें भी क्या होता है कि काले रंग की चूर्ण, आपको ऐसा लगेगा कि पत्तों के ऊपर एक चूर्ण, काले रंग का चूर्ण आ गया है, और ये भी डंठ, जैसे जैसे संक्रमण फैलता जाएगा ये पत्तियों के ऊपरी सतह से नीचे निचली सतह पर, और फिर जो छोटी छोटी शाखाएँ होती हैं उन पर ये फैलने लगती है। इसके लिए भी हम लोग जो फफूंदी नाशक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट में देखें कि इसको कैसे हम लोग रोकेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को जो कैनोपी होती है, जो कैनोपी है पौधे की, उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे, मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले, कहीं भी उनको छाया ना हो, क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है।
1: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
0: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है, तो इस वजह से जैसा हम पहले भी हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में, और छप्पर जो होता है जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी और बहुत सारे कृषि यंत्र, और अब जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक, जैसे हम लोग पानी की बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का, जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का, एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का, आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स में हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा, आपका अलमीरा, और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है, जो जो कास्ट है, जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है। तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि मॉडल्स, कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
1: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार के तरफ से। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है, और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग सहकारी

सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदावार के साथ साथ उचित किस्मों

0: युवक हैं उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बास मिशन का हम लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार, नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना। बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती मुनाफे की हो सकती है। किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का विकास करना और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको समाप्त करते हुए सीधे जो ये राष्ट्रीय मिशन है इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना ताकि सबसे ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी खेती पर एक विशेष चर्चा। आशा करते हैं आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी और अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं,
4: जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात।
3: खसरा रुबेला है बीमार।

0: सारी घातक जिसे मिटाना है जड़ तक।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, ये है 90.8 मेगा हर्ट्ज। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं आप सभी को बता दूं कि हम उन्नत कृषि की बात करते हैं और ऐसे में जैविक खाद की बात करना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि जैविक खाद हमारी फसलों के लिए सुरक्षित हैं, हमारी मिट्टी के लिए सुरक्षित हैं, हम सभी के लिए सुरक्षित हैं। तो जैविक खाद आप कैसे बनाएंगे, घरेलू उपाय क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक हमारा जो आज है, विषय है, वो है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय। और इस विषय को लेकर, जी हाँ, मृदा विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सोनल कुमारी हमारे साथ हैं, जो आप सभी को एक पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में, घरेलू उपाय के द्वारा आप जैविक खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैविक खाद होता क्या है, क्या है ये?
2: मैं सोनल, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की सॉइल साइंटिस्ट हूँ, उस पद पे कार्यरत हूँ, और मैंने आज का विषय चुना है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय क्या हैं, इसको कैसे हम घर पे ही रह के बना सकते हैं। ये आज के जरूरत समय में सारे लोग जाने, बहुत जानकारियां हमें गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे ये जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म का अगर कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो हमारे जो भी रिमोट विलेजेज है वहाँ पर लोग एटलीस्ट रेडियो के अभी भी शौकीन है, रेडियो को सुनते हैं। अगर आप मेरी बातें आप तक पहुँच रही है तो आप जरूर इसको सुनेंगे, कैसे हम घर पर रहते हैं, हमारे पास जो भी किचन वेस्ट अवेलेबल हैं, हम आपके पास उतने जगह जमीन नहीं है, तो कैसे उस लिमिटेड रिसोर्स में हम अपने चीज़ों को, अपने जैविक जो हमारे जैविक चीज़ें हमारे हैं, जो हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जो हमारे प्रकृति में डेली उसको एज अ कचरा समझ के, वेस्ट समझ के उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, उसका कैसे हम सही यूटिलाइज कर सकें, उससे कैसे हम एक जैविक खाद का बना सकें, उसका सही से उसका संरक्षण कर सकें, सही से उसको स्टोर कर सकें, एंड देन उसके फर्दर हम जो हमारे फसल है, हमारे जो हमारे सीजनल हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो भी हम साग सब्जी घर में भी अपने लगाते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसमें ही प्रयोग कर सकें। तो हमारा आज क्वेश्चन हमारे लिए है, जैविक खाद क्या है। पहले हम जैविक खाद के बारे में जानेंगे, जैविक खाद आखिर है क्या, हम क्यों जैविक सबको आज के डेट में बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, एवरीवन इज टारगेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी या ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, और जैविक खेती में जही सी जो खाद प्रयोग करते हैं वो जैविक खाद होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैविक खाद जो है एक प्राकृतिक खाद है, जिसमें और कुछ नहीं, कोई भी रासायनिक पदार्थ या हमारे जो होते हैं उसमें प्रयोग नहीं किया जाते हैं। जो भी हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पौधे हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, हमारे जो भी जैविक और इसके अलावा जो हमारे अन्य जैविक अवशेष हैं, उस जैविक अवशेषों से उसको सड़ा गला कर, और या जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रयोग से जो खाद तैयार किया जाता है, उसको ही हम जैविक खाद कहते हैं। यह पूर्णतः कम्प्लीटली जिसको बोलते हैं, ये प्रकृति रूप से ही प्राप्त की जाती है। जैविक खाद में जैसे हम जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे जो मुख्य पोषक तत्व सत्र है, हमारे इसेंशियल जिसको बोलते हैं, उसको प्रदान करने को, जिससे हमको पौधे प्रदान कर सकें, उसको इसके लिए हम डालते हैं अपने पौधों के लिए, वैसे ही हमारा जैविक खाद है। जैविक खाद में जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो सारे जब ये विघटन इसकी हो जाती है, तो सारे इसमें आवश्यक पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, और जब इसको हम अपने मट्टी पर अप्लाई करते हैं, मृदा पर अप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारे फसल है उसको उस सारे आवश्यक पोषक तत्व को वहाँ से प्रदान करते हैं, और वो इसके साथ साथ वो तो प्रदान करते ही करते हैं। और जैविक जैसे मैं बोली रही, बिल्कुल कम्प्लीटली पूर्णतः यह प्राकृतिक रूप से होता है, तो मिट्टी का जो हमारा गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है, उसकी जो हमारे प्रॉपर्टी है, उसकी जो गुणवत्ता है उसको कभी घटाता नहीं है और बढ़ाता ही है।
1: जी, अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने की विधि की, तो कैसे बनाया जा सकता है घर पर?
2: हाँ, अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, हम जहाँ भी जिस लोकेशन में रहते हैं, वेदर हमारा चाहे हमारा बहुत बड़ा लोकेशन हो, छोटा लोकेशन है, चाहे बहुत छोटे से घर में आप रह रहे हैं, 1 BHK घर में रह रहे हैं, गांव में बहुत कम छोटे किले हैं, बहुत हमारे जो मार्जिनल किसान हैं, हमारे बहुत छोटे स्तर के जो किसान हैं, उनके पास उतने जगह जमीन नहीं होते हैं, तो उनके पास जो ही रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ से तो वो अपना जैविक खाद बना ही सकते हैं। क्योंकि किचन जो हमारा रसोईया हम जब खाना पकाते हैं, तो बहुत सारे हमारे फल साग सब्जी उसके जो छिलके आते हैं, तो उस साग सब उसको हम क्या करें, अगर आपके पास मवेशी है तो मवेशी को देते हैं, मवेशी का वो भोजन हो जाता है, नहीं तो अगर नहीं है तो वो ऐसे आप वेस्ट कर देते हैं, उसको वेस्ट करने से बेटर है उसको हम कंपोस्ट खाद तैयार कर लें, जैविक खाद तैयार कर लें। तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन कुछ विधियों के बारे में बताऊँगी मैं, जिसको आप बहुत आसानी तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं, जिससे कौन कौन सा हमारे विधियाँ हैं जिसको हम घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं।

एक खाद हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम घर पे ही तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं किचन वेस्ट खाद। जिसको किचन वेस्ट खाद मतलब कंपोस्टिंग करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स है कंपोस्टिंग। किचन वेस्ट जो हमारा है, किचन वेस्ट का मतलब जो हम रसोई में हमारे वेस्ट चीज़ मिलते हैं। मैंने बोला जैसे ही बोला आपको फल होते हैं, साग होते हैं, सब्जी होते हैं, इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं उसको तो हम उतार फेंकते हैं ना, उसको तो हम नहीं खाते हैं, उसको हम कंज्यूम मनुष्य नहीं करता है, तो उसका प्रयोग हम खाद बनाने में कर लेंगे। उसी से जो खाद तैयार होता है उसको हम किचन वेस्ट खाद कहते हैं। अब इसके लिए जैसे मान लो आप साग सब्जी कुछ भी सब्जी घर में बनाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उसके लिए एक रेसिपी लोग बोलते हैं ना। रेसिपी के लिए हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हिंदी में अगर बोले तो सामग्री, क्या क्या उसमें सामग्री लगेंगे। अगर हम पनीर प्याजा की बात करें तो हम बताते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। वैसे ही हमारा खाद है, खाद को भी हम जब तैयार करते हैं ना उसके लिए हमें कुछ कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में बोले तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो ऐसे ही हम जब किचन वेस्ट खाद की बता रहे हैं तो हम पहले बताएंगे आपको क्या क्या इसमें सामग्री आपको लग जाएंगे बनाने के लिए। पहले तो आपको जो भी हमको रसोई में हमारे कचरा, जिसको कचरा ना बोले तो बेटर होगा, कचरा बोले बैड टर्म्स हो गया, उसको हमारे लिए हम उसको वेस्ट समझ रहे हैं, बट इट इज नॉट वेस्ट। वो वेस्ट नहीं है, वो हमारा धन है, उससे हम एक बढ़िया बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो कचरा ना बोल के मैं रसोई में जो भी हमारे फल सब्जियाँ, जो चाय पत्ती होते हैं, अंडे के छिलके हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े आपके हैं, जो भी हम सब्जियाँ खाते हैं उनके जितने छिलके हैं, आप उनको क्या करें एक जगह इकट्ठी कर रखें। और हम पेड़ पौधे कहीं भी आपको देखते हैं सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं हमें, और नहीं भी कुछ हुआ था, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे कागज को ऐसे वैसे फाड़ कर फेंक देते हैं, बहुत सारे हम जिसके हम न्यूज़पेपर आते रहते हैं उसके भी टुकड़े मिल जाते हैं, उसके भी वो सब चीज़ बहुत बर्बाद होते हैं। तो कागज को टुकड़े को भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हैं। और मिट्टी, थोड़ी मिट्टी तो कहीं भी आपको सबको अवेलेबल हो सकते हैं, वेदर वो बहुत ज़्यादा एक मेट्रोपोलिटन सिटी में रह रहे हों, अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, या रूरल एरिया में, या रिमोट एरिया में रह रहे हैं। इतनी चीज़ें तो आपको किसी को अवेलेबल हो जाएंगे। तो सामग्री क्या क्या आपको लगेगी, जो भी हमारे रसोई के हमारे जो भी रसोई समय जो बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स आप बोल लो, हमारा खाना बनाने के बाद जो भी बचते हैं, मतलब फल सब्जियां के छिलके हो गए हैं, अंडे के छिलके हो गए हैं, चाय पत्ती बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाते हैं, बचे हुए भोजन टुकड़े हो गए हैं हमारे, साग सब्जी के जो भी हमारे छिलके हो गए हैं, कागज के टुकड़े हो गए, सूखी पत्तियां हो गई, थोड़ी सी मिट्टी है हमारी सामग्री हो गई। और इसकी विधि बनाने के लिए जब ये चीज़ हम बोलते हैं कुछ हमें बनाना है, अगर मैं बोलूँ चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो इट मीन्स हमें कुछ ना कंटेनर चाहिए इसको बनाने के लिए, उसको हवा में तो हम नहीं बना सकते ना, कंटेनर आपको लगेंगे। तो ऐसे ही है, जब हमको इसको बनाना है, जब इसकी सामग्री की बात करें तो जाहिर सी इसके लिए हमको कुछ बनाने की चीज़ चाहिए, तभी तो हम इसको बना पाएंगे। वेदर मेरे पास चाहे मेरे पास कंटेनर रहे, एक कंटेनर का हम व्यवस्था कर ले, नहीं तो किसी के पास अगर जमीन है तो गड्ढा खोन ले, और गड्ढा भी ऐसा खोनना है, कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो, जिससे हवा आ भी सके, जा भी सके, और नमी भी उतना ही मेंटेन रख सके जितने हमें नमी चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान में हमको रखना है। फिर वो क्या, अगर मान लो आपके पास नहीं ज़्यादा जमीन है, छोटा सा कोई प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें छोटे छोटे आपने छेद कर दिया जिससे हमारा हवा पास होता रहे, हवा आता रहे जाता रहे, जिसको हम इंग्लिश वर्ड्स में बोले तो एरेसन बोलते हैं, मतलब हवा का आदान प्रदान होता रहे, और हमारा मॉइस्चर भी जिसको नमी बोलते हैं हिंदी में वो मेंटेन रहे। ये चीज़ें का हमें व्यवस्था कर लेना है। फिर क्या करना है हमको, उस जो हमारा कंटेनर हमने लिया है, जो हम डब्बा एक बोल लें अगर हिंदी में बोलते हैं, एक डब्बा लें, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा किचन वेस्ट है, जो हमारा रसोई में जो हमारे आ रहे हैं, जो भी हमारे सब चीज़ के बचे हुए जो जिसका मैंने बताया जिक्र किया, उसको एक लेयर डाल देना है आपको, उसको पहले बिछा देना है, पहला लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारी थोड़ी मिट्टी है उस थोड़ी मिट्टी को डाल देना, उस फिर सेकंड लेयर जिसको बोलते हैं सेकंड लेयर, उस सेकंड लेयर मिट्टी के लेयर को डाल देना है। फिर से इसी मिश्रण को आपको चार पांच लेयर करके ऐसे बनाने हैं, और फिर से इस मिश्रण को क्या करना है आपको, हर दो तीन दिन पे या उसको आपको हिलाते रहना है। हिलाना क्यों है, हिलाने के पीछे रीजन है, उसमें जो एरेसन होता है, उसमें जो हवा है, जो नमी है, जितना चाहिए उतना उसमें मेंटेन रहे, उसमें जितना हमें जरूरत है उतना उसमें रहे वो, इसलिए हिलाते रहना उसको। और उसको ज़्यादा भी नमी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, इसको कोशिश करना है कि थोड़ा छायादार जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट सूर्य का धूप ना पड़ता हो, तो और थोड़ा सूखा रखें, नमी भी उतना ही रहे जितना जरूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं पानी उसमें से निकल रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं जैसे हम बोलते हैं, नहीं, नमी जितनी जरूरत है उतना ही, कोशिश करें हल्का भुरभुरा टाइप का, सूखे टाइप का हल्का रहे। और फिर इसको ढक कर रखना है, और यही इस ढक के बस आपको डालते रहना, आप देखेंगे 2 से 3 महीने जैसे होगा ये भीतर ये खाद तैयार हो जाएगा। जैसे आपने जो डाला था जिसके बड़े बड़े टुकड़े थे, आप वो टुकड़े को देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए हैं, और सूर्य हल्के भूरे से काले रंग में बदल जाएंगे, और इनकी गंध से भी पहचान सकोगे कि ये हमारी खाद क्या है, तैयार हो गई है। ये तो पहला हमारा रहा जो हमारा किचन खाद, जिसको हम किचन वेस्ट खाद बोलते हैं। और दूसरी भी विधियाँ हैं जिसमें अगर मान लो इसी खाद में प्रयोग करने में मैंने अगर जिसको केचुआ होता है, केचुआ का प्रयोग कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस खाद को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको, हम केचुआ खाद बोलते हैं। तो इसकी भी सामग्री की हम बात कर लेंगे, क्या क्या हमें सामग्री इनको लगेगी बनाने के लिए। इनकी सामग्री में आपको केचुआ लगेगा ही लगेगा, जब मैंने केचुआ खाद ही बोला तो केचुआ से ही तैयार होगा।
रसोई का हमारा जो कचरे हो गए।

हमारे जो भी हमारे फल साग सब्जी जितने अंडे के छिलके वो हो गए वो सारे लगेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, पहले वाली विधि में बताया। दूसरी सूखी पत्तियां भी बताया था, गोबर भी मैंने आपको बताया था। गोबर आप याद रखिए, गोबर जब भी डालना है कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर डालिएगा, कि ताजा गोबर जो रहता है ना उस पर जल्दी हमारे जो सूक्ष्म जीव है ग्रो करने का ज्यादा चांस रहता है, अटैक ज्यादा करते हैं वो। तो कोशिश कीजिए 15 से 20 दिन पुराना गोबर ले लीजिएगा। और नमीदार मिट्टी जो हमारी होती है वो मिट्टी का थोड़ा हमको प्रयोग करना है। इसके लिए भी हमें क्या लगेंगे, आपके पास डब्बे हैं तो वो सही है, अगर नहीं है तो आप एक बक्सा ले भी सकते हैं, उसको छेद नुमा बना देंगे जिसे हमारा हवा का आदान प्रदान होता रहे। और फिर उसमें हमें क्या करना है, एक नमी की मिट्टी जो हमने बोला उसको बिछा देना है। फिर उसमें हमें क्या करना है, आपको जो हमारे रसोई के हमारे कचड़े आए सूखी पत्तियां उनको क्लियर बना देना है। फिर हमारे जो केचुए लगे, केचुए के हम मैं ये आपको यहाँ नहीं बताऊंगी कितना स्क्वायर फीट का बना रहे हो, जब हम कभी अपने जहाँ कॉमर्शियल इसकी खाद की प्रोडक्शन करते हैं इतना स्क्वायर फीट के लिए हमको इतना 1500 तो 2000 केचुए छोड़ने पड़ते हैं, उसमें लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ हमें कोई तय नहीं है, हम अपने घर के लिए बस जो डेली यूज में हम जिसको बर्बाद करते थे फेंक देते हैं रोड पर, ऐसी कचरा फैलता है देखने में हमारा अच्छा नहीं लगता है, जो भी हम जगह पर रहते हैं गंदगी फैलती है, उससे अच्छा है कि इसका हम खाद का प्रयोग कर लें। तो जैसा आप कंटेनर ले लें उसके अनुसार अपनी सूझबूझ को प्रयोग करते हुए आप केचुओं का प्रयोग कीजिए। कितना इसमें अगर बड़ा सा कंटेनर है, मान लो 200-500 लीटर का कंटेनर है, तो आप उसमें कितना केचुआ जाने जिस समय केचुआ बन जाए। केचुआ क्या करता है, जो भी हम ये सब डाल रहे हैं हमारे रसोईया से जो हमारे पदार्थ मिले हैं, जो हमारे किचन वेस्ट मिले हैं, जो हमें सूखी पत्तियां हम डाल रहे हैं, उसको केचुआ क्या करता है, मट्टी हम जो नवीदार डाले उसका ये भोजन का है, भोजन का स्रोत है। और ये जो भोजन के स्रोत में ये खाता है तो खाएगा तो क्या करता है, जब ये उसका काष्ठ निकलता है खाने के बाद जो उसकी काष्ठ निकलते हैं जिसको हम उसका क्या बोल सकते हैं, हाँ तो जो मैं बता रही थी केचुए का क्या, ये भोजन का स्रोत है। तो भोजन का स्रोत है, जब भोजन करता है तो जाहिर सी बात वो भी मलमूत्र त्याग करता है, और उससे जो मलमूत्र का त्याग होता है और उससे जो खाद बनते जाते हैं ना, वो देखो कास्ट जिसको बोलते हैं अर्थ होम कास्ट बोलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक खाद तैयार कर देता है, और ऐसे ही करके इसका भी लेयर तैयार कर देते हैं। और हर इसको ढककर हमें रखना है कि दूसरा जो सूक्ष्म जीव है उसमें ग्रो ना कर जाए। और थोड़ा इसको अगर आपको गोबर मिलता है तो गोबर डाल दें, नहीं तो थोड़ा नमी मेंटेन करने के कागज जो अवेलेबल होता है ना, तो कागज को थोड़ा गीला करके भी आप फैला सकते हैं। और इसको आप क्या करें, ढक कर रखें, हर 15 दिन पे थोड़ा आपको उलट फेर करना होगा, जिसे हमारा प्रॉपर एरेशन जिसको हवादार नमी हवा उसकी सब वर्तमान जितनी हमें चाहिए संतुलित मात्रा में सब उसमें अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मौजूद रहें। और 15 दिन पर जैसे उलट फेर कर रहे हैं तो और ऐसे ही करना है हमको 2-3 महीने तक। और 2-3 महीने का लास्ट में आप देखेंगे ना ये केचुआ खाद जो हमारा जैविक खाद केचुआ खाद जो हमारा था ये बिल्कुल अच्छे तरह से अपने हल्के भूरे रंग, इसका भी रंग वैसा ही होगा हल्के भूरे रंग का से काले रंग में अब बिल्कुल दानेदार में ये बदल जाता है, जो अच्छा वाला खाद जैविक खाद बनता हमारा केचुआ के माध्यम से जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं। और 2-3 महीने में खाद हमारा तैयार करते हैं कर सकते हैं। ये हमारा केचुआ खाद के बारे में हो गया। इसके अलावा हमारे और चीज़ें बहुत सारे हमारे पारंपरिक खाद तैयार किए जाते थे जो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे पहले जमाने में जब हम जीवामृत करते थे हमको वो सब हम तैयार करते थे। और अभी भी हम जब जैविक खाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो सारे प्रयोग हमारे फिर से हमारे ज्ञान में आ गए हैं और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जहां तक ये बात हमारी नहीं पहुंच पा रही उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, हम जहां रहते हर हमारे अड़ोस पड़ोस में अवेलेबल है, बस उनको हमको अपने आँख उठाकर देखने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने देखने की जरूरत भी है और इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने प्रयोग में लाने की जरूरत है। प्रयोग में लाने के बाद हमें जहां इसको उपयोग करना है उसको उपयोग करने की बात है। ये बहुत चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं बट उसको हम ना कभी एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तो हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है एंड देन उसको एक्शन में भी लाना है। और तीसरा मैं आपको बताने जा रही थी वैसा जीवामृत, ऐसे तो बहुत तरीके हैं हमारे बनाने के, और तीसरी मैं बता रही हूँ जीवामृत जिसको बड़े इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, मैं उसी खाद को लिस्ट की हूँ यहाँ पर। तीसरी खाद के बारे में बता रही हूँ आपको जीवामृत, ये जीवामृत कैसे तैयार करते हैं। जीवामृत सब समझ ही रहे हो क्या होगा, जो हमारे मवेशी होते हैं हमारे गाय भैंस ये सब होते हैं तो उनकी चीज़ों से हमें तैयार करना है, जिसके यहाँ मवेशी ओवेसी है तो आपको इसके लिए क्या सामग्री लग जाएंगे, गोबर लग जाएंगे, गोमूत्र लग जाएंगे, गुड़ लग जाएगा, थोड़ा बेसन लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगा। जब इसके बनाने की विधि क्या है ना, जब आप इसकी बनाने की विधि बने तो जो इसका अनुपात मैंने बताया ना, अनुपात अभी बोला नहीं है, बस सामग्री में जो बताया इसका अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अनुपात में आप गोबर ले रहे हो, कितने अनुपात में गोमूत्र ले रहे हो, कितने अनुपात का गुड़ का प्रयोग कर रहे हो, बेसन का प्रयोग और मिट्टी का प्रयोग कर रहे हो। अब बनाने से पहले आती है बात आती है कि आप कितने लीटर क्वांटिटी में, जैसे ये आप यूजुअली क्या होता है इसको मट्टी पे भी प्रयोग करते हैं और पौधे के ऊपर भी प्रयोग करते हैं, ये जो जीवामृत बनाते हैं हम ना ये इसको आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है,

0: उसको हम बोलते हैं तरल जैविक खाद है, ये तरल नुमा होता है। तो कितने लीटर पानी में इस घोल को तैयार करना चाहते हो, बात ये आती है। तो मैं आपको सामग्री का जो लिस्ट दूंगी 200 लीटर के बेसिस पे दे रही हूँ, आप अपने अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हो, आप अपने अनुसार इसका गणना करके कैलकुलेशन करके आप बढ़ा सका घटा सकना है। अगर मैं 200 लीटर की कैपेसिटी के अनुसार बता रही हूँ आपको, 200 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करने हैं, तो 200 लीटर में कितना किलो गोबर लगेगा? 200 लीटर के लिए आप इसको जरूर कहीं आप होगे सुन रहे होगे, आप इसको मेंशन करना। अगर 200 लीटर पानी में आप घोल तैयार करना चाहते हो, उसमें 10 किलो हमको गोबर डालना है। गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए, 15 से 20 दिन, जिससे उसका जो हमारा तापमान हो ना, जो ताज़ा गोबर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें तापमान में कमी आ जाए। कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। 10 किलो आपको गोबर प्रयोग करना है और सेम मात्रा में 10 किलो आपको गोमूत्र रिच करना है। और सेम मात्रा, देखो गोबर और गोमूत्र दोनों का मात्रा क्या हो गया, सेम हो गया। 200 लीटर के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 10-10 गुड़ बोला, बेसन बोला, तो ये गुड़ और बेसन का भी मात्रा अनुपात जो है एक सेम रहेगा, एक एक रहेगा। 1 kg गुड़ हो जाएगा, 1 किलो आपका बेसन हो जाएगा। और थोड़ी मिट्टी प्रयोग करना है हमें, थोड़ी मिट्टी को उसमें 200 लीटर पानी ले लेंगे और घोल को तैयार कर लेते हैं। और इस मिश्रण को हम क्या करते हैं ना, ढक कर रखते हैं। हर 2 से 3 दिन पर इसको हम क्या करते हैं, एक लकड़ी बड़ा सा ले लेते हैं, अगर ड्राम में तैयार कर रहे हो तो, जो हमारे ड्रम होते हैं, और 2-3 दिन पे इस लकड़ी, हमारे पास बड़े जो लकड़ी होते हैं कहीं भी ये मिल जाते हैं, उस घोल को हमें मिश्रण को घुलाते रहना है, जिससे प्रॉपर हमारा जो मिक्सिंग हो रही है ना, जब इसका विघटन तैयार हो, जो हम डाल विघटित होता है, तो प्रॉपर विघटित हो, पूर्णतः हो जाए ये। और 5 से 7 दिन में ये जीवामित्र आपको देखोगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 5 से 7 दिन ओनली लेगा। 5 से 7 दिन में ये जो जीवामृत हमको तैयार हो जाएगा, और इसका तैयार हो जाने के बाद आप इसका प्रयोग डायरेक्ट आप फसलों पर छिड़काव करके कर सकते हो। ये ना ओनली पोषक तत्व प्रदान करता है पौधों को, इसके अलावा आप जानते हो गोमूत्र और गोबर में बहुत पावर होता है। इसमें जो उसमें रोग लगते हैं, जो उसमें हमारे कीटनाशक कीट लग जाते हैं, उससे भी ये पौधा को संरक्षण प्रदान करता है। ये बहुत चीज़ों के लिए फायदेमंद होता है। ये जो मैं सरल विधियाँ थी, वो विधियाँ को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की हूँ अपने तरफ से।
1: अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है?
0: हाँ, अब बात आती है कि अब तो हम बनाने की विधि हमने बता दिया, क्या क्या सामग्री लगेंगे, क्या लगेंगे, अब आते किन किन बातों को हमें ध्यान रख रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा जैविक खाद घर पर ही हम तैयार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने अगर आपको बोला है कंटेनर, आपके पास उतनी जगह जमीन नहीं है जहाँ आप गड्ढे खोद कर बना सकें, प्लास्टरिंग कर सकें, प्लास्टिक मतलब एक सीमेंटेड आप एक एरिया तैयार कर लो उसके लिए, गड्ढा नहीं आपके पास है तो कंटेनर लेना आता है। कंटेनर आप जब भी लोगे ना, जो हम कंटेनर सामग्री में, जो हम सामग्री को डालने के लिए कंटेनर का प्रयोग या डब्बे का प्रयोग जो भी करते हैं, उसका चयन सही होना चाहिए। जो भी हम जैविक खाद हमको बनाना है, तो कभी भूल कभी जैसे हम कर तो लेते हैं ऐसा, बहुत जगह आप देखो जैविक खाद प्लास्टिक का या धातु का या कोई भी रासायनिक, जो हमारे धातु मतलब वो रासायनिक चीज़ है, उसका प्रयोग लोग कर लेते हैं। आप उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, उसका ना करें, आप इसका प्रयोग ना करें। और दूसरी बात है, जब हम खाद बनाने के दौरान जो हम कंटेनर पर्याप्त कंटेनर लेते हैं ना, उसमें कभी कभी बहुत जगह देखा गया कि उसमें पर्याप्त छेद नहीं किया हुआ रहता है। अगर नहीं बनाया आप तो उसमें पर्याप्त हवा और नमी बना नहीं रहता है, और पर्याप्त अगर हवा नमी नहीं बना रहेगा तो खाद हमारा पूर्णतः विघटित नहीं होता है और खाद मेरा अच्छा तैयार नहीं होता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हमको सूखापन या बहुत ज़्यादा अधिक नमी में खाद में हमको बनाए नहीं रखना है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही बनाना है। मीन्स बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है उसको, और बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं रखना है कि जिससे हमको वहाँ से पानी निकलने लगे। तो अगर ऐसा होगा कंडीशन, तो आपकी जो खाद की गुणवत्ता है ना, वो प्रभावित हो सकती है। चौथी बात आपको क्या रखना है, हमको जो जैविक खाद की मैंने आपको सामग्री बताया उसका अनुपात आप बिल्कुल सही रखिएगा। जैसे हम जैविक कचरे के लिए हमारे जो हमारे किचन का वेस्ट हो गया, सूखी पत्तियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, इसका अनुपात सही बना कर रखिए, कितने कितने जाएंगे जिससे हमारे खाद अच्छे प्रयोग में आ सकें। और चौथी बात है, पांचवी बात यह है, जब हम खाद बनाने के सही स्थान का चयन करते हैं ना, वो स्थान का चयन सही कीजिएगा। वो स्थान जो होना चाहिए आपको डाइट, जो हमारे सूर्य की धूप होती है वो जगह का कभी ना आप चयन करें। वो जगह कोशिश करें कि छायादार हो, सूखे स्थान पर हो, सूखे स्थान पर हो मतलब ऐसा जगह ना चयन करें जहाँ पानी बहुत जल्दी लग जाता हो, पानी लग जाते हैं जहाँ उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाता है, थोड़े पानी वहाँ पर लगे रह जाते हैं। तो ऐसा स्थान का प्रयोग कभी ना करें, जगह छायादार होनी चाहिए। अगर धूप आ रही है तो धूप आए, धूप भी जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए, ये कोशिश करनी है। ये 5-6 बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं।
1: इसके बाद जैविक खाद को हमें स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे स्टोर?
0: अब आते हैं बनाने का, तो ये हो गया, हम जैविक खाद को स्टोर कैसे कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि जिस कंटेनर में आपने बनाया उसी में छोड़ दोगे, क्योंकि आपने एक लॉट तैयार कर लिया, तब किचन जो हमारे वेस्ट हो तो हमको कंटिन्यू प्रोसेस है।

0: हम डेली खाना बनाते हैं, डेली हमारे वेस्ट जनरेट होते हैं किचन से, तो आप और बनाना चाहोगे, जो आपने खादे बना लिया, अब उसको कैसे उसको हम उसको स्टोर करें, संरक्षित करके अपने जगह पर कर रखें, जिससे हम आगे चल के हम अपने फसल के लिए जो भी हम मतलब छत पे उगाते हैं साग सब्जी उसमें भी प्रयोग कर सकें, चाहे थोड़े से जमीन हमारे वहाँ पर भी फल साग सब्जी उगा रहे हैं उसमें भी प्रयोग कर सकें, तो इसको स्टोर कैसे किया जाए? आपको जैविक खाद को क्या करना है, एक सूखे और छायादार स्थान पर रखें जो बन गए हमारे, और इसे ढक्कन वाले जो कंटेनर होते हैं ना उसका प्रयोग करें, जो बन गया है उस डब्बा में डाल दें और उसका ढक्कन का प्रयोग जरूर करें। जस्ट अगर ढक कर रखोगे ना, जितने सूक्ष्म जीव उस पर ग्रो ना करें, अब बाकी चीज़ में जिसका गुणवत्ता हमारा मेंटेन रखे, और नमी से बहुत ज़्यादा नमी नहीं उसमें होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी, ऐसा नहीं कि जब खाद को आप हाथ में ले रहे हो उसे पानी निकलने लगे, थोड़ा सा भी दबाया तो पानी निकल जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, नमी से भी उसको बचा कर रखना है। और कंटेनर कैसा प्रयोग करना है, जो डब्बा है उसका जिसका ढक्कन वाला होना चाहिए, उसमें आपको जो हमारे खाद तैयार हो गए उसमें रखें, नमी से बचा कर रखना है, और यही सारी इस तरीके से आप ना जो हमारे बने हुए खाद हैं, हमारे जो कंपोस्ट खाद तैयार हो गए हैं उस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे तक सुरक्षित रखेंगे तभी आप अपने फसलों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। छोटी सी विधि है कि उसको कैसे प्रयोग कैसे इसको स्टोर कर रख सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे जूट सैक जूट वाली बोरा उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, कट लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है हमारा नमी बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, कहीं थोड़ी बारिश वारिश हुई तो नमी वो बहुत इजीली ऑब्जर्व करता है, जो हमारा खाद बनाते हैं ये बहुत पोरस नेचर का आता है तो बहुत जल्दी पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, ये शोषित कर लेता है। तो वो कोशिश करना है कि आप ऐसा कंटेनर ले जिसमें छेद वेद कहीं ना हो, उसमें रख दें, ढक्कन से लगा दें उसका, नमी बहुत ज़्यादा ना जाए, नमी उतना ही जितना ऑलरेडी बना था उतना ही नमी उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उसमें होना चाहिए, तभी आप लंबे समय के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं।
1: जी, जैविक खाद के उपयोग के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ फायदे होंगे अगर किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करते हैं।
0: जैविक खाद करने के उपयोग और फायदे तो आपको इस बातें से समझ में आ रही है, मैंने पहले ही बोला जैविक खाद मतलब प्राकृतिक खाद, प्रकृति खाद बोलने का मतलब जहाँ प्राकृतिक चीज़ों का जिसकी जो हमारे यूज में नहीं है उस चीज़ों का प्रयोग करके हम बनाते हैं उसको हम जैविक खाद कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक चीज़ों का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो पहला फायदा तो हमारा यही हो गया कि रासायनिक जब इसका प्रयोग से हम खेती करेंगे तो हमारा खेत कैसा होगा, वो रासायनिक मुक्त खेती होगा हमारा, इसमें जैविक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जो जैविक खाद का प्रयोग करें फसल भी वही खाएगा क्योंकि फसल का भोजन वही है, तो जो हम और उस फसल में रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो फसल आते हैं जो फसल का इल्ड आता है वो हम खाते हैं, तो जैविक चीज़ें जो हमारे हैं वो हम तक पहुँचेंगे, तो हम भी शुद्ध, पौधा भी शुद्ध, हमारे मृदा भी शुद्ध, हम भी स्वस्थ, तीनों चीज़ स्वस्थ हो गए हमारे, हम जो चेन में बोलते हैं ना एक फूड चेन से हम कनेक्टेड होते हैं, तो फूड चेन हमारा बिल्कुल शुद्धता हो गया, बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें आ गई, ये फायदा हो गया, प्रकृति का संरक्षण हो ही रहा है। प्रकृति संरक्षण आप इसे समझ सकते हो जहाँ आप रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये जैविक प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना रहे हैं, ऐसी के प्रयोग मिट्टी में कर रहे हैं, और जो चीज़ मिट्टी में जाती है वो फसल में जाती है, फसल में जो जाती है वही हम खाते हैं, वही जानवर तक पहुंचती है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है, और वही मिट्टी में जो चीज़ डालते हैं तो ये पोषक तत्व, मैंने पहले ही बताया पोषक तत्व प्रदान करता है फसलों को, जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व चाहिए पौधों को वो प्रदान करता है, अब बहुत हमारे पोषक तत्व होते हैं पौधे उसको वहाँ से ग्रहण किए तो किए, नहीं तो वो बह कर पानी में चला जाता है। अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे पानी भी प्रदूषित होता है, हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है, तो जब हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो जो वहाँ से बहकर पानी में जाएगा तो वो भी प्राकृतिक है, वो पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं होगा, मिट्टी प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा जलवायु प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा हम मनुष्य हम जानवर कोई भी प्रदूषित नहीं होगा, सब प्योर प्राकृतिक रहेंगे, ये हमारे फायदे हो गए। जो हमारे मतलब हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें आते हैं सब सुरक्षित रहेंगे, सब प्राकृतिक तरह से स्वस्थ रहेंगे, धनी रहेंगे।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय के बारे में, तो इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं ये आपने जाना, तो आशा करते हैं कि जैविक खाद की तरफ आप भी जोर देंगे, इस प्राकृतिक खाद की तरफ, और अपने भूमि अपनी खेत को आप अपनी मिट्टी को आप स्वस्थ बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल।

0: जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह

ही भी गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: पतंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए।

0: की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम

0: फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: 1942 ऑक्सफर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
3: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
4: हाउ आर यू?
5: हैप्पी बर्थडे स्टीफन।
4: थैंक यू।
5: कांग्रेचुलेशंस।
4: थैंक यू जॉन। थैंक यू सो वेरी मच। हाय मार्टिन, हाउ आर यू?
2: ओह फाइन।
4: Thanks for coming in. Please come in.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ₹1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर

0: में शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम

0: आपको चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
4: हाँ।
3: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
5: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
4: सूरज।
3: सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: रोज बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं।
6: अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली ही नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
4: हाँ।
3: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम सही।
7: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
7: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
6: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
7: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कहीं
6: दूर होता है, इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन

0: लगता है कि शायद इसको छूके देखे।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
1: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
2: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
2: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
2: धरती काटे चक्कर इसके,
0: लगे ये चलता जाता है,
2: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
2: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
2: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
2: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
1: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: डर
0: जाती
1: है।
0: सेवेंटी हो जाएंगे। टेन से एकदम सेवेंटी
3: नहीं, एट्टी हो जाएंगे।
0: फिर हंड्रेड हो जाएंगे, फिर टू हंड्रेड। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
7: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
7: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: तो इसका हल क्या है?
7: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
6: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात।
0: खसरा रूबेला।

0: बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
7: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
7: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। दोस्तों, मंडे को आपका आखिरी एग्जाम है और वो एग्जाम है APP 1-1, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर प्राची हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिवीजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
10: धन्यवाद उमा, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 1-1, उसके का रेडियो रिवीजन करेंगे। उसमें जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका टर्मिनोलॉजीज में इनोकुलम, इनोकुलेशन, पैथोजेनेसिस, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उनके डेफिनेशंस क्या क्या है, जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, व्हाट आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि पाइनियरिंग साइंटिस्ट एंटोन डी बेरी, जो फादर हैं प्लांट पैथोलॉजी के, उनका कंट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, माइकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी बुक जो है नोवा प्लांटरम जेनेरा, ये सब बुक्स भी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं उनको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, और साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड ये ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल टर्म्स में, प्लस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जैसे कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ई जे बटलर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक का नाम, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लस फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी जो है आपके MK पटेल जी, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर और भी फंजी साइट्स में जैसे तिरुमला 4 का कॉन्ट्रीब्यूशन,

कॉन्ट्रीब्यूशन, वायल नेने का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, उसके अलावा आप वायरोलॉजी में भी डिफरेंट वायरोलॉजिस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, M.W. वेजरिंग, फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था, और भी जो उन्होंने वायरस टर्म्स भी दिया था, ये सारा जो क्लास में पढ़ाया गया है डिफरेंट वायरस का, वायरसेस का, डिफरेंट साइंटिस्ट, फंजाई और उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उस फील्ड में, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस में डिफरेंट बेसिस पढ़ाया गया होगा, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, जैसे कि आपका जो सिस्टेमिक डिजीजेस हैं, लोकलाइज्ड डिजीजेस हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इपिडेमिक डिजीज, इंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज, स्पोरेडिक डिजीजेस, ये डिजीजेस क्या हैं, इनका डेफिनेशन, प्लस एग्जाम्पल्स फॉर ईच केसेस, एग्जाम्पल्स हर एक डिजीज का, एक एक एग्जाम्पल्स आप लोग एटलीस्ट मेमोराइज कर लीजिएगा। जैसे एंडेमिक में पोटैटो वाट है, जिसपे डोमेस्टिक क्वारंटाइन है, जो सिनकाइट्रिम इंडोबायोटिकम से होता है, फिर इसको ध्यान रखिएगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ परपिचुएशन के बेसिस पे जो डिजीज है, जैसे सीड बॉर्न डिजीजेस, सॉयल बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस, ओके, तो इन सारे को आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि सीड बॉर्न डिजीज में आपका इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज लूज स्मट ऑफ वीट है, तो इसको याद रखिएगा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी याद रख लीजिएगा। फिर सॉयल बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से हैं आपके, विल्ट, और वो किन से होते हैं, ये याद रखिएगा। एयर बॉर्न डिजीजेस के भी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मेमोराइज करना है, जैसे कि वीट रस्ट हो गया आपका एयर बॉर्न डिजीज, आपका पाउडरी मिल्डिव है, और लीफ स्पॉट्स, और जो भी डिजीजेस है जो एयर के थ्रू स्प्रेड्स होती हैं उनको भी आपको याद रखना है। फिर डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल या पैथोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोकुलेशन टू कॉलोनाइजेशन स्प्रेड एंड अपियरेंस ऑफ द सिम्टम, जो पूरा साइकिल आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान रखना है। और हर स्टेप में, जैसे इनोकुलेशन क्या है, सबसे पहले जो अराइवल होता है पैथोजन का प्लांट सरफेस पे, उसके बाद वो अटैच करता है, उसके बाद फिर वो पेनिट्रेट करता है, फिर रिकॉग्निशन, इन्फेक्शन, जो भी होता है, सारे स्टेप्स टिल द सिम्टम्स डेवलप्ड ऑन द प्लांट, ये सारा आप लोगों को मेमोराइज करना है। फिर ए बायोटिक एंड बायोटिक डिजीज, जैसे कि ए बायोटिक में आप लोग डिफरेंट डिफिशियंसी से जो डिजीजेज होते हैं, जैसे कॉपर डिफिशियंसी से डिजीज होता है, या फिर बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है आपका ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो उस तरह का सारा एग्जांपल्स आप लोग याद करें। जैसे कि जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है, तो जो ए बायोटिक या डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी से जो डिजीज होते हैं, इनका भी एक टेबल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया होगा, उसको भी आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। और डिफरेंट डिजीजेज और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स भी, स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको पढ़ते वक्त आए होंगे, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका हो गया फंजाई, व्हाट आर फंजाई, फंजाई आपके उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई, जैसे कि सेल वॉल उनका काइटिन का है, जिसमें नॉन ओमाइकोटा में सेलुलोज का है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंजाई के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, तीनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है। फंजाई में आपका ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर स्पोर्स भी ध्यान रखिएगा कि ए सेक्सुअल कौन कौन से स्पोर हैं और सेक्सुअल कौन कौन से स्पोर्स होते हैं। जैसे ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में मान लीजिए कि, जैसे कि हम अगर डिस्कस करें तो सिनेमा है, सिनेमाटा, फिर स्पोरोडोकियम है, तो स्पोरोडोकियम किस फंगस में, एक एग्जांपल भी याद रखना है आपको। जैसे पिकनीडियम है, तो उसका सेप आपका फ्लास सेप होगा, तो इसका सारे का एग्जाम्पल्स प्लस उसका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका सेप कैसा होगा, ये आपको मेमोराइज रखना है। अब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जैसे कि आपका क्लिस्टोथीशियम है, पेरिथीशियम है, तो सारे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का शेप वो किस तरह के होते हैं, प्लस वन एग्जाम्पल फॉर द ईच फ्रूटिंग बॉडीज कि वो किस फंगस में, ये वाला किस जीनस एंड स्पीसीज में फंगस के ये वाला फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडी, ओके। फिर आपका क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं।

स्पेशली जो आपके न्यूअर क्लासिफिकेशन में एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, मतलब कि टिल द जीनस लेवल, कि कौन कौन से किस ग्रुप ऑफ फंजाई में कौन कौन से जीनस आते हैं, फैमिली ऑर्डर क्या क्या है उसके अंदर में, और किस तरह का, अगर कोई स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी या कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सब आप लोग को मेमोराइज करके रखना है. उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जैसे प्लाज्मोगैमी. अब रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी, ये सेपरेटेड होता है फंजाई का इन टाइम इन स्पेस. तो अब प्लाज्मोगैमी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को प्लाज्मोगैमी डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाएगा, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन. तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ इनके, ये मतलब किस तरह से होता है, जैसे गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है और किस फंजाई, एक एग्जाम्पल एटलीस्ट एक जीनस जिसमें ये होता हो, ये आप लोग को मेमोराइज करना है. फिर कारियोगैमी फंजाई में किस तरह से होता है, सेप्टेशन पैटर्न्स भी पढ़ लीजिएगा, किस तरह का सेप्टा किस में बनता है फंजाई में. फिर बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरिया का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का आपका क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन से मतलब किंगडम जो है आपका उसके अंदर कौन कौन से फाइलम है, फिर क्लासेस, ऑर्डर, जीनस जो भी है सारा उसमें से आप लोग को मेमोराइज करना है. फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है बैक्टीरिया में आपका, जैसे कि पेरिट्राइकस, ए ट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और उनके एग्जांपल्स, ये सब आपके प्रोबेबली एग्जाम्स में आते हैं, किसी न किसी फॉर्म में तो आएगा ये सब. फिर उधर आप लोग मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटोजोअंस, ग्रीन एल्गी, इनसे थोड़ा सा जैसे ग्रीन एल्गीज वगैरह से कुछ माइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेजर क्वेश्चंस नहीं होते हैं. पैरासिटिक हायर प्लांट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पैरासिटिक हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके टोटल स्टेम पैरासाइट, कौन से हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, फिर टोटल रूट पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट, और उनके एग्जाम्पल्स कि मतलब किस में आपका, जैसे कसकटा है तो उसका आप लोगों को याद रखना है कसकटा, लोरेंथस, फिर वो कौन से मतलब उनके होस्ट प्लांट्स कौन से हैं, मतलब कौन सा पैरासिटिक प्लांट किसके किस प्लांट पे होस्ट करता है, तो वो उसको ध्यान रखना है आप लोगों को, मेमोराइज कर लेना है. फिर आपका वायरसेस के डेफिनेशन, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर आपको बताया गया टीएमवी का, टोबैको मोजैक वायरस का, तो टोबैको मोजैक वायरस का स्ट्रक्चर, जैसे वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट का बना होता है और किस में किस तरह का प्रोटीन कोट होता है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है अच्छे से. और वायरस में आपका ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस से भी क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 50-50 चांसेस है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आने का, हो सकता है कि आ जाए आपका. तो ट्रांसमिशन में आप लोग किस किस मेथड से ट्रांसमिट होता है वायरस, जैसे कि आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन है तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन किस में होता है, सीड के थ्रू ट्रांसमिशन. फिर आपका जो वेक्टर ट्रांसमिशन है, जैसे इंसेक्ट से, फंजाई से ट्रांसमिशन, निमेटोड से ट्रांसमिशन, ये सब आप लोगों को डिटेल में क्लास में बताया गया है, तो इसको आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है. फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में आपको बताया गया होगा 7 प्रिंसिपल्स, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड थेरेपी, ठीक है, 6 हुआ. तो इसको आप लोग कि किसमें मतलब अवॉइडेंस क्या है इसको रिवाइज कर लीजिएगा. फिर उसके कुछ एग्जांपल्स यानी कि कैसे आप डिजीज को अवॉइड कर सकते हो, एक्सक्लूजन में जैसे आपका एक्सक्लूजन में सीड सर्टिफिकेशन एंड क्वारंटाइन आता है, तो आप लोग क्वारंटाइन के बारे में कि क्वारंटाइन क्या है, मतलब किस तरह से क्वारंटाइन लगता है, ये सब चीजें जो भी आप लोग को बताया गया. फिर आईडीएम का डेफिनेशन, वॉट इज आईडीएम और कौन कौन से अप्रोचेज हैं आईडीएम में, जैसे कल्चरल मेथड्स बताया गया होगा, डिफरेंट मेथड्स हैं कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इससे पॉसिबिलिटी होती है कि लॉन्ग आंसर्स में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. और फिर कभी कभी आ जाता है फिलअप में आ जाता है कि कल्चरल मेथड्स, जैसे कि कल्चरल डैश एंड डैश आर कल्चरल मेथड्स ऑफ, या फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इन मेथड्स के एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखें, जैसे सॉयल सोलराइजेशन किस में आ रहा है आपका, या आपका जो डीप समर प्लाविंग है, रॉगिंग है, तो ये सब इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड मतलब कौन सा प्रैक्टिस किस मेथड के अंदर आता है, तो ये आप लोगों को मेमोराइज करना है. इसके अलावा

0: होल सोल क्लास में सब चीजें ऑलमोस्ट कवर हुई हैं आपकी, तो जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफी काम का साबित होगा। तो दोस्तों ये था आपका रेडियो रिविजन, कल जाकर बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पश्चिम हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर सुरभीत भागलपुर कतरनी सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 389 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च अगात गोभी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखें। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें महीने के अंत तक भैंसों का व्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है। महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं

फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है। और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे, तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वलिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं, तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी, तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था, उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है, तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी, वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएँ होती है, कमाने वाली महिलाएँ होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं, तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं।

0: जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देखरेख, उस पैसे की देखरेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए, आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। First.
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा

0: जा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले हमारे खास कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। दोस्तों, मंडे को आपका आखिरी एग्जाम है और वो एग्जाम है APP 1-1, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर प्राची हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिवीजन के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद उमा, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 1-1, उसके का रेडियो रिवीजन करेंगे। उसमें जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका टर्मिनोलॉजीज में इनोकुलम, इनोकुलेशन, पैथोजेनेसिस, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उनके डेफिनेशंस क्या क्या है, जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, व्हाट आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि पाइनियरिंग साइंटिस्ट एंटोन डी बेरी, जो फादर हैं प्लांट पैथोलॉजी के, उनका कंट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, माइकेली PMA माइकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी बुक जो है नोवा प्लांटरम जेनरा, ये सब बुक्स भी डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं उनको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, और साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड ये ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल टर्म्स में, प्लस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जैसे कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ई जे बटलर का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक का नाम, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्लस फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी जो है आपके MK पटेल जी, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर और भी फंजी साइट्स में जैसे तिरुमला चार का कॉन्ट्रीब्यूशन, वायल नेने का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में, उसके अलावा आप वायरोलॉजी में भी डिफरेंट वायरोलॉजिस्ट के जो साइंटिस्ट हैं, MW वेजरिंग, फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था, और भी जो उन्होंने वायरस टर्म्स भी दिया था, ये सारा जो क्लास में पढ़ाया गया है डिफरेंट वायरसेस का डिफरेंट साइंटिस्ट, फंजाई और उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकली जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उस फील्ड में, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस में डिफरेंट बेसिस पढ़ाया गया होगा, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, जैसे कि आपका जो सिस्टेमिक डिजीजेस हैं, लोकलाइज डिजीजेस हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इपिडेमिक डिजीज, इंडेमिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज, स्पोरेडिक डिजीजेस, ये डिजीजेस क्या हैं, इनका डेफिनेशन, प्लस एग्जाम्पल्स फॉर ईच केसेस,

एग्जाम्पल्स हर एक डिजीज का एक एक एग्जाम्पल्स आप लोग एटलीस्ट मेमोराइज कर लीजिएगा. जैसे एंडेमिक में पोटैटो वाट है, जिसपे डोमेस्टिक क्वारंटाइन है, जो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है, फिर इसको ध्यान रखिएगा. फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ परपिचुएशन के बेसिस पे जो डिजीज है, जैसे सीड बॉर्न डिजीजेस, सॉयल बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस. ओके, तो इन सारे को आप लोगों को याद रखना है. जैसे कि सीड बॉर्न डिजीज में आपका इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज लूज स्मट ऑफ वीट है, तो इसको याद रखिएगा. उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी याद रख लीजिएगा. फिर सॉयल बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से हैं आपके, विल्ट, और वो किन से होते हैं ये याद रखिएगा. एयर बॉर्न डिजीजेस के भी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मेमोराइज करना है, जैसे कि वीट रस्ट हो गया आपका एयर बॉर्न डिजीज, आपका पाउडरी मिल्डिव है, और लीफ स्पॉट्स, और जो भी डिजीजेस है जो एयर के थ्रू स्प्रेड्स होती हैं उनको भी आपको याद रखना है. फिर डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल या पैथोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोकुलेशन टू कॉलोनाइजेशन स्प्रेड एंड अपियरेंस ऑफ द सिम्टम. जो पूरा साइकिल आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान रखना है. और हर स्टेप में, जैसे इनोकुलेशन क्या है, सबसे पहले जो अराइवल होता है पैथोजन का प्लांट सरफेस पे, उसके बाद वो अटैच करता है, उसके बाद फिर वो पेनिट्रेट करता है, फिर रिकॉग्निशन, इन्फेक्शन, जो भी होता है सारे स्टेप्स टिल द सिम्टम्स डेवलप्ड ऑन द प्लांट, ये सारा आप लोगों को मेमोराइज करना है. फिर ए बायोटिक एंड बायोटिक डिजीज, जैसे कि ए बायोटिक में आप लोग डिफरेंट डिफिशियंसी से जो डिजीजेज होते हैं, जैसे कॉपर डिफिशियंसी से डिजीज होता है, या फिर बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है आपका ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो उस तरह का सारा एग्जांपल्स आप लोग याद करें. जैसे कि जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है, तो जो एबायोटिक या डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी से जो डिजीज होते हैं इनका भी एक टेबल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया होगा, उसको भी आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है. और डिफरेंट डिजीजेज और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स भी, स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको पढ़ते वक्त आए होंगे, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है. फिर आपका हो गया फंजाई, व्हाट आर फंजाई, फंजाई आपके उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई, जैसे कि सेल वॉल उनका काइटीन का है, जिसमें नॉन ट्रू माइकोटा में सेलुलोज का है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंजाई के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, तीनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है. फंजाई में आपका ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज आप लोग ध्यान रखिएगा. फिर स्पोर्स भी ध्यान रखिएगा कि ए सेक्सुअल कौन कौन से स्पोर हैं और सेक्सुअल कौन कौन से स्पोर्स होते हैं. जैसे ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में मान लीजिए कि जैसे कि हम अगर डिस्कस करें तो सिनेमा है, सिनेमाटा, फिर स्पोरोडोकियम है. तो स्पोरोडोकियम किस फंगस में एक एग्जांपल याद रखना है आपको, जैसे पिकनीडियम है तो उसका सेप आपका फ्लास्क सेप होगा. तो इसका सारे का एग्जाम्पल्स प्लस उसका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका सेप कैसा होगा ये आपको मेमोराइज रखना है. अब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जैसे कि आपका क्लिस्टोथीशियम है, पेरिथीशियम है, तो सारे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का शेप वो किस तरह के होते हैं, प्लस वन एग्जाम्पल फॉर द ईच फ्रूटिंग बॉडीज कि वो किस फंगस में ये वाला, किस जीनस एंड स्पीसीज में फंगस के ये वाला फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडी. ओके, फिर आपका क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं. स्पेशली जो आपके न्यूअर क्लासिफिकेशन में एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, मतलब कि टिल द जीनस लेवल, कि कौन कौन से किस ग्रुप ऑफ फंजाई में कौन कौन से जीनस आते हैं, फैमिली ऑर्डर क्या क्या है उसके अंदर में, और किस तरह का, अगर कोई स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी या कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सब आप लोग को मेमोराइज करके रखना है. उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जैसे प्लाज्मोगैमी. अब रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी, ये सेपरेटेड होता है फंजाई का इन टाइम इन स्पेस. अब प्लाज्मोगैमी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग प्लाज्मोगैमी डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ाएगा, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन. तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ इनके ये
मतलब किस तरह से होता है, जैसे कि एमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, और किस फंजाई एक एग्जांपल एटलीस्ट एक जीनस जिसमें ये होता हो, ये आप लोगों को मेमोराइज करना है। फिर कारियोगैमी फंजाई में किस तरह से होता है,

0: सेप्टेशन पैटर्न्स भी पढ़ लीजिएगा, किस तरह का सेप्टा किस में बनता है फंजाई में. फिर बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरिया का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का आपका क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से मतलब किंगडम जो है आपका उसके अंदर कौन कौन से फाइलम हैं, फिर क्लासेस, ऑर्डर, जीनस जो भी है सारा उसमें से आप लोग को मेमोराइज करना. फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है बैक्टीरिया में आपका, जैसे कि पेरीट्राइकस, ए ट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और उनके एग्जाम्पल्स, ये सब आपके प्रोबेबली एग्जाम्स में आते हैं, किसी न किसी फॉर्म में तो आएगा ही ये सब. फिर उधर आप लोग मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटोजोअन्स, ग्रीन एल्गी, इनसे थोड़ा सा जैसे ग्रीन एल्गीज वगैरह से कुछ माइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेजर क्वेश्चंस नहीं होते हैं. पैरासिटिक हायर प्लांट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पैरासिटिक हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके टोटल स्टेम पैरासाइट, कौन से हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, फिर टोटल रूट पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट और उनके एग्जाम्पल्स कि मतलब किस में आपका जैसे कसकटा है तो उसका आप लोगों को याद रखना है कसकटा, लोरेंथस, फिर वो कौन से मतलब उनके होस्ट प्लांट्स कौन से हैं, मतलब कौन सा पैरासिटिक प्लांट किसके किस प्लांट पे होस्ट करता है, तो वो उसको ध्यान रखना है आप लोगों को, मेमोराइज कर लेना है. फिर आपका वायरसेस, वायरसेस के डेफिनेशन, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर आपको बताया गया टीएमवी का, टोबैको मोजैक वायरस का, तो टोबैको मोजैक वायरस का स्ट्रक्चर जैसे वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट का बना होता है और किस में किस तरह का प्रोटीन कोट होता है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है अच्छे से. और वायरस में आपका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस से भी क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 50-50 चांसेस है शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आने का, हो सकता है कि आ जाए आपका. तो ट्रांसमिशन में आप लोग किस किस मेथड से ट्रांसमिट होता है वायरस, जैसे कि आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन है तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन किस में होता है, सीड के थ्रू ट्रांसमिशन. फिर आपका जो वेक्टर ट्रांसमिशन है जैसे इंसेक्ट से, फंजाई से ट्रांसमिशन, निमेटोड से ट्रांसमिशन, ये सब आप लोगों को डिटेल में क्लास में बताया गया है, तो इसको आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है. फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में आपको बताया गया होगा 7 प्रिंसिपल्स, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड थेरेपी, ठीक है 6 हुआ. तो इसको आप लोग कि किसमें मतलब अवॉइडेंस क्या है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स यानी कि कैसे आप डिजीज को अवॉइड कर सकते हो. एक्सक्लूजन में जैसे आपका एक्सक्लूजन में सीड सर्टिफिकेशन एंड क्वारंटाइन आता है, तो आप लोग क्वारंटाइन के बारे में कि क्वारंटाइन क्या है, मतलब किस तरह से क्वारंटाइन लगता है, ये सब चीजें जो भी आप लोगों को बताया गया. फिर आईडीएम, आईडीएम का डेफिनेशन, वॉट इज आईडीएम और कौन कौन से अप्रोचेज हैं आईडीएम में, जैसे कल्चरल मेथड्स बताया गया होगा, डिफरेंट मेथड्स हैं कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इससे पॉसिबिलिटी होती है कि लॉन्ग आंसर्स में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. और फिर कभी कभी आ जाता है फिलअप में आ जाता है कि कल्चरल मेथड्स, जैसे कि कल्चरल डैश एंड डैश आर कल्चरल मेथड्स ऑफ, या फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, तो इन मेथड्स के एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखें, जैसे सॉयल सोलराइजेशन किस में आ रहा है आपका, या आपका जो डीप समर प्लाविंग है, रॉगिंग है, तो ये सब इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड मतलब कौन सा प्रैक्टिस किस मेथड के अंदर आता है, तो ये आप लोगों को मेमोराइज रख करना है. इसके अलावा होल सोल क्लास में सब चीजें ऑलमोस्ट कवर हुई हैं आपकी, तो जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ऑल द बेस्ट.
1: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफी काम का साबित होगा. तो दोस्तों ये था आपका रेडियो रिविजन, तो जाकर बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए. आप सभी को बेस्ट ऑफ लक. उन्नत कृषि नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज से यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, जिसमें हम बातें करते हैं किसान भाइयों की. आज किसान भाई, जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, खेती बाड़ी के नए नए गुण अपना रहे हैं और इसी में से एक आता है जलवायु अनुकूल या मौसम अनुकूल खेती. जी हाँ, आज हमारा विषय है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। और आप सभी को पता है

0: कि वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ख़ास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय पर खास चर्चा होगी। आज हमारे बीच हैं वरीय वैज्ञानिक अंशुमन कोहली, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं ये, और आज पूरी जानकारी मिलेगी हमें इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद। किसान भाइयों को आपके

0: और जलवायु अनुकूल खेती में क्या अंतर है, क्या है ये?
1: धन्यवाद। किसान भाइयों को जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले कुछ और जानकारी मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं, और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व समान ही हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि तापमान, वायु का दबाव, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इत्यादि। और यदि हम बात करें कि आज गर्मी अधिक है, आज उमस अधिक है, आज वर्षा हो रही है, अथवा आज तेज़ हवा चल रही है, तो यह तो ही मौसम की बात। परंतु यदि हम कहें कि मेघालय में वर्षा अधिक होती है या जून में भागलपुर में उमस अधिक होती है, भागलपुर में वर्षा का वार्षिक औसत 900 मिलीमीटर है इत्यादि, तो यह बात है जलवायु की। अब मौसम के अनुकूल कृषि क्या हुई? जैसे कि रबी और खरीफ की फसलों की खेती, जो कि आमतौर पर सभी किसान करते हैं। कुछ प्रगतिशील किसान ग्रीनहाउस पद्धति से गैर मौसमी फसलों की भी खेती करते हैं तथा भरपूर लाभ उठाते हैं। यह सब अपनी जगह ठीक है, पर जलवायु अनुकूल कृषि क्या हुई? जो हमारे दीर्घकालिक मौसम का जो औसत है उसके अनुरूप की जाए।
0: जी, तो सर आपने अभी कहा था शुरुआत में कि जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो बेहतर तरीके से अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दें तो और ज़्यादा उन्हें ज्ञान हो जाएगा इनके बारे में।
1: जी, तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम दीर्घकालिक मौसम के औसत के हिसाब से खेती करें तो वो होगी जलवायु अनुकूल कृषि, यानी उस जलवायु के हिसाब से खरीफ में कौन सी फसलें किस पद्धति से लगाई जाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, तो वो जलवायु के अनुकूल हो सकती हैं। अब किसी भी पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति वहाँ की जलवायु के अनुसार ही अवतरित होते हुए पनपे हैं। सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों की पारंपरिक फसलें अधिकतर जलवायु के अनुकूल ही हैं। जो हमारी पुराने ज़माने से जो पारंपरिक फसलें चल रही थीं वो सब जलवायु के अनुकूल ही हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या एवं प्रगति की होड़ में अक्सर गैर टिकाऊ प्रक्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को कम करने के लिए कृषि में जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही स्तर पर परिवर्तन करने होंगे। सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों स्तर पर, अर्थात किसान के व्यक्तिगत स्तर पर तथा एक वृहद भौगोलिक स्तर पर फसलों का चयन जलवायु के अनुकूल किया जाना चाहिए। मसलन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ के दौरान धान की जगह मक्का का चुनाव करने से भूमिगत जल स्रोतों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह रबी के दौरान गेहूं के स्थान पर वर्षा सिंचित दलहनी एवं तिलहनी फसलों यथा चना, मसूर, खेसारी, तिस्सी, सरसों इत्यादि का चयन पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ माना जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि जलवायु अनुकूल फसलों के चुनाव से हम उस पारिस्थितिकी में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, प्रकाश, वायु अथवा जैव संसाधन कुछ भी हो सकते हैं।
0: तो जैसा कि डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। तो अगर हम बात करते हैं वर्षा जल संचयन की, हम इसे करके कैसे मतलब जलवायु अनुकूल कृषि की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी, अब आज की चर्चा का विषय चूंकि जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन है, आगे की चर्चा में हम जल प्रबंधन पर ही केंद्रित रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तम फसलोत्पादन में सिंचाई और जल निकासी का बहुत महत्व है। किसी पारिस्थितिकी में वर्षा का होना या ना होना, किस वेग से होना, कितनी वर्षा होना, इत्यादि वहाँ की जलवायु का

0: नज़दीक है। इसी तरह तापमान, आर्द्रता इत्यादि यह सब भी वहाँ की जलवायु को डिफाइन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को भान है, हर फसल के लिए जल की आवश्यकता कितनी हो यह फसल के साथ साथ मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करता है। अर्थात फसल का चुनाव व जलवायु, इन दोनों पर ही यह निर्भर करता है कि जल की आवश्यकता आपकी फसल के लिए कितनी होगी। सिंचाई के लिए जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यथा जीवाश्म ईंधन, भूमिगत जल स्रोत, सतही जल स्रोत इत्यादि, उन सभी का योगदान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सराहनीय है, आशातीत है। साथ ही साथ कृषि हेतु भूमिगत जल के प्रयोग से भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। इसकी वजह से गैर कृषि कार्यों के लिए जल और अधिक गहराई से निकाला जाता है, जिससे कि जल के उपभोग की पर्यावरण लागत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सतही जल के सिंचाई हेतु प्रयोग से सतही जल की उपलब्धता गैर कृषि कार्यों के लिए घट जाती है। वर्षा जल का संचयन करने से जल के भूमिगत एवं सतही संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही साथ कृषि की पर्यावरण लागत भी कम की जा सकती है तथा कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वर्षा जल संचयन के द्वारा परंपरागत जल स्रोतों के दोहन को कम करके कृषि की पर्यावरण लागत को कम करते हुए जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि के सभी क्रियाओं को बेहतर ढंग से करते हुए तथा जल की बचत करते हुए कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें लिमिट लेस तो नहीं है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी में से एक है हमारा जल। जी हाँ, क्योंकि ये हमें बचाना, इसे संरक्षित रखना है, और क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी में अगर किसान भाइयों से हम इसे जोड़ें, तो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्षा जल वो संचयन करें तो बेहतर होगा कि उनकी जो पानी है उसकी बर्बादी कम होगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे वो वर्षा जल संचयन कर सकते हैं अपनी खेती के लिए, और इसका भरपूर इस्तेमाल वो अगर वर्षा ना हो तो उस समय भी कैसे कर सकते हैं, वो बताएं।
0: जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाई अपने खेतों में वर्षा का जल संचयन करें। कैसे करें, इस पर अब हम थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए मूल मंत्र एक ही है कि खेत का पानी खेत में ही रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि खेत में जो वर्षा होती है उसका जल खेत में ही इकट्ठा रहे, बाहर बह के ना जाने पाए। इसके लिए किसान भाइयों को खेत में वर्षा जल संचयन हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा तथा सदैव तैयार रहना होगा। अपने खेत में प्रबंध रखने से यदा कदा पड़ने वाली वर्षा का जल संचयन किया जा सकता है। जैसे कि खेत के चारों ओर की मेड़ मजबूत एवं ऊंची रखनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी खेतों के अंदर ही एकत्रित रखा जा सके तथा खेत की जमीन में पानी को रिसने के लिए समुचित अवसर मिल सके। और दूसरी बात कि खेत में समुचित मात्रा में कार्बनिक खाद का व्यवहार निरंतर करना चाहिए ताकि मृदा की भौतिक अवस्था स्थिर एवं कायम रह सके तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अच्छी बनी रहे। इसके बाद तीसरी बात कि यथासंभव न्यूनतम जुताई तथा श्रेष्ठ फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाना चाहिए, जो कि मिट्टी की भौतिक अवस्था को अच्छा रखने में सहायक होते हैं तथा वर्षा जल संचयन में मददगार साबित होते हैं। फिर खेतों को जोत के अनुसार लेजर लेवलर इत्यादि उपकरणों की मदद से समतल करना चाहिए ताकि सिंचाई एवं वर्षा जल नियंत्रित रखा जा सके तथा समान रूप से पूरे खेत में सिंचाई एवं जल निकासी की व्यवस्था की जा सके। और फिर किसान भाइयों को यह भी चाहिए कि अपने खेतों में सदैव वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप ही कीटनाशक एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि अपरिहार्य स्थिति में खेत से निकासी किया गया जल पर्यावरण को दूषित ना कर सके। इसके बाद फसल चक्र का सही चुनाव से एक फसल के बाद मृदा में बचा हुआ जल अगली फसल के प्रयोग में आ सकता है। अतः पारिस्थितिकी के अनुसार फसल चक्र का चुनाव करने से

0: प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वर्षा जल का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। एक और बात कि आकस्मिक एवं असामयिक वर्षा तथा तीव्र गति की वर्षा होने की स्थिति में खेतों से जल निकासी का भी समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। निकासी किया गया जल किसी गड्ढे या पोखर में इकट्ठा करने से हम आने वाले दिनों में उसको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर अंत में एक बात कि खेत के बाहरी किनारों एवं मेड़ों पर साल भर हरी रहने वाली चारे की फसल या घास जैसे कि हाइब्रिड नेपियर इत्यादि लगाने से वर्षा जल का बहाव धीमा होने के साथ साथ मृदा का अपरदन भी कम हो सकता है तथा मृदा की भौतिक अवस्था भी अच्छी बनी रहती है। तो यदि किसान भाई इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है और इस परिस्थिति में सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ऐसी व्यवस्था होने से हमारा कृषि तंत्र एक बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की ओर अग्रसर होगा तथा जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ व्यवस्था का हिस्सा बन सकेगा।
1: जी, तो इस प्रकार आपने श्रोताओं जाना कि कैसे जलवायु अनुकूल कृषि में जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच थे डॉक्टर अंशुमन कोहली, जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस खास विषय के बारे में। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: याद एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, और हर रोज़ की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें हम बातें करते हैं खेती से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज भी कुछ ऐसी ही बातें हम लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। आज का हमारा विषय है केचुआ खाद बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता, यानी कि वर्मी कम्पोस्ट के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शिव पूजन यादव, जो कि वैज्ञानिक हैं KVK बसूली महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, जो आप सभी को आएंगे कि क्या होता है ये केचुआ खाद, इसे बनाने का तरीका क्या है, इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद मैम।
5: सबसे पहले तो केचुआ खाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
6: तो जो हम आज बात करेंगे केचुआ खाद की या बर्मी कम्पोस्ट की, तो हम चाहेंगे कि जो, जैसा हम जानते हैं कि विगत वर्षों में जब हरित क्रांति आई तो हमने रासायनिक खादों का अंधाधुंध और अनियंत्रित तरीकों से प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई, और आज हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की भी कमी होने लगी है। ऐसे में हमें ऑर्गेनिक खाद, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, उसमें केचुआ की खाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो केचुआ की खाद है क्या, तो हम बात करेंगे कि केचुआ

0: हमारे अपशिष्ट हैं, चाहे कृषि से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे किचन से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर है, गौमूत्र है, उसके द्वारा जब हम उसको सड़ा के केचुआ डाल के, केचुआ अपने मल के रूप में उसको खा के मल के रूप में जो निकालता है, या केचुए का कोकून सड़कर खाद बन जाता है, तो इसे हम केचुआ खाद कहते हैं।
1: इसे बनाने की विधि के बारे में जानना चाहेंगे।
0: तो सबसे पहले हम केचुआ खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहला जरूरी होता है कि हम स्थान का चुनाव कैसे करें। जहाँ पे हम केचुआ खाद बनाने जा रहे हैं उसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ जो समतल जगह है उससे लगभग 3 फीट ऊंचा हो, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए। और वो जगह छायादार स्थान में होना चाहिए। अगर छायादार स्थान में नहीं है तो हमें टीन का शेड लगाना पड़ेगा जिससे उसको छायादार बनाया जा सके। इसके साथ ही उसकी बनाने की विधि क्या है, तो हम इसको क्यारी बना के, ईंट से तैयार, कंक्रीट से तैयार क्यारी बना के उसमें केचुआ की खाद बनाते हैं। तो क्यारी का साइज हमें क्या रखना चाहिए, तो 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की या 50 सेंटीमीटर का क्यारी बनाएंगे। इसमें 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1/2 मीटर गहरा क्यारी बनाएंगे। इस तरह की अगर हम क्यारी बनाते हैं ईंट से, तो उसमें लगभग 5 टन सड़ा हुआ हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है हमारे पास, वो उसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें होता है हम उसको अवशिष्ट पदार्थ को किस तरह से क्यारी में डालना है। तो कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जिसको, जिससे भी हम अपना खाद बनाने जा रहे हैं, केचुए की खाद बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी अवशिष्ट हमारे पास है उसको हम कहीं एक छायादार स्थान में ढेर बना के इकट्ठा कर लें और लगभग 15 से 20 दिन तक उसको कूड़ बना के, ढेर बना के रखे रहें और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे क्या होगा कि वो पार्शली डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कुछ मात्रा में वो सड़ जाएगा बाहर ही। पूरी तरह अगर हम डायरेक्ट उसको क्यारी में डाल देंगे, बनाने वाले गड्ढे में डाल देंगे, तो उसका तापमान अच्छा नहीं रहेगा और केचुए पे नुकसान पहुंचाएगा केचुए को। तो इसीलिए उसको हम पहले पार्शली डिकम्पोज कर लें, उसके बाद ले जाके हम जिस जो क्यारी हमने बनाई है छायादार स्थान में उसमें हम उसको भर देंगे। भरने के बाद लगभग 4 से 5 दिन तक हम उसको पानी छिड़कते रहेंगे और भर के रखे रहेंगे। जब उसका तापमान एक पूरे गड्ढे में देखेंगे अगर बराबर आ जाता है, लगभग केचुए के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अगर इस तापमान पे जब हमारा गोबर या जो कंपोस्ट बना रहे हैं, जो भी सड़ा मटेरियल है उसमें भरा हुआ है, वो आ जाए तो हम उसमें केचुआ डालेंगे। एक टंकी में जो एक क्यारी मैंने बनाई है उसमें लगभग 1 किलोग्राम केचुआ डालेंगे, जिसमें लगभग 5,000 केचुआ होंगे। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम केचुआ किस प्रजाति का केचुआ डालेंगे। तो उसमें होता है एसिनिया फोइटिडा है, एडुलस इजैनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केचुआ की प्रजाति है। इसको हम डाल के इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता खाद बदलने की बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे कि उसमें केचुआ भरने के बाद, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको भरने के बाद, हम उसमें पानी का छिड़काव 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे, जिससे उसका तापमान बना रहेगा और उसमें नमी बनी रहेगी और केचुआ अपना विकास उसमें अच्छे से कर पाएगा और खाद को खाकर अच्छे से बदल पाएगा।
1: अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग के बारे में कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: तो जो हमारा खाद बनकर तैयार हुआ है उसको अगर हम एक ही क्यारी में बनाए हैं तब तो हमें लेयर बाय लेयर उसको आसानी से निकालेंगे। अगर कई क्यारी में बना लिए हैं, जैसे अगर हम 100 वर्ग मीटर में अगर हम केचुआ की खाद बना रहे हैं, तो इसमें लगभग 90 क्यारी हमारी, जितना मैंने साइज बताया है, 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की क्यारी, लगभग 90 क्यारी बन जाएंगी। इस तरह से अगर हम खाद बनाते हैं तो हमें उसको लगभग, खाद बनने में लगभग 30 से 40 दिन लगेगा डिकम्पोज होने में। तो उसमें हम 30 से 40 दिन बाद एक क्यारी में ऊपर की 6 इंच लेयर को निकालते रहेंगे और वो खाद, केचुआ अपना नीचे की तरफ जाता है तो खाद बनाता हुआ चला जाएगा और हमारा खाद भी हम प्रयोग करते जाएंगे। केचुआ एक क्यारी से इस तरह बनाते हैं तो दूसरी क्यारी में अपने आप ही मूव करता है, चला जाएगा और खाद बनती निकल जाएगी। तो उसको निकालने के बाद हम उसको छानते हैं, 2 मिलीमीटर छन्नी से उसको अच्छे से छान लेंगे, जो उसमें कंकड़ पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, जो खाद होगी हमारी वो अच्छे से हमें मिल जाएगी। तो इस खाद में जो वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार होगा, इसमें लगभग 1.5% नत्रजन होता है, 1.5 से 3% फास्फोरस होता है और 1.5% ही के आसपास पोटास

0: होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी मिट्टी में अभी खासकर कमी दिखने लगी है। तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, उसके साथ ही इसमें बहुत कई तरह के एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अब इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, किस फसल में इसका कितना प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जो धान्य फसलें हैं, जैसे चावल है, धान है, गेहूं है, ये सब हैं, इसके साथ ही सब्जी है, तिलहन की फसलें हैं, दलहन है, तो इसमें हम 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे। इसको हम बुआई से पहले खेत में बिखेर देंगे और उसको जुताई करके अच्छे से खेत में मिला देंगे। इसी के साथ ही अगर हम फलदार वृक्षों में इसको प्रयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को हम प्रत्येक पौधे पर डाल के अच्छे से खुरपी से मिला देंगे। इसी तरह अगर हम घास के लान में डाल रहे हैं तो 3 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं।
1: और इससे क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा किसान भाइयों को?
0: तो जैसा मैंने कहा कि बर्मी कंपोस्ट जो हमारा जैविक खाद है, तो जैविक खाद होने के कारण ये इसमें किसी तरह का कोई रसायन नहीं होता है। रसायन ना होने के कारण ये हमारी मृदा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। मृदा के भौतिक गुण मतलब उसकी संरचना और उसके संगठन में सुधार लाता है। उसी के साथ ही मृदा में वायु संचार, क्योंकि इसका पोरोसिटी अच्छा होता है, तो वायु संचार मृदा में पोरोसिटी बढ़ा के उसका वायु संचार अच्छे से करता है। और जो हमारे बर्मी कंपोस्ट अगर हम खेत में डालते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव, जो हमारे बेनिफिशियल, जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, उनका भी संख्या बढ़ जाती है, जिससे खेत में वातावरण से नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण बढ़ जाता है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट को लघु या कुटीर उद्योग के रूप में हम बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
1: इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: और श्रोताओं, आप सभी से फिर मुलाकात होगी। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: के आगे 0 0, के पीछे 0, आगे 0, पीछे 0। टिकू, क्यों है इतने 0?
3: 0 नहीं, बल्कि मैं उन 0 डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,

0: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं, उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और आज हम जानेंगे कि क्या हैं बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आर बी वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं।
1: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हट के अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता है उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
0: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
1: बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी।
1: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश
0: जी।
1: है। इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या, भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है
0: जी जी।
1: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है
0: जी जी।
1: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
0: प्राइस कम हो,
1: उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं, कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है
0: जी जी।
1: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर अगेती कर लेते हैं
0: पहले,
1: तो ये थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं मौसम से, थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50-60 रुपए गोभी बिक जाती है।
0: यानी कि उसके मौसम आने से थोड़े महीने पहले
1: आपने कर लिया तो भी आपको

0: उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाज़ार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये ज़रूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। इस संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की ज़रूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन पर डे पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें, बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं और हम जैसा
1: चैलेंजिंग हो जाता है,
0: बिल्कुल चैलेंजिंग होता है और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
1: होती है।
0: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ट कर सकते हैं तो उसको एफर्ट, मतलब उसको एडाप्ट करें। जो किसान भाई उसको एडाप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली

0: ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली और जो कूलिंग, हाँ ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर से हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर हम उसको हटा देते हैं। अच्छा। तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो
0: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं तो उसको ले जा करके अपना प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
1: हमारे छोटे किसान,
0: हाँ, छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
1: अच्छा।
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की, वैसे हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी कद्दू की जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
1: ठंडी के मौसम,
0: ठंडी का मौसम
1: आने से पहले, कुछ
0: गर्मी आने से पहले।
1: अच्छा।
0: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च में तो सबके मार्च अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक,
1: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा हमने क्या किया, ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई हैं उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें,
0: हाँ,
1: तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की, थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: मिट्टी चाहिए।
0: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है, या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
1: नव सीखिए नहीं होनी,
0: हाँ,
1: चाहिए बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए नव
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
0: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो। हाई प्र

0: इस वैल्यू जिसको कहते हैं लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लीजिए आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफ़ी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है, टमाटर है, तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
1: जी, जी, जी.
0: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
1: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
0: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
1: नहीं है,
0: नहीं होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़ वाली सब्जियां में आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इसे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
1: नहीं
0: कुछ
1: हुआ।
0: नहीं हुआ। तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें, और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है।
1: जी जी।
0: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है।
1: जी।
0: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी।
1: जी।
0: 15,000 रुपए आपको लगाना है, जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं
1: 50% सब्सिडी सरकार की,
0: 50% सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है, 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके।
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती है, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गई, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है, और कम क्षेत्रफल से देखिए ना आप कितना जो है
1: लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट,
0: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं, और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर 1 एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पोली हाउस बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं

0: हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती
1: जी
0: है,
1: जी
0: बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं, जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाती है।
1: खराब हो
0: लेकिन
1: जाती है।
0: अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं, तो इसमें आपका जो है
1: जी
0: क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज़्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली
1: ज्यादा
0: बढ़
1: होगी।
0: जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल गया। आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त
1: पैसा लिया, दाम
0: पैसा
1: लिया।
0: निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में, तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं। और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन।
1: आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान

दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप, इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बेंडाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं।

नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्री छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दे, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबा कर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें, तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है। और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी के स्क्रीन पर अक्षर

भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है, आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका

करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ अनु और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और खासकर जब और बात करें किसानों की, तो आप सभी को पता है कि किसान जो हैं आजकल रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो होता है लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे मैं पूछना चाहूंगी, सर कैसे जो किसान हैं वो अपनी उत्पादकता, फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाएं, और तो इन रासायनिक उर्वरकों से बचकर कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से।
5: देखिए, इसमें जो किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद से आजकल क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका उत्पाद हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, उसका जो अवशेष, रासायनिक खादों का अवशेष हमारी बॉडी के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। तो प्रश्न आता है कि हम पोषक तत्व किससे दें यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं।

0: तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक। पहला जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का प्रायोगिक सम्मिश्रण है, जो कि समुचित मात्रा एवं तकनीक से व्यवहार करने पर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक कभी भी किसी कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जाकर के अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन का स्थिरण करते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं या बेकार होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु जाकर के मिट्टी में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील या बेकार पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, और उस अवस्था में उपलब्ध कराते हैं जिस अवस्था में पौधा लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सही तरह से करते हैं, तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं और पौधों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
1: तो सर ने बताया यहाँ पर कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, आप उनसे हटकर जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों। और उनके महत्व पर और भी ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और इनसे हम और भी बातें जानेंगे। और आगे सर हमें क्या बताना चाहेंगे आप इस जैविक उर्वरक के बारे में?
0: इसके बारे में हमको जानना होगा कि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है। तो ये हमको जानना बहुत अत्यावश्यक है कि जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में।
1: तो सर ने हमें बताया कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये और किस प्रकार ये रासायनिक खादों से अलग ये अपना काम करता है, सर आप हमें बताना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करते हैं या फिक्सेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78.6% नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, चना, मसूर, अरहर, उसकी जड़ों के अंदर ये गांठे बनाता है और गांठों के अंदर उस वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अवस्था में चेंज कर देता है जिस अवस्था में पौधा लेता है, जैसे कि अमोनिकल है या नाइट्रेट है। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता, जो कि हम DAP से यूरिया से देते हैं, तो इस तरह से ये उससे अलग होता है केमिकल से, और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है खेती पर या मिट्टी पर। इसलिए ये बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा होता है पौधों को ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। तो फास्फोरस मुख्यतः पौधा आयनिक फॉर्म में लेता है, जो कि हम लोग आयन बोलते हैं। और जब हम DAP अप्लाई करते हैं तो DAP या SSP जो फास्फोरस किसान भाई अप्लाई करते हैं तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 15-20% होती है। मतलब कहने का यह है कि 80% से 85% भाग मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है या उस अवस्था में हो जाता है जो कि पौधे के लिए बेकार होता है, अनुपलब्ध होता है। तो ये जो बैक्टीरिया या जीवाणु खाद है जब मिट्टी में जाता है और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसको अनुपलब्ध फॉस्फोरस को उपलब्ध कराता है और पौधा उसको यूज़ करने लगता है अपने कार्य के लिए।
1: तो आज ये उन्नत कृषि में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का

0: जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
1: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
1: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। सर ने हमें बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो इसमें एक जीवाणु का नाम आता है सर, और उसका नाम है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम। सर, इसका क्या काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी बातें होंगी उनके लिए।
6: देखिए, अभी जो राइजियम के बारे में बताया, तो राइजियम का प्रयोग केवल दलहनी फसलों में किया जाता है, और अभी आपने जो पूछा है एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम का क्या काम होता है, तो एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी के अंदर करते हैं, और ये जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी वाली फसल जितनी भी हैं, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल वाले वृक्ष जैसे कि लीची, आम, अमरूद, पपीता, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यदि किसान भाई साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने खेतों के अंदर, तो ये जीवाणु प्रति हेक्टेयर एक साल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनका प्रयोग करते हैं तो हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि DAP या यूरिया से देते हैं उसको सेव कर सकते हैं।
4: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो सर, हमने अभी बहुत सारी बातें जानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जाना और जीवाणु के बारे में जाना, और इसके बाद सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि खेतों में और मिट्टी में खासकर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, और इन अगतिशील पोषक तत्वों से पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे तब किस तरीके से जैव उर्वरक इन अगतिशील पोषक तत्वों को गतिशील बनाकर जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सके।
6: देखिए, आपने जो बात करी है अगतिशील पोषक तत्व, तो मृदा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि अगतिशील होते हैं, उसको उदाहरण बताना चाहूंगा। नंबर एक पर आता है फॉस्फोरस, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जिंक है और आयरन है। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि मृदा घोल में अगतिशील होते हैं, और पौधे की जड़ जहाँ होती है वहाँ तक वो आ नहीं पाते, तो पौधे की जड़ के आसपास जो भी पोषक तत्व होता है, फास्फोरस, जिंक या आयरन, वो पौधे के द्वारा यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसकी फिर से कमी हो जाती है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो दूर रखा हुआ फास्फोरस है वो उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्षण होता है कि वो अगतिशील है। तो इसके अंदर एक जैव उर्वरक आता है माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो माइक्रोराइजा एक फंगस या फफूंद का एसोसिएशन होता है, सहजीवी होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ में, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है, और ये अपना भोजन उस पौधे से ही लेता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो हाइफी होती है या माइसिलियम होते हैं, ये पौधे की जड़ों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो दूर तक फैलते हैं, कितना फैल जाते हैं, जो मान लीजिए पौधे की जो जड़ है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो भी अनुपलब्ध फास्फोरस था उसको ये लेकर के आती है, पौधे की जड़ के अंदर दे देती है। तो इसका मुख्य कार्य है कि पौधे की जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देना, और दूर से

0: अग्रतिशील पोषक तत्वों को मृदा पौधे की जड़ के अंदर लेकर के आना, तो ये इसका मुख्य कार्य है। यदि किसान भाई इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम तक हम कटौती कर सकते हैं, जो कि हम रासायनिक खाद के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक खादों के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं इसके बायो फर्टिलाइजर के या जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से।
1: या फिर यूं कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करते हैं अगतिशील पोषक तत्वों को मतलब गतिशील बनाने में और पौधों तक इसे अच्छे तरीके से पहुँचाने में।
0: हाँ, क्योंकि जो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बेकार पड़े होते हैं, क्योंकि पौधे से वो दूर है, पौधे से दूर है, पौधे के जब तक जड़ के पास में नहीं आएगा तो पौधे के लिए तो बेकार है। तो माइक्रोएल क्या करता है कि जो दूर पड़ा हुआ था अपनी हाइफी के द्वारा उसको पौधे की जड़ के अंदर डाल देता है और पौधे की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज करने लगता है।
1: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, और आगे कुछ बातें और भी जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि। हमारे आज चर्चा का विषय है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। और डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं जैव उर्वरक के बारे में यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में, और अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ये इनका जो इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, किस तरीके से वो इन्हें अपने खेत में डालकर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सर अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनकी प्रयोग विधि है या फिर क्या होती है।
0: देखिए, सबसे अहम पहलू होता है जैव उर्वरकों की मात्रा और उसकी प्रयोग विधि। किसान भाई यदि सही से इसका प्रयोग विधि जानते हैं तभी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल पाता है खेत में। तो प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर एक पे आता है बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ द बीज होता है, यानी 20 से 25 ग्राम हम बायो फर्टिलाइजर लेते हैं और 1 kg बीज के लिए लेते हैं। जितना हम बायो फर्टिलाइजर या कल्चर लेते हैं उसका दुगनी मात्रा में पानी लेते हैं, और जितना पानी लेते हैं उसका 10% हम गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का जो गुड़ होता है जैगरी और या गुड़ ले लेते हैं। पानी के अंदर गुड़ को डाल लेते हैं और हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद केवल होता है कि गुड़ को अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। जब ये गुड़ पानी में घुल जाता है तो उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में जो मैंने अभी मात्रा बताई थी जैव उर्वरक की या बायो फर्टिलाइजर की, उसको डाल करके हम एक लकड़ी की सहायता से उसको घोल देते हैं और ये अब ये घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद में जो सारे काम जो कर रहे हैं हम, ये छायादार स्थान होना चाहिए या कोई कमरा हो या पेड़ हो उसके नीचे सारा काम करते हैं, और एक फर्श पर पॉली शीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं, और जो आपके बीज की मात्रा थी उस बीज को हम उस पर पॉलीथीन की शीट पर डाल देते हैं और ढेर लगा करके छोड़ देते हैं। फिर जो घोल आपने जैव उर्वरक का बनाया उसके ऊपर डाल करके उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं। हथेली से नहीं करेंगे, हथेली से करते हैं तो क्या होता है कि वो लेप उसका आ नहीं पाता है और लेप छूट जाता है। तो उंगलियों की सहायता से हम उस पर लेप लगाते हैं, और लेप लगाने के बाद में उस सॉल्यूशन का लेप लगाने के बाद में उस प्लास्टिक की शीट पर हम बीज को बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूखने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। यदि हवा चले जल्दी सूख जाता है, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो देर में सूखता है। सुखाने के बाद जिस खेत में आपको इसको बोना होता है या छींटना होता है, लाइन में लगाना होता है, उस खेत में ले जाते हैं और इसको बुवाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। दूसरा विधि होती है मृदा उपचार। तो बायो फर्टिलाइजर के द्वारा या जैव उर्वरक के द्वारा हम मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दर है उसकी 2 किलोग्राम पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, चाहे वो एजिटोवेक्टर हो या एजस्पाइलम हो या PSB हो। तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम 100 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट लेते हैं। 100 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट लेकर के उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको 5 किलोग्राम कल्चर को, और पूरी नाइट या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद में सुबह जा करके जिस खेत में बिखेरना होता है उसमें हम इसको बिखेर देते हैं, और हल्का कल्टीवेटर या हैरो से इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रखते हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट करें बायो फर्टिलाइजर को खेत के अंदर तो धूप ना हो। तो हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो बखेरते हैं इसको सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और बखेरने के तुरंत बाद इसको मिक्स करना होता है। तीसरी विधि आती है बिजला उपचार या पौध उपचार। तो पौध उपचार के लिए इसकी जो दर है वो 2 kg पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसको मात्रा को

0: लेकर के 100 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं और एक घोल बन जाता है। घोल बनाने के बाद जो बिचड़ा है उस बिचड़ा को उखाड़ लेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। और फिर 45 मिनट के बाद में जिस खेत में रोपाई करनी होती है उसमें हम इसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये 3 विधियाँ मैंने बताई हैं। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो इसका भरपूर और जो जितना हर संभव लाभ है वो मिल पाता है और पौधों को अधिक से अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो जाती है।
1: तो सर, आपने बताया अभी जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, उनके प्रयोग विधि के बारे में आपने बताया, और अब हम जानना चाहेंगे आपसे और किसान भाइयों, और किसान भाई भी आपसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि हम किन किन फसलों के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो जैव उर्वरक का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से किया जाता है और हर एक फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए मुख्यतः हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं और ये रिकमेंड करा जाता है, संशोधित किया जाता है कि जब भी हम राइजोबियम का प्रयोग करें उसके साथ में फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB का प्रयोग करना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए 2 जैव उर्वरक मैंने बताए, एक तो राइजोबियम है और दूसरा है PSB। और एजोटोबैक्टर का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली फसलें हों, धान्य फसलें हों, फूल वाली सब फसलें हों, फलों वाली सब फसलें हों। और इसके साथ में भी हम संशोधित किया जाता है कि PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि PSB का काम होता है पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराना। जब पौधों को फास्फोरस उपलब्ध ज़्यादा होती है तो पौधों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और साथ ही साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा होता है एजोस्पर्म जैव उर्वरक। एजोस्पर्म का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान्य फसलें, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि, और जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, गोभी हो, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फल वाली फसलें और पुष्प वाली सब फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा हमने बताया था माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, या फूलों वाली फसलें हैं, या फिर धान्य फसलें होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको किन किन फसलों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात और है जो कि होती है, क्या ध्यान रखें इनका जब हम प्रयोग करते हैं, तब ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमेशा बोला जाता है कि नाइट्रोजन वाले बायोफर्टिलाइजर के साथ में PSB या फास्फोरस वाले बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है, कभी भी रासायनिक खादों के साथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया, DAP भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ हो जाती है उसकी और वो मर जाता है।
1: तो सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए, और जितने भी बहनें हैं, किसान बहनें हैं मेरी, उन सभी के लिए सवाल है, और वो ये है कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ, यानी कि इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है।
0: देखिए, जैव उर्वरक आपको किसी भी जो रासायनिक खाद बेचता है या दवाई बेचता है उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं। और यदि आपको हमारे विश्वविद्यालय का लेना है तो हम लोगों के यहाँ पर भी, हम लोगों की जो प्रोडक्शन इकाई है, उत्पादन इकाई है, उसकी क्षमता 500 मेट्रिक टन है। 500 मेट्रिक टन आप जानते हैं कि बहुत होता है, तो साल भर जितना आपको चाहिए उतना उपलब्ध रहता है। तो हमारे यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बायोलैब है जिसके अंदर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है, और आपको ये राउंड द ईयर कभी भी आप आए, किसी भी टाइम आए, किसी भी प्रकार का जैव उर्वरक लेना हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
1: तो किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम उन्नत कृषि में आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दी हैं, और आपसे आगे भी मुलाकात होगी, हमारे किसान भाइयों और बहनों से भी आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के

0: बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें खासतौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने जमाने

में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीजों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इंप्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत जरूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी, और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियां, महिलाएं, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है, तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए। पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए, और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है, ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है, तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप साफ
कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से

साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे ख़ास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ ख़ास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स हैं, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा, लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज़ है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं। होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी। आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है। आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है। आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझिए कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए। नहीं, मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने
के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को

0: बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं। और अवेयरनेस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब हैं, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की ज़रूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है। और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है। और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए। और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए। जो भी मिथ्स हैं उसे ख़त्म कीजिए। और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है। थोड़े आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल। और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों, कार्बन डाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना, इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों, आपको बता दें, आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला, KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे

गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज एक बार फिर आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु आप सभी के पास लेकर आई है एक अलग विषय और एक अलग चर्चा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, पशुपालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है। और इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं पशुओं को भी और पशुपालकों को भी। और इसलिए आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है।
2: देखिए, टीका वही चीज़ है जो जीव रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई जीवाणु है, विषाणु है, वो यदि पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं, और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो टीका पशु के अंतर्गत पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है। उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है, रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है, लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। अब ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। ये एक टीका हुआ। और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं। हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी, जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का, तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, यानी कि विकसित होता है। और वो जब हमारे जो पशु हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में, या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई टीका के बारे में, और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी

0: और बातें करें, और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है।
1: देखिए, वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
0: जी जी।
1: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत हो जाते हैं। पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है। यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में विदिन वीक, एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें।
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य है। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका। उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही। तो आप एक शेड्यूल बना लें, या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें, और उसमें ये चीज़ पशु जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं, आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए और क्या क्या ज़रूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की, और इसके बाद जब हम किसी भी चीज़ को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसके महत्व को समझे, और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की, और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हम टीकाकरण का महत्व क्या होता है।
1: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम एंटी सीरम कहते हैं। और कुछ ऐसा जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है, रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन, वो बदलते रहते हैं। तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और महत्व को अगर बताया जाए तो एक ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पुनः टीकाकरण, यानी कि उसके बाद जो एक लिमिटेशन रहता है उस टीकाकरण का, यानी कि समय समय पर आपको एक डेट दिया जाता है और उस डेट के बाद आपको पुनः टीकाकरण करवाना पड़ता है अपने पशुओं का। और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी यही है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं के अंदर, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया उद्देश्य और महत्व के बारे में टीकाकरण के, और पशुओं को स्वस्थ रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है आपके। आप जितना स्वस्थ रहेंगे आपका पशु भी उतना स्वस्थ रहेगा, आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी

0: रखें, उसका खान पान, उसका देख रेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियां हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें, और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता। और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के समय अवधि पर किया जा सकता है,
1: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र हार्ड होता है।
0: हार्ड टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है। उसको सपोज कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका लगा दिए हैं, FMD में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। FMD रोग यदि देखा जाए, खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरियंट्स हैं, ACR-A करके आता है। तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं, कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है। तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी है, थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। आप कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और खासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार पशु का ना खरीदें जिस क्षेत्र में पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं। एक्सपायर्ड टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं, बिल्कुल कम टेम्परेचर पर उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
1: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के

0: कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूमेन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों आप सभी का उन्नत कृषि में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, अध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब से आज हम बातें कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में, और बहुत सारी जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, आप सबों के सामने रखी हैं, और कुछ बातें और बाकी हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया था कि पशुओं को टीका देने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर पहले की बात हो गई तो अब बाद की भी बात हो जाए, तो टीकाकरण कराने के बाद पशुओं को किस तरीके से रखा जाए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे।
5: बिल्कुल, आप ये तो इंश्योर कीजिए कि जहाँ पशु रखते हैं साफ सफाई पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि पशु का आप टीकाकरण तो कर दिए हैं लेकिन फिर भी दूसरी बीमारी भी हो सकती है उसमें,
4: यानी कि साफ सफाई बहुत
5: उसका
4: जरूरी है।
5: जो आवास प्रबंधन है, बिल्कुल आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पशु को साफ सुथरा रखें, और उसको जो आप खाना देते हैं वो कभी भी दूषित ना हो, कभी भी गंदा ना हो, कभी भी जो परचेज करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं, तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो, ऐसे खाना को दें, दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें। चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं, और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो, तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें, जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें। कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है, तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें। बछड़ा है, बछड़ा को एक साथ रखें, जो गाय है उसको एक साथ रखें, बाछी को एक साथ रखें। अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं।
4: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं, छोटे और बड़े पशु जो होते हैं, उन्हें अलग अलग रखें, और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रखरखाव की, और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग विरोधी टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है, और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
5: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है, जो हो मतलब देखने को मिलता है, आप देखेंगे उसमें

0: सबसे ज्यादा आपको खुरहा मुंह पका रोग, इसको खुरपका मुंह पका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से, यह विषाणु जनित रोग।
1: हाँ, ये किस जानवर में देखा जाता
0: ये है? गाय और भैंस में देखा जाता है, बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है।
1: जनरली गाय और
0: भैंस में ये ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको, यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है। इस बीमारी से गला में सूजन होता है और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया। कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है, गला, इसलिए इसका नाम गला घोटू रखा गया है। यह जीवाणु जनित रोग है।
1: अच्छा,
0: ठीक है। इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, यह भी जीवाणु जनित है। यह भी गाय भैंस में होता है, यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसा सड़न सा रोग हो जाता है, मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है। अच्छा। इसलिए इसका इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पर चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है।
1: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है ये?
0: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है, और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता है। और बहुत ही संक्रामक बीमारी है, एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं। इससे हाँ ब्रुसेलोसिस इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है।
1: अच्छा।
0: यह जो समय से गर्भवती पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं। ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है।
1: इसमें
0: मृत्यु तो बहुत कम होती है लेकिन यह जो है एबॉर्शन कॉज करता है, पूरा का पूरा एक किसान को जो नई गाय मिलती बछड़ा मिलता वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा। और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं,
1: यानी ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब।
0: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है, और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है। आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है।
1: अच्छा।
0: इस तरह से हम देखते हैं कि खुरहा मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ी, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण करके हम अपने पशु को, अपने पशुपालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: और सर इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है। यह पशुओं में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें, टीकाकरण कराएं। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं, मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू, हेमराजिक सेप्टिसीमिया, बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है। मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं।
1: पॉलीवेलेंट,
0: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है। आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है। यह भी गौ वंशीय तथा भैंस वंश या पशुओं में दिया जाता है और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें

0: मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं, इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए, यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात को रोकता है। जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में या फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। मेल में होता है यह बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स, इस रोग में स्पोर का टीका दिया जाता है। एंथ्रेक्स का स्पोर टीका के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह टीका है, 1 मिलीलीटर टीका दिया जाता है।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जो बहुत सारे रोगों के नाम बताएं, और इसके साथ ही इन्होंने रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में टीकों के नाम भी बताएं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो पशुपालक भाई हैं, अगर वो सफल टीकाकरण करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, सावधानियाँ ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है, और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
1: प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन इज
0: प्रिकॉशन कहते हैं, बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें, और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं, उसे आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य
1: चेक करवाएं, या फिर कुछ
0: जो भी ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी जरूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चल रही है, और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों में के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है, और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा
1: थनेला रोग
0: के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है हमने उस जीवाणु को पहचाना है।
1: हमारे यहाँ
0: रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है, और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
1: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए, तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए, और उनके जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियां बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा।
0: बिल्कुल, हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसान बंधु कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है और बस उससे कोई मतलब नहीं रहा।

0: दिए रस्सी में बंधा हुआ है और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर, ऐसा नहीं हो। आप पशु के साथ जुड़े, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
1: लेकिन मनुष्य के जैसे जुबान नहीं है,
0: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है। आप उसकी आंख देख करके, उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ठीक हो जाएगा, आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उचित उपचार कराएं। और हमेशा आप देखते रहें अगल बगल के क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैला है,
1: इस बात का भी ध्यान रखना।
0: हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से हम देखते हैं ठंडे के दिन में खुरहा मुँहपका रोग बहुत फैलता है, ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में खुरपका मुँहपका रोग FMD के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज, यह रोग ठंडी के दिन में फैलता है। और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी, यह बरसात के सीजन में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर महीने में यह रोग ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने पशु को इस समय में इस रोग से बचाएं और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें, जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएं और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन उसका शरीर
1: जो
0: में
1: पोषक तत्व तो उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है।
0: हाँ, एब्जॉर्व नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित समय अवधि पर जरूर करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी या फिर कहीं उसके बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की। तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए, तो आपको, अगर आप नए पशु पालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: ये एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया।

0: जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
1: माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
1: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया।
7: इस घर में हम 3 लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगूं संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि 2 गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं।
8: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
7: अच्छा,
8: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
7: हाँ, अरे हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2-3 दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
8: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
9: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
8: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
9: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
8: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। यहाँ से इसमें हंसने की क्या बात है?
9: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
8: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
9: ठीक है,
8: चल हट, हट, उड़।
9: ये अब नहीं निकलेंगी।
8: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
7: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती, तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को ठिठोली सूझती।
9: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
8: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
7: जी?
8: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
7: जी।
8: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
7: जी। अच्छा पिताजी।
8: अब
7: पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
9: अरे अरे,
8: अरे
9: क्या करते हो जी?
8: गलती से लग गया।
9: आराम से।
7: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती।

0: आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
1: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
0: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
2: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
0: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
2: अरे
1: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
0: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
3: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
2: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
1: सुनो तो, रुक जाओ।
0: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ा और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
2: गई।
0: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही हैं। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
4: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी सुन ये।
0: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
1: तुम्हारे बस की नहीं है।
2: फिर कोशिश करता।
0: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
2: अब देखो,
0: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा चींची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके, बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
5: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो, माँ पिताजी
1: हाँ।
5: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
1: अरे हाँ बेटी।
2: अरे
0: पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
1: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया, आ जाओ गोरैया।
0: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
2: अरे
0: वो उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
2: सच में

दो गौरैया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं

0: प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं।

है 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंगेर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 65 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले दो दिनों तक दक्षिण पछिया हवा और उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, उस जल वर्षा का लाभ उठाइए और धान की सबौर, सुरभीत, भागलपुर कतरनी, सबौर दीप इन किस्मों की बुआई कर ले। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना ना भूलें। किसान भाई बहनों कार्बेंडाइजीन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलो बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना इन किस्मों की आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं। पुरानी नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रित करें और जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो रोपाई करें। किसान भाई बहनों आपको बता दें आप श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 389, राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 और गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे आम, लीची आदि फलदार वृक्षों के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद, उर्वरक और कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दे। ये मौसम आम के पौधों की रोपाई करने के लिए अनुकूल है। गड्ढों की मिट्टी बैठ जाने पर पौधों की रोपणी कर ले और कलमी आम के लिए 10x10 मीटर और बीजू आम के लिए 12x12 मीटर की दूरी रखे। अम्रपाली किस्म की सघन बागवानी 2.5x2.5 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। परिपक्व वृक्षों में हर वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है। ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें और गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में अगर टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और प्रत्येक पशु को जीवन निर्वाह हेतु हर दिन 1 किलोग्राम सांद्र आहार और प्रत्येक 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त सांद्र आहार जरूर खिलाएं। पशुओं को हमेशा साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं और वर्षा का गंदा या दूषित पानी पीने से अपने पशुओं को बचाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और ये है आपका पसंदीदा चैनल। जी हाँ, 90.8। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, ड्रम सीडर से धान की बुआई के बारे में। और इस बारे में इस बहुत ही खास चर्चा को लेकर हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी। और मैं आपको बता दूं, ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से कृषि अभियंत्रण विभाग से। और आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंकज सर से हम कि धान की कौन सी प्रजाति, अगर हम ड्रम सीडर विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो धान की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहेगी?
1: कि धान की खेती दो तरह से होता है, जैसे असिंचित एवं सिंचित, दोनों परिस्थितियों में की जाती है। असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मुख्य जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों व पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेत में पानी भरने में बिया यानी कि खर्च अधिक आता है जी। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई की तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है और दूसरी विधि में खेत में कदवा करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। अब है क्या कि बहुफसलीय बिजाई यंत्र खेत को कल्टीवेटर या डिस्क हैरो के द्वारा अच्छी जुताई करने के बाद लेजर लैंड लेवलर यंत्र द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उपर्युक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है तथा खेत के समतल होने से सिंचाई के समय में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। बुआई के समय खेत अच्छी तरह जुताई किया हुआ होना चाहिए और भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बुआई करें। अब बुआई का समय, धान की सीधी बुआई का उपयुक्त समय 20 मई से 30 जून तक होता है। मानसून आने से 10 से 15 दिन पहले है या मई के आखिरी सप्ताह से लेकर मध्य जून तक है। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे अधिक गहराई होने पर जमाव कम हो जाता है। अब आप का क्वेश्चन है कि प्रजातियां इसमें कौन सी लेना चाहिए और बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो लंबी अवधि की अगर धान आप अगर लेते हैं तो 145 से 60 दिन की अगर धान यहां पर ले सकते हैं, जो 20 मई से 10 जून तक आप इसमें बुआई कर सकते हैं। मध्य अवधि वाली अगर आप बुआई करते हैं, जो 135 दिन की अवधि होती है वाली बीज, जिसको आप 25 मई से 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और छोटी अवधि वाली अगर आप बुआई करना चाहते हैं बीज को, तो 115 से 120 दिन का वो फसल होगा, जो 1 जून से 30 जून तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। यदि 30 जून के बाद बुआई करनी है तो कम अवधि वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए, जैसे पढ़वात है, तुरंता है, ये सब वैरायटी आपको प्रजाति आपको ले लेना चाहिए
0: जी। तो ये कुछ प्रजातियों के नाम है जो सर ने आपको बताया कि कौन कौन से आप प्रजाति लगा सकते हैं ड्रम सीडर विधि से अगर आप लगाना चाहते हैं। तो सर, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी होता है धान की सीधी बिजाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ड्रम सीडर है क्या। ड्रम सीडर अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बुआई किया जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है, ये तो हम पहले बता दिए हैं। खेत में पानी भरकर कदवा कर लें। यदि खेत में पानी भरा हो तो उसे निकाल दें। चमकादो करने के 48 घंटे पूर्व

0: बीज को पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो दें। जूट की बोरी को भिंगोकर बीज को उपचारित करके लगभग 15 से 20 घंटे तक अंकुरण होने के लिए छोड़ दें। बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दें और इसे ड्रम सीडर में आधी आधी मात्रा भरकर आप कदवा किए हुए खेत में चला दें। बीज बोते समय खेत में पानी नहीं रहना चाहिए। बीज को चिड़िया से शाम के वक्त बचाना चाहिए।
1: तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं ड्रम सीडर की जो आप बता रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है, कार्य क्षमता इसकी कितनी होती है?
0: देखिए, इस मशीन का बनावट एवं कार्य क्षमता, जैसे कि इसमें दो चक्का होता है, 4 से 6 तक वाली ड्रम इसमें हो सकता है। जैसे 4 ड्रम का अगर होगा तो ये 8 लाइन में बुआई करेगा, और 6 ड्रम का अगर आप लेते हैं तो आप उसमें जो है 6 ड्रम का में 12 लाइन में आपको उसमें बुआई होगा। लेकिन इसको एक हैंडी बनाने के लिए, जैसे कि आप इजी से अगर यूज कर सकने के लिए, 4 ड्रम ठीक होता है। हाथ से खींचने के लिए हैंडल होता है। यंत्र का कार्य क्षमता 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकते हैं। आप जैसे पहले आप क्वेश्चन किए कि धान की सीधी बुआई क्यों, वर्षा एवं सिंचाई जल की कमी होता है, वर्षा का असमान वितरण और भूमि जल में निरंतर गिरावट हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य में निरंतर ह्रास हो रहा है, मृदा में दरारें फटना, सिंचाई नमी का तीव्र ह्रास हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कार्य क्षमता और बनावट ड्रम सीडर मशीन की, और इसके साथ ही सीधी बिजाई के बहुत सारे लाभ हैं। तो सर, आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
0: धान की सीधी बुआई से लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कम जल की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व ईंधन की बचत होती है। आप जानते हैं कि 1 लीटर अगर आप डीजल जलाते हैं तो 2.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो वातावरण को गर्म कर रहा है, और आप उत्पादन के कुछ खर्चे में बचत होता है, किसान के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी, मृदा की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होता है, अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल की परिपक्वता अवधि में कमी होती है। वो कमी इस कारण से होता है कि आप जब कदवा करके जब बिचड़ा को आप जब खेत में लगाते हैं तो लगभग 6 दिन तक बिचड़ा जो है एक स्टैंडिंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो उसमें कोई तरह का बढ़वार नहीं होता है, तो ये इसमें वो समय को काउंट किया जाता है। और मृदा जैव कार्बन में वृद्धि एवं मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, और मीथेन उत्सर्जन, जो कदवा आप करते हैं मीथेन उत्सर्जन में उसमें आप कमी आता है, कदवा की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। और हम एक कहना चाहेंगे कि इसमें कि पोषक तत्व भी कुछ प्रबंधन करना चाहिए। बुआई के समय में 50 किलोग्राम DAP बुआई के साथ तथा 25 किलोग्राम MOP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव 3 बार में देना चाहिए, एक तो 15 किलोग्राम बुआई के 15 दिन बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए, 30 किलोग्राम कल्ले निकलते समय, 45 किलोग्राम बाली निकलने के पूर्व प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व की अगर कमी दिखाई दे तो आप आयरन और जिंक 1% यूरिया और 0.5% जिंक और 0.5% फोरस सल्फेट के घोल में 2 से 3 बार 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करें
1: जी।
0: और इसमें जो ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, रिक्त स्थानों को भरना। तो बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद देखें कि यदि कहीं कहीं जमा ना हुआ हो और जगह खाली हो तो सिंचाई या वर्षा के समय उसी खेत में से जहां अतिरिक्त पौधे हों उखाड़ कर खाली स्थानों पर रोपाई कर दें।

0: इससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
1: तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और अगले दिन अगले विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। वैसे तो पता है आप सभी को किसान भाइयों की, हमारे राज्य में धान की खेती बहुतायत में हो रही है, और अगर समय पर खरपतवार प्रबंधन ना किया जाए तो 50-70% तक उत्पादन में गिरावट दर्ज हो सकती है। तो ज़रूरी है कि खरपतवार का प्रबंधन किया जाए। तो डॉक्टर साहब आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि में।
9: थैंक यू।
1: और डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खरपतवार प्रबंधन है क्या?
9: देखिए, खरपतवार प्रबंधन में अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी फसल हो, जितने भी उसमें अनवांटेड बीड हैं, जैसे कोई पौधा है, धान की हम कोई प्रजाति लगाए हुए हैं, उसके अलावा धान का दूसरी प्रजाति हो या कोई दूसरा प्रकार का पौधा हो, उसको हम खरपतवार की श्रेणी में लाते हैं। तो उसका सही समय पे उसका पूर्णतया नियंत्रण करना, जिससे कि मुख्य फसल पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े, हम उसको खरपतवार प्रबंधन में कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत सी विधियां हैं हमारे पास, कुछ एग्रोनॉमिकल मेथड हैं, सस्य वैज्ञानिक मेथड्स हैं, कल्चरल मेथड्स है, इंजीनियरिंग मेथड्स है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं, खरपतवार नाशी हैं, इत्यादि बहुत सी विधियों का हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार के प्रबंधन के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि धान के खेत हमारे बिहार राज्य में 3.5 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में हो रही है, और अगर शुरू के 40

दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन ना किया जाए, इन खरपतवारों को ससमय नियंत्रण ना किया जाए, तो शुरू के 40-50 दिन का समय जो होता है, 40 दिन तक का जो समय होता है, वो बहुत ही क्रांतिक होता है। अगर इसमें हम इसका प्रबंधन कर देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और 40 दिनों तक हम खरपतवार को नहीं प्रबंधन कर पा रहे हैं तो उत्पादन में 40% से लेकर के 70-80% तक भारी कमी देखी गई है उत्पादन में।

0: डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार प्रबंधन क्यों करना चाहिए।
1: देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जरूरी है कि हमारे पास जो मुख्य फसल धान है या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है। क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन बढ़ जाती है। या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है। क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन।
0: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी और इनसे हम चर्चाएं कर रहे हैं आज धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी, आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आज हम बातें कर रहे हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे

0: जानना चाहेंगे कि धान में बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो कौन कौन से जो खरपतवार हैं वो धान में आते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: क्योंकि धान जो है खरीफ फसल है, जिसकी बुआई हम विभिन्न जिलों में मानसून के शुरुआत होने से लेकर के जुलाई 15 अगस्त तक कर लेते हैं। तो चूँकि खरीफ मौसम में खरपतवार बहुत अच्छे से उगते हैं और इनका ग्रोथ रेट जो विकास दर है बहुत फास्ट होता है, तो जितने भी खरीफ के खरपतवार हैं लगभग सभी आते हैं। इन खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें आपका गाजर घास है या ऐसे घास जिनकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी होती हैं और लंबाई कम होता है। दूसरा ग्रुप होता है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार में अपेक्षाकृत देखा जाए तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जनरली थोड़ा सा लंबा होता है और चौड़ाई इनका कम होता है। जैसे आप धान में देख लीजिए सावा, सवई इत्यादि, ये सब प्रमुख हैं सकरी पत्ती के ग्रुप में। तीसरा ग्रुप हम बांटते हैं मोथा कुल के खरपतवारों का, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो 6 प्रकार के मोथा होते हैं, जैसे साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस, साइप्रस एरिया, इस प्रकार के मोथा कुल के कुल 6 खरपतवार हैं जो इस सीरीज में रहते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं तो जो हमारा खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं वो खरपतवारों के प्रकार के आधार पर भी हम देते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले ग्रुप के खरपतवार हैं तो उसके लिए हम 2,4-D या ऐसी दवाएं जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारती हैं वो प्रयोग करेंगे। सकरी पत्ती वाला खरपतवार, उसके लिए हमारे पास अलग दवाइयाँ होंगी, और सिर्फ मोथा कुल का खरपतवार, उसके लिए अलग दवाइयाँ होंगी। तो अब हम बात करते हैं धान में जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। चूँकि धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे राज्य की और ससमय इसकी बुआई किया जाए तो खरपतवार एक प्रमुख समस्या के रूप में आती है। खरपतवार का ससमय प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन देखा गया है कि अगर हम शुरू के 40 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हैं, अर्थात खरपतवारों का हम 40 दिनों के अंदर अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं, तो उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाती है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम खरपतवारों को ऐसे ही छोड़ दें, 40 दिनों तक उसका कोई नियंत्रण ना करें, तो हमारे खेत में जो है 50-75% तक उत्पादन में कमी आ जाती है। तो हम बात करते हैं खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए जैसे हमने पहले बताया कि खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 बड़े ग्रुपों में बांट सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार एवं मोथा कुल के खरपतवार। अब हम धान की आज अपने राज्य में 2 तरह से बुआई होती है। एक जो है धान की हम सीधी बुआई कर लेते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवाएँ थोड़ा सा दूसरी प्रयोग होती हैं, और दूसरा है रोपित धान, जिसको हम नर्सरी डालते हैं, नर्सरी के बाद हम मुख्य फसल में मुख्य खेत में जो है 20-21 दिन बाद जो नर्सरी है और सीडलिंग है उसकी रोपाई कर देते हैं। तो चूँकि जो रोपित फसल है उसमें एक सेचुरेटेड कंडीशन होता है, उसमें हम धान में कादवां लगा देते हैं जिसको हम पडलिंग कहते हैं, पडलिंग करके उसको रोपाई करते हैं, तो खरपतवार उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं धान की सीधी बुआई, जो आजकल बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है अपने क्षेत्र में, राज्य में। तो धान की सीधी बुआई हम जब किए हैं या कर रहे हैं तो उसमें हमें खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि हम खरपतवार प्रबंधन के विभिन्न जो विधियां हैं उनका प्रयोग में लाएं। तो सबसे पहले अगर हम धान की सीधी बुआई करना है तो हमें ध्यान देना होता है कि हम जो है खेत की एक गहरी जुताई कर दें गर्मी में। जो ही हमारा धान रबी फसलें जैसे गेहूँ है या दलहनी फसल है रबी की सीजन की, तो वो जनरली अप्रैल तक या मई के 1 सप्ताह तक जो है कट के खाली कर देते हैं खेत को। जो ही हमारा खेत खाली होता है गर्मी में गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है जो खरपतवार के बीज हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे चले जाते हैं। तो जब खरपतवार के बीज जो है एक बार ज़मीन में नीचे की सतह में चले जाते हैं तो उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, प्रकाश न मिलने से उनका जमाव नहीं होता है। तो पहला तो हमें खेत की गहरी जुताई करना है जिससे कि सरफेस लेयर पर जो भी खरपतवार के बीज हैं वो जमीन के नीचे चले जाएं। दूसरा जो पेरेनियल वीड्स होते हैं, जो बहुवर्षीय खरपतवार हैं, जैसे मोथा है, दूब है, ये सभी कास है, ये सभी जो है शकर से या उसके गांठों से फैलाव करते हैं। तो जब हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं एक बार, तो क्या होता है कि ये गांठे या इसके शकर से हैं ये सब सूख जाते हैं और आगे खरपतवार का प्रेशर जो है मुख्य फसल में कम हो जाता है। तो ये जरूरी है।